बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।

राधे तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीनी, तीन लोक तारन तरन सो तेरे अधीन।

मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट

प्रॉब्लम किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेवर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: 140 करोड़ देशवासियों को नई ताकत दी। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के संकल्पों से उत्तर प्रदेश का कायाकल्प हुआ। उज्ज्वला योजना से महिलाओं को धुआं मुक्त रसोई, पीएम किसान सम्मान निधि से किसानों को आर्थिक मजबूती और आयुष्मान भारत से आम लोगों को बेहतर इलाज की सुविधा मिली।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।

0: स्किन, बाल, नाखून, समस्त चर्म रोग एवं एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सुविधाओं के लिए विजिट करें डॉक्टर ऋषि गोयल डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सेंटर, ऑपोजिट लवीना रेस्टोरेंट, कांट रोड, मुरादाबाद।
1: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग रीढ़ की हड्डी नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
2: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
1: पता लाइन पार्क प्रकाश नगर चौराहा मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।

0: ने कहा कि विश्व नेताओं ने राष्ट्रीय हितों की प्राथमिकता देने की भारत की अटल प्रतिबद्धता को साझा किया है। सरकार के 12 वर्ष के कार्यों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, खादी और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की पहल राष्ट्र निर्माण के लिए नागरिकों की प्रतिबद्धता में सफल हुई है।
1: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही है उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी से उभरे हैं। श्री मोदी ने सस्ते आवास, कर सुधार, स्वास्थ्य देखभाल योजना और बेहतर शहरी बुनियादी ढांचे का उल्लेख किया। देश की मजबूत अवसंरचना पर बल देते हुए श्री मोदी ने कहा कि वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत रेलगाड़ियां विस्तारित राजमार्ग और हवाई अड्डों से संपर्क व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है।
1: 2014 में करीब 28 लाख लोग हर रोज मेट्रो से सफर करते थे, आज करीब 1,28,00,000 लोग हर रोज मेट्रो से सफर कर रहे हैं। अब वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत जैसी अच्छी सड़कों, अच्छे हाईवे से समय तो बच ही रहा है, गाड़ियों की मेंटेनेंस पर होने वाला खर्चा भी कम हुआ है। बीते वर्षों में एयरपोर्ट की संख्या डबल हुई है, इससे कई छोटे छोटे शहरों में भी मिडिल क्लास को हवाई यात्रा की सुविधा पहली बार मिली है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में अभूतपूर्व अवसर सृजित हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 140 करोड़ भारतवासियों के सामूहिक प्रयासों से विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।
1: भारत आज रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार हो चुका है, ये गति आगे और तेज होगी। हमारा सपना जितना बड़ा है हमारे प्रयास भी उतने ही विराट होंगे और 140 करोड़ देशवासियों का यही साझा प्रयास विकसित भारत बनाकर रहेगा।
0: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में कल ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में चीन की विदेश मंत्री वांग यी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। बैठक में दोनों देशों के संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में हुई प्रगति सहित आपसी सहयोग के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। श्री डोभाल ने कहा कि भारत और चीन के बीच स्थिर, भरोसेमंद और सकारात्मक संबंध दोनों देशों के बीच विश्वास और बेहतर समझ को मजबूत करने में सहायता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की तथा सकारात्मक संबंधों की दिशा में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि आज 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 अलंकरण दिए जाएंगे।
2: इस वर्ष केंद्र सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 सम्मान मरणोपरांत प्रदान किए जाएंगे। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। आज राष्ट्रपति 65 विशिष्ट हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करेंगी। इनमें टेनिस के दिग्गज विजय अमृतराज, अभिनेता ममूती, गायिका अलका याग्निक और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा जैसे प्रमुख हस्तियां शामिल हैं। वर्ष 1954 में स्थापित किए गए यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाते हैं। पद्म पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान, लोक प्रशासन तथा व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए प्रदान किए जाते हैं। सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: हमारी विशेष श्रृंखला पीपुल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों में पद्म पुरस्कार पाने वाले सम्मानित व्यक्तियों के जीवन, उनके कार्यों और समाज में उनके योगदान की जानकारी दी जा रही है।
3: मैराब का काम सीखा, अंगूरी का काम सीखा है, मोटी चिकन मामूली का काम, तो इसमें सबसे बारीक काम एक मरूड़ी का ही होता है, तो मरूड़ी का काम जो है लगातार नहीं किया जाता है, ये बहुत ही फाइन वर्क होता है।
4: जब हमारे मेजॉरिटी कम्युनिटी का यूथ और माइनॉरिटी कम्युनिटी का यूथ वो एक दूसरे को समझने की कोशिश करे, वो ये जाने कि कश्मीर का जो एक नॉर्मल सिख के लिए वही गुलदस्ता जो कश्मीर जिसमें हमारे गांधी जी को किरण नजर आई थी या भारत का ताज के रूप में ये जो था, उसी गुलदस्ते को फिर से उजागर करने के, उसको बनाने के लिए हमने प्रयास करना।
0: ये विशेष कार्यक्रम आज सवेरे 9:10 से आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल 100.1 पर प्रसारित किया जाएगा। श्रोता इन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR के आधिकारिक YouTube चैनल पर भी सुन सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। लखनऊ अग्निकांड में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया।
5: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को भी निलंबित कर दिया गया है। अलीगंज पुलिस ने BNS और उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत 6 नामजद आरोपियों और अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ FIR दर्ज की है। राज्य सरकार ने आग की घटना की उच्च स्तरीय जाँच के आदेश दे दिए हैं। घटना की जाँच के लिए एक विशेष जाँच दल SIT का गठन किया गया है, जिसके सदस्य 7 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। SIT में अतिरिक्त मुख्य सचिव धर्मार्थ कार्य, पर्यटन और संस्कृति अमृत अभिजात और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक लखनऊ जोन प्रवीण कुमार शामिल हैं। कल दोपहर लगी भीषण आग में कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें ज्यादातर 16 से 25 साल की उम्र के छात्र थे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। इससे नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुगम बनाने और किसानों तथा कृषि संस्थाओं के हित में नेफेड की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा। सहकारिता मंत्रालय ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान श्री अमित शाह कई महत्वपूर्ण डिजिटल और किसान केंद्रित पहल का भी शुभारंभ करेंगे। यूरिया, डाई अमोनिया फॉस्फेट और सल्फर लेकर आ रहे 4 भारतीय मालवाहक जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य सफलतापूर्वक पार कर चुके हैं। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अनुसार ये जहाज अब देश के विभिन्न बंदरगाहों की ओर बढ़ रहे हैं। इनमें आंध्र प्रदेश की कृष्णापट्टनम और काकीनाडा बंदरगाह, उड़ीसा का पारादीप बंदरगाह और गुजरात का मुंद्रा बंदरगाह शामिल है। दोहा स्थित भारतीय दूतावास ने बताया है कि कतर के अधिकारियों ने रास लाफान क्षेत्र में रविवार रात हुई दुर्घटना में 12 भारतीय नागरिकों की मौत की पुष्टि की है। दूतावास ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। घटना में घायल सभी लोगों को उचित चिकित्सा उपचार मिल रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारतीय नागरिकों सहित अन्य लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोहा स्थित भारतीय दूतावास कतर के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और भारतीय नागरिकों के परिवारों की सहायता कर रहा है। कतर की सबसे बड़ी गैस रिफाइनरी में हुए विस्फोट में 13 लोग मारे गए और 66 अन्य घायल हो गए। जम्मू कश्मीर पुलिस ने वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए परामर्श जारी किया है। यह यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक आयोजित की जाएगी। कश्मीर से जम्मू जाने वाले वाहनों को सवेरे 11:30 से पहले नवयुग सुरंग पार करने की अनुमति नहीं होगी। वहीं जम्मू से कश्मीर जाने वाले वाहनों को प्रतिदिन दोपहर 3 के बाद सुरंग में प्रवेश नहीं मिलेगा। परामर्श में घाटी के कई महत्वपूर्ण स्थानों के लिए समय सीमा भी तय की गई है। और अब खेल समाचारों के साथ हैं आनंद पाठक।
6: कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे अमरीकी ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। लक्ष्य सेन पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में बेल्जियम के जूलियन कैरागी से खेलेंगे। किदाम्बी श्रीकांत अपने पहले दौर के मुकाबले में चीनी ताइपे के लियाओ झुओ फू का सामना करेंगे। वहीं महिला सिंगल्स में भारत की 7 खिलाड़ी मुख्य ड्रॉ में शामिल हैं। 17 तन्वी शर्मा जर्मनी की यवोन ली के खिलाफ अपना अभियान शुरू करेंगी। महिला डबल्स में ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद पहले दौर में स्पेन की पाउला लोपेज और लूसिया रोड्रिगेज का सामना करेंगी। वहीं हॉकी में FIH प्रो लीग के शुरुआती मुकाबले में आज भारतीय पुरुष टीम का सामना पाकिस्तान से होना है। उधर फीफा विश्व कप में फ्रांस ने इराक को 3-0 से हरा दिया है। वहीं न्यूयॉर्क में नॉर्वे ने सेनेगल को 3-2 से हराया। इस बीच आज सवेरे 8:30 बजे से जॉर्डन और अल्जीरिया के बीच मैच खेला जाएगा। इससे पहले अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराया। दोनों गोल अर्जेंटीना के कप्तान लियोनल मेसी ने किए। इसके साथ ही मेसी 18 गोल के साथ जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोस का 16 गोल का रिकॉर्ड तोड़कर विश्व कप के इतिहास में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं।
0: मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्र और सिक्किम में बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, अरुणाचल प्रदेश, तटवर्ती कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, गोवा, ओडिशा, तेलंगाना, केरल और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी ऐसी ही स्थिति रहेगी। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बृहस्पतिवार तक तेज हवाएं चलने और गरज के साथ वर्षा का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: उन्हें डोनाल्ड ट्रंप का राजनीतिक उत्तराधिकारी माना जा रहा है। अगर शांति समझौता विफल रहता है तो ट्रंप इसका पूरा दोष वेंस पर डाल देंगे। ये शांति समझौता वेंस के राजनीतिक करियर के लिए दोधारी तलवार बन चुका है। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने इस्तीफे का ऐलान किया, बर्नहम ने पीएम पद की दावेदारी पेश की। स्टार्मर बीते 10 साल में ब्रिटेन के पीएम पद से इस्तीफा देने वाले छठे व्यक्ति। जनसत्ता की सुर्खी है, लखनऊ के अलीगंज में इमारत में लगी आग, 12 बच्चों समेत 15 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री ने हालात का जायजा लिया, जांच के लिए एसआईटी गठित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए पीड़ितों की हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। दैनिक जागरण ने लापरवाही की आग शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, बहुत दिन नहीं हुए जब देश की राजधानी में अवैध होटल में आग से 20 से अधिक लोग मारे गए थे। माना यह गया था कि इस घटना से सीख ली गई होगी, लेकिन लखनऊ की आग से पता चलता है कि ऐसा नहीं किया गया।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक बल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ अलंकरण कांड में 4 अधिकारियों को निलंबित किया, 4 आरोपी गिरफ्तार। उर्वरक लेकर आ रहे 4 जहाज हॉर्मुज जल डमरू मध्य पार करने के बाद भारतीय बंदरगाहों की ओर बढ़े। और कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे यूएस ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sunil Varma. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says principle of nation first has been driving force behind India's transformation into a fast-growing, credible and reliable global power. President Draupadi Murmu to confer Padma Awards during second round of civil investiture ceremony at Rashtrapati Bhavan today. Uttar Pradesh government suspends 4 officials in connection with Lucknow fire incident. 4 accused arrested. 4 ships carrying fertilizers heading towards Indian ports after crossing Strait of Hormuz. Qatari authorities confirm death of 12 Indian nationals in Ras Laffan LNG explosion. And Lakshya Sen and Tanvi Sharma to lead India's challenge at US Open Super Badminton Tournament beginning today in California. Prime Minister Narendra Modi has said the principle of nation first has been the driving force behind India's transformation into a fast-growing, credible and reliable global power. Addressing a summit organized by a private media house in New Delhi, the Prime Minister said the country's achievements of the past decade were rooted in trust, stability and a commitment to the larger global good.
3: भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है, और भारत राइजिंग पावर के साथ साथ सुपर पावर तक ले गए। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि भारत रिलायबल पावर है। मैं अभी 2-3 दिन पहले जी समिट से लौटा हूं और दुनिया का हर नेता, हर देश इस बात को भली भांति समझता है कि आज के भारत के लिए नेशन फर्स्ट ही सबसे बड़ा मंत्र है, सबसे बड़ा सिद्धांत है।
2: Referring to his recent participation in the G7 summit, Mr. Modi said, world leaders recognize India's unwavering commitment to putting national interests first, a philosophy that continues to shape the country's policies and development agenda. Highlighting the government's 12 years in office, the Prime Minister said, initiatives such as Swachh Bharat, Make in India, promotion of Khadi and support for local products succeeded because citizens embrace the spirit of nation building.
3: पिछले 12 वर्षों के जो भी

0: मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।
1: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
1: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
3: जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। सांसें सही, जिंदगी सही।
4: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
3: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
0: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।

दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको एक अच्छा जीवन जीना है, एक अगर खुशहाली से भरा जीवन जीना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको खुद खुश होना पड़ेगा और दूसरी बात, आपको सकारात्मकता के साथ जो है आगे बढ़ना पड़ेगा। जब आप पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते हैं, सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ते हैं, तो यकीन मानिए आप ज़िंदगी को और ज़्यादा खुशहाल बना पाते हैं, अपने जीवन को और ज़्यादा बहुत अच्छा और ब्यूटीफुल बना पाते हैं। वो कैसे, चलिए आपको फटाफट से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले सुप्रभात, नमस्कार, एक सुपर डुपर वाला गुड मॉर्निंग है। आप जुड़ चुके हैं FM मुरादाबाद 89.6 FM पे RJ आनंद के साथ। यह आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो, यानी कि दिस इज फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन आप सुन रहे हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज तारीख की बात करें तो 23 जून की सुबह, दिन है आज मंगलवार का। जय श्री राम, प्रभु का नाम लेकर करेंगे आज की सुबह की शुरुआत। आपके जीवन में सब कुछ मंगल ही मंगल हो और जितनी भी अच्छी अच्छी चीजें हैं वो बस आपकी जिंदगी में जो है चलती रहे, स्टेबल रहे और आप ऐसे ही मस्त रहें, झकास रहें और अपनी यात्रा को और अपनी जीवन की यात्रा को, दोनों को मंगलमय बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, ढेर सारे श्रोता साथी जो हमारे साथ सुबह सुबह जुड़ जाते हैं। यकीन मानिए हम भैया खुशी के मारे जो है झूमने लगते हैं, बहुत आनंद आता है आपकी प्यारी प्यारे संदेश को पढ़कर। लेकिन फिलहाल बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन खुशियों से भरा बीते, खुशहाली भरा बीते, तो उसके लिए आपको थोड़ी सी खुशहाली स्प्रेड भी करनी पड़ेगी, यानी कि खुशियों को शेयर भी करना पड़ेगा, साझा भी करना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप भी खुश रहें, तो उसके लिए आपको सकारात्मक होना पड़ेगा। जब आप पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते हो, तो यकीन मानिए आप जो है जो चीज नहीं भी एक्सपेक्ट कर रहे होते हो ना, वो भी आपको मिलने लगती है, क्योंकि आप सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते हो, आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होता है, आपका ऑरा पॉजिटिव होता है, और जहां ऑरा और एटीट्यूड दोनों पॉजिटिव होते हैं ना, वहां चीजें अपने आप ही बेहतर से बेहतरीन हो जाती हैं। आने वाला गाना, चलो जी इसी गाने के साथ करेंगे आज के सफर की शुरुआत। आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे, दिस इज मॉर्निंग मैगजीन शो, बिंदास मॉर्निंग।

0: क्या सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
1: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
2: अरे भैया, इसकी बातें हैं चटपटी, गाने सुनाता है मस्त, और जब ये बोलता है ना तो भाई साहब मॉर्निंग और भी हो जाती है जबरदस्त। सुनिए बिंदास मॉर्निंग आज आनंद के साथ ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम।
1: अरे पापा, सीट बेल्ट तो लगा लो।
3: अरे बेटा, बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
1: पर पापा।
3: अरे बेटा, बस में यू गया और यू आया।
1: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश एफएम मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद। Thank you.

0: योजनाओं ने 140 करोड़ देशवासियों को नई ताकत दी। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के संकल्पों से उत्तर प्रदेश का कायाकल्प हुआ। उज्ज्वला योजना से महिलाओं को धुआं मुक्त रसोई, पीएम किसान सम्मान निधि से किसानों को आर्थिक मजबूती और आयुष्मान भारत से आम लोगों को बेहतर इलाज की सुविधा मिली।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।
2: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
3: अरे भैया, नाचना है तो एफएम मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।

जमाने देखे तुमसे बहुत जमाने में, पहले पीछा करते हैं फिर मिलते हैं जेल खाने में।

क्या बात है यार, गाना इतना बढ़िया सुबह सुबह सुन लिया, पॉजिटिविटी तो अपने आप ही अंदर हमारे आ गई है ना। और ऐसे बेहतरीन गाने जब आप सुनते हैं तो सोच लीजिए भैया और समझ लीजिए शो आ गया है आनंद का। सुप्रभात, वेलकम बैक यू वंस अगेन। आज गुरु बहुत ही खूबसूरत सा ये दिन है और मैं तो कह रहा हूँ अपने दिन की शुरुआत अपने गुरु को याद करके, अपने माता पिता को याद करके, अपने उस परम पिता ईश्वर अल्लाह वाहे गुरु खुदा को याद करके कीजिए अपने दिन की बेहतरीन शुरुआत। श्रोताओं, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। इस वक्त आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को ऑनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे। प्रोग्राम है बिंदास मॉर्निंग और सुबह सुबह आपकी मॉर्निंग को बिंदास बनाने के लिए ढेर सारे गानों के साथ साथ ढेर सारी वो जानकारियां लेकर आता हूँ जो कहीं ना कहीं आपके दिन को और आपकी लाइफ को थोड़ा सा और स्पेशल बना देती हैं श्रोताओं। और मैं सिर्फ अकेला इसमें आपका साथ नहीं देता हूँ, आप भी मेरा साथ देते हैं। जैसे अभी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पूनम जी, लिखती हैं आनंद जी सुप्रभात, बस एक ही चीज़ कहना चाहती हूँ कि अपनी ज़ुबान से कभी किसी के लिए गलत शब्द का इस्तेमाल मत कीजिए क्योंकि कहते हैं जो आप सामने वाले को देते हैं वही आपको कई गुना होकर रिटर्न मिलता है। तो देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही है, मैं आपका दिल से थैंक यू करना चाहूँगा, थैंक यू सो मच, आप मेरे साथ हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ी, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और संदेश मेरे पास पहुँचा है, इनका नाम है अमन जी। अमन लिखते हैं आनंद जी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग अमन। अमन ने मुझे लिखा है कि आनंद जी देखिए, जैसे हमें रोज सूर्य देवता जगाते हैं ना, वैसे हमारी अंदर की इच्छाएं हमें डेली जगाती हैं कि आज हमें कुछ अच्छा करना है, आज हमें कुछ बड़ा करना है। अगर हम अपनी इच्छाओं को जो है ध्यान में रखेंगे तो शायद हम जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा कर पाएंगे। बिल्कुल, देखिए सर, मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ अगर आपको सेलिब्रेट करनी है तो इच्छाएं तो देखिए इंसान की कभी खत्म नहीं होती है, लेकिन अगर उसे छोटी छोटी चीज़ों में खुश रहना उसको आ जाए, छोटी छोटी चीज़ों में अगर वो खुशियां ढूंढनी शुरू कर दे तो उसकी लाइफ डेफिनेटली अच्छी हो जाएगी। और इच्छाएं तो देखिए इंसान की बहुत ज़रूरी, इच्छाओं का होना, मैं ये नहीं कहूँगा कि अपनी इच्छाओं को आप खत्म कीजिए, बिल्कुल अपनी इच्छाओं को रखिए।

0: पास संभाल के, लेकिन बहुत ज्यादा इच्छाएं अगर रखोगी तो फिर हर चीज आपको फीकी फीकी लगेगी मेरे दोस्त। इसी बीच एक और संदेश हमारे पास पहुंचा है, ये मुझे मैसेज पहुंच रहा है दिल्ली रोड से। इन्होंने मुझे अपना नाम बताया है वैभव और ये मुझे लिखते हैं, आनंद जी वेरी गुड मॉर्निंग, सुबह सुबह आपके स्टेशन से तमाम जानकारियां आपके प्रोग्राम में मिलती हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। इस वक्त मैं ऑटो लेके निकल गया हूँ अपनी कर्म भूमि पर। अरे वाह क्या बात है, आप ऑटो चालक हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टेशन पे जनाब। एक संदेश हमारे पास पहुंचा है, गुड मॉर्निंग जी कैसे हालचाल है, इस वक्त मैं कपूर कंपनी के पास में हूं और मैं यहां से आपको सुन रहा हूं और हमारी शॉप है, मैं टेलर का काम करता हूं और रेडियो आते ही मैं ऑन कर देता हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है आनंद जी। और मैं आपसे कभी मुलाकात तो नहीं कर पाया हूं लेकिन सुबह सुबह आपको सुनकर बड़ा आनंद आता है और बहुत ही अच्छी बातें आप करते हैं, बहुत ही मन खुश हो जाता है। देखिए साहब हमारी भी यही कोशिश होती है कि बस हमें आप सुनिए और आपका मन खुश हो जाए। चलिए श्रोताओं वक्त हो गया है 8:39, आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे। यह है आपके शहर का अपना फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। आगे बढ़ेंगे श्रोताओं और इस वक्त हम आपको लेकर जाने वाले हैं एक खास शहर के अंदर जहाँ की खास चीजें, खास व्यंजन के बारे में आपको जो है जानने को मिलता है, कुछ खास जिक्र हम जो है इन प्रोग्राम्स के जरिए आप तक छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन के जरिए आपको पहुँचाते हैं कि कहाँ पर क्या कुछ है जो हमें जानना जरूरी है और जब हम ये जानते हैं तो हमें और भी अच्छा लगता है। एग्जैक्टली ना, तो चलिए अभी आगे बढ़ेंगे और आज हम आपको कहाँ लेकर जा रहे हैं ये तो आपको सुनने के बाद ही पता लगेगा। लेडीज एंड जेंटलमैन आप आनंद के साथ हैं, सुन रहे हैं दिस इज बिंदास मॉर्निंग, थोड़ी सी देर में वी कम बैक, डोंट गो एनीवेयर। चलिए चलते हैं आज कानपुर की गलियों में।
1: बदल रहा है उत्तर प्रदेश, तरक्की की नई पहचान, गांव-गांव में विकास की गूंज, हर हाथ को मिल रहा है सम्मान, विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपका अपना खास कार्यक्रम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश और यह है आपका अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6, जहां आज हम बात करते हैं उस नए उत्तर प्रदेश की जो परंपरा को भी साथ लेकर चल रहे हैं और आधुनिक विकास की नई इबारत लिख रहे हैं।
2: और हूं आपकी दोस्त प्राची।
1: मैं हूं आपका दोस्त आरजे आनंद।
2: आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। उत्तर प्रदेश आज सिर्फ आबादी में बड़ा राज्य नहीं बल्कि विकास, रोजगार, महिला सशक्तिकरण और स्थानीय उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार लगातार ऐसी योजनाएं चला रही है जो गांव, किसान, युवा, महिलाएं और छोटे कारोबारियों की जिंदगी बदल रही है।
2: और आज के इस विशेष अंक में हम बात करेंगे कानपुर देहात की, जहाँ की मिट्टी में बसता है देसी स्वाद, जहाँ की कुल्हड़ वाली मलाईदार लस्सी और शुद्ध सरसों तेल अब ODOC योजना के जरिए देश दुनिया में अपनी पहचान बनाने जा रहे हैं।
1: तो चलिए शुरू करते हैं स्वाद, संस्कृति और विकास की ये खास यात्रा, विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश।
3: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई

0: मिट्टी की खुशबू स्वाद का संसार उत्तर प्रदेश बना आत्मनिर्भर और दमदार।
1: बिल्कुल, आज बात होगी कानपुर देहात की, जहां की कुल्हड़ वाली मलाईदार लस्सी और शुद्ध सरसों का तेल अब सिर्फ गांवों कस्बों तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि देश और दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाएगा। बिल्कुल, आज बात होगी कानपुर देहात की, जहां की कुल्हड़ वाली मलाईदार लस्सी और शुद्ध सरसों का तेल अब सिर्फ गांवों कस्बों तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि देश और दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाएगा। और ये सब संभव हो रहा है उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना वन डिस्ट्रिक्ट वन क्विजीन यानी ODOC योजना से।
0: दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार लगातार प्रदेश पारंपरिक उत्पादों और स्थानीय हुनर को एक नई पहचान दिलाने का काम कर रही है
1: और इसी सोच के तहत शुरू हुई है ODOC योजना, एक जनपद एक व्यंजन।
0: इस योजना का मकसद हर जिले के पारंपरिक स्वाद को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच देना है ताकि स्थानीय कारीगरों, छोटे दुकानदार, महिलाएं, समूह और युवा उद्यमी को आगे बढ़ा सकें।
1: कानपुर देहात के लिए चुने गए दो खास उत्पाद मिट्टी के कुल्हड़ में मिलने वाली मलाईदार लस्सी और शुद्ध देसी सरसों का तेल।
0: अरे प्राची, कानपुर देहात की लस्सी का नाम सुनते ही मन तरोताजा हो जाता है।
1: और हो भी क्यों ना, यहाँ की लस्सी सिर्फ पेय नहीं है बल्कि मेहमान नवाजी, अपनापन और देशी परंपरा की पहचान है।
0: शुद्ध देसी दूध, ऊपर मोटी मलाई, हल्की इलायची की खुशबू और मिट्टी की कुल्हड़ का वो सोंधापन।
1: वाह, और जैसे ही कुल्हड़ हाथ में आता है ना, उसकी ठंडक और मिट्टी की खुशबू मन को अलग ही सुकून देती है।
0: दोस्तों, कानपुर देहात की मलाईदार लस्सी की खास बात ये है कि इसे बड़े प्यार और पारंपरिक तरीके से तैयार किया जाता है। साथ ताजी दही को मथकर उसमें मलाई मिलाई जाती है, फिर ऊपर से केसर, पिस्ता, बादाम और कभी कभी गुलाब की पंखुड़ियों से भी सजाया जाता है।
1: और गर्मियों के दिनों में तो ये लस्सी लोगों के लिए किसी राहत से कम नहीं होती। खेतों से लौटते किसान हो या दूर आए मेहमान, एक कुल्हड़ लस्सी हर किसी की थकान मिटा देती है।
0: कई दुकानों पर तो आज भी पुराने अंदाज में मिट्टी के मटकों में लस्सी जमाई जाती है, जिससे उसका स्वाद और भी गाढ़ा और प्राकृतिक वाला हो जाता है।
1: यही नहीं, अब ODOC योजना के तहत इस पारंपरिक लस्सी को आधुनिक पैकेजिंग, ब्रांडिंग और कोल्ड चेन सुविधाओं से जोड़ा जाएगा ताकि इसका असली स्वाद देश दुनिया तक।
0: इस योजना की सबसे शानदार बात क्या है जानते हैं?
1: क्या?
0: ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी।
1: बिल्कुल सही, गाँव की महिलाएं, स्वयं सहायता समूह अब लस्सी, घी और डेयरी उत्पादों के निर्माण और मार्केटिंग से जुड़ रही हैं।
0: यानी अब गांव की महिलाएं सिर्फ घर तक सीमित नहीं हैं, बल्कि अपने हुनर से आत्मनिर्भर बन रही हैं।
1: योगी सरकार की यही सोच है, लोकल को ग्लोबल और महिलाओं को आत्मनिर्भर।
2: हमारा नाम सोनू यादव, ग्राम व पोस्ट बैरी सवाई, तान्या मैंगो जूस कॉर्नर एवं लस्सी भंडार, इस नाम से मेरी दुकान है। हम शाम को किसान के यहाँ से दूध लाते हैं, गर्माते हैं उसको, शाम को मिट्टी के बर्तन में जमा देते हैं, सुबह मथानी से मथ के लस्सी बनाते हैं। लस्सी में काजू और किशमिश और जो है करी, रुआबजा, मलाई डाल के बनाते हैं। इससे स्वाद अच्छा आता है, बिक्री भी अच्छी होती है, काफी अच्छा बिकता है। एक जनपद एक व्यंजन योजना में जनपद कानपुर देहात में लस्सी को लिया गया। इसके लिए हम योगी जी का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ की मलाईदार लस्सी ऐसी ही है, गर्मियों में खूब बिक्री होती है।
0: अब बात करते हैं कानपुर देहात के शुद्ध सरसों के तेल की, जिसकी खुशबू ही भूख खा देती है।
1: बिल्कुल, जैसे ही देशी कड़ाई में सरसों तेल गर्म होकर चटकता है ना, पूरा घर स्वाद और खुशबू से महक उठता है।
0: कानपुर देहात में सरसों, तिल और अन्य तिलहनी फसलों की बड़े पैमाने पर खेती होती है। पहले यह पारंपरिक कोलू में तेल निकाला जाता था और आज आधुनिक मशीनों और क्वालिटी टेस्टिंग के जरिए यह तेल बड़े बाजारों में अपनी पहचान बन चुका है।
1: दोस्तों, यहाँ का सरसों तेल सिर्फ खाने का स्वाद नहीं बढ़ाता बल्कि सेहत का भी खजाना माना जाता है। इसमें प्राकृतिक गुण ओमेगा 3 और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं।
0: भारतीय रसोई में सरसों के तेल का अपना एक अलग ही महत्व है, चाहे अचार बनाना हो, देसी घी की तड़के वाली दाल, मसालेदार आलू की सब्जी या गर्मा गर्म पूड़ियाँ, सरसों के तेल हर स्वाद में जान डाल देता है।
1: और कानपुर देहात के कई छोटे उद्योग आज शुद्ध बिना मिलावट वाले सरसों तेल को नई पैकेजिंग और ब्रांडिंग के साथ बाजार में उतार रहे हैं।
0: अब सवाल ये है कि ODOC योजना में सरकार क्या क्या मदद दे रही है?
1: बहुत कुछ, सुनिए। छोटे दुकानदारों और कारीगरों को प्रशिक्षण, आधुनिक मशीनों की जानकारी, आकर्षक पैकेजिंग तकनीक, ब्रांडिंग और मार्केटिंग सपोर्ट, फूड फेस्टिवल और टूरिस्ट सर्किट में स्टॉल, आर्थिक सहायता और रोजगार की अवसर।
0: और खास बात, SAI, CFTRI और NIFTEM जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों की मदद से गुणवत्ता सुधार और फूड सेफ्टी पर भी काम होगा।
1: यानी कानपुर देहात का स्वाद अब सिर्फ देशी नहीं बल्कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड वाला बनने जा रहा है।
0: आज के युवाओं के लिए ये भी योजना किसी अवसर से कम नहीं है।
1: सही कहा, पैकेजिंग, मशीन ऑपरेशन, ट्रांसपोर्ट, मार्केटिंग और फूड प्रोसेसिंग जैसे क्षेत्रों में नए रोजगार पैदा हो रहे हैं।
0: यानी गांव का युवा अब अपने जिले में ही काम करके अच्छी कमाई भी कर सकता है। योगी सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन क्यूजन योजना के तहत कानपुर देहात के खाद्य तेल और लस्सी उद्योग और राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। उद्यमी और कारीगरों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण दिलाया जाएगा और उत्पादों की ब्रांडिंग व पैकेजिंग को भी बेहतर बनाया जाएगा।
1: दोस्तों, जब किसी प्रदेश की मिट्टी, मेहनत और स्वाद को पहचान मिलती है ना, तो सिर्फ कारोबार नहीं बढ़ता
0: बल्कि उस क्षेत्र की संस्कृति, परंपरा और लोगों का आत्मविश्वास भी बढ़ता है।
1: योगी सरकार की ODOC योजना आज छोटे दुकानदारों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए उम्मीद की किरण बन रही है।
0: और कानपुर देहात की कुल्हड़ वाली लस्सी और सरसों का तेल अब उत्तर प्रदेश की नई पहचान बनने तैयार है।
1: इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत,
0: फिर मिलेंगे एक नए स्वाद और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हम दोनों की तरफ से नमस्कार। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। आप सुन रहे थे आपका फेवरेट प्रोग्राम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश। जल्द ही मिलेंगे श्रोताओं, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। बाय बाय।
3: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई

0: क्या सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
1: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
1: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 705-07-0552।
3: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
4: अरे भाभी आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
3: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
5: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड मुरादाबाद।
1: समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाएं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7066002430।
6: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
7: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
8: कॉल 8826213131।

0: ब्यूटीफुल ट्रैक जिसको सुन के सच में यार सुबह थोड़ी सी ऑसम हो गई है। आई नो दैट। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग है, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को। जो भी लोग जहां जा रहे हैं, ऑल द वे बेस्ट। आप निकलिए अपनी डेस्टिनी पे, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मैं हूं आपका दोस्त आरजे आनंद। श्रोताओं, इस वक्त स्टेशन क्लॉक में वक्त होने को है, मतलब 9 बजने को है। कैन यू इमेजिन कि 9 कितनी तेजी से बज जाते हैं यार। चलो कोई बात नहीं, 9 बजने दो, फिलहाल हम आगे बढ़ेंगे। आज 23 जून है, यानी 23 जून की सुबह। आज का दिन क्यों खास है आपको नहीं पता, मैं आपको बताऊंगा ना। ये जिम्मेदारी मेरी है कि कहाँ क्या चल रहा है शहर के अंदर, क्या कुछ होने वाला है, आज क्या स्पेशल है, आज की डेट में क्या स्पेशल है, क्या कुछ खास रहा है हमारे आसपास आज की तारीख में, वो सारी अपडेट लेकर पूरी प्रैक्टिस के साथ आपके रेडियो पर दस्तक देते हैं मेरे दोस्त। हाँ जी, तो चलिए एक नज़र डालेंगे आज के इतिहास के पन्नों पर। क्यों खास है आज की तारीख, क्या महत्वपूर्ण रहा है आज इतिहास के पन्नों में, डेफिनेटली उस पर हम बात करेंगे श्रोताओं। और हर दिन डेफिनेटली बहुत ही स्पेशल होता है, बहुत ही खास होता है, और हमारी भी कोशिशें होती हैं कि आपके दिन को थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाया जाए, थोड़ा सा डिफरेंट बनाया जाए। आपको बता दें, संयुक्त राष्ट्र आम सभा ने दक्षिण अफ्रीका की सदस्यता को मंजूरी जो है की, एंड उत्तर कोरिया द्वारा परमाणु कार्यक्रम पर रोक लगाए जाने की घोषणा हुई थी 1994 में, आज के दिन श्रोताओं। सन 2008 में प्रसिद्ध बंगाली अभिनेता सौमित्र चटर्जी जी को, मतलब दादा साहेब फाल्के पुरस्कार देने की जो है इसमें आज के दिन चयन सीमित रखी गई थी श्रोताओं, आपको बता दें। और एक और खास चीज रही आज के दिन को जो और ज्यादा स्पेशल बना देती है, लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको बता दें गुजरात का रानी की जो वाव है उसको और हिमाचल के ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क का विश्व धरोहर सूची में जो है वो नाम शामिल हुआ था आज के दिन सन 2014 में। और आपको बताते चलें, आज के दिन संजीव कुमार बलियान जो हैं उनका आज मतलब जन्म हुआ 1972 में, इनका जन्म हुआ था श्रोताओं। और शहीद जी का भी जन्म हुआ था आज ही के दिन। एंड इसके अलावा आपको बता दें 1939 में जो पूर्व भारतीय फुटबॉलर हैं, एंड मतलब एक अलग ही खिलाड़ी, एक ऐसा नाम जिनको डेफिनेटली याद करना बिल्कुल हर दिन, तो मैं कहूँगा कि जो लोग खिलाड़ी हों तो याद करते ही करते हैं, लेकिन हम लोग भी जब हमें ऐसी चीज़ों के बारे में पता लगता है कि कौन स्पेशल रहा है, कि उन्होंने कितना कंट्रीब्यूशन दिया है, किनका कितना योगदान रहा है हमारे देश के प्रति, किन लोगों ने कितनी ज़्यादा जो है अपनी शक्ति और भक्ति दोनों दिखाई है, तो उनको सल्यूट नमन करना तो बनता है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट सैयद शाहिद हकीम जी का जन्म हुआ 1939 में, जो पूर्व भारतीय फुटबॉलर थे श्रोताओं, आज ही के दिन उनका जन्म हुआ था। वहीं अगर बात करें प्रदीप कुमार बनर्जी की, जो भारत के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी में से एक है, 1936 को इनका जन्म हुआ था आज ही के दिन। एलन ट्यूरिंग जो अंग्रेजी और कंप्यूटर वैज्ञानिक थे, सन 1912 में इनका जन्म हुआ था आज ही के दिन श्रोताओं। अंतर्राष्ट्रीय विविधता दिवस आज सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस आज मनाया जाता है, इस पर डेफिनेटली बात करेंगे थोड़ी देर में। फिलहाल आप लोगों ने जो संदेश मुझ तक पहुंचाए हैं उसके लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा। बिल्कुल, इतने सुंदर मैसेजेस आप करते हैं उसके लिए बहुत बहुत आभार। 9:02 का समय हो गया है स्टेशन क्लॉक में, एक काम करते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अभी कुछ खास बातें आपको बतानी है मुझे, और कुछ खास अपडेट भी हैं जो बिल्कुल डेफिनेटली आप तक पहुंचेंगे, लेकिन फिलहाल कुछ एड ब्रेक का टाइम हो रहा है, उसके बाद मैं जल्दी से वापस आता हूं और फिर आपको कुछ खास बातों से फटाफट रूबरू कराता हूं।
1: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
2: अरे भैया, नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
3: हाय दयन एनर्जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जज रहा है।
4: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
5: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन, जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
4: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
6: स्किन एलर्जी मस से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग, यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद, 7983153386।
7: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी। अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
8: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्रेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548539705।
9: सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।
0: कितने लोग हैं जो गाड़ियों में बैठ चुके हैं अपने ऑफिस के लिए निकल रहे हैं? अच्छा, आप भी बैठ गई मैम, क्या बात है, वेलकम है आपका। वेलकम बैक वंस अगेन, गुड मॉर्निंग। यू आर लिसनिंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम पे। आप सुनते हैं आरजे आनंद को मंडे टू सैटरडे, आपके मॉर्निंग को बनाते हैं सुपर डुपर अमेजिंग एंड ब्रिलियंट। बातें हो जाती हैं यहाँ पर कभी कभी मेरे से यार। इन एनी वीज, अभी फिलहाल इस्तकबाल है आप सभी का, स्वागत अभिनंदन। मैं कहती हूँ सत श्री अकाल सोनियो। Yes, ये ट्यूजडे मॉर्निंग है एंड अभी बात करते हैं किस चीज के बारे में। बाबू शाह, ये दुनिया बहुत गोल है बाबा। अच्छा, अपनी लाइफ के अंदर मैंने एक चीज नोटिस की है, you know, अपनी लाइफ के अंदर भी और इस दुनिया के अंदर भी, कि कोई भी चीज ना बहुत स्टेबल नहीं है। मतलब हर चीज का ना एक पीक टाइम आता है, उसके बाद वो चली जाती है। अगर अभी जेन ज़ी की बात करें तो हर चीज का एक ट्रेंड आता है ना। अभी फैशन की बात कर लो आप, किसी भी एक पर्टिकुलर, अगर मैं बात करूं किसी प्रोडक्ट की बात करूं, तो हर चीज का ना एक टाइम टेबल होता है, एक पीक टाइम होता है, जिसके बाद ना धीरे धीरे करके चीजें बड़ी मतलब एकदम से डाउन लेवल पे चली जाती है। मैं किस चीज की बात कर रहा हूं और मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, डेफिनेटली हम उस पर बात करेंगे अभी। बट सी, एक मेरे पास अच्छा क्वेश्चन भी है आपके दिमाग की बत्ती गुलमीटर चालू करने के लिए, एंड डेफिनेटली आप लोग उस पर मुझे आंसर्स करने वाले हो। लेकिन उससे पहले आपके मैसेज को पढ़ लेते हैं। हाय, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, कैसे हाल चाल है आनंद जी? मैं बहुत ही बढ़िया हूँ। हेलो, हाय, दिस इज मी, क्या लिखा उन्होंने, लतिका। हाय, गुड मॉर्निंग मैम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। हनुमान मूर्ति से हमारे साथ जुड़े हैं शिखर। हाय, गुड मॉर्निंग शिखर। एंड बुद्ध बाजार से मेरे पास मैसेज पहुंचा है, हेलो नमस्ते जी, दिस इज मी रणवीर झा। गुड मॉर्निंग झा साहब। एंड आलोक जी का मैसेज पहुंच गया है, लिखते हैं, आनंद भाई गुड मॉर्निंग, आप बहुत अच्छा बोलते हैं, मजा आता है सुन के, थैंक यू सो मच। एंड शाश्वत जी मेरे साथ जुड़े हैं आज की सुबह, ये मुझे कांटरूट से मैसेज करते हैं, लिखते हैं आई एम ऑन द वे आनंद एंड आई एम गोइंग टू माय ऑफिस एंड आपको सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच। आप गाने अमेजिंग प्ले करते हो, साथ ही साथ आप ये जो इधर उधर की बातें बताते हो सुन के बहुत मजा आता है, थैंक यू सो मच यार। लेट मी टेल यू गाइस कि कल अक्षय कुमार साहब अपने मुरादाबाद में आए थे, मैं यू नो आपको बताना भूल गया, सॉरी, कल भी मुझे बताना था पर वो दिमाग से एकदम इतनी सारी चीजें होती है ना, स्लिप हो जाता है। तो अक्षय कुमार, पार्टनर राजपाल यादव एंड अक्षरा जी, इन लोगों ने क्या फैबुलस एंट्री मारी मुरादाबाद में, और सोशल मीडिया पे मतलब छाए हुए हैं अक्षय कुमार और साथ में मुरादाबाद। अच्छा, इसके बारे में डेफिनेटली बात करूंगा थोड़ी सी देर में। मुरादाबाद में जो है आपको बताया है, अभी गंगा दशहरा शुरू हो गया है, जिसको लेकर ट्रैफिक में जो है ट्रैफिक की तरफ से कुछ अपडेट आई है, मतलब रूट डायवर्जन बेसिकली हुआ है, कौन से रूट की बात कर रहा हूँ एंड कहाँ पर क्या चल रहा है, ये पूरी अपडेट आपको मिलेगी मुरादाबाद से जुड़ी। एंड एसपी ट्रैफिक सुभाष गंगवार जी ने क्या अपडेट दी है ये भी आपको पता लगेगा। इस स्टेशन ऑफ द नेशन पर आप जुड़ चुके हैं ना बिंदास मॉर्निंग में आरजी आनंद के साथ, तो सारी लोकल खबरें, क्या चल रहा है आपके आसपास, आपकी गली मोहल्ले में, ये आप हमें बता सकते हो जी। आपके मोहल्ले में क्या चल रहा है, उल्ली पार चल रहा है या पल्ली पार चल रहा है, जहाँ भी चल रहा है तो खबर दो हमको, दो नहीं नहीं खबर दो, अपडेट दो, कहीं पर भी ट्रैफिक जाम है तो खबर दो, इन्फॉर्मेशन दो, नंबर लो। मेरा नंबर क्या है, 9837896896। व्हाट्सएप मुझे तुम जरा कर दो, नाम के साथ कर दो। गंदी क्रिएटिविटी है, चलो हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ी देर में मिलते हैं, गुड मॉर्निंग।

डॉक्टर की बाइंडिंग करा के आए, पर हमरे घर में इतना भी बस हम ही बोल पाते हैं आई लव यू।

0: बसंती इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
2: जी नाचते रहिए और झूमते रहिए। वेरी गुड मॉर्निंग, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6। RJ आनंद के साथ हैं आप, लेडीज एंड जेंटलमैन।

आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 पे, आपके शहर का अपना फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद। और श्रोताओं, अभी आपको बता दें कि इस वक्त जो है मैं आपको एक अपडेट देने वाला हूं जो कि बहुत ज़रूरी है आप सभी के लिए। अगर आप दिल्ली रूट की तरफ निकल रहे हैं तो ये अपडेट डेफिनेटली आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एंड इनफैक्ट मुझे लगता है कि कभी कभी ना छोटी छोटी जानकारियाँ होती हैं जो अक्सर हम अवॉइड करते हैं, मैं हमेशा ये चीज़ बोलता हूँ, और वही इन्फॉर्मेशन अगर हमें पता लग जाए और सही इन्फॉर्मेशन पता लग जाए तो फिर थोड़ी कन्वीनियंट हो जाते हैं हमारे लिए चीज़ें, है ना। तो आपको बताते हैं 22 जून से, यानी कि कल 22 जून से लेकर 25 जून रात 12 बजे तक के लिए जो है जारी किया गया है एक नया प्लान। यस ऑफ कोर्स, मतलब जो है 4 दिन दिल्ली रोड पर रहेगा डायवर्जन। एग्जैक्टली आपको बता दें भैया, जीट गंगा दशहरा के जो है इसको ध्यान में रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने दिल्ली रोड पर 22 जून को सुबह 8 बजे से 25 जून रात 12 बजे तक के लिए डायवर्जन प्लान जो है वो जारी किया है। दरअसल 24 जून को मुख्य स्नान होना है, इस दौरान लोग ब्रजघाट और गढ़ मुक्तेश्वर में जो है मेला रहेगा जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है पहुंचने की उनकी संभावना बताई जा रही है। और ऐसे में एसपी ट्रैफिक सुभाष गंगवार जी ने बताया है कि इसी को ध्यान में रखते हुए, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ जो अपडेट वो बहुत ध्यान से सुननी है आपने, हाईवे से भारी वाहन को जो है डाइवर्ट करने का एक निर्णय लिया है भाई साहब। और आपको बताते चले कि ये जो डायवर्जन है वो 25 जून रात 12 बजे तक रहने वाला है। आपको बता दें भाई साहब, 24 जून यानी कि कल टुमोरो जेठ गंगा दशहरा है जिसको लेकर एक मुख्य शाही स्नान बताया जा रहा है, इसीलिए जो है रूट जो है वो डायवर्जन हुए हैं। आपको बता दें डायवर्जन प्लान क्या है, मुरादाबाद से मीरठ, हापुड़, गाजियाबाद, दिल्ली की ओर जाने वाली जो भी भारी और हल्के वाहन हैं, मतलब उनके पास दो विकल्प होंगे। पहला विकल्प कि भैया वो हाईवे बाईपास यानी कि पुराने टोल चंदौसी कट, गागन तिराहा, संभल कट, अंडर पास से जो है वो जो वहाँ से जो मैनाथर वाली रोड है उधर से बताया जा रहा है कि डायवर्जन प्लान चेंज होगा। एंड दूसरा इन्होंने एक और प्लान बताया भाई साहब, तो ये जो डायवर्जन प्लान है ये फिलहाल रहने वाले हैं, कल से इसके हो गई शुरुआत, यानी 22 जून से 25 जून रात 12 बजे तक जो ये रहेगा। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं थी तो मैं आपको फटाफट से वही इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ भाई साहब। फिलहाल तो मोर इन्फॉर्मेशन के लिए अब जो है इस पे हम आपको क्या बताने वाले हैं, यानी कि क्या और सुनवाने वाले हैं, इसके लिए आपको स्टे ट्यून रहना पड़ेगा आनंद के साथ। एंड बाकी अगर आपके पास भी कोई लेटेस्ट अपडेट है इस चीज़ से रिलेटेड तो डेफिनेटली डू कॉल मी 9837896896, आप हमारे लिसनर्स को अपडेट कर सकते हैं। अगर आपके पास भी कोई ट्रैफिक से जुड़ी इन्फॉर्मेशन है या कोई और ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपको लगता है कि रेडियो पे वो जन जन तक पहुंचनी चाहिए, सारे मुरादाबाद शहर तक पहुंचनी चाहिए, तो डेफिनेटली आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल करके बता सकते हैं। 9:18 हो रहे हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, और अभी फिलहाल अच्छे गाने फॉर्स आपके लिए आते रहेंगे इसी स्टेशन पे। अभी मेरे साथ ढेर सारे हमारे श्रोता जो जुड़ रहे हैं उनकी भी संदेश डेफिनेटली शामिल करना बनता है, बिकॉज वरना वो नाराज हो जाएंगे यार। इश्क सोना है। टाइटल ट्रैक निकाल रहा हूँ बहुत ही बेहतरीन ट्रैक है सच में यार, गाना बहुत ही बढ़िया है। किसी फैंस ने वरुण धवन से पूछा कि आपकी सारी फिल्मों में डबल हीरोइन क्यों होती है, मतलब आपके साथ फिल्मों में दो हीरोइन ही क्यों रहती है। वैसे वरुण ने क्या कहा ये डेफिनेटली बताऊंगा मैं। हाय हाय, जवानी तो इश्क होना है, मतलब भाई ज्यादा टेंशन वेंशन जो होगा देखा जाएगा, बस लाइफ को सेलिब्रेट करो, एंजॉय करो यार, एक्सपेक्टेशन थोड़ी कम रखो और जिंदगी को चिल करते हुए आगे बढ़ो, बहुत जरूरी है। यह ट्यूजडे की सुबह आप आनंद के साथ हैं। कुछ खास अपडेट और जिसे आपको मुझे रूबरू कराना है, बस थोड़ा इंतजार करो।

0: रोको रणथावा सुनो।
1: तो कुछ दिनों में मेहंदी संगीत एंड रोको
2: गाना सच बताऊं तो इतना बढ़िया है ना, इसको सुनने के बाद आपको भी मजा आ जाएगा। सीरियसली बता रहा हूँ, इतना बढ़िया गाना है और पिक्चर भी मैं देख के आया हूँ, बहुत बढ़िया यार ये।

0: 像这么闹了，我真的。
1: आज बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
2: कहा मेरी कसम?
1: मिस कर दिया तो रीलोड।
3: चाय चाय चाय।
4: बिंदास मॉर्निंग।
1: सुनिए बिंदास मॉर्निंग्स आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।
5: सिरदर्द, लकवा, एरिडी की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
6: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
7: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
8: कॉल 8826213131।
9: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
10: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
9: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
11: पता है जो कभी किसी को नहीं

0: लगी।
1: ब्यूटीफुल ट्रैक यार, सच में इतना बढ़िया गाना, और इसको सुन के आप कहीं और बिल्कुल मत जाना। वेलकम बैक वंस अगेन, आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज ट्यूसडे की सुबह, आज 23 जून हो गई यार, पता नहीं चल रहा है कितनी तेजी से महीना भी एकदम सुपर फास्ट तरीके से निकल गया है। खैर, आगे बढ़ते हुए आप सभी का वेलकम बैक करेंगे इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे। चलिए अभी जरा एक नजर डाल लेते हैं, काम की बातें बहुत जरूरी हैं, एंड कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बताना, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें रेडियो के थ्रू जो पता लगती हैं तो वो बिल्कुल जेन्युइन होती हैं, और हम उनको बड़ी रिसर्च स्टडी कर करके लेकर आते हैं ताकि आपको सही और सटीक इन्फॉर्मेशन दी जाए। एग्जैक्टली लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको बता दें 1 जुलाई 2026 से बदल रहा है आधार कार्ड से जुड़े कुछ नियम, एंड इस डिटेल को अपडेट कराने में नहीं लगेंगे आपके 75 रुपीज़, बिल्कुल फ्री होगी ये डिटेल। अगर आपको जाननी है, अगर आपको इसके बारे में जानना है तो ऑफकोर्स आपको पता लगेगा। मतलब आधार धारकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी होने वाली है 1 जुलाई से। ऑफकोर्स आपको मैं फिर से बता रहा हूँ क्या कुछ नए नियम होने वाले हैं। तो UIDAI ने आधार कार्ड सेवाओं और आसान जो है इसको ये बनाने जा रहे हैं बेसिकली, एंड 1 जुलाई से आधार में आप ईमेल अपडेट करने की जो फैसिलिटी है आपको मिलेगी, आपके मोबाइल ऐप पर ये उपलब्ध हो जाएगी। सबसे बड़ी बात ये कि इसके लिए कोई शुल्क आपको नहीं देना पड़ेगा, मतलब आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं पे करना होगा। पहले इस काम के लिए 75 रुपीज़ फीस देनी पड़ती थी, लेकिन इस बार अभी वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है आपके लिए। आपको बता दें किस कौन कौन सी कैटेगरी के लोगों को इसका फ़ायदा मिलने वाला है। तो आपको बता दें जो लोग जॉब वगैरह करते हैं, नौकरी पेशे वाले लोग हैं, या फिर जो बैंकिंग और डिजिटल सेवाओं का इस्तेमाल करते हैं, जो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए जो है आधार में ईमेल दर्ज अगर नहीं है तो वो डेफिनेटली अपनी ईमेल को रजिस्टर करा सकते हैं। साथ ही साथ अगर उनको चेंज करानी है अपनी ईमेल आईडी तो वो भी करा सकते हैं। इससे करोड़ों आधार कार्ड धारकों को सीधा जो इसका लाभ मिलेगा। मोबाइल ऐप से आप जो इसको बहुत ईजिली अपडेट कर सकते हैं। ऑफकोर्स UIDAI की जो मोबाइल ऐप है उसके जरिए आपको ये फैसिलिटी मिलेगी। OTP आधारित जो है आपको वेरिफिकेशन जाएगा, अगर आप OTP इसमें डालेंगे तो आपको एक नोटिफिकेशन आने वाला है आपके पास, एंड जब आपका वेरीफाई हो जाएगा उसके बाद आप अपनी नई ईमेल आईडी को बहुत इजीली रजिस्टर कर पाएंगे। एंड बाकी डिटेल्स के लिए तो आधार की आप वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, डेफिनेटली वहाँ जाके भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और बाकी 1 जुलाई से क्या कुछ और चीज़ें बदल रही हैं वो डेफिनेटली जब चीज़ें पता लगेंगी तो हम भी आपको डेफिनेटली बता ही देंगे। फिलहाल आप आनंद के साथ हैं। इसी बीच आपको बता दें भैया एक ख़ास चीज़ कि अब चोरी का फ़ोन नहीं आएगा किसी और के काम, ऐसा मतलब कुछ स्पेशल लॉन्च हुआ है। आपको बता दें ब्रिटेन की टेलीकॉम कंपनी ने जो है एक बहुत ही स्पेशल चीज़ बताई है कि भैया अब जो मोबाइल लोग चुरा लेते हैं ना, तो भैया आप चोरी को रोकने के लिए एक नया सिस्टम स्विच जो है शुरू किया गया है। इस तकनीकी से बहुत सारे लोगों को फ़ायदा मिलने वाला है। जो भी लोग फ़ोन छोन चुरा के भागते हैं अब जो है उनके लिए मुश्किलें क्रिएट होने वाली है। मतलब अगर वो लोग चोरी का फ़ोन लेते हैं तो उनका जो डिवाइस है, उनका जो फ़ोन है, वो पूरी तरीके से काम करना बंद कर देगा। एग्जैक्टली तो मतलब कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ हो रही है जिससे आपका फ़ोन अगर अनफॉर्चुनेटली मैं बोल रहा हूँ चोरी हो जाता है तो फिर वो जो बंदा चोरी कर रहा है वो बंदा उसका बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। ऐसा क्या होने वाला है ये तो डेफिनेटली यार जब अपडेट पूरी होगी तो मैं आपको 101% बताऊंगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, कुछ संदेश मेरे पास पहुंचे हैं। डॉली जी मेरे साथ जुड़ी हैं, लिखती हैं आनंद जी गुड मॉर्निंग, आपके इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे होते हैं एंड आप बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन लेकर आते हो, काफ़ी बढ़िया और इंटरटेनिंग शो आप करते हैं, थैंक यू सो मच डॉली जी। एंड डॉली जी लिखती हैं कि फिलहाल मैं अभी अपने ऑफिस के लिए निकल रही हूँ, आपको सुन रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है आनंद, थैंक यू सो मच, एंड गाने भी अच्छे प्ले कर रहे हो, थैंक यू डॉली। एक और मैसेज आ गया मेरे पास, हेलो गुड मॉर्निंग जी, कैसे हाल चाल है। रिंकू जी मेरे साथ जुड़े हैं, गुड मॉर्निंग, ये लिखते हैं आनंद जी आप बहुत अच्छी बातें करते हैं, अच्छा जी थैंक यू सो मच। और बाकी ये लिखते हैं कि आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट है कि आप जो है बातें ऐसी अच्छी अच्छी करते रहें और हमारा सभी का एंटरटेनमेंट ऐसे ही करते रहें। ओह नाइस, थैंक यू सो मच यार। आगे बढ़ते हुए आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन है जो बिल्कुल बतानी है, और ये 3 चीज़ें जो मुझे आपको आज देनी है बहुत ही एकदम ब्रिलियंट वाली चीज़ें हैं जो आप तक मुझे पहुंचानी है। 9:30 हो गए स्टेशन क्लॉक में, आप आनंद के साथ सुन रहे हैं आपके शहर का स्टेशन ऑफ द नेशन, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। आगे बढ़ते हुए आपका जो है यहां पर मोस्ट वेलकम करेंगे एक बढ़िया से सवाल के साथ। हाँ जी, एक क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूं थोड़ी देर में, एंड उस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे यहीं पर देंगे। देखिए अगर आपको अपने फिटनेस का भी ध्यान रखना है तो आपको क्या करना होगा, आरजे आनंद को सुनना होगा। मेरे पास एक बहुत ही अल्टीमेट हेल्थ अपडेट है जो आपको डेफिनेटली अभी बताऊंगा इस स्टेशन पे। आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। ये आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। लेडीज एंड जेंटलमैन, आने वाले स्पेशल ट्रैक
0: तेरी चोटी है परांदा तेरा लाल।
1: पति पत्नी और वो दो सब लोग मिलके सोच रहे हैं ट्रैफिक कहां जाम हो गया है मुरादाबाद में। अगर आपको भी अपडेट बतानी है तो क्या करना है, मुझे कॉल कर सकते हो आप 9837896896 पर, 9837896896 पर। एंजॉय करते हैं इस गाने को साथ में। 3, 2, 1 गो एंजॉय।
0: इसी मन चले का तुझ पे आ गया जो दिल होगी बड़ी।
1: ओए होए।

0: अरे भैया इसकी बातें हैं चटपटी, गाने सुनाता है मस्त, और जब ये बोलता है ना तो भाई साहब मॉर्निंग और भी हो जाती है जबरदस्त। सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 FM।
1: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
2: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
3: अरे भाभी आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
2: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
4: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।
5: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।

वेलकम बैक यू वंस अगेन, ये है ट्यूसडे की सुबह, आप आनंद के साथ हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप जहां भी जा रहे हैं ऑल द बेस्ट। आप निकल रहे हैं अपनी मॉर्निंग शिफ्ट पे या निकल चुके हैं, जहां भी आप जा रहे हैं जय श्री राम। मंगलवार का दिन है, बहुत ही खूबसूरत मॉर्निंग। वेदर अपडेट क्या कहता है आज का मौसम, बताता हूँ इस गाने के उस पार। स्टूडियो की घड़ी में वक्त हो रहा है

0: वेलकम बैक है वंस अगेन। बहुत ही बेहतरीन गाना अभी आपने सुन लिया, और सच बताऊं तो ये वो गाने हैं जिनको सुन के ना सच में फील एकदम हैपनिंग वाली हो जाती है। हेलो हाय, वेलकम बैक है, आप आनंद के साथ हैं, सुन रहे हो ना आप मुझे, वेरी गुड। मयंक शर्मा पीतल नगरी से जुड़े हैं, लिखते हैं हाय गुड मॉर्निंग, राम राम आनंद भाई, कैसे हालचाल है? बहुत ही बढ़िया। चौराहा गली मुरादाबाद से राजा कश्यप लिखते हैं, आनंद सर गुड मॉर्निंग, कैसे हालचाल है? मैं बहुत ही बढ़िया हूँ। साथ में इनके मौलिक शर्मा दोस्त ने ये भी सुन रहे हैं, गुड मॉर्निंग पहुँचाते हैं। प्रियंका शर्मा इंदौर से मेरे साथ जुड़ी हैं, आज की सुबह गुड मॉर्निंग पहुँचाती हैं। साथ में बबली अंजान गीता कश्यप मेरे साथ जुड़ी हैं, लिखती हैं हेलो आनंद जी गुड मॉर्निंग, मंगलवार की बेहतरीन सुबह, बहुत बहुत स्वागत है। सर क्या आपने जामुन खाई, कृपया बताएं। बिल्कुल भाई मैंने जामुन नहीं खाई, कल हम गए थे कहीं पर, हम लोग कहाँ गए थे कल, बुध बाजार की तरफ, तो वहाँ पे जामुन बिक रहा था लेकिन वो बढ़िया वाला जामुन नहीं था, तो फिर हमने नहीं खा पाया यार, और थोड़ा बिजी भी थे कल। आगे बढ़ते हैं, आज मैं पक्का डेफिनेटली जामुन खाने जाऊँगा। हाय गुड मॉर्निंग रणवीर जी, कैसे हैं आप? लिखते हैं कुछ तो पढ़ी लिखी होगी वरना इतनी डिग्री लेकर कौन घूमता है भाई साहब। ये गर्मी जो है मुझे तो ऐसा लगता है कि बहुत पढ़ी लिखी है बाबा, इसीलिए इतनी हाई फाई डिग्री लेके घूम रही गर्मी वाली। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि गर्मी ने ताबड़तोड़ कर दिया पाजी। हेलो हाय गुड मॉर्निंग, नमस्ते आनंद सर, कैसे हालचाल हैं? गुड मॉर्निंग बिंदास मॉर्निंग, सुन के बहुत अच्छा लगता है, गाने और भजन दोनों ही बहुत ही अल्टीमेट होते हैं, थैंक यू सो मच ललिता जी, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, और ये मेरे पास क्या मैसेज आ रहा है, गुड मॉर्निंग हेलो आनंद जी कैसे हैं आप? मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, बबलू सैनी मुंबई में इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, और ये मैसेज चमनलाल साहब का आ रहा है। सहारनपुर से मेरे प्यारे दोस्त जुड़े हैं जोन रोजी पलविलीस, लिखते हैं हैप्पी ट्यूजडे मॉर्निंग आनंद जी, लॉट्स ऑफ लव, थैंक यू सो मच मेरे ब्यूटीफुल लिसनर, थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच आपके इस प्यारे से मैसेज के लिए। ये आगे पहुंचाते हैं कि जीवन में सुखी रहने के लिए दो शक्तियों का होना जरूरी है, पहली शक्ति का नाम है सहन और दूसरी शक्ति का नाम है समझ। आई एग्री विद यू सर 100%। आगे लिखते हैं, जिंदगी तो अपने दम पर जीनी पड़ती है दोस्त, सहारे कितने भी हो, सहारे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, साथ तो हमें खुद का खुद ही देना पड़ता है दोस्त। बात तो सही बोली आपने सर, बिल्कुल। विक्की सागर जुड़े हैं हिमगिरी से, लिखते हैं रेडियो वाला आनंद को वेरी गुड मॉर्निंग। इसके अलावा मेरे पास मैसेज पहुंचा है, गुड मॉर्निंग ग्राम बिजनेस उस्मान टेलर साहब का, एंड गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं हमें मनप्रीत, हाउ यू डूइंग आनंद? आई एम एब्सोल्युटली डूइंग गुड। एक और मैसेज आ गया है, हेलो हाय हाउ यू, कैसे हैं आप? सुबह सुबह आपके गाने सुन के सच में आनंद आ जाता है, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच। एक मैसेज और पहुंचा है, हेलो हेलो कैसे हैं आप? मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, हेलो जी हेलो, आपका आपके हालचाल आई होप होंगे बिल्कुल जी, सब एकदम परफेक्ट, एवरीथिंग इज ओके। गुड मॉर्निंग सर, आपके गाने के साथ साथ आपकी बातें भी अच्छी होती हैं, वो ट्रैफिक वाली इंफॉर्मेशन जो आपने बताई थी मैं एक बार ही चाहूंगा कि आप उसको रिपीट कर दें। ओके डन, डेफिनेटली मैं आपको फिर से बता दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेफिनेटली बता दूंगा मैं।
1: ये आसमां तेरे पे,
0: सो भाई जरा ध्यान से सुनो, अपडेट यह है कि भाई साहब 24 जून को होने वाले जेठ गंगा दशहरे मेले को देखते हुए जो है मुरादाबाद ट्रैफिक पुलिस ने 22 जून की सुबह 8 बजे से 25 जून रात 12 बजे तक जो है वो डायवर्जन लागू किया है, जिससे दिल्ली रोड और दिल्ली रोड पर जो है गंगा दशहरा के आसपास जो भारी वाहन है उनकी एंट्री पर रोक रहेगी, जिससे मीरठ हापुड़ गाजियाबाद और दिल्ली की ओर जाने वाले जो ट्रक या फिर मालवाहक हैं वो जो है उसका रूट डायवर्ज हो जाएगा, यानी कि डायवर्जन कर दिया गया है, इधर से ये वाहन नहीं जा पाएंगे और ये 25 जून रात 12 बजे तक जो है लागू रहेगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल गंगा दशहरा का जो ये मेला बताया जा रहा है, यानी कि जेठ गंगा दशहरा मेला जो अब लगने वाला है मुरादाबाद के, इन्होंने बताया कि श्रद्धालु वहां पर पहुंचने वाले हैं काफी लोग, बहुत अच्छा खासा मेला होता है। तो देखिए मुझे तो खैर इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि ऐसा भी कोई मेला अभी लगता है, गंगा दशहरा तो हमने हाल फिलहाल में सेलिब्रेट किया है, लेकिन ये जेठ गंगा दशहरा मेला है ये बताया जा रहा है।
1: हम तुझको सनम, ओ सनम।
0: चलो यार आगे बढ़ते हैं, डोंट वरी, हमारी जो ट्रैफिक पुलिस है बहुत अच्छा काम कर रही है, ऑफ कोर्स सारी चीजें बैक टू बैक आपके सामने रखती रहती हैं, और बाकी बात करते हैं सुभाष गंगवार जी से जो हमारे एसपी ट्रैफिक है, उनसे पूछेंगे क्या कुछ और तब्दीली की जा रही है। फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं।

वेलकम बैक यू वंस अगेन। आप आनंद के साथ हैं, ढेर सारी जानकारियां ऑफ कोर्स आप तक पहुंच रही है। एक और इन्फॉर्मेशन है अभी आपको, बहुत कड़क जानकारी आपको बतानी है भाई साहब। एंड मुझे लगता है कि छोटी छोटी जानकारियां हैं जिनको ऑफ कोर्स हमें पता होना चाहिए। मैं बार बार रिपीट करता हूं तो आपको बताते हैं, भारतीय रेलवे ने जो है अपराध दंड पर प्रावधानों को और सख्त कर दिया गया है। भैया आपको बता दें, रेल मंत्रालय के अनुसार जो है कुछ चीज़ें और जो इनके नियम हैं वो और ज़्यादा कड़क बना दिए गए हैं। आपको बताते हैं, बिना टिकट यात्रा पर न्यूनतम 500 रुपये अतिरिक्त जो है आपको भरना पड़ेगा जुर्माना। इसके अलावा बिना टिकट के अगर आप यात्रा पर निकल रहे हैं तो ये पहली बात तो बहुत गलत बात है, आपको अपनी टिकट डेफिनेटली लेनी चाहिए। आप कहीं भी जा रहे हैं, आप बिना टिकट के तो बिल्कुल भी ट्रैवल ना करें। भले ही आपको लेट हो रहा है, आप समय से पहले पहुंचेंगे तो आपके सारे काम हो जाएंगे, है ना। तो आप जब भी कहीं पे भी जा रहे हैं, आप जब भी ट्रेन में ट्रैवल करें तो प्लीज़ टिकट ज़रूर लीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी बात, अगर कोई भी इंसान धूम्रपान करता है ट्रेन के अंदर या धूम्रपान करते पाया जाता है तो उस पर 2,000 रुपये का जुर्माना डेफिनेटली लगेगा। और अगर कोई जो महिला कोच डब्बे में घुसता है या फिर महिलाओं की सीट पर जबरदस्ती कब्जेदारी दिखाता है कि नहीं यहाँ पर तो मैं ही बैठूंगा, ऐसा कई बार होता है ना, स्पेशली जनरल कोच में ऐसा कई बार देखने को मिलता है, जनरल डब्बों में, तो उन पर भैया 2,500 रुपये का जुर्माना डेफिनेटली लगेगा। तो देखिए, आपने जो है ये छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखना है, और जब भी आप ट्रैवल करें बहुत ही अच्छे तरीके से भाई जाएं, समय से पहले पहुंचे, अपनी टिकट सिकट लें, अपनी अच्छे से सीट वीट देखें, आराम से बैठते हुए अपनी जर्नी को एंजॉय करते हुए जाएं, किसी को कोई टेंशन ही नहीं होगी। पाजी मेरे को तो ऐसा लगता है, अगर आप अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन करके निकलते हैं तो सब चीज़ें बढ़िया होती हैं। और बाकी अगर कोई धूम्रपान करता है आपके आसपास ट्रेन में तो प्लीज़ उसको भी ज़रा समझा दें भाई कि ये चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, और अभी आज मेरे पास एक बहुत ही अच्छा सवाल है आपके लिए, अगर आप इसका जवाब पहुंचाएंगे तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा, है ना। तो आज का अपन कड़क क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। आज बहुत ही कमाल और धाकड़ फैबुलस एक्ट्रेस के हम बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। पहले तो वो है जिनको हमने शक्तिमान के रूप में देखा है, बहुत अच्छे से यू नो हमें एंटरटेनमेंट का डोज इन्होंने दिया, और आज भी ये बहुत शक्तिमान वाला जो यू नो उतरता नहीं है फीवर, है ना। सो फिलहाल अभी आगे बढ़ते हैं। आपको मेरे को व्हाट्सएप करके बताना है कि मैं जो अभी यहाँ पर आपके लिए ट्रैक बेसिकली प्ले कर रहा हूँ, ये जो गाना है वो कौन से एक्टर के ऊपर पिक्चराइजेशन है। येस, आई वांट टू आस्क यू, दिस इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन ट्यूजडे की सुबह, ये गाना कौन से एक्टर के ऊपर पिक्चराइजेशन है। Oh.

इस गाने में जो मेल एक्टर हैं वो कौन है, उनका नाम आपको मुझे बताना है। दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड एब्सोल्युटली बहुत ही अमेजिंग ट्रैक है अल्टीमेट वाला, वो गाना जो मतलब एकदम कितना ओल्ड इज गोल्ड टाइप का ही गाना एंड हम सभी को बहुत यू नो पसंद है। स्पेशली आई लव दिस ट्रैक यार, मैं ये गाना डेफिनेटली सुनता हूँ जब भी मैं कभी यू नो स्ट्रेस में होता हूँ, तो मुझे गाना सुनकर बड़ा सुकून मिलता है। सो आई वांट टू आस्क यू, मुझे प्लीज बताओ अभी जो मैं गाना प्ले कर रहा हूँ इस गाने में कौन से मेल एक्टर हैं।

व्हाट्सएप करना है, आपने उठाना है अपना फोन, टाइप करना है अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना राइट आंसर, उसको सेंड करना है मेरे व्हाट्सएप पे 9837896 8968 9837896 8968 9837896 पे। आप मुझे टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अपना नाम जरूर लिखिएगा, विच सिटी, आप मुझे कहां से मैसेज कर रहे हैं ये भी आप मुझे जरूर लिखिएगा, क्योंकि आज की तारीख में इनका बर्थडे होता है। यस, 23 जून है आज इनका, हम बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। ही इज एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग एंड डैशिंग हीरो, अपने टाइम के एक बहुत ही कमाल के एक्टर रहे हैं यार, जिनके बारे में बात करूँ, काफी वर्सेटाइल एक्टर हैं। एंड आप मुझे बताइए जरा फटाफट से, जो ये एक्टर है कौन है, इस गाने में बेसिकली कौन से एक्टर हैं, आपके लिए पिक्चर पूरी क्लियर हो जाएगी।

चलो मैसेज करो मुझे फटाफट से, बहुत सिंपल क्वेश्चन है अभी, इससे ज्यादा और कुछ नहीं मैं आपको बताने वाला। और मुझे बताया कि अब आपको इससे ज्यादा क्लू की नीड है भी नहीं, ऑलरेडी आप बहुत समझदार हैं, तो फटाफट मेरे को मैसेज करने का, ठीक है? मैं आता हूँ एक बढ़िया सी आपकी हेल्थ के लिए चकाचक अपडेट लेकर आता हूँ। तब तक के लिए आप ये बढ़िया गाने सुनो, वॉल्यूम बढ़ा के रखो रेडियो की, और अपने कानों को बिल्कुल रेडियो पे चिपका के रखो, अपनी आंखों को जो अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो रोड पे रखो, है ना, सीट बेल्ट लगा रखिए ना, वेरी नाइस। टू व्हीलर वाहन से कहीं जा रहे हो तो भैया हेलमेट प्लीज लगा के जाओ, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप सुन रहे ट्यूजडे की सुबह, आरजे आनंद को, यह है बिंदास मॉर्निंग ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 पे। रेडियो बजाते रहिए।

0: बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
1: कहा मेरी कसम?
0: मिस कर दिया तो रीलोड।
2: चाय चाय चाय।
0: सुनिए बिंदास मॉर्निंग्स आरजे आर

0: साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।
1: समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाएं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7066002430।
2: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
3: अरे भैया, नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।

9:58 हो गया है स्टेशन क्लॉक में, आनंद के साथ हैं आप लेडीज एंड जेंटलमैन। 23 जून 2026 ये ट्यूसडे की सुबह है, और आपको बता दें आज सूरज चाचू कह रहे हैं कि भैया मैं आपको नचाऊंगा, मैं नाचूंगा नहीं, आज गर्मी बहुत तेज होने वाली है, उनका ये कहना है। चला चेक कर लेते हैं भैया, हवाएं जो है 5 किलो प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली है, एयर क्वालिटी कतई अच्छी नहीं होने वाली है आज की सुबह। मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर वेदर 34 डिग्री है यार करंट टेम्परेचर, एंड अभी आगे टेम्परेचर 38 तक पहुंचने की संभावना है, यानी कि गर्मियों में जो है भाई साहब और गर्मी लगने वाली है आपको, यानी कि ये जो गर्मियों का महीना है, यानी कि जो ये जून जून है ना, ये अपने पीक वाले चरम पर है, गर्मियां ऐसे में होनी बनती है ना भाई साहब। तो आपको इस गर्मी से अगर दूर रहना है तो आपको ठंडे पानी का ज्यादा इस्तेमाल करना है, पीने के लिए मैं बात कर रहा हूँ, आप पानी को पीते रहिए, पानी पीते रहेंगे तो आप बहुत ठंडा ठंडा ताजा तरीन कूल महसूस करेंगे। और अभी अपुन आपको बताता है आज और क्या चीजें हैं जो आप सेलिब्रेट करते हैं। तो भैया आज 23 जून को हम बता दें आपको अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस जो है मनाया जाता है। जी हाँ, हर साल 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। खेल से होता है स्वास्थ्य बेहतर, ओलंपिक से मिलती है दुनिया को एकता की डगर। ओलंपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम यार। सो आज ओलंपिक दिवस मनाया जाता है लेडीज एंड जेंटलमैन अंतर्राष्ट्रीय। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं, आप लोगों ने जो जवाब दिए हैं उसके लिए थैंक यू सो मच, इतने ब्यूटीफुल मैसेजेस के लिए हम आपके दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं आपका। थैंक यू सो मच इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और मुकेश जी को हम सभी जानते हैं, यस आज उनका बर्थडे है। भारतीय अभिनेता, निर्माता और शक्तिमान और महाभारत में अपनी अहम और प्रसिद्ध भूमिका के लिए जाने माने एक्टर हैं मुकेश खन्ना जी, उनको ढेरों शुभकामनाएं हमारे पूरे एफ एम इंटायर फैमिली की ओर से। वही हैप्पी बर्थडे, बहुत ही कमाल के एक्टर हैं यार। बाकी दूसरे एक्टर का भी बर्थडे है, उनसे जुड़ा मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा है। आज मैं आपसे बॉलीवुड एक्टर की बात करूं, नॉट फीमेल एक्ट्रेस, मैं एक्टर की बात करूं, तो आप मुझे जो जवाब दें वो एक्टर को लेकर जवाब दें, मैं फीमेल की बात नहीं कर रहा हूं। ढेर सारे मेरे पास जो आंसर्स आए हैं वो बेसिकली फीमेल एक्टर के आए हैं, जबकि मैंने पूछा कि मेल एक्टर कौन है, जो मैंने गाना प्ले किया था मैं उसकी बात कर रहा हूं। लेडीज एंड जेंटलमैन, उसका आंसर आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, अभी भी आपके पास मौका है। 10:01 हो गए स्टेशन क्लॉक में। आगे बढ़ते हुए बस आपसे इतना ही कहना चाहते कि आप जो है ठंडी ठंडी चीजों का इस्तेमाल करते रहिए, बहुत जरूरी है आपकी हेल्थ के लिए। और आपको मैं एक चीज और बता दूं, मुरमुरे जिनको हम परमल भी कहते हैं, बहुत ही बढ़िया लगते हैं यार खाने में, है ना, तो अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुत ही अच्छे होते हैं। एंड इनको अगर आप अपनी डाइट में शामिल करते हैं, यानी कि परमल जिन्हें हम मुरमुरे भी कहते हैं, है ना, तो अगर आप इसका सेवन करते हैं तो ये आपकी हड्डियों को जो है, हड्डियों की जो प्रॉब्लम है उसको थोड़ा सा कम करने में आपको काफ़ी हेल्प करता है, और आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। इसमें कैल्शियम होता है, इसमें पोटेशियम होता है, जो भरपूर होता है इन चीज़ों से, और आपकी हड्डियों को मजबूत बनाने में काफ़ी हेल्प करता है, और आपके जोड़ों के दर्द में भी काफी आपको हेल्प करता है। तो ये जो परमल को आप एविंग समझ रहे हो ना, बहुत कमाल की चीज है, बहुत सी है। चलो जी, 10:01 हो गए, आगे बढ़ते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, लास्ट मौका है आपके पास आज ट्यूसडे की सुबह। आज 8वां बड़ा मंगलवार है, ये आपको बताना भूल गया हूं मैं, जेठ माह के इस बार 4 नहीं 8 मंगलवार थे, और फाइनली बड़ा मंगलवार का आज आखिरी मंगलवार, यानी कि जो बड़ा मंगलवार है जेठ मास का, वो आज अंतिम मंगलवार है। तो आपको सबसे पहले तो जेठ माह के इस बड़े 8वें मंगलवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं, सारी आपकी इच्छाएं ईश्वर पूर्ण करे। भाई आगे बढ़ते हैं, अब आप मुझे बताओ, लास्ट मौका है, ये गाने में कौन से मेल एक्टर है, ये आई वांट टू आस्क यू कि मेल एक्टर कौन है इस गाने के अंदर, ये आपने बताना है।

इस गाने में कौन से मेल एक्टर हैं, बस आपको ये बताना है, ठीक है? जल्दी से मैसेज करो, मैं फटाफट अभी लौट कर आता हूँ और उसके बाद जो है आपसे और भी ढेर सारी बातचीत करेंगे इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे। मतलब अब ज़्यादा तो नहीं कर पाऊंगा लेकिन जितनी भी होंगी अभी होंगी आपके सामने होंगी। फिलहाल एक गाना सुनते हैं, उसके बाद जल्दी से वापस मिलते हैं।

0: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग, बिंदास मॉर्निंग, बिंदास
1: मॉर्निंग। आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
2: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
3: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
4: कॉल 8826213131।
5: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: देखो यार, आज की जो सुबह है बहुत ही स्पेशल है। ये ट्यूसडे की मॉर्निंग आप सुन रहे थे आरजे आनंद को। फिलहाल लेता हूँ अब जाने की इजाजत, लेकिन उससे पहले मैंने पूछा था इस गाने में कौन से मेल एक्टर हैं। कौन बताएंगे सही जवाब? जी नाम बताएं अपना। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप?
1: बिल्कुल
0: जी, अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। आपको हमारी जनता रेडियो पे लाइव सुन रही है, अपना नाम और कहाँ रहते हैं आप?
1: डीके अरोड़ा, चंदन नगर।
0: जी चंदन नगर, मुरादाबाद।
1: मुरादाबाद,
0: क्या बात है। क्या करते हैं सर वैसे प्रोफेशनली, या फिर अभी बस जीवन का आनंद ले रहे हैं?
1: मैं जॉब करता था, तो मैं एक साल हो जाएगा मुझे नेक्स्ट मंथ रिटायर हुए। मैं मेरठ से रिटायर हुआ था।
0: अच्छा अच्छा,
1: कमीशन ऑफ इंडिया के ऑफिस से।
0: ओके ओके ओके, अरे वाह। तो सर रेडियो के साथ अब जो है आप समय बिता रहे हैं?
1: 31 जुलाई को रिटायर हुए थे, 1 अगस्त से सुन रहे हैं।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, तो क्या सर मतलब आपको सपना सारा टाइम डेट वेट सब एकदम नोट करके रखा हुआ है आपने? हाँ
1: नहीं सर, इसलिए रख रखा है ना क्योंकि ये रेडियो मेरे को गिफ्ट में दिया गया था मेरे रिटायरमेंट।
0: अरे वाह अरे वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो कैसे लगता है आपको रेडियो पे जब आप ये मुरादाबाद की शो सुनते हो?
1: बस अपना आराम से 6 घंटे तो सुनते ही सुनते हैं।
0: अरे वाह बहुत बढ़िया, मतलब सुबह से आपका चालू हो जाता है राइट?
1: सुबह 7 बजे से 12 बजे तक।
0: अरे वाह वेरी गुड सर, टाइम का पता नहीं चलता होगा वैसे तो?
1: ना बिल्कुल नहीं, आधा दिन खत्म हो जाता है।
0: हाँ, वही तो कह रहे हैं ना, और सारी जानकारियां और अच्छा मनोरंजन भी मिलता है आपको।
1: सब कुछ मिल जाता है, लेकिन मैं फिर भी यही कहूंगा कि एक चीज सब कुछ बताया जाता है, लेकिन एक चीज और बताई जानी चाहिए।
0: जी जी जी, बताएं आप।
1: जो मंथली 2 एकादशी आती है पूरे साल में 25 आती है।
0: हाँ जी हाँ जी,
1: जिसमें जो अब एक एकादशी आएगी वो निर्जला की।
0: हाँ जी हाँ जी, वो निर्जला एकादशी।
1: जब सबके बारे में बताया जाता है तो मैं ये चाहता हूँ कि इसके बारे में बताया जाए कि जरूर एकादशी।
0: जरूर जरूर जरूर। सर ये जो गाना चल रहा है, गाने में कौन से हीरो थे आपको नाम बताना था?
1: राज बब्बर।
0: क्या बात है क्या बात है, कौन सी फिल्म का गीत था ये?
1: वारिस।
0: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, तो आपने जरूर ये मूवी देखी होगी।
1: नहीं मूवी तो नहीं देखी, लेकिन
0: राज बब्बर साहब की एक्टिंग कैसी लगती है आपको?
1: बढ़िया लगती है,
0: कमाल के एक्टर है ना। आज उनका जन्मदिन है। बिल्कुल यही मैंने आपसे पूछा था, बहुत अच्छा लगा डीके साहब आप जुड़े और आपने सही जवाब दिया, तो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। कुछ कहेंगे आप जाते जाते हमारे रेडियो चैनल के माध्यम से?
1: बस यही कहना है, अपना आराम से जो जीवन है उसको अच्छी तरीके से गुजारे, मस्ती के साथ।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सही कहा।
1: जो ये हमारा FM है मुरादाबाद वाला, इसमें जहाँ तक मैं समझता हूँ हर जानकारी मिल जाती है।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप, तो मुझे लगता है कि कहीं और जाने की जरूरत नहीं है ना?
1: ना कहीं नहीं।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चलिए साहब बहुत अच्छा लगा आपसे, जरूर कभी मिलते हैं और ढेर सारी बातचीत करेंगे सर। नमस्कार सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। डीके अरोड़ा जी चंदन नगर से जुड़े थे। एब्सोल्युटली दिस इज राइट आंसर, राज गब्बर जी जो हैं इस गाने में थे और उन्हीं के ऊपर पिक्चराइजेशन का गाना, मतलब बहुत ही अल्टीमेट स्टार हैं, उनके लिए जोरदार तालियां, और जिन लोगों ने सही जवाब दिए उनके लिए भी तालियां। कंग्रेचुलेशन, आज उनका बर्थडे होता है, आज की तारीख में आपका भी बर्थडे है, तो आप अपना बर्थडे इन लेजेंडरी के साथ सेलिब्रेट करते हैं। आगे बढ़ते हैं, 10:11 हो गए, जाने का टाइम हो गया है। गुड मॉर्निंग जी, हमारे साथ जुड़े हैं कौन यहाँ पे? मोहसिन अंसारी बनारस से, थैंक यू जी। इसके अलावा मेरे पास मैसेज पहुँच रहा है यहाँ पर, हेलो गुड मॉर्निंग जी, ये फराज सैफी जुड़ रहे हैं मेरे साथ। गुड मॉर्निंग आनंद, हाउ यू डूइंग? मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, सही जवाब पहुँचा रहे हैं हमें राजा कश्यप। बीबी राधिका जी मुझे सही जवाब दे रही हैं। साथ में नासिर हुसैन साहब जुड़े हैं मेरे साथ, करूला गली नंबर 1 मुरादाबाद से। लिखते हैं आरजे आनंद जी, गुड मॉर्निंग, हर सुबह आपकी आवाज़ एक नई उम्मीद लेकर आती है, हर मुस्कान दिलों में नई खुशियां जगाती है, यूं ही महफिल सजाते रहिए अपने अंदाज से, रब आपको हर खुशियां देगा, यही हमारी दुआएं हैं। थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू मेरे भाई से जवाब देने के लिए नासिर भाई, थैंक यू। समीर अब्बासी जी जुड़ रहे हैं राइट आंसर के साथ, जयंतीपुर से टीचर कॉलोनी से। हमारे साथ जुड़ गई हैं लक्ष्मी जी, गुड मॉर्निंग पहुंचाती हैं, साथ में सही जवाब भी दे रही हैं। एंड इसके अलावा बबली अनजान, गीता कश्यप राइट आंसर दे रहे हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त आरिफ खान साहब सही जवाब के साथ, अगवानपुर से। सही जवाब के साथ रणवीर सिंह भी जुड़े हैं। गुड मॉर्निंग, हेलो हाय, कैसे हाल चाल है? गुड मॉर्निंग सर, मैं बहुत ही बढ़िया हूँ। मुकेश सैनी मेरे साथ जुड़े हैं, एंड ये मैसेज हमारे पास पहुंच रहा है यमुनानगर से, हरियाणा से मैसेज आ रहा था मेरे पास। ये मयंक शर्मा जुड़ चुके हैं हमारे साथ, एंड इसके अलावा एक वॉइस नोट मेरे पास आया है हमारी प्यारी सी लिसनर अलका जी का, इनका भी जरा वॉइस नोट सुनते हैं क्या पहुंचा रही हैं।
2: राधे राधे।
0: राधे राधे जी,
2: ये गाना वारिस मूवी का है और इस पे राज बब्बर पर फिल्माया गया है और अमृता सिंह पर।
0: बहुत बढ़िया,
2: थैंक यू,
0: थैंक यू सो मच सही जवाब।
2: आनंद आज का प्रोग्राम काफी अच्छा चल रहा है और आनंद के साथ सुनकर बहुत ही आनंद आ जाता है।
0: क्या बात है, बहुत ही अच्छा लगा मुझे, जोरदार तालियां, आपने इतनी प्यारी बात बोल के सच में मेरी सुबह अच्छी बना दी मैम।
3: मुखड़ा ऐसे बैठे बैठे तू शोल्डर ना,
0: शोल्डर हिलाने पड़ते हैं अर्जुन जी,
3: पैर उठा,
0: नहीं उठा सकता अभी मैं रेडियो पे बैठा हूँ।
3: अखियों से गोली मारती रहती, दिलों को सुली टांगती रहती, स्कूल वूल की टीचर है
0: क्या, जब देखो लेक्चर
3: झाड़ती रहती,
0: जरूरी है
3: लिखा ये गाना साथ।
0: आगे बढ़ते हुए हम आपका दिल से थैंक यू करना चाहेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, इतने प्यारे संदेश आप लोग करते हैं, मजा आ जाता है। और अफकोर्स हमारी भी कोशिश होती है कि हम अच्छी प्रोग्राम्स आपके लिए यू नो लेकर आए, अच्छी प्रिपरेशन करके आपके सामने पूरा कंटेंट डिलीवर करें।
4: क्या मैं करूं,
0: कुछ टेक्स्ट मैसेज आए थे मेरे पास। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग, मैं बहुत ही बढ़िया हूँ। नेहा स्वाति हमारे साथ जुड़ चुकी हैं आज की सुबह। हाय, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? मैं बढ़िया हूँ नेहा स्वाति, थैंक यू सो मच। हेलो हेलो, आपको भी गुड मॉर्निंग। हेलो, गुड मॉर्निंग जी, रिक्की मेरे साथ जुड़ गए हैं आज की सुबह। हाय, गुड मॉर्निंग। चलो गाइस, हैव अ वंडरफुल डे, एंजॉय करिए इस प्यारे से गाने को और मुझे दीजिए जाने की इजाजत। कल डेफिनेटली होगी मेरी मुलाकात इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे, अपना रखिए ढेर सारा ख्याल। संदीप सागर जुड़ गए मेरे साथ, लिखते हैं हाय गुड मॉर्निंग आनंद जी, आज मेरी बेटी का बर्थडे है, 5 साल की हो चुकी है, वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू, आपकी डॉटर को मैनी मैनी कंग्रेचुलेशन, बहुत सारी शुभकामनाएं, गॉड ब्लेस यू। चलिए गाइज, मैं निकलता हूँ, खिसकता हूँ और बाकी जो लोग अभी सुन रहे हैं अपनी गड्डी विच उनका बहुत बहुत स्वागत है। आज आनंद कहता है हैव अ ग्रेट एंड फैबुलस मॉर्निंग, बाय।

बॉलीवुड के मस्त गाने, तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाएं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7060022430।

म्यूजिक मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप? आई होप सब बहुत अच्छे ही होंगे और इस समय राइट नाउ अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। आप सभी का आरजे खुशी पूरे दिल से स्वागत करती है आपके अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और दोस्तों, शो शुरू हो चुका है आप सभी का फेवरेट मॉर्निंग मसाला। और दोस्तों, सूरज रोज इसलिए नहीं उगता कि वो चमके, बल्कि इसलिए उगता है क्योंकि हमें याद दिलाता है अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, रोशनी अपना रास्ता बना ही लेती है। और दोस्तों, आज की सुबह बहुत ही बेहतरीन है, मंगलवार का दिन है, जी हाँ, ट्यूसडे मॉर्निंग है, खुशी आपके साथ है। और आज क्या कुछ स्पेशल है सब आपको धीरे धीरे पता लगेगा। आप कहीं मजाइए, यूं ही मुस्कुराइएगा, आपकी मुस्कुराहट किसी और के चेहरे पर भी खुशियां ला सकती है। तो इसलिए दोस्तों, मुस्कुराइए, किसी उदास चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाएगी। और मैं कहती हूँ कि मुस्कुराहट सबसे खूबसूरत तोहफा है, सबसे प्यारी, यू नो, पॉजिटिव मैसेज देता है। जब आप प्यार से स्माइल करते हैं, किसी को प्यार से थैंक यू बोलते हैं, तो सामने वाले का दिल बन जाता है। अगर कोई आपको छोटी सी हेल्प करता है, तो बदले में रिटर्न थैंक यू बनता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, खुद को थैंक यू बोलिए, क्योंकि आप बहुत प्यारे हैं और अपने आप में बहुत स्पेशल हैं। आप सुबह सुबह सवेरे उठते हैं, अपनी फिटनेस का ख्याल रखते हैं, सामने वाले के लिए भी आप अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं, और ये काम हर कोई नहीं कर पाता है, तो आप करते हैं, तो खुद को थैंक यू तो कहना बनता है ना। एवरीवन, जब हम अच्छे काम करते हैं ना, तो खुद को अप्रिशिएट करना चाहिए। और चलिए, मैं सुनवाती हूँ आपको एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत, अमेजिंग ट्रैक लौट कर आती हूँ मैं। तब तक आप कहीं मत जाइए, यूं ही मुस्कुराइएगा, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, और ये प्यारी सी स्माइल अपने चेहरे पर बना के रखिएगा।

0: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्लेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548539705।
1: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
3: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
2: क्या हुआ भैया, परेशान क्यों?
4: अरे तुम्हारी भाभी की डिलीवरी करवानी है, कहाँ जाऊँ?
5: अरे तो परेशान क्यों होना, है ना धानिया नर्सिंग होम। यहाँ मिलेंगी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर अर्चना अग्रवाल अपने 20 वर्षों के अनुभव के साथ। बिना दर्द के नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन ऑपरेशन या हो बांझपन का इलाज, सब कुछ मिलेगा एक ही छत के नीचे और साथ ही आयुष्मान कार्ड की सुविधा भी उपलब्ध है। धानिया नर्सिंग होम, मानसरोवर कॉलोनी, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 9012069764।
6: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
7: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। जी हाँ, पीतल नगरी के नाम से मशहूर है हमारा मुरादाबाद। आप सभी का आरजी खुशी वेलकम करती है। एवरीवन, अभी आपने ये प्यारा सा ट्रैक सुना दिलजीत दोसांझ की खूबसूरत सी आवाज में, डू यू नो। सभी प्यार तो हम भी आपसे बहुत ज्यादा करते हैं। आप सब से जब हम यहाँ पर आते हैं ना, तो एक अलग ही खुशी होती है, खुशी के चेहरे पर, जो हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, आज का दिन खेल, हाँ जी, खेल प्रेमियों के लिए बेहद खास है, क्योंकि आज है 23 जून और आज सेलिब्रेट किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। दोस्तों, ओलंपिक सिर्फ एक खेल प्रतियोगिता नहीं है, बल्कि ये मेहनत, अनुशासन, समर्पण और विश्व एकता का प्रतीक है। दुनिया के अलग अलग देशों के खिलाड़ी जब एक ही मंच पर अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो खेल की असली भावना देखने को मिलती है। हर खिलाड़ी के मेडल के पीछे वर्षों की मेहनत, त्याग और संघर्ष छिपा होता है। सुबह की नींद छोड़कर, कठिन अभ्यास करके और हर चुनौतियों का सामना करके वो उस मुकाम तक पहुंचते हैं जहां पूरा देश उन पर गर्व करता है। भारत के खिलाड़ियों ने भी समय समय पर ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन करके देश का नाम रोशन किया, चाहे बात हो एथलीट की या फिर बैडमिंटन की, शूटिंग की और बॉक्सिंग की या फिर हॉकी की। हमारे खिलाड़ियों ने दुनिया को दिखाया है कि भारतीय प्रतिभा किसी से कम नहीं है। दोस्तों, जीतना ही सफलता नहीं होती, बल्कि पूरी ईमानदारी और मेहनत से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना भी एक बड़ी जीत है।

और दोस्तों खेल हमें फिट बनाता है, अनुशासन सिखाता है और जीवन में आगे बढ़ने का हौसला देता है। इसीलिए खेलिए, स्वस्थ रहिए और अपने सपनों को उड़ान दीजिए। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साथियों यहाँ पर वक्त हुआ है 10:35 राइट नाउ। आपकी खूबसूरत संदेश भी यहाँ पर आ गए हैं, मैं उनको शामिल कर लेती हूँ। और हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले मैसेज आया है राधे राधे खुशी जी। राधे राधे आपको भी मैम, आप कैसी हैं? मैं तो बहुत ही अच्छी हूँ और आप भी अच्छी हैं, ये जानकर हमें और भी ज़्यादा खुशी हो रही है कि आप गुड हैं, हैप्पी हैं। और इन्होंने एक प्यारे से गाने की रिक्वेस्ट भेजी है, मेरे प्यार की उम्र हो इतने सनम, तेरे नाम पे शुरू तेरे नाम से ख़त्म। एंड ये मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है अलका वर्मा जी का बुद्धि बिहार से। और इस समय मैम मुस्कुरा रही हैं, बैठ के आराम से रेडियो को सुन रही हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही हमेशा खुश रही हैं मैम आप। एंड थैंक यू अपना ब्यूटीफुल मैसेज पहुंचाने के लिए। नेक्स्ट मैसेज मेरे पास यहाँ पर नेक्स्ट मैसेज आया है, गुड मॉर्निंग खुशी मैम, हमारा प्यारा सा गुड मॉर्निंग आप एक्सेप्ट कीजिएगा। बिल्कुल सर, हमने एक्सेप्ट किया आपका, इतने प्यार से आपने मैसेज भेजा है, हम कैसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और सर कहते हैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छी होंगी, काफी दिनों के बाद हमने आज मैसेज किया है। और ये मैसेज हमारे पास आया सुमित का है, ये मैसेज हमें पहुंचाया है यहाँ पर जामा मस्जिद अकबरपुर से मोहम्मद आरिफ खान जी ने। और साथ में इनका बेटा भी है मोहम्मद रोहान खान, इनकी मिसेज है निखत परवीन जी। और ये कहते हैं कि आज राज बब्बर जी का बर्थडे है तो उन्हीं की फिल्म का एक ट्रैक हमें सुनवा दीजिएगा। बिल्कुल सर, हम सुनवाएंगे आपको आपकी पसंद का गीत। आप बने रहिए सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6। और कल रात हम एक फंक्शन में गए थे एंड उसके बाद क्या हुआ है बताएंगे आपको, बड़ा इंटरेस्टिंग सा बहुत अच्छा सा किस्सा हमारे साथ हुआ है वो हम आपको बताने वाले हैं। एंड जब आप भी सुनेंगे तो आप भी खुश हो जाएंगे। बस मैं लौट कर आती हूँ कुछ ब्यूटीफुल ट्रैक के उस पार। यह है आपकी अपने शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6। एंड चलिए सुनते हैं बिना किसी देरी के ये प्यारा सा गाना, आपको कहीं नहीं है जाना। ठीक है, माना कि आप काम में व्यस्त हैं लेकिन काम के साथ साथ ना आप मुझे अपना मैसेज भी पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि हमें इंतज़ार है आपके प्यारे संदेशों का। देखो मैसेज करने में ना कोई भी कंजूसी मत करना, ओके? भले ही मैं आपको वहाँ नहीं देख रही हूँ लेकिन हाँ हम दिल से तो आपको कनेक्ट कर रहे हैं ना।

0: क्या सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
1: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
2: हाय दयन एनर्जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
3: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं बाराती भी सजने आते हैं।
4: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
3: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
5: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चावला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
6: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
7: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
8: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
9: अरे भाभी, आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
10: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
11: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।
12: म्यूजिक, मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी यस। अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादी अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

हेलो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और साथियों, अभी आपने बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक सुना, मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम, बहुत ही अमेजिंग ट्रैक। और इस ब्यूटीफुल ट्रैक की रिक्वेस्ट हमें भेजी थी अलका वर्मा जी ने, उदय विहार से। और दोस्तों, समय हुआ है 10:50। और दोस्तों, मैं बात कर रही थी, मैंने आपसे कहा था कि कल रात एक बहुत ही स्पेशल और हार्ट टचिंग मोमेंट हुआ, जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। रात हम तीनों एक फंक्शन में गए थे, तीनों आरजेस, आरजे आनंद जी, आरजे खुशी एंड आरजे रीना जी। और हमने एक ऑटो बुक किया था। जैसे ही हम ऑटो में बैठे और ऑटो वाले भैया ने हमारी बातें सुनी और अचानक बोले, ये आवाज़ तो मैंने कहीं सुनी है। पर जब उन्हें पता चला कि हम एफएम मुरादाबाद के आरजे हैं, उनकी खुशी देखने लायक थी। उन्होंने बताया कि वे रेगुलर एफएम मुरादाबाद सुनते हैं, सुबह सुबह आरजे आनंद जी को सुनते हैं, नेक्स्ट आरजे रीना जी को भी सुनते हैं और आरजे खुशी को भी सुनना पसंद करते हैं। और मेरी आवाज़ सुनकर बोले, अरे आरजे खुशी जी। तो मैंने कहा, हाँ जी, कहते हैं मैम हम आपका प्रोग्राम सुनते हैं सुबह 10 बजे। और सच बताऊं दोस्तों, उस वक्त ना दिल को एक अलग ही हैप्पीनेस मिली। एक आरजे के लिए इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट क्या हो सकता है कि कोई आपको आपकी आवाज से पहचान ले। रेडियो की यही खूबसूरती है, हम शायद अपने लिसनर्स से रोज मिल नहीं पाते, लेकिन आवाज से एक रिश्ता है ना। आवाज से पता है दोस्तों, एक रिश्ता जरूर बन जाता है। और जब वही लिसनर्स अचानक सामने मिल जाए तो वो मोमेंट और भी मेमोरेबल बन जाता है। थैंक यू सो मच भैया, एंड थैंक यू एफएम मुरादाबाद के सभी लिसनर्स को हम कहना चाहेंगे कि आप सब हमें इतना प्यार देते हैं। और हमारे पास यहाँ पर कुछ और संदेश आए हैं, मैं उनको भी जल्दी से शामिल कर लेती हूँ। हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है विकी सागर जी का मुरादाबाद से, कहते हैं गुड मॉर्निंग खुशी, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी सर। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, एफएम मुरादाबाद मेरा बेस्ट चैनल है और ये कहना चाहते हैं गुड मॉर्निंग खुशी जी, सुबह की टाइम आपका प्रोग्राम सुन लेते हैं तो दिन भर खुश रहते हैं खुशी के साथ। ओ हो हो, क्या बात है जी। मोहसिन अंसारी जी का मैसेज हमारे पास आया है, साथ में सरताज अंसारी जी भी हैं, सद्दाम अंसारी जी हैं एंड शाहिद अंसारी जी हैं, पुस्तक अंसारी जी भी हैं, काशी नगरी बनारस से अपना मैसेज हमें पहुंचाते हैं। और इन्होंने बड़ी खूबसूरत सी लाइनें लिखी हैं कि नजरों से दूर पर दिल के पास हैं, नजरों से दूर पर दिल के पास हैं, हम दोस्त हैं इसलिए खास हैं, हर सुबह तुझे बात हो हर रात यही सपनों में हम आपके पास हैं। ओहो हो हो, क्या बात है, बड़ी स्पेशल सी लाइनें भेजी हैं आपने और इतने सारे फ्रूट्स भी भेजे हैं, अरे वाह, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, अस्सलाम वालेकुम खुशी जी, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। एंड ये मैसेज हमारे पास आया है, नूर जी का मैसेज हमारे पास आया है और इन्होंने आज राज बब्बर जी का बर्थडे है तो शुभकामनाएं पहुंचाई हैं और कहा है कि मैम एक ट्रैक सुनवा दीजिएगा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा, बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक है। वैसे ये ट्रैक मैंने चुना भी था, मैं सोच रही थी कि प्ले करूंगी बट आपकी रिक्वेस्ट आ गई है तो फिर और भी अच्छी बात है। और अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है राइट नाउ, ये मैसेज हमें पहुंचाते हैं
दादा बाबू रोड ग्रीडी झारखंड से मोहम्मद यासीन अनजान जी कहते हैं आरजी खुशी जी को हमारा आदाब, आपको भी आदाब सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपने अपना संदेश पहुंचाया है। तो चलिए दोस्तों सुनते हैं ये प्यारा सा ट्रैक, लौट कर आती हूँ मैं, बस आप कहीं मचाइए, यूं ही मुस्कुराइए। मुस्कुराने में ना कोई कंजूसी नहीं करनी है आपको, ठीक है? पता है आप जब आप मुस्कुराते हैं ना तो एक्स्ट्रा ग्लो आपके फेस पर आता है, और जब आपका फेस शाइन करता है, ग्लो करता है, ओहो बड़े सोने लगते हो तुसी, यकीन नहीं होता है, हाय रब्बा मैं की करा, जाके शीशे में देखो

0: जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
1: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
2: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्दी आउटफिट फ्री।
1: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।

0: तो 40 करोड़ देशवासियों को नई ताकत दी। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के संकल्पों से उत्तर प्रदेश का कायाकल्प हुआ। उज्ज्वला योजना से महिलाओं को धुआं मुक्त रसोई, पीएम किसान सम्मान निधि से किसानों को आर्थिक मजबूती और आयुष्मान भारत से आम लोगों को बेहतर इलाज की सुविधा मिली।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।

गुड मॉर्निंग दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। दोस्तों वक्त हुआ है 11:07 राइट नाउ स्टूडियो की घड़ी में, और आप ट्रैक सुन रहे हैं एक से बढ़कर एक आपकी अपनी पसंद पर। दोस्तों यहाँ पर समय हुआ है 11:07 राइट नाउ, और आपकी खूबसूरत ब्यूटीफुल संदेश भी आ रहे हैं, मैं उनको भी शामिल करूंगी।

और दोस्तों आज एक और अभिनेता का बर्थडे है। जी हाँ, बर्थडे है। आप उनको जानते हैं एंड बच्चों के बहुत फेवरेट है रहे हैं और बच्चे भी ऐसा मतलब ट्राई करते थे कि काश हमारे अंदर भी वो शक्ति आ जाती। जी हाँ दोस्तों, आज 23 जून का दिन है और भारतीय टेलीविजन और मनोरंजन जगत के एक ऐसे कलाकार के नाम जिन्होंने अपने दमदार अभिनय से करोड़ों दिलों में खास जगह बनाई। हम बात कर रहे हैं मुकेश खन्ना जी की, जिनका आज जन्मदिन है। जब भी शक्तिमान का नाम लिया जाता है तो बच्चों से लेकर बड़ों तक हर किसी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वही महाभारत में भीषण पितामह के रूप में उनकी गंभीर और प्रभावशाली भूमिका आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई है। मुकेश खन्ना जी ने सिर्फ अभिनय ही नहीं किया बल्कि अपने किरदारों के माध्यम से समाज को अच्छे संस्कार, ईमानदारी और सही राह पर चलने की प्रेरणा भी दी है। FM मुरादाबाद की पूरी टीम की ओर से मुकेश खन्ना जी को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। अच्छा दोस्तों, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप मुझे बताइए कि आपके घर में शक्तिमान देखने के सबसे शौकीन कौन थे। जी हाँ, जिनका फेवरेट रहा है शक्तिमान, कौन है वो आपके घर में, आपके भाई बहन सिस्टर बिग ब्रदर या आपकी फैमिली में आपके फादर साहब मम्मा। और बच्चे ट्राई भी करते हैं, घूमते हैं वैसे ही कि हम भी शक्तिमान बनते हैं। आप मुझे बताइएगा, मुझे इंतजार है कि आपने देखा है शक्तिमान। हम छोटे थे बहुत ज्यादा देखते थे। और हमारे पास यहाँ पर और भी मैसेज आए हैं, मैं उनको भी क्विकली शामिल करती हूँ। हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है जनकपुरी सहारनपुर से जोन रोजी पुलबलीज जी का, और ये कहते हैं आरजी जी आपको गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग सर। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, ये मैसेज हमें पहुंचाते हैं जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल जी, साथ में रंजीत कौर हैं, जयप्रकाश राहुल हैं, प्रियंका हैं, मन्नत हैं, गुरप्रीत सिंह जी हैं एंड गुरु शब्द सिंह राहुल जी का मैसेज हमारे पास आया है और ये कहते हैं कि खुशी जी आप किसी भी गीत में हमें शामिल कर लीजिएगा। श्योर सर। नेक्स्ट मैसेज मेरे पास यहाँ पर आया है, हेलो मैम कैसे हुए आप, गुड मॉर्निंग, मेरा नाम पिंटू है। पिंटू जी वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। और इन्होंने एक बहुत ही प्यारे से ट्रैक की रिक्वेस्ट में भेजी है सोनू निगम जी की आवाज में, थोड़ा सा प्यार हुआ है थोड़ा है बाकी, हम तो दिल दे ही चुके बस तेरी हाँ है बाकी। तो चलिए दोस्तों सुनते हैं कुछ खूबसूरत गीत और लौट कर आते हैं। मुझे आप बताइए कि आप भी शक्तिमान देखने के शौकीन थे, आपके घर में कौन है वो जो शक्तिमान बहुत ज्यादा देखा करते थे एंड जब वो सीरियल आता था शक्तिमान तो उसके चक्कर में ना अपना काम भी हम छोड़कर बैठ जाते थे, है ना। कई बार ऐसा होता था ना कि चलो काम बाद में कर लेंगे, पहले हम शक्तिमान देख लेते हैं।

और चलिए अभी सुनते हैं बहुत ही प्यारा सा ट्रैक। आप कहीं मचाइए, यूं ही मुस्कुराइएगा, रेडियो किसी को बिल्कुल भी मत घुमाइएगा। और हाँ दोस्तों, अपनी हेल्थ का ख्याल भी रखो। अगर आप इस समय कहीं बाहर जाने का सोच रहे हैं तो प्लीज आप केयरफुली जाइएगा, छाता लेकर जाइए एंड पानी की बॉटल हमेशा अपने पास रखिए और बीच बीच में पानी पीते रहिए। जी हाँ दोस्तों, पानी को बिल्कुल भी स्किप ना करें एंड नारियल पानी जूस अपना फेवरेट ले सकते हैं जो आपको पसंद है।

0: स्किन, बाल, नाखून, समस्त चर्म रोग एवं एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सुविधाओं के लिए विजिट करें डॉक्टर ऋषि गोयल डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सेंटर, ऑपोजिट लविना रेस्टोरेंट, कांट रोड, मुरादाबाद।
1: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
2: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर, 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज, मुरादाबाद।
3: कॉल 8826213131।
4: सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर, मुरादाबाद।
5: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
6: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। म्यूजिक, मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

हेलो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम है आप सभी का एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी है आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग मसाला, जहां पर कुछ इंटरेस्टिंग बातें होती हैं, इन्फॉर्मेशन भी होती है एंड ढेर सारा एंटरटेनमेंट भी होता है आपके गानों का। जी हाँ दोस्तों, हम ट्रैक प्ले करते हैं यहाँ पर आपकी पसंद के और बातें भी होती हैं इंटरेस्टिंग सी। और दोस्तों अभी हम बात करने वाले हैं बहुत ही खूबसूरत सी, जिसे सुनकर फीमेल्स बहुत खुश हो जाएंगी। हम बात करने वाले हैं साड़ी के बारे में। हाँ जी दोस्तों, साड़ी सिर्फ एक परिधान नहीं बल्कि हमारी भारतीय संस्कृति, परंपरा और विरासत की खूबसूरत पहचान है। भारत के हर राज्य की साड़ी अपने साथ एक अलग कहानी लेकर आती है। उत्तर प्रदेश की बनारसी साड़ी हो या फिर तमिलनाडु की कांचीपुरम, पश्चिम बंगाल की बालूचरी हो या फिर असम की मूंगा सिल्क, हर बुनाई में कारीगरी की मेहनत और वर्षों पुरानी कला की झलक दिखाई देती है। कहते हैं ना साथियों कि भारत की सिल्क साड़ियों का दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है। इनके रंग, डिजाइन और बारीकी कारीगरी इन्हें खास बनाती है। यही वजह है कि भारतीय साड़ियाँ सिर्फ देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी खूब पसंद की जाती हैं।

और जो हमारी समय फीमेल समय सुन रही हैं उनसे भी मेरा एक सवाल है, क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। आप मुझे बताइए कि आपने पहली बार साड़ी कब पहनी थी। अक्सर लड़कियों का पहला प्यार कोई ड्रेस नहीं बल्कि मम्मी की साड़ी होती है। बचपन में जब मम्मी कहीं बाहर जाती थी तो चुपके से उनकी साड़ी पहन लेना और आईने के सामने खड़े होकर खुद को देखना, बिल्कुल मम्मी जैसा महसूस करना, ये एहसास ही कुछ और होता था ना दोस्तों। जो फीमेल्स हमें सुन रही हैं, जो गर्ल्स सुन रही हैं, वो मेरी बातों को कनेक्ट कर पा रही होंगी। होता है ना कि फर्स्ट टाइम जैसे मम्मा कहीं फंक्शन में गई हैं या फिर कहीं बाहर गई हैं तो हम क्या करते थे कि घर पे तो कोई नहीं है, चुपके चुपके से मम्मा की साड़ी निकाल कर पहन लेना और तैयार होके मिरर के सामने खुद को निहारना, और जैसे ही पापा की आने की आहट सुनाई देती ना, बस फिर क्या, फटाफट से जल्दी से कमरे में जाकर साड़ी चेंज करना और अपने वही पुराने वाले ड्रेस में आ जाना, ताकि पापा के सामने थोड़ा सा शर्मा जाती है ना गर्ल्स। अच्छा आप मुझे बताइए, आपने पहली बार किसकी साड़ी पहनी थी, मम्मी की, दादी की, बुआ की? बताओ, फर्स्ट टाइम आपने किनकी साड़ी पहनी थी, मम्मा की? ज्यादातर तो लड़कियां मम्मी की ही साड़ी पहनती हैं। और हमारे पास यहाँ पर कुछ और खूबसूरत मैसेज आए हैं, मैं उनको भी क्विकली शामिल करती हूँ। वैसे एक्चुअली ना कोई भी ड्रेस लड़कियां पहन ले, लेकिन जो साड़ी में खूबसूरत लगती है ना वो किसी और ड्रेस में नहीं लगती है, साड़ी की बात ही अलग है ना। यहाँ पर हमारे पास मैसेज आया है, हेलो खुशी मैम, गुड मॉर्निंग। शाजिद जी का मैसेज हमारे पास मुरादाबाद से आया है और इन्होंने एक पहले से गाने की रिक्वेस्ट हमें भेजी है। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, ये कहते हैं कि शक्तिमान कौन नहीं देखता था, खुशी जी पूरा परिवार देख रहा था एक नाटक, जूनियर भी है, बालवीर है, बहुत सारे नाटक बचपन में मैंने देखे हैं। ऐसा लगता था कि घर पर ही सिनेमा खुल गया है, आसपास के भी बच्चे आकर देखते थे घर में। मेरे घर पर टीवी अब जमाना बदल चुका है। एग्जैक्टली राइट, अब मोबाइल का जमाना है, तो शक्तिमान फिलहाल इस समय बीच में। अच्छा पहले के टाइम में जो सीरियल्स वगैरह देखते थे, और पहले इतने टीवी वगैरह नहीं होते थे, तो पास के बच्चे भी सब घर पर आया करते थे और पूरा मतलब रूम एकदम ना फुल हो जाया करता था। हमने भी बहुत सीरियल्स देखे हैं बचपन में, बहुत ज्यादा। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, जय श्री राम, खुशी मैम, क्या हाल चाल है आपके? बहुत बढ़िया है जी। हम ये मैसेज हमें पहुंचाते हैं बबलू सैनी जी मुंबई महाराष्ट्र से। एंड एक प्यारे से गाने की रिक्वेस्ट हमें भेजी थी यहाँ पर विकी सागर जी ने, और ये ट्रैक सुनना चाहते हैं नेहा कक्कड़ साथ में यो यो हनी सिंह एंड टोनी कक्कड़ की बड़ी खूबसूरत सी आवाज में कांटा लगा। तो चलिए सुनवा देते हैं ये ट्रैक, क्योंकि बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं सर कि मेरा गाना भी प्ले होने वाला होगा। बिल्कुल जी, अभी गाना आपकी पसंद का हम प्ले कर रहे हैं यहाँ पर, आप कहीं मत जाइएगा, यूं ही मुस्कुराइए, खुश रहिए, बिंदास रहिए और अपनी सुबह को और बेहतरीन बनाइए।

0: Tony.
1: With your Apple Watch, you can take an...
0: Tony.

हाई एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सुन रहे हैं अपने सिटी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 और मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी खुशी। जी हाँ दोस्तों, हाजिर हूं आपका फेवरेट शो लेकर मॉर्निंग मसाला। अनबुआची मेला स्पेशल दोस्तों, इस समय एक बहुत ही बड़ी धार्मिक खबर सामने आई है। असम की गुवाहाटी में स्थित प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर में अनबुआची मेला वहां पर लगा हुआ है और लाखों श्रद्धालु वहां पर दर्शन के लिए जा रहे हैं। देश के अलग अलग राज्यों से हजारों भक्त मां कामाख्या के दर्शन के लिए पहुंचे हैं। मंदिर परिसर में भक्ति आस्था और श्रद्धा का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। भक्त माता रानी से अपने परिवार की सुख समृद्धि, खुशहाली और अच्छे स्वास्थ्य की कामना कर रहे हैं। मान्यता है कि अनबुआची मेला शक्ति उपासना का एक विशेष पर्व है, जिसमें मां कामाख्या की आराधना का खास महत्व माना जाता है। पूरे क्षेत्र में भक्ति में माहौल बना हुआ है और श्रद्धालुओं में खास उत्साह देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, अगर आप भी मां कामाख्या में आस्था रखते हैं तो हमें जरूर बताएगा अपने और फिलहाल तो माता रानी सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें, इसी प्रार्थना के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और दोस्तों, मैं टाइम बता देती हूं आपको, 11:33 हो चुके हैं और हमारे पास यहाँ पर टेक्स्ट मैसेज लगातार आ रहे हैं, बहुत सारे बैक टू बैक सभी श्रोताओं के, तो मैं उनको भी क्विकली शामिल करती हूँ। हमारे पास यहाँ पर गुड मॉर्निंग हमें पहुंचाती है नेहा स्वाति, एंड वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी डियर। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, गुड मॉर्निंग मैम, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। इन्होंने नाम नहीं लिखा है, बस गुड मॉर्निंग विश किया है। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, हेलो मैम, गुड मॉर्निंग, मैं प्रिंस। ओके प्रिंस, हाउ आर यू? आई एम गुड, मैं तो अच्छी हूँ, आई होप आप भी अच्छे ही होंगे। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है, दीदी नमस्ते। नमस्ते, ये हमें मैसेज पहुंचाती है मोहिनी सैनी। कुंदनपुर मुरादाबाद से अपना मैसेज हमें पहुंचाती हैं और इन्होंने एक ट्रैक की रिक्वेस्ट हमें भेजी है, मेरे यार बदलना जाना मौसम की तरह। देखो दोस्तों, मौसम बदलता रहता है लेकिन आप मत बदलिएगा। आपका जैसा अच्छा व्यवहार है ऐसे ही बनाए रखो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, इंसान ना तो पैसों से दोस्ती करता है और ना ही सुंदरता से। अगर इंसान दोस्ती करता है ना, तो वो होता है अच्छा नेचर, अच्छा स्वभाव। जब आपका व्यवहार अच्छा होगा ना, तो हर इंसान आपका मित्र बन जाएगा, क्योंकि पैसा तो आता जाता रहता है और सुंदरता भी समय के साथ ढल जाती है, लेकिन एक चीज है जो हमेशा कंटिन्यू रहती है, वो है हमारा अच्छा व्यवहार। अगर वो अच्छा है तो हर इंसान आपसे मिलना चाहेगा, बात करना चाहेगा, आपके साथ एक अच्छा रिश्ता बनाना चाहेगा। और हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से इरशाद हुसैन अंसारी जी का, और साथ में इनके फ्रेंड्स भी हैं, शहीद शारिक अली जी, महराज अंसारी जी, बाबू अंसारी जी, और ये कहते हैं, गुड मॉर्निंग खुशी जी, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी सर। ये एवरी डे हमारा कार्यक्रम सुनते हैं
बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर।

0: तो चलिए दोस्तों सुनते हैं अभी खूबसूरत सा ट्रैक, उसके बाद आपसे बातचीत करेंगे। आप कहीं मत जाइए, यूं ही मुस्कुराइएगा। बस हम लौट कर आते हैं कुछ प्यारे से शानदार से गीतों के साथ।
1: हाय दयानंद जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
2: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं बाराती भी सजने आते हैं।
3: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
2: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
4: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
5: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
6: कॉल 8826213131।
7: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चावला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।

बिल्कुल जी, फासले कम हो गए हैं, हम आ चुके हैं लाइव। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं अपने शहर का सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 और मैं आपके साथ आपकी खुशी। दोस्तों, अभी आपने ये अमेजिंग ट्रैक एंजॉय किया एंड खूबसूरत गाने, कुछ गाने ना मतलब सुनते ही ना दिल झूम उठता है। और अभी आपने ट्रैक सुना सोनू निगम जी, अलका याग्निक जी, साथ में उदित नारायण जी की बड़ी खूबसूरत सी आवाज में। और दोस्तों, समय हुआ है 11:58। दोस्तों, सपनों की कोई उम्र नहीं होती और जब मेहनत, लगन और जुनून साथ हो तो सपने सच होने में देर भी नहीं लगती। आज हम बात कर रहे हैं ऐसे युवा क्रिकेटर की जिसने सिर्फ 15 साल की उम्र में भारतीय क्रिकेट के सबसे बड़े सपने, हाँ जी, सपनों में से एक को पूछू लिया है। युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को पहली बार सीनियर टीम इंडिया में शामिल किया गया है। सोचिए जरा, जिस ब्लू जर्सी को पहनने का सपना लाखों बच्चे देखते हैं, जब वही जर्सी आपके हाथ में आ जाए तो ऐसा एहसास ऐसा होगा ना। एंड वैभव भी उस पल को देखकर भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि कभी कभी जिंदगी में कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होती है और फिर आप उस खुशी को शब्दों में बयां नहीं कर पाते। उनके लिए भी यही पल बिल्कुल वैसा ही था जब उन्हें टीम इंडिया की नंबर 3 वाली ब्लू जर्सी सौंपी गई तो उन्होंने बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। और ये सिर्फ एक जर्सी नहीं बल्कि वर्षों की मेहनत, संघर्ष और सपनों का इनाम था। दोस्तों, वैभव की कहानी हमें यही सिखाती है कि अगर इरादे मजबूत हों तो उम्र सिर्फ एक नंबर बनकर रह जाती है। और हम वैभव सूर्यवंशी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां देते हैं। और हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है प्रिया का एंड ये मैसेज हमें पहुँचाती है प्रकाश नगर से। कहती हैं, हेलो मैम, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? आई एम फाइन। कहती हैं कि हम आपका शो सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है। एफएम मुरादाबाद एवरी डे हम लोग सुनते हैं, हमारी पूरी फैमिली एंड हमारे घर के सारे काम भी होते रहते हैं और हम आराम से रेडियो भी इंजॉय करते हैं। पता ही नहीं चलता है कैसे घर के काम कम्प्लीट हो जाते हैं और बहुत अच्छा लगता है। गाने सुनते सुनते जानकारियां भी मिल जाती हैं। और दोस्तों, अब मेरे जाने का वक्त हो गया है, लेकिन जाते जाते बस यही कहना चाहूंगी कि अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और अपने सीनियर सिटीजन का भी ख्याल रखिए। जी हाँ, जो घर में बड़े बुजुर्ग हैं उनका भी ध्यान रखिए। बाकी सुनते रहिए अपने शहर का सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, कीप स्माइलिंग। मैं मिलूंगी आपको बहुत जल्द

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने आज सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि गैर पारंपरिक खतरे अब राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल गए हैं। उन्होंने कहा कि नई तकनीक, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और साइबर खतरे तेजी से डिजिटल होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बैठक में मुख्य रूप से गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस दौरान 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 पद्म अलंकरण दिए जाएंगे। सुविख्यात टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी, पार्श्व गायिका अलका याग्निक और क्रिकेट खिलाड़ी रोहित शर्मा पद्म पुरस्कार पाने वालों में शामिल हैं। आकाशवाणी अपने विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। इस श्रृंखला के माध्यम से श्रोताओं को पद्म पुरस्कार विजेताओं के जीवन और उनके योगदान की जानकारी मिल रही है। ये कार्यक्रम आज 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर प्रसारित होगा। इन्हें न्यूज़ ऑन AIR ऐप और न्यूज़ ऑन AIR के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक रहा है। नई दिल्ली में कल एक सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में विश्व नेताओं ने राष्ट्रीय हितों की प्राथमिकता देने की भारत की प्रतिबद्धता को समझा है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष की नागरिकों की प्रतिबद्धता से उपलब्धियां हासिल हुई हैं।
1: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही है उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते से भारतीय किसानों, मछुआरों, कारीगरों और छोटे व्यापारियों को वैश्विक स्तर पर कारोबार करने में मदद मिलेगी। इससे रोजगार सृजन भी बढ़ेगा। एक अंग्रेजी दैनिक के लिए लिखे गए आलेख में वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा कि इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होने वाला ये समझौता ब्रिटेन में भारतीय सामानों की पहुंच बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि इससे लगभग 99% शुल्क तुरंत समाप्त हो जाएंगे और भारत से निर्यात बढ़ेगा। अल्पसंख्यक कार्य और मत्स्य पशुपालन तथा डेयरी राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने केंद्रीय मंत्री परिषद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तत्काल प्रभाव से उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। प्रवर्तन निदेशालय कथित शिक्षक भर्ती परीक्षा में धोखाधड़ी मामले में चेन्नई, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर और मदुरई में 18 परिसरों पर तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय ने बताया कि ये कार्रवाई केंद्रीय अपराध शाखा द्वारा वर्ष 2017 में दर्ज की गई प्राथमिकी पर आधारित है। पुलिस ने इस मामले में 2021 में आरोप पत्र दाखिल किया था। लखनऊ आग की घटना में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। अलीगंज के एक एनिमेशन कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे में 15 विद्यार्थियों की मौत हो गई और 9 घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मामूली गिरावट दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 254 अंक गिरकर 76,840 पर, जबकि निफ्टी 90 अंक की गिरावट के साथ 24,013 पर कारोबार कर रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
3: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 rupees एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं सेहत से ही लाभ कहीं और मैं हूं आपका दोस्त आरजे आनंद और आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6। तो श्रोताओं, आज का एपिसोड बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की और ये अभियान 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलाया जाएगा जिसमें महिला स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण और आयुष्मान कार्ड बनवाने की सुविधा मिलेगी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा कहते हैं कि सेवा ही संकल्प है, भारत प्रथम प्रेरणा। इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री जी 17 सितंबर सन 2025 को स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत करने वाले हैं। आज हमारे साथ हैं टीकन भाभी, उनसे हम जानेंगे कि ये अभियान क्यों जरूरी है और इसका सीधा फायदा हमें कैसे मिलेगा। टीकन भाभी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे शो सेहत से ही लाभ कई में। प्रधानमंत्री जी 17 सितंबर सन 2025 को स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो भाभी ये अभियान क्यों आरंभ किया जा रहा है?
1: देखिए, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का उद्देश्य प्रधानमंत्री जी के स्वास्थ्य, पोषण, तंदुरुस्ती और 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाना है। ये अभियान बीमारियों की जांच और इलाज को मजबूत करेगा, साथ ही महिलाओं और बच्चों की देखभाल पर भी ध्यान दे। इसके अलावा ये अभियान मोटापे की रोकथाम, अच्छा पोषण, स्वैच्छिक रक्तदान पर भी जोर देगा और समुदाय को स्वस्थ आदत अपनाने के लिए प्रेरित करेगा।
0: भाभी, इस अभियान के दौरान देश भर में बहुत सारे स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे, ये बताइए कि इन शिविर में महिलाओं और बच्चों को कौन कौन सी सुविधा मिलेगी?
1: देखिए, इन शिविर में महिलाओं और बच्चों दोनों की सेहत पर खास ध्यान दिया जाएगा, जैसे महिलाओं का ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और कैंसर जैसी बीमारियों की जांच होगी। इसके अलावा खून की कमी यानी अनीमिया की जांच भी की जाएगी। शिविर में उनका हीमोग्लोबिन टेस्ट होगा और जरूरत पड़ने पर दवाइयां और आयरन की गोलियां दी जाएंगी। शिविर में टीबी और सिकल सेल जैसी बीमारियों की भी जांच होगी और ये बीमारी धीरे धीरे असर दिखाती है। शुरुआत में तो पता नहीं चलता लेकिन धीरे धीरे शरीर को इतना कमजोर कर देती है कि रोजमर्रा के काम करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए समय समय पर जांच करवाना बहुत जरूरी है ताकि बीमारियां बढ़ने से पहले ही इलाज शुरू हो जाए।
0: शिविर में गर्भवती महिलाओं के लिए भी कोई खास व्यवस्था रहेगी क्या?
1: हाँ बिल्कुल, यहाँ वजन, ब्लड प्रेशर, खून की जांच और बच्चों की सेहत की जानकारी विस्तार से दी जाएगी, साथ ही सही खान पान और जरूरी दवाइयों के बारे में भी बताया जाएगा। इस अभियान के तहत बच्चों के लिए टीकाकरण की सुविधा भी रहेगी। छोटे छोटे बच्चों को पोलियो, खसरा, टीबी जैसी खतरनाक बीमारियों से बचाने का सबसे आसान और असरदार तरीका टीकाकरण है। अगर समय पर टीका लगवा दिया जाएगा तो बच्चे जिंदगी भर इन बीमारियों से सुरक्षित रहेंगे। स्वस्थ नारी सशक्त नारी परिवार अभियान का असली मकसद यही है कि घर घर सेहत पहुंचे, हर महिला सुरक्षित रहे और बच्चा तंदुरुस्त हो। जब नारी और बच्चा स्वस्थ रहेगा तभी परिवार खुशहाल होगा और समाज व देश और मजबूत बनेगा।
0: भाभी, ये तो एक बड़ा अभियान है, पोषण माह का हिस्सा है। वैसे तो हम हर एक एपिसोड में अपने श्रोताओं को पोषण माह के बारे में भी बताते रहते हैं, तो क्यों ना इस एपिसोड में भी उन्हें एक बार याद दिला दिया जाए और इसका महत्व समझाया जाए।
1: पोषण माह पर खास जोर मोटापा कम करने पर है। आजकल बच्चे हों या बड़े, मीठा और तली भुनी चीजें ज्यादा खाने लगे हैं। चीनी और तेल का ज्यादा इस्तेमाल शरीर को बीमार कर देता है, मोटापा बढ़ता है और कई दिक्कतें खड़ी कर देता है। इसलिए इस पोषण माह में लोगों को समझाया जाएगा कि मीठा और तेल कम खाएं, सब्जी, दाल, हरी सब्जियां, हरी पत्तीदार चीजें और फल ज्यादा खाएं, तभी शरीर फिट रहेगा और बीमारी पास भी नहीं आएगी।
0: भाभी, पोषण माह का एक और मकसद मैंने सुना है, बचपन की देखभाल और शिक्षा, यानी पोषण भी पढ़ाई भी, इसका मतलब क्या है?
1: देखिए, छोटे बच्चे की उम्र सबसे नाजुक होती है। जन्म से लेकर 6-7 साल तक का समय उनकी सेहत के लिए सबसे अहम होता है। अगर उस समय बच्चों को अच्छा खाना और सही देखभाल मिले तो उसका शरीर भी मजबूत होगा और दिमाग भी तेज चलेगा। पोषण का मतलब है कि बच्चों को समय पर दूध, फल, सब्जियां, दाल और अनाज जैसे पौष्टिक खाना मिले, सिर्फ पेट

0: सेहत और शिक्षा दोनों का सहारा मिले, ताकि वे न सिर्फ तंदुरुस्त रहें बल्कि होशियार और समझदार भी बने। यही बच्चों के अच्छे भविष्य की असली नींव है।
1: भाभी, इस बार पोषण माह में यानी शिशु और छोटे बच्चों के आहार मेथड पर भी जोर दिया जा रहा है, ये क्यों जरूरी है?
0: छोटे बच्चों का खाना पीना ही उनकी सेहत की नींव रखता है। जन्म से लेकर 2 साल तक का समय बच्चों की जिंदगी का सबसे अहम समय होता है। अगर इस दौरान सही आहार मिलेगा तो बच्चा मजबूत बनेगा और बीमारियों से भी दूर रहेगा।
1: तो भाभी, सही आहार मेथड की शुरुआत कैसे होती है?
0: सबसे पहले तो जन्म के 1 घंटे के भीतर बच्चों को माँ का दूध पिलाना चाहिए। इस पीले गाढ़े दूध को कोलोस्टॉम कहते हैं। ये बच्चे की पहली वैक्सीन है।
1: फिर 6 महीने तक क्या करना चाहिए?
0: 6 महीने तक बच्चों को सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध देना चाहिए। ना पानी, ना शहद, ना दाल का पानी। माँ के दूध में पानी, पोषण और सुरक्षा सब कुछ होता है।
1: और 6 महीने के बाद क्या करना चाहिए?
0: 6 महीने के बाद धीरे धीरे बच्चों को ऊपर का खाना देना शुरू करना चाहिए, जैसे दाल चावल, मैश करके खिचड़ी, दलिया, सब्जी, फल या अंडा। साथ ही माँ का दूध भी जारी रहना चाहिए। हर महीने बच्चे का खाना थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहना है, ताकि उसका शरीर मजबूत बने और दिमाग भी तेज चले।
1: यानी भाभी, IYCF का मतलब यही है कि बच्चों को सही समय पर सही आहार मिले।
0: बिल्कुल, यही तो पोषण माह का असली संदेश है। अगर शुरुआत अच्छी होगी तो बच्चा न सिर्फ तंदुरुस्त होगा बल्कि पढ़ाई लिखाई और जिंदगी में भी हमेशा आगे रहेगा।
1: भाभी, इस बार राष्ट्रीय पोषण माह में पुरुष की भागीदारी पर जोर दिया जा रहा है, आखिर क्यों?
0: देखिए, बच्चों की परवरिश और पोषण सिर्फ माँ की जिम्मेदारी नहीं है। अगर पिता भी साथ दें तो माँ का बोझ आधा हो जाता है और बच्चों को 2 गुना सहारा मिलता है।
1: पुरुष इसमें कैसे मदद कर सकते हैं?
0: बहुत आसान है। बच्चों के टीकाकरण और आंगनवाड़ी के कार्यक्रमों में पिता भी जाएं, घर पर पौष्टिक खाना लाने में ध्यान दें और बच्चों को समय दें। रोज बच्चों के साथ खेलें, उनसे बातें करें। इससे बच्चा भी खुश रहता है और माँ को भी सहारा मिलता है।
1: भाभी, इस बार राष्ट्रीय पोषण माह में स्थानीय पौष्टिक खाद्य संसाधनों पर भी जोर दिया जा रहा है।
0: हमारे आसपास बहुत सारे पौष्टिक खाने की चीजें मिलती हैं, लेकिन हम अक्सर उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं और बाजार के महंगे पैकेट वाले सामान पर ज्यादा भरोसा करने लगते हैं। असली मकसद है कि लोगों को अपने गांव में मिलने वाले सस्ते और पौष्टिक अनाज, फल, दाल और हरी सब्जियों का इस्तेमाल बढ़ाएं।
1: कौन कौन से खाद्य पदार्थ पर ध्यान देने की जरूरत है?
0: हमारे यहाँ मिलने वाले मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का ताकत और पोषण से भरपूर हैं। इस तरह मौसमी फल जैसे अमरूद, पपीता, केला, नींबू और हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी, सरसों हमारे आसपास आसानी से मिल जाती है और बहुत फायदेमंद भी है।
1: इससे परिवार को क्या फायदा होगा?
0: फायदा सीधा है। स्थानीय पौष्टिक खाद्य संसाधनों से बच्चों को अच्छा पोषण मिलेगा, बुजुर्गों को ताकत मिलेगी, महिलाओं को खून की कमी जैसी बीमारियों से राहत मिलेगी, ऊपर से गांव की खेती और किसान को भी बढ़ावा मिलेगा।
1: भाभी, इस बार राष्ट्रीय पोषण माह में एकत्र क्रिया और डिजिटलकरण पर भी जोर है, इसका क्या मतलब है?
0: जब शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, महिला समूह और पंचायत सब मिलकर काम करेंगे तभी असली बदलाव आएगा। यही है एकत्र क्रिया, मतलब सब विभाग मिलकर एक ही दिशा में बच्चों और महिलाओं की सेहत सुधारने के लिए काम करें।
1: और डिजिटलकरण क्या होता है?
0: आजकल सरकार सेहत के क्षेत्र में मोबाइल ऐप और डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रही है। इससे तुरंत पता चल जाता है कि कौन सी महिलाएं और बच्चे कुपोषित हैं और उन्हें क्या सुविधा देनी चाहिए। इससे काम तेज और पारदर्शी हो जाता है।
1: भाभी, इस बार पोषण माह में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की भी चर्चा की है, ये योजना क्या है?
0: प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए है। इसमें महिलाओं को गर्भ अवस्था और स्तनपान के समय पोषण व आराम के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है, ताकि माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ रहें।
1: भाभी, इस योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं को क्या करना चाहिए?
0: इसके लिए सरकार ने विशेष पंजीकरण मुहिम चलाई है। महिलाएं अपने नजदीकी आयुष्मान, आरोग्य मंदिर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या आंगनवाड़ी केंद्र में जाकर पंजीकरण करा सकती हैं। वहीं पर पूरी जानकारी और मदद भी मिल जाएगी।
1: दोस्तों, आज के सेहत से ही लाभ कई कार्यक्रम में हमने जाना, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के जरिए महिलाएं, किशोरियों और बच्चे समय पर स्वास्थ्य सेवाएं, पोषण, टीकाकरण और देखभाल पाएं। साथ ही 8वें राष्ट्रीय पोषण माह में मोटापा

0: की रोकथाम, सही पोषण, जीवन शैली सुधार और स्वैच्छिक रक्तदान जैसी चीजों पर भी ध्यान दिया जाएगा। इसका मकसद है कि हम के बीच स्वस्थ आदतें बढ़ें और पूरा समाज फिट रहे। तो चलिए हम अपनी शपथ लेते हैं,
1: हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे
0: और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है,
1: और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
0: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
1: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
0: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें।
1: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
0: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। तो सेहत से ही लाभ कई प्रोग्राम में दोस्तों आज हम बात कर रहे थे एक विशेष खास मुद्दे पर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये हमारा प्रोग्राम जरूर पसंद आया होगा। तो दोस्तों अब हमें इजाजत दीजिए, मिलते हैं सेहत से ही लाभ कहीं के अगले एपिसोड में नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, धन्यवाद, और सुनते रहें FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। नमस्कार।

0: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर। चार योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीज एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
1: हाय दयन एनर्जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
2: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
3: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
2: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट, मुरादाबाद।
4: और जब ऊपर से बादल नहीं होते, बारिश नहीं,
5: सुबह के 10 बज रहे हैं और लग रहा है,
4: महसूस कर रहे हैं ना, वो सिर्फ आपकी परेशानी नहीं है, पूरे देश में लोग यही महसूस कर रहे हैं।
5: बिल्कुल टीकन भाभी, आपकी बातें सुनकर लग रहा है कि ये सिर्फ गर्मी बढ़ गई वाली बात नहीं है, इसके पीछे कुछ गड़बड़ चल रहा है और कुछ बड़ा चल रहा है। लेकिन एक बात अभी भी समझ में नहीं आ रही है, क्या ये सिर्फ मौसम का उतार चढ़ाव है या फिर हम इंसानों को भी इसमें कोई भूमिका निभानी है। सच बताऊं तो अभी गर्मी डराने लगी है, पहले जैसी नहीं हो रही है।
4: अरे आरजी आनंद, आपने बहुत सही सवाल पूछा है। असल में इसके पीछे कई परतें हैं। सबसे पहले तो प्रकृति का अपना एक सिस्टम होता है। जब उत्तर पश्चिमी भारत, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक हाई प्रेशर एरिया बन जाता है, तो वह हवा को ऊपर उठने नहीं देता बल्कि नीचे की तरफ दबा देता है। अब तो ये है कि जो गर्म हवा है जो जमीन के पास ही फंस जाती है, बाहर निकल ही नहीं पाती। और जब ऊपर से बादल नहीं होते, बारिश नहीं होती, तो सूरज की किरणें सीधे जमीन को तपाती रहती हैं, जमीन सूख जाती है और उनमें नमी नहीं रहती, और फिर वो गर्मी को और तेज से पकड़ती है जैसे तवा गर्म होता जाता है।
5: इसका मतलब ये है कि हम जो महसूस कर रहे हैं वो सिर्फ धूप नहीं है, बल्कि ऊपर आसमान से लेकर नीचे जमीन तक सब कुछ मिलकर ये गर्मी बना रहा है।
4: बिल्कुल सही समझे आप, ये एक पूरा सिस्टम है। हवा, जमीन, सूरज और बारिश सब मिलकर काम करते हैं, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। इसमें एक और बहुत बड़ा कारण जुड़ जाता है, जलवायु परिवर्तन। अब जो हम देख रहे हैं, जैसे गर्मी का जल्दी आना, लंबे समय तक टिके रहना और पहले से कई ज्यादा तेज होना, ये सब उसी का असर है। पहले लू मई जून में चलती थी, लेकिन अब तो मार्च से ही उसके तेवर दिखने लगते हैं।
5: मतलब ये सिर्फ आज की परेशानी नहीं है, ये आने वाले समय की एक चेतावनी है और शायद हालात और भी कठिन हो सकते हैं।
4: हाँ जय आनंद, यही सच्चाई है। और सबसे ज्यादा असर उन लोगों पर पड़ता है जो सबसे कम सुरक्षित है, जैसे खेत में काम करने वाले किसान, दिहाड़ी मजदूर, रिक्शा चलाने वाले जो पूरे दिन धूप में रहते हैं, साथ ही बच्चे, बुजुर्ग और जो पहले से किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, उनके लिए ये गर्मी और भी खतरनाक होती है।
5: तो भाभी अब ये बताइए कि लू क्या होती है? लोग अक्सर कहते हैं लू लग गई, लेकिन असल में शरीर के अंदर क्या होता है?
4: देखिए, लू कोई साधारण गर्मी नहीं है, ये एक ऐसी स्थिति होती है जब शरीर का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ये शरीर खुद को ठंडा नहीं कर पाता। आमतौर पर आप हमारा शरीर पसीने के जरिए खुद को ठंडा करता है, लेकिन जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है और शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो पसीना आना भी बंद हो सकता है और उस समय शरीर का कूलिंग सिस्टम फेल हो जाता है और यहीं से लू लगने की शुरुआत होती है। इसके लक्षणों में तेज सिर दर्द, चक्कर आना, उल्टी होना, त्वचा का सूख जाना, तेज बुखार और कभी कभी बेहोशी भी शामिल है।
5: मतलब ये तो बहुत ही गंभीर बात है, क्या ये जानलेवा भी हो सकता है टीकन भाभी?
4: हाँ बिल्कुल, अगर समय पर ध्यान ना दिया जाए तो यही हीट लू स्ट्रोक में बदल सकती हैं, जो एक मेडिकल इमरजेंसी होती हैं। इसमें शरीर का तापमान 40 डिग्री से ऊपर चला जाता है और उसका असर सीधे दिमाग पर पड़ सकता है। कई बार इसमें व्यक्ति बेहोश हो जाता है, बोलने में दिक्कत होने लगती है या शरीर के कुछ हिस्से काम करना बंद कर सकते हैं। इसीलिए लू को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये सिर्फ गर्मी लगना नहीं है बल्कि शरीर के लिए एक गंभीर खतरा है।
5: तो फिर भाभी, इससे बचने का तरीका क्या है? क्योंकि अब तो ऐसा लग रहा है कि ये खतरा सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं बल्कि हम सब के लिए, घर में हो या बाहर, हर कोई इससे प्रभावित हो सकता है।
4: देखिए आरजे आनंद, घबराने से ज्यादा जरूरी है समझदारी से काम लेना। सबसे पहला और सबसे जरूरी उपाय है पानी। हमें बार बार पानी पीना चाहिए, भले ही प्यास लगे या ना लगे। कई बार हम इंतजार करते हैं कि प्यास लगे तब पानी पिएंगे, लेकिन तब तक शरीर में पानी की कमी शुरू हो चुकी होती है। इसीलिए बेहतर है कि थोड़ा थोड़ा करके हम कुछ देर में पानी पीते रहे। इसके साथ ही छाछ, नींबू पानी, नारियल पानी, लस्सी, ये सब शरीर को ठंडक रखने में बहुत मदद करते हैं और कमजोरी भी नहीं आने देते।
5: चिकन भाभी, आपने पानी, छाछ, नींबू पानी की बात तो बताई, लेकिन कई बार हम सुनते हैं कि ORS भी बहुत जरूरी होता है। अब ये ORS क्या होता है और ये कब लेना चाहिए टीकन भाभी?
4: बहुत अच्छा सवाल है आरजे आनंद। ORS यानी ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ये एक ऐसा घोल होता है जो शरीर में पानी की कमी के साथ साथ नमक और जरूरी मिनरल्स की कमी को पूरा करता है। जब हम बहुत ज्यादा पसीना बहाते हैं तो सिर्फ पानी ही नहीं, शरीर से नमक और इलेक्ट्रोलाइट्स भी निकल जाते हैं। ऐसे में सिर्फ पानी पीना काफी नहीं होता, ORS बहुत मदद करता है।
5: मतलब ये सिर्फ बीमारी में नहीं बल्कि गर्मी में भी काम आता है?
4: बिल्कुल, अगर कोई व्यक्ति धूप में काम कर रहा है, बार बार पसीना आ रहा है, कमजोरी हो रही है या चक्कर जैसा महसूस हो रहा है तो ORS बहुत फायदेमंद होता है। इसे छोटे छोटे घूंट में पीना चाहिए। और अगर घर में ORS का पैकेट ना हो तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, घर पर भी घोल बनाया जा सकता है। 1 लीटर साफ पानी में 1 चम्मच चीनी और 1 चुटकी नमक मिलाकर ये भी शरीर को संभालने में मदद करता है।
5: वाह, मतलब ये तो बहुत ही आसान है और हर घर में इसे कोई भी बना सकता है। सच में छोटी छोटी जानकारियाँ कितनी बड़ी मदद कर सकती हैं।
4: बिल्कुल आरजे आनंद, गर्मी में पानी के साथ ORS दोनों हैं जरूरी डोज। अगर शरीर को समय पर ये मिल जाए तो बड़ी परेशानी से बचा जा सकता है।
5: हाँ, ये तो सही बात बोली टीकन भाभी आपने। अक्सर हम काम में लगे रहते हैं और पानी पीना भूल जाते हैं, लेकिन क्या बाहर जाने से भी बचना चाहिए?
4: बिल्कुल, खासकर दिन के सबसे गर्म समय में सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक बाहर निकलने से जितना हो सके बचना चाहिए। अगर बहुत जरूरी हो तभी बाहर जाए, और जब भी निकले तो शरीर को ढककर निकले, चाहे गमछा हो, टोपी हो या छाता। हल्के रंग के ढीले और सूती कपड़े पहने ताकि शरीर को हवा मिलती रहे और गर्मी कम लगे।
5: क्या बात है टीकन भाभी, और खाने पीने में क्या बदलाव करना चाहिए? क्या गर्मी में खाना भी कभी कभी भारी लगने लगता है?
4: बिल्कुल सही कहा आपने, गर्मी में हमें अपने खाने पर भी ध्यान देना चाहिए। भारी, तला भुना और ज्यादा मसालेदार खाना शरीर में और गर्मी पैदा करता है, इसीलिए इसे कम करना चाहिए। इसके बजाय हल्का और आसानी से पचने वाला खाना खाएं। साथ ही ऐसे फल और सब्जियां ज्यादा लें जिनमें पानी की मात्रा अधिक होती है, जैसे तरबूज, खरबूजा, खीरा, संतरा। ये ना सिर्फ शरीर को ठंडा रखते हैं बल्कि पानी की कमी भी नहीं होने देते।
5: भाभी, ये तो हम अपने जैसे लोगों की बात कर रहे हैं, लेकिन जो लोग दिन भर बाहर काम करते हैं, जैसे मजदूर, किसान, रिक्शा चलाने वाले, उनके लिए भी तो और भी मुश्किल होगा उनका ये।
4: आपने बहुत जरूरी बात उठाई है। ऐसे लोगों के लिए सबसे अहम है कि वे अपने काम का समय थोड़ा बदले। कोशिश करे कि सुबह जल्दी काम शुरू करे और दोपहर की तेज धूप में आराम करे। बीच बीच में पानी पीते रहे और जहाँ भी हवा मिले वहाँ थोड़ी देर रुककर शरीर को ठंडा करे, लेकिन सिर्फ उनकी जिम्मेदारी नहीं है, समाज की भी जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों के लिए पानी और छांव की व्यवस्था हो। अगर हम अपने आसपास किसी को धूप में परेशान देखते हैं, तो कम से कम पानी देने की कोशिश तो कर ही सकते हैं।
5: मतलब हमें सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि अपने आसपास के लोगों की भी चिंता करनी चाहिए, क्योंकि ये समस्या सबकी है।
4: बिल्कुल, खासकर बच्चे, बुजुर्ग और गर्भवती महिलाएं, ये लोग ज्यादा संवेदनशील होते हैं। इनका विषय ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जल्दी लू की चपेट में आ सकते हैं।
5: बिल्कुल टीकन भाभी, अगर सच में किसी को लू लग जाए टीकन भाभी, तो उसे उस समय क्या करना चाहिए? क्योंकि कई बार लोग घबरा जाते हैं और समझ ही नहीं पाते कि ऐसे में वो क्या करें।
4: ऐसी स्थिति में सबसे पहले उस व्यक्ति को तुरंत धूप से हटाकर छांव या ठंडी जगह पर ले जाना चाहिए। उसके शरीर पर ठंडा पानी डाले या गीला कपड़ा रखे, ताकि शरीर का तापमान कम हो सके। अगर पंखा या हवा का इंतजाम हो सके तो और अच्छा है। और सबसे जरूरी बात, जितनी जल्दी हो सके उसे डॉक्टर या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाना चाहिए, क्योंकि देरी खतरनाक हो सकती है।
5: भाभी एक बात और बताइए, ये गर्मी तो हमें बहुत परेशान कर रही है, लेकिन क्या जानवर भी इससे उतने ही प्रभावित होते हैं?
4: अरे आरजे आनंद, जानवर भी उतने ही परेशान होते हैं, बल्कि कई बार उनमें उनसे भी ज्यादा, क्योंकि वे अपनी परेशानी बता नहीं पाते। जैसे गाय, भैंस, बकरी, कुत्ते और यहाँ तक कि पक्षी भी इस गर्मी से प्रभावित होते हैं। उन्हें भी ठंडी जगह, छांव या साफ पानी की जरूरत होती है। अगर उन्हें ये सब ना मिले तो उन्हें भी हीट स्ट्रोक या डिहाइड्रेशन हो सकता है। इसीलिए गर्मियों में हमें उनके लिए भी पानी और छांव का इंतजाम करना चाहिए, ये भी हमारी जिम्मेदारी है।
5: तो भाभी इसका मतलब ये है कि हम सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि उन बेजुबान जानवरों की भी चिंता करनी चाहिए, जो बोल तो नहीं सकते लेकिन इस गर्मी को उतना ही झेलते हैं जितना हम।
4: बिल्कुल आरजे आनंद, और कई बार तो उनसे भी ज्यादा, क्योंकि उनके पास अपने बचाव के साधन नहीं होते। अगर हम अपने घर के बाहर या आंगन में एक बर्तन में पानी भरकर रख दे, तो वे किसी प्यासे पक्षी या जानवर के लिए जीवनदान बन सकता है। ये छोटा सा काम है, लेकिन इसका अर्थ बहुत बड़ा होता है, और यही असली इंसानियत है।
5: साथियों, आज की इस बातचीत ने हमें एक बहुत ही जरूरी बात सिखाई है। गर्मी अब सिर्फ एक मौसम नहीं रहा, ये एक चुनौती बन चुकी है। लेकिन अच्छी बात ये है कि अगर हम थोड़ा सतर्क रहें, थोड़ी समझदारी दिखाएं, तो इससे बचना बिल्कुल संभव है। हम बस अपनी रोजमर्रा की आदतों में छोटे छोटे बदलाव करके, जैसे समय पर पानी पीना, तेज धूप से बचना, हल्के और सूती कपड़े पहनना और अपने शरीर को आराम देना, और सबसे जरूरी अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखना, चाहे वो कोई बुजुर्ग हो, कोई बच्चा हो, या कोई मजदूर हो, या फिर कोई बेजुबान जानवर, क्योंकि मुश्किल समय में एक दूसरे का सहारा बनना ही हमारी असली ताकत है श्रोताओं। तो याद रखिए, पानी पिए बार बार, लू से रहे हम सब तैयार, और एक बात, धूप से बचाव है जरूरी, तभी रहेगी सेहत पूरी। क्या बात है श्रोताओं, भाभी आपकी बातें सुनकर एक बात समझ आ रही है कि अगर हम लापरवाही करेंगे तो ये गर्मी बहुत खतरनाक हो सकती है हम सभी के लिए। क्या आपने भाभी कभी कोई ऐसा मामला देखा है जहां लापरवाही भारी पड़ गई हो?
4: हाँ आरजे आनंद, और ये बात मैं बहुत भारी दिल से बता रही हूँ। हमारे ही पास के एक गांव के पिछले साल एक छोटा बच्चा था, सिर्फ 5 साल का। उसके माता पिता दोनों खेत में काम करते थे। एक दिन बहुत तेज गर्मी थी, लेकिन बच्चे को भी साथ ले गए। तेज धूप थी और बच्चे को बार बार प्यास लग रही थी, लेकिन उन्होंने सोचा कि थोड़ी देर में पिला देंगे। धीरे धीरे बच्चा चुप हो गया, खेलना बंद कर दिया, और फिर उसे चक्कर आने लगे। जब तक वे समझ पाते तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अस्पताल ले जाने तक बच्चा बेहोश हो चुका था, और डॉक्टर ने बताया उसे गंभीर डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक हुआ था।
5: ये तो बेहद ही दुखद है भाभी।
4: हाँ अजय आनंद, और सबसे दुख की बात ये है कि ये रोका जा सकता था। अगर समय पर पानी पिला दिया जाता अगर उसे धूप से बचाया जाता। यही वजह है कि हम बार बार कहते हैं गर्मी को हल्के में मत लीजिए, खासकर बच्चों के साथ तो बिल्कुल नहीं।
5: सही कहा टीकन भाभी। साथियों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक सीख है। एक छोटी सी लापरवाही एक मासूम की जान ले सकती है, इसीलिए आज से ही तय कर लीजिए अपने बच्चों को, अपने बुजुर्गों को और खुद को इस गर्मी से बचाना है।
4: और अंत में बस इतना कहना चाहूंगी, लू को कभी भी हल्के में मत लीजिए। ये सिर्फ गर्म हवा नहीं है, ये शरीर पर सीधा हमला है। अगर हम समय रहते सावधान हो जाए तो खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। जागरूक रहना ही सबसे बड़ा बचाव है।
5: इसी के साथ हम अपना आज का प्रोग्राम यही खत्म करते हैं श्रोताओं, लेकिन जाने से पहले हम सब मिलकर लेते हैं एक प्यारी सी शपथ।
4: हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
5: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
4: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
5: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
4: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
5: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे।
4: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
5: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा।
4: सेहत सही तो लाभ कई।
5: मैं हूँ आपका दोस्त आरजे आनंद, अब लेता हूँ आपसे अलविदा। फिर मिलूंगा इसी शो में, यानी सेहत सही लाभ कई के एक और नए विषय और एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना खूब सारा ध्यान रखिए, और हाँ दोस्तों, पानी पीते रहिए, और से रहिए आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। और श्रोताओं, आप सभी का दिल से धन्यवाद। और हाँ, याद रखिए, पानी पीते रहना ही आपकी एक सही जिम्मेदारी है। छांव में रहिए, हमेशा स्वस्थ रहिए, यूं ही मुस्कुराते रहिए। अच्छा चलिए श्रोताओं, अब मैं लेता हूँ आपसे जाने की इजाज़त। बाय बाय, नमस्कार।
6: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
7: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
8: कॉल 8826213131।
9: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेवर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो, मैं हूं सुजाता स्मार्ट एनजीओ से। और मैं हूं इस समय परिवार कल्याण विभाग में, मेरे साथ हैं डॉक्टर अजय कुमार गुप्ता, एडिशनल डायरेक्टर आरसीएच यूपी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर।
1: धन्यवाद सुजाता जी, और मैं स्मार्ट एनजीओ का भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और विशेष आभार व्यक्त करता हूं कि आज इस रेडियो पे जितने भी हमारे श्रोतागण हमको सुन रहे हैं, क्योंकि आज उनको हम लोग एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पे बात करने वाले हैं।
0: सर, सबसे पहले तो हमारे श्रोता ये जानना चाहते हैं कि टीकाकरण क्या होता है और ये बच्चों और उनके परिवारों के लिए इतना जरूरी क्यों माना जाता है।
1: देखिए, टीकाकरण बहुत ही जरूरी होता है और इसलिए भी जरूरी होता है कि माँ के पेट से जो हमारा जब बच्चा आता है तो उसके पास जो रोग से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता होती है वो धीरे धीरे वीन ऑफ होती है, यानी धीरे धीरे कम हो जाती है, क्योंकि माँ के पेट से जो मिलता है तो लगभग 3 से 6 महीने में धीरे धीरे वीन ऑफ हो जाती है। कुछ चीजें ऐसी भी जरूरत होती हैं जिसमें जन्म के समय ही हमको बच्चों को देने की जरूरत पड़ती है टीकाओं को, उस पर हम लोग बाद में विशेष रूप से चर्चा करेंगे। और जरूरी इसलिए भी है कि जब एक बार नए वातावरण में हमारा बच्चा आता है तो जब तक माँ के गर्भ में रहता है वो सुरक्षित रहता है माँ के अपने प्रतिरोधक क्षमता की वजह से, और जब वातावरण में आता है तो आप देखिए ढेर सारी बीमारियां चारों तरफ वातावरण में फैली हुई है, तो उन बीमारियों से लड़ने के लिए जरूरी है।
0: सर, अगर हम भारत की बात करें तो बच्चों के लिए जन्म से लेकर शुरुआती वर्षों तक कौन कौन से जरूरी टीके लगाए जाते हैं।
1: बहुत ही अच्छा सवाल है आपका, और मैं इस सवाल के जवाब में ऐसा कहूंगा कि जैसे ही बच्चा हमारा जन्म लेता है, चाहे किसी भी स्वास्थ्य केंद्र के ऊपर हो, जिला अस्पताल में हो, महिला हॉस्पिटल में हो, या फिर किसी भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हो, वहां जन्म के समय ही हमारी जो स्टाफ नर्सेज हैं या फिर हमारी एएनएम बहुएं हैं, उनको बच्चों को जन्म के समय बीसीजी का टीका लगाते हैं, ओरल पोलियो ड्रॉप पिलाते हैं और हेपेटाइटिस बी का टीका लगाते हैं। तत्पश्चात 6 सप्ताह, 10 सप्ताह और 14 सप्ताह पे पेंटावेलेंट की वैक्सीन लगाई जाती है, साथ में रोटा वायरस के लिए डायरिया से बचने के लिए हम लोग वैक्सीन पिलाते हैं, और उसके साथ साथ ओपीवी की वैक्सीन भी पिलाई जाती है। और इन बच्चों को हम फिर 10 सप्ताह पे 14 सप्ताह पे टीके लगाते हैं। 9 माह का पूरा होने पे हम बच्चों को मीजस और रूबेला से बचने के लिए एक टीका लगाते हैं, और साथ में आप जानते हैं पूरे पूर्वांचल में जैपनीज इंसेफ्लाइटिस की बीमारी काफी ज्यादा प्रचलित है, जो अब काफी कुछ कंट्रोल में आ गई है पिछले 6-7 सालों से, जो हम लोगों ने जेई का टीका लगाया जिसकी वजह से अब इनसे होने वाली मृत्यु दर बिल्कुल शून्य हो चुकी है, उनको भी लगाते हैं और साथ में विटामिन ए का हम लोग खुराक पिलाते हैं। इसके साथ साथ हम लोग फ्रैक्शनल आईपीबी लगाते हैं जो पोलियो से बचाव करता है। जब हमारा बच्चा 16 से 24 माह का हो जाता है तब हम लोग डीपीटी की प्रथम बूस्टर डोज देते हैं, और साथ में मीजल्स रूबेला का बूस्टर डोज और जेई की सेकेंड डोज दी जाती है। बच्चा हमारा जब 5 साल से 6 साल के बीच में आता है तो डीपीटी वैक्सीन की दूसरी खुराक दी जाती है, और बच्चे को जब हमारा 10 साल के किशोर और किशोरियां और 16 साल के होते हैं तो TD10 और TD16 की वैक्सीन लगाई जाती है। इसके अतिरिक्त गर्भवती माताओं को भी हम लोग टीडी का वैक्सीन लगाते हैं।
0: अच्छा, गर्भवती महिलाओं की अगर बात हो रही है तो उनके लिए ये टीका कितना जरूरी है, और गर्भावस्था के दौरान कौन कौन से टीके लगाए जाते हैं गर्भवती महिलाओं को।
1: देखिए, गर्भावस्था के दौरान तो जो टीके लगाए जाते हैं के अतिरिक्त मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि गर्भावस्था के दौरान माँ को खून की जो कमी होती है, कैल्शियम की कमी होती है, उसके लिए जो स्वास्थ्य विभाग मुफ्त में हम लोग आयरन फोलिक एसिड की गोलियां भी देते हैं गर्भवती माताओं के लिए, और साथ में कैल्शियम की गोलियां देती है। टीकों की बात करें तो टीडी टीका हम लोग लगाते हैं गर्भवती माताओं को, इससे माताओं को भी डिप्थीरिया जो आजकल ऊपर के उम्र में देखी जा रही है डिप्थीरिया से बचाव होता है, और साथ में टिटनेस से बचाव होता है। और जरूरी इसलिए भी है कि ये केवल गर्भवती माताओं को नहीं बचाता, बल्कि इससे जो हमारी एंटीबॉडीज माताओं के शरीर में डेवलप होती हैं, तो जब बच्चा हमारा पैदा होता है तो उस बच्चे के शरीर में भी ये रोग से बचाव की क्षमता आ जाती है।
0: अच्छा, क्या माँ को लगने वाले टीकों का असर बच्चे की सुरक्षा पर भी पड़ता है? इसे हमारे श्रोताओं को थोड़ा आसान तरीके में समझाइए सर।
1: देखिए, इस सवाल का जवाब हमने पिछले सवाल में भी आपको दिया, और आसान तरीके से समझने की जरूरत है कि माँ से बच्चे के अंदर देखिए सारा खून आता है, और उस खून जितना भी बच्चे के अंदर खून आता है उसके अंदर एंटीबॉडीज होती हैं, आरबीसीज होती हैं, डब्ल्यूबीसीज होती हैं, जो आपको रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है, प्लस बच्चे को ऑक्सीजन दिलाता है। तो माँ को जो भी टीका लगाएंगे आप, उस टीके में जो एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं, रोग से लड़ने की क्षमता डेवलप होती है, वो बच्चों में आती है। तो आई थिंक वो बच्चा हमारा कुछ दिनों तक सुरक्षित रहता है। उसके लिए फिर जरूरी है कि जो हमारा नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है वो UIP के तहत हम उन बच्चों को अलग अलग उम्र में, जो भी हमने शुरू में जिक्र किया, उन टीकों को लगाना जरूरी है।
0: सर, कई बार बच्चे का टीका किसी कारण से छूट जाता है, ऐसे में परिवार क्या करे, क्या बाद में भी छूटा हुआ टीका लगवाया जा सकता है?
1: बिल्कुल, बहुत जरूरी है। अगर आपसे शुरू में अगर टीका बच्चे को नहीं लगा पाते हैं तो हमको जरूरी है कि उस बच्चे को टीका जो भी उस उम्र के लिए ड्यू है उनको जरूर लगवा लेना चाहिए, ताकि बच्चों में रोग से लड़ने की क्षमता उत्पन्न हो सके। और हर एक टीके का अपना एक शेड्यूल होता है, उस शेड्यूल के अतिरिक्त हर टीके का अपना एक डोज होता है जिसमें हम किस उम्र तक उन टीकों को लगा सकते हैं, ये हमारे पास नेशनल गाइडलाइन है, उस तहत लगाते हैं।
0: जब भारत सरकार द्वारा टीकाकरण को लेकर कौन कौन सी पहल चल रही है और हमारे श्रोता किस तरह इसका लाभ उठा सकते हैं?
1: देखिए, भारत सरकार द्वारा टीकाकरण को लेके ऑलरेडी आप जानते हैं कि हम लोग जो टीका लगाते हैं और इस टीका को जो लगाते हैं उसके लिए जो इकाई है वो सब सेंटर है, यानी उपकेंद्र है, जहाँ पे एक एनम होती है। उसके अतिरिक्त कम से कम ये 5 से 6 हजार की आबादी पे एनम होती हैं और हर एक 1 हजार की आबादी पे हमारी आशाएं होती हैं जो मोबिलाइजेशन का काम करती हैं, और उसके अलावा आंगनबाड़ी हमारी वर्कर और आंगनबाड़ी सहायिकाएं होती हैं, वो भी 1 हजार की आबादी पर जो होती हैं जो मोबिलाइजेशन करने में सहयोग देती हैं। तो ये हम लोग जो इस तरह से उपकेंद्र वाइज एक माइक्रो प्लान बनाते हैं, उस माइक्रो प्लान को हम लोग ब्लॉक लेवल पे संकलित करते हैं और तत्पश्चात जिले लेवल का संकलन होता है, और इस तरह से

0: हमारी ये भारत सरकार के सहयोग से उत्तर प्रदेश सरकार इस तरह से टीकाकरण अभियान चलाती है। किंतु यहां मैं आपको बता दूं कि हम लोग उत्तर प्रदेश में एक और चीज चलाते हैं जो पूरे ऑल ओवर इंडिया कहीं नहीं है। शहरी क्षेत्रों में जो हमारे रोजमर्रा के काम करने वाले मजदूर हैं, चूंकि हम जानते हैं, और प्लस उसके अलावा जो मेड्स वगैरह काम करती हैं, इवन हमारे जो अपने एम्प्लॉयज हैं जो मंडे से लेकर सैटरडे तक आपके पास खाली नहीं रहते हैं, उनको हमने संडे की एक सुविधा दी है कि जितने भी हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शहरी क्षेत्रों में बने हुए प्लस जिला अस्पताल हैं, उनमें मंडे से लेकर संडे तक प्रत्येक दिन ये टीका लगाया जा सकता है जब भी हमारे अस्पताल खुले होते हैं। तो ये एक सुविधा हमने उत्तर प्रदेश में अलग से मुहैया कराई है।
1: बहुत अच्छी जानकारी दी सर आपने। आगे हमारे श्रोता ये जानना चाहते हैं कि कुछ परिवारों में टीकों को लेकर डर या गलत फहमियां होती हैं, जैसे बुखार आ गया, बच्चा रोने लगा या कमजोरी लग रही है। क्या इसके अलावा भी कोई भ्रांतियां हैं जो सामने आई हैं? ऐसे मामलों में लोगों को क्या समझना चाहिए?
0: देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। और अब मैं देख रहा हूँ कि जो उत्तर प्रदेश का अपना डाटा कहता है, काफी लोग इस भ्रांतियों से ग्रसित हैं और ज्यादातर ऐसे लोग हैं जिनको कोई समझाने का प्रयास नहीं किया गया या थोड़े से कम पढ़े लिखे हैं, इन लोगों में ये भ्रांतियां हैं। डेफिनेटली देखिए, अगर हम बच्चे को सुई लगा रहे हैं तो सुई का असर तो होगा, सुई लगेगा तो थोड़ा बहुत उस स्थान पे दर्द होगा, लालिमा आएगी, सूजन आएगा, हल्का फुल्का बुखार भी आ सकता है। तो इन चीजों से हमें डरना नहीं चाहिए, यही चीज हमें समझाने की जरूरत है। और सुई लगने के पश्चात जो हमारे शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक लड़ने की क्षमता उत्पन्न होती है, उसमें शरीर के अंदर कुछ रिएक्शंस होते हैं, उनका भी कभी कभी असर देखने को मिलता है। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। घर वालों की भ्रांतियां तो कई तरीके से हैं, लोग अलग अलग चीजों से मतलब हो जाते, जैसे कभी पोलियो ड्रॉप पिलाया जाता था तो लोग कहते थे कि साहब नपुंसकता हो जाएगी, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। आज पोलियो ड्रॉप, हमने पोलियो से मुक्ति पा ली है। 1994-95 पहली बार हम लोगों ने एक नेशनल लेवल पे वाइड स्तर पे हम लोगों ने ये प्रोग्राम चलाया था, सारे बच्चों को, आज उन बच्चों के यहां भी परिवार बने हुए हैं। तो इसलिए ये भ्रांतियों से हमें दूर रहना चाहिए। अगर कहीं कोई भ्रांतियां हैं तो आपके समुदाय में प्रत्येक 1000 की आबादी पे हमारी आशा बहुएं हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती हैं और सहायिकाएं हैं, उनसे आप लोग जरूर राय मशवरा कीजिए, और नहीं तो हर जगह टोल फ्री नंबर दिए होते हैं, उनमें आप सवाल जवाब कर सकते हैं।
1: सर, आजकल HPV जैसे टीकों की भी चर्चा हो रही है, क्या आप हमारे श्रोताओं को बता सकते हैं कि किशोरियों के लिए ऐसे टीकों का क्या महत्व है? क्या HPV टीकाकरण की आवश्यकता किशोरों में भी है?
0: HPV टीका इसलिए भी चर्चा हो रही है कि जो महिलाओं में गर्भाशय का कैंसर होता है वो वन ऑफ द लीडिंग कॉज है महिलाओं में मृत्यु का। दूसरे नंबर पे ये कैंसर है जिसमें इतनी ज्यादा मृत्यु होती है, और इस मृत्यु का जो कैंसर उत्पन्न होने का सबसे बड़ा कारण है वो HPV का इन्फेक्शन है। और इस इन्फेक्शन की ज्यादातर चीजें आपको पता नहीं चलती हैं कि कब ये इन्फेक्शन आपको हो गया, क्या इसके सिम्टम्स है, ज्यादातर ये साइलेंट रहता है, और 10 से 15 सालों के बाद धीरे धीरे इसका प्रकोप देखने को मिलता है। अब आप ये देखिए कि अगर हम किशोरियों को सही टाइम पे इस टीके को लगा देते हैं तो इस इन्फेक्शन से बचाव होता है, अल्टीमेटली हम इस कैंसर से हम इस बच्चियों को बचा सकते हैं। आपका सवाल बहुत अच्छा है कि क्या हम किशोर को भी दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। किशोरों में भी इस तरह की बीमारियां होती हैं जिनमें HPV वैक्सीन का बचाव होता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमको ये चीजें लिमिट करनी पड़ेंगी जो हमारे पास उपलब्ध संसाधन है। और आने वाले दिनों में हो सकता है भारत सरकार इस पे सोचेगी तो हम किशोरों को भी ये टीका दे पाएंगे। अभी हमारा प्राइम लक्ष्य जो हमारे पास जो गाइडलाइन है, नेशनल गाइडलाइन, ये कहती है जो भी हमारी बच्चियां हैं 14 वर्ष कंप्लीट कर चुकी हैं और 15 से छोटी हैं, उनको हम एक डोज का टीका लगा रहे हैं, और ये उनको लाइफ लाइन इम्यूनिटी देगा। और ये पूरे भारत वर्ष में ये टीके को लॉन्च 28 फरवरी को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कर दिया है।
1: सर, दूर दराज या कमजोर पहुंच वाले इलाकों में बच्चों और गर्भवती महिलाओं तक टीकाकरण पहुंचाना कितना चुनौतीपूर्ण होता है और विभाग इसे कैसे संभालता है?
0: देखिए, अब ये बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण नहीं रह गया, हमारे पास मैपिंग है। हर जनपद में ब्लॉक लेवल पे, सब सेंटर लेवल पे हम चिन्हित हैं कि कोई अगर स्लम एरिया है वो चिन्हित है, जितने ईंट भट्टे हैं वो चिन्हित है, कोई नया कंस्ट्रक्शन साइट हो रहा वो चिन्हित है, और लगभग हर 3 से 6 महीने पे हम अपने इस माइक्रो प्लान को रिवाइज करते हैं। इन जगहों पे जहां दूर दराज के क्षेत्र हैं, इनका हमने माइक्रो प्लान बना रखा है, और इनमें नियत दिवसों में हमारी ANM बहन जी जाती हैं और जाके वो टीका लगाती हैं। कुछ ऐसे दूर दराज इलाके हैं उनके लिए हम लोगों ने मोबाइल टीम की व्यवस्था कर रखी है, और ये मोबाइल टीमें जाती हैं पर्टिकुलर डेज पे, और ऑलरेडी इसकी सूचना हम पहले से उन जगहों पे रहने वाले निवासियों को दे चुके होते हैं, और इसलिए इस टीकों को हम लोग बहुत अच्छी तरीके से इसको सम्मिलित किए हुए हैं। अब कोई चुनौती नहीं रह गया ये हमारे लिए।
1: क्या सिर्फ बच्चों का टीकाकरण काफी है या परिवार के बाकी सदस्यों जैसे किशोरियों गर्भवती महिलाओं का भी समय पर टीकाकरण जरूरी है?
0: देखिए, इसके बारे में अभी हम लोगों ने शुरू में मैंने चर्चा करके बताया, आपने देखा कि जो नेशनल हमारा शेड्यूल है उसके अंदर जन्म से लेके 16 वर्ष तक के बच्चों को टीका लगाया जा रहा है, जिसमें आपने फिर से एक बार दोहरा दूं मैं अब दर्शकों के लिए, जन्म के समय टीका लगाते हैं, फिर 6 सप्ताह 10 सप्ताह 14 सप्ताह पे टीका लगता है, फिर 9 महीने से लेके 12 महीने तक के बच्चों को टीका लगता है, ये एक ड्यूरेशन होता है, इस बीच में कभी भी आप टीका लगा सकते हैं। 16 से 24 माह के बीच में हम टीका लगाते हैं, 5 से 6 वर्ष के बीच में लगाते हैं, 10 वर्ष के और 16 वर्ष के किशोर किशोरियों को टीका लगाते हैं और गर्भवती माताओं को टीका लगाते हैं, तो ये बहुत ही जरूरी है।
1: आखिर में उन माता पिता और परिवारों के लिए आपका सबसे जरूरी संदेश क्या होगा जो किसी की कारण से अभी भी टीकाकरण को लेकर असमंजस में है?
0: देखिए, अब अपनी बात को समाप्त करने से पहले मैं एक बार फिर से स्मार्ट एनजीओ का धन्यवाद देना चाहूंगा और मेरा आखिरी संदेश यह है कि बिना किसी संशय के आप टीकों पे विश्वास कर सकते हैं। अगर आपके अंदर कोई भी संशय है तो आप अपने क्षेत्र में कार्य करने वाली आशा बहुएं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती एनम बहन जी, आंगनवाड़ी सहायिकाओं या उपलब्ध आपके जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, वहां पे मेडिकल अफसर से आप बात करिए और अपने संशय को दूर करिए। बच्चों के लिए टीका बहुत जरूरी है क्योंकि ये टीका बच्चों में होने वाली मृत्यु को आधी से ज्यादा कम कर देता है। धन्यवाद,
1: बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका।
2: ये

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। क्योंकि कृषि मंत्रियों, सचिवों, जिला कलेक्टरों और अधिकारियों ने भाग लिया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री चौहान ने कहा कि अलनीनो की संभावित स्थितियों को देखते हुए सरकार किसानों के हितों की रक्षा करने और कृषि तथा खेती पर पड़ने वाले किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। अयोध्या में राम मंदिर में प्राप्त दान के गबन के आरोपों की जांच कर रहे विशेष जांच दल SIT ने उत्तर प्रदेश सरकार को अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट लखनऊ संभागीय आयुक्त विजय विश्वास पंत ने अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद को सौंपी। अधिकारियों ने बताया कि जांच अभी जारी है। अयोध्या राम मंदिर में प्राप्त दान के दुरुपयोग के आरोपों के सामने आने के बाद मंदिर ट्रस्ट के अनुरोध पर उत्तर प्रदेश सरकार ने इस महीने की 13 तारीख को SIT का गठन किया था। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में चेन्नई, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर और मदुरई में 18 परिसरों में तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय ने बताया कि कार्रवाई केंद्रीय अपराध शाखा द्वारा वर्ष 2017 में दर्ज की गई प्राथमिकी पर आधारित है। पुलिस ने इस मामले में 2021 में आरोप पत्र दाखिल किया था। अमरीका ने

0: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्रेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय, न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548539705।
1: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
2: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई

0: हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़। कुछ स्वाद सिर्फ जुबान पर नहीं ठहरते, वो यादों में बस जाते हैं, जैसे दादी के हाथ की गजक, मेले की गर्मा गर्म नान खटाई और मेरठ की वो रबड़ी जो सर्दियों में हर दिल को मीठा कर देती है।
1: और अब यही स्वाद सिर्फ मेरठ की गलियों तक सीमित नहीं रहेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार की एक जनपद एक व्यंजन योजना के तहत मेरठ की रेवड़ी, गजक और नान खटाई अब दुनिया के नक्शे पर अपनी अलग पहचान बनाने जा रही है। सुनो।

0: स्वागत है दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे आपके रेडियो का बेहतरीन प्रोग्राम। जी हाँ, तो बेहद ही खास शो है ये, जिसका नाम है विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश। और मैं हूँ आपका दोस्त आरजी आनंद, और मेरे साथ है
1: आरजे रीना।
0: तो आप सभी को हम दोनों की ओर से नमस्कार।
1: आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे सफर पर जहाँ तिल की खुशबू, गुड़ की मिठास और नान खटाई नरमी और मेरठ की आत्मा है।
0: कभी सर्दियों की सुबह मेरठ में बिताई है आपने?
1: बिल्कुल, सुबह सुबह धुंध, हाथ में कुल्हड़ वाली चाय और सड़क किनारे ताजी रेवड़ी,
0: वो और वो गर्मा गर्म गजक जैसे ठंड की ऑफिशियल मिठाई है।
1: आपको पता है दोस्तों, मेरठ की रेवड़ी और गजक सिर्फ मिठाई नहीं, एक विरासत है। यहाँ पीढ़ियों से परिवार इस काम में जुड़े हुए हैं। कई दुकानें ऐसी हैं जहाँ दादा से लेकर पोते तक यही कारोबार संभाल रहे हैं।
0: और एक खास बात, मेरठ की रेवड़ी और गजक को GI टैग भी मिल चुका है।
1: GI यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, मतलब यह उत्पाद अपने क्षेत्र की विशेष पहचान रखता है। जैसे दार्जिलिंग की चाय, वैसे ही मेरठ की गजक।
0: यानी कोई भी गजक बना ले, लेकिन मेरठ वाली बात हर किसी में नहीं होती आरजे रीना।
1: अब बात उस स्वाद की, जो नो चंदी मेले की जान है, नान खटाई।
0: उफ, घी से भरी हुई, ऊपर पिस्ता और मुंह में जाते ही घुल जाने वाली।
1: लेकिन क्या आपको पता है नान खटाई की कहानी काफी दिलचस्प है?
0: जी हाँ दोस्तों, कहा जाता है नान खटाई शब्द फारसी भाषा से आया है। नान मतलब ब्रेड और खटाई यानी बिस्किट जैसी बेक्ड चीज।
1: और भारत में इसे देसी स्वाद मिला। इलायची, देसी घी, बेसन, सूजी और फिर पैदा हुई वो नान खटाई, जिसके बिना मेला अधूरा लगता है।
0: मेरठ का नौचंदी मेला सिर्फ एक मेला नहीं है, भावना है।
1: और इस मेले की सबसे बड़ी पहचान नान खटाई और हलवा पराठा।
0: मैं तो मेलों में झूले से ज्यादा नान खटाई के स्टॉल ढूंढता था,
1: और मैं तो पैकेट घर लेकर आती थी।
0: मेरठ के पुराने बाजारों में आज ऐसी दुकानें मिल जाती है जहां कई पीढ़ियों से यही मिठाइयां बनाई जा रही हैं। इन मिठाइयों की खुशबू लोगों को दूर दूर से अपनी ओर खींच ले आती है।
1: नान खटाई एक तरह का पारंपरिक भारतीय बिस्किट है। यह बाहर से हल्की कुरकुरी और अंदर से नरम होती है। इसे मैदा, सूजी, घी, चीनी और इलायची से बनाया जाता है।
0: कहा जाता है नान खटाई शब्द फारसी भाषा से आया है। नान मतलब रोटी और खटाई यानी बिस्किट।
1: मेरठ की नान खटाई खास इसलिए मानी जाती है क्योंकि इसमें देसी घी का भरपूर इस्तेमाल होता है। पुराने समय में इसे मिट्टी के तंदूर में पकाया जाता था, जिससे इसका स्वाद और खुशबू दोनों अलग होते थे।
0: सबसे पहले घी और चीनी को अच्छी तरह फेटा जाता है, फिर उसमें मैदा, सूजी और इलायची मिलाई जाती है। छोटे छोटे गोल आकार देकर इन्हें धीमी आंच पर बेक किया जाता है।
1: जब यह पकती है तो इसकी खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल जाती है।
0: मेरठ में नान खटाई सिर्फ खाने की चीज नहीं है, बल्कि मेहमान नवाजी का भी हिस्सा है। घर में आए मेहमान और चाय के साथ नान खटाई परोसी ना जाए, ऐसे कैसे हो सकता है?
1: अब तो बात करते हैं रेवड़ी की। दोस्तों, सर्दियों का मौसम और रेवड़ी, यह रिश्ता बहुत पुराना है। रेवड़ी तिल और गुड़िया चीनी से बनाई जाती है। यह छोटी छोटी गोल मिठाई होती है जो खाने में कुरकुरी और स्वाद में बेहद शानदार लगती है।
0: मेरठ की रेवड़ी में तिल की गुणवत्ता और गुड़ का संतुलन बहुत ही अच्छा माना जाता है। यहाँ की पारंपरिक दुकानों में आज भी हाथ से रेवड़ी बनाई जाती है।
1: सबसे पहले गुड़ या चीनी को गर्म करके गाढ़ी चाशनी बनाई जाती है, फिर उसमें भुने हुए तिल मिलाए जाते हैं। इसके बाद छोटी छोटी गोलियों का आकार दिया जाए।
0: यह काम बहुत तेजी और कुशलता से करना पड़ता है क्योंकि मिश्रण जल्दी सख्त हो जाता है।
1: तिल में कैल्शियम और आयरन भरपूर मात्रा में होता है। स्वाद में यह शरीर को गर्म रखता है और ऊर्जा देता है।
0: इसलिए पुराने लोग कहते थे, सर्दी में तिल खाया करो, शरीर को ताकत दिया करो।
1: अब बारी है मेरठ की मशहूर गजक की। गजक उत्तर भारत की एक पारंपरिक मिठाई है, जिसे खास तौर पर ठंड के मौसम में खाया जाता है। यह तिल, गुड़ और घी से बनाई जाती है।
0: बहुत लोग रेवड़ी और गजक को एक जैसा समझ लेते हैं, लेकिन दोनों अलग हैं। रेवड़ी छोटी और सख्त होती है, जबकि गजक परतदार और हल्की कुरकुरी होती है।
1: यह सिर्फ मिठाई नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति, परंपरा और पुराने स्वादों की पहचान है। इसमें छिपा है अपनापन, मेहनत और भारतीय खान पान की खूबसूरत विरासत।
0: अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि मेरठ की मिठाइयों की चर्चा अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है?
1: तो दोस्तों, इसकी वजह है कि उत्तर प्रदेश प्रदेश सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन यानी एक जनपद एक व्यंजन योजना।
0: और इसमें सिर्फ बड़े उद्योगपति नहीं बल्कि छोटे हलवाई, घरेलू महिलाएं, स्टार्टअप्स और युवा उद्यमी भी शामिल हो सकते हैं। मतलब अब शर्मा जी की गजक सीधे दुबई और लंदन भी जा सकती है।
1: और यही तो लोकल टू ग्लोबल का असली सपना है।
2: भैया नमस्कार।
3: नमस्कार
2: भैया, ये जो एक योजना है सरकार की, एक ODOC योजना, इस योजना के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे बींगा व्यापारी?
3: ये बहुत अच्छी योजना है सरकार की तरफ से, क्योंकि इसमें क्या है कि जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वन टेस्ट ये चीज है, एक जनपद एक स्वाद, हमारा मेरठ स्वाद नगरी है और उसी नगरी का एक पेश है नानखटाई। नानखटाई एक ऐसा व्यंजन है जिसमें ना कोई केमिकल है ना कुछ है, इसमें सिर्फ बेसन है, बूरा है और बाकी प्यार है मेरठ का भरा हुआ। तो इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो इससे क्योंकि हम जैसे छोटे व्यापारियों को आगे प्रोत्साहन मिल रहा है और युवा होने के नाते हमें आगे के और स्टार्टअप के और मौके मिल रहे हैं, क्योंकि जब गवर्नमेंट हमें सारी चीज़ें सहायता देती है, चीज़ करती है, मदद देती है, तो उसमें हम भी एजेंसी और जाते हैं कि अगर मान लो हमें कुछ करना है तो हमें पता है कि गवर्नमेंट से हमें मदद मिल जाएगी और गवर्नमेंट के साथ साथ हमें जैसे पैकेजिंग के लिए आइडिया मिल रहे हैं और बहुत चीज़ें, तो वो हमें डे बाई डे नई नई गाइडलाइंस मिलती रहती हैं उससे।
2: और साथ ही अब जैसे भारत में तो नानखटाई मशहूर है ही, अब वैश्विक स्तर पर पहचान बनने वाली है इस योजना के माध्यम से।
3: जी बिल्कुल, वैश्विक स्तर पर बिल्कुल बनेगी, क्योंकि अब जो हम यहाँ पर

0: आपने इस स्कीम को चालू करा और इससे आपने युवाओं को प्रोत्साहन दिया, छोटे व्यापारियों को प्रोत्साहन दिया, बहुत धन्यवाद।
1: दोस्तों, जब कोई विदेशी पहली बार मेरठ की रेवड़ी खाएगा, उसे सिर्फ तिल और गुड़ का स्वाद नहीं मिलेगा, बल्कि उसे मिलेगा भारत का दिल।
2: उसे महसूस होगा कि यहाँ की गलियाँ, यहाँ के मेले, यहाँ की ठंड और यहाँ के लोग।
1: क्योंकि खाना सिर्फ पेट नहीं भरता, वो आपको संस्कृति से भी जोड़ता है
2: और शायद इसीलिए हर शहर का स्वाद उसकी पहचान बन जाता है।
1: तो दोस्तों, अगली बार जब आप रेवड़ी खाए तो याद रखिए, ये सिर्फ मिठाई नहीं, मेरठ की विरासत है।
2: और कोने में जाने वाला कल यही स्वाद न्यूयॉर्क, पेरिस और टोक्यो की दुकानों में भी बिक रहा हो।
1: लोकल स्वाद, ग्लोबल अंदाज।
2: तो दोस्तों, आप सुन रहे थे आपका अपना फेवरेट कार्यक्रम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश। ये है आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 MHz पे, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। श्रोताओं, अब लेते हैं हम आपसे जाने की इजाज़त, फिर मिलेंगे एक और नई कड़ी में कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन
1: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद
2: कॉल 8826213131
3: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी हाई शुगर पी या हार्ट प्रॉब्लम किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज बांझपन का आधुनिक इलाज पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा अत्याधुनिक लेबर रूम OT SICU MICU हमारी पहचान है एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा
4: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट विजिट चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद कॉल नाउ 9412211111
5: विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी रेडियो की जुबानी मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना FM मुरादाबाद 89.6 MHz पर मैं आरजे राज आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। साथियों यूं तो हम हर रोज अपने जीवन से जुड़े कई सारे महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करते हैं पर हमारी आज की बातचीत थोड़ी ज्यादा खास है हम सभी के जीवन में कभी न कभी किसी किताब की तरह कुछ पन्ने पलटते हैं और फिर शुरू होती है एक नई कहानी हमारे वो सभी सपने सच हो जाते हैं जिनके बारे में हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती है ऐसे ही एक युवक के सपनों की दास्तान मैं लेकर आया हूँ आपके लिए आज के कार्यक्रम में तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ जानने के लिए कि कैसे उत्तर प्रदेश और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा संचालित CM युवा उद्यमी विकास योजना ने वाराणसी के चोबेपुर के सतीश के सभी सपनों को साकार कर दिया
6: फिल्मों में हम अक्सर देखते हैं कि कैसे हीरो रातों रात अमीर हो जाता है और उसका देखा हर एक सपना हकीकत बन जाता है पर वास्तविक दुनिया में ऐसी बातें महज एक कल्पना है
5: वाराणसी के एक डिग्री कॉलेज से इंजीनियरिंग में स्नातक करने के बाद सतीश के सारे दोस्तों का लक्ष्य दिल्ली बम्बई में ऊँचे औहदे की नौकरी पाना था पर हमारे सतीश की अभिलाषा कुछ और ही थी
6: मैं अपने घर का इकलौता बेटा हूँ और मेरे लिए अपने माता पिता और गांव को छोड़कर जाना तर्कसंगत फैसला नहीं होता बाबूजी ने मेरे लिए हमेशा अपनी हैसियत से ज्यादा किया था और अब मेरी बारी थी कि मैं अपने अभिभावकों के बुढ़ापे की लाठी बनूं।
5: सतीश का मन लगातार अपने और परिवार के भविष्य को लेकर बोझिल रहता था
6: मेरी रातों की नींद बस इन्हीं ख्यालों को सोच सोच कर उड़ सी गई थी आखिर ऐसा क्यों होता है कि सपनों को पूरा करने के लिए अपनों का साथ छोड़ना पड़े या उनसे कहीं बहुत दूर जाना पड़े
5: दोस्तों सतीश जैसी दुविधा हमारे देश के हजारों युवाओं के मन में होती है जो करना तो बहुत कुछ चाहते हैं पर संसाधनों की कमी के चलते उनके सपने बस उनकी कल्पना में ही रह जाते हैं
6: महीनों बीत गए थे अपने शहर में इंटरव्यू देते देते मेहनत के हिसाब से कहीं पर भी पैकेज नहीं जमा फिर एक दिन सुबह अखबार खोला तो उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना के बारे में पता चला
5: और दोस्तों यही है सतीश की कहानी का वो पन्ना जिसने पूरी दास्तान बदल कर रख दी इससे पहले कि सतीश आपको आगे की कहानी बताए मैं आपको बताता हूँ कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना आखिर है क्या मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना उत्तर प्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है जिसका उद्देश्य युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है इस योजना के तहत सरकार युवाओं को 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करती है जिससे वे अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं
6: जैसे ही मैंने इसका इश्तेहार को देखा तो फटाफट से मोबाइल पर इसके बारे में मैंने सर्च किया और मुझे पता चला कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए उसकी आयु 21 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए अप्लाई करने के लिए कम से कम 8वीं पास होना जरूरी है और आवेदनकर्ता को किसी सरकारी ट्रेनिंग योजना से प्रशिक्षण लिया होना चाहिए या मान्यता प्राप्त संस्था से स्किल सर्टिफिकेट डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए
5: श्रोताओं इस योजना की औपचारिक शुरुआत 24 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा की गई थी इसका उद्देश्य युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है
6: मैंने जब अपने फ्रेंड सर्कल में देखा तो मेरे जैसे दो बैचमेट्स रवि और निर्भय थे, जो मेरे ही जैसे समस्या से जूझ रहे थे। मैंने उन्हें भी इस योजना के बारे में बताया और हम सभी ने साथ में ही हमारी दुविधा का हल निकालने की ठान ली थी। सबसे पहले हम इस योजना से संबंधित बैंक गए और वहाँ के कर्मचारियों ने हमें लोन मिलने की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया।
5: साथियों, हमारे देश के सर्वाधिक युवाओं वाले प्रदेश उत्तर प्रदेश के युवाओं की असीमित क्षमता को गति देने और माननीय मुख्यमंत्री जी के विजन को साकार करने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अति महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान CM युवा की मिशन रोड से शुरुआत की गई। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित इस अभियान का मुख्य उद्देश्य कौशल प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को उत्पाद सेवा संबंधित उद्यम स्थापित कराकर स्वरोजगार से जोड़ना, प्रतिवर्ष 100,000 युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना तथा 10 वर्षों में कुल 10 लाख स्वरोजगार के अवसर सृजित करना है।
6: जितनी जानकारी मैंने प्राप्त की थी उसके हिसाब से मुझे योजना को लेकर काफी कॉन्फिडेंट फील हो रहा था, पर मेरे साथियों के मन में थोड़ा डाउट था, कहीं हमारी दस्तावेजों का गलत इस्तेमाल तो नहीं हो जाएगा। पर डॉक्यूमेंट को लेकर सभी का ये संकोच जल्दी ही क्लियर भी हो गया। जब हमने हमारी उम्र के एक नौजवान को बैंक में मिठाई बांटते देखा, उससे बात हुई तो पता चला कि वो भी युवा उद्यमी विकास योजना के जरिए अपना बिजनेस चला रहा है और जोरों शोरों से व्यवसाय चलाने के बाद उन्होंने अपनी बहन की शादी भी तय कर दी है। फिर क्या, हमने हमारे भी सपनों को अपनी आँखों के सामने सच होते हमें भी दिख रहे थे।
5: अब सतीश और उसके दोस्तों की गाड़ी तो चल पड़ी, पर आप सभी के लिए योजना के चरणों के बारे में जानना भी बेहद जरूरी है। साथियों, इस योजना के पहले चरण में 5,00,000 तक की परियोजना हेतु 4 वर्षों तक 100% ब्याज तथा गारंटी मुक्त ऋण मिलता है और दूसरे चरण के लिए पहले चरण में लिए गए मूलधन पैनल इंटरेस्ट की पूर्ण वापसी करने वाला अभ्यर्थी पात्र होता है। साथियों, सतीश की इस कहानी में आगे क्या होता है ये जानने के लिए हम सुनते हैं संबंधित विभाग के अधिकारी का ये मुख्य संदेश।
2: कुमार उपायुक्त उद्योग मुरादाबाद, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य सूक्ष्म लघु उद्योगों को गति प्रदान करने के लिए युवाओं को रोजगार प्रदान करने का उद्देश्य है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष 10,00,000 युवा उद्यमी बनाए जाने हैं। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना की जो प्रमुख एलिजिबिलिटी है वो है कि कोई भी युवा कौशल प्रशिक्षण प्राप्त हो और न्यूनतम 8वीं पास हो और 21 से 40 साल का अगर वो युवा आयु है उसकी, तो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के अंतर्गत लाभ ले सकता है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के अंतर्गत 5,00,000 रुपए तक का कोलेट्रल फ्री इंटरेस्ट फ्री लोन उसको मिलता है, जिस पर युवा को कोई भी ब्याज अगले 4 वर्ष तक नहीं देनी है। ऊपर से उसको 10% उसको सब्सिडी उसको मिलेगी। अब तक जनपद मुरादाबाद में इस वित्तीय वर्ष में 25 से 26 में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के अंतर्गत 2230 युवाओं का ऋण स्वीकृत हो चुका है, जिसमें कि 2000 युवाओं को ऋण प्राप्त भी हो चुका है। तो इस योजना के अंतर्गत कोई भी युवा अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस एक्टिविटी अपना कार्य शुरू करना चाहता है तो हमारी इस योजना के अंतर्गत बैंक के माध्यम से 5,00,000 रुपए तक का कोलेटरल फ्री इंटरेस्ट फ्री बिना किसी गारंटी के बिना किसी ब्याज के ये ऋण प्राप्त करके अपना व्यवसाय अपना उद्योग स्थापित कर सकता है, जिस पे उसको 10% जो ऋण है उसका प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसका 10% उसको सब्सिडी के रूप में भी मिलेगा। महिलाओं के लिए और SC/ST के लिए जो परियोजना लागत का जो ओन कंट्रीब्यूशन होता है स्वयं का अंशदान होता है वो सिर्फ 10% उनको लगाना होगा, सामान्य वर्ग के लिए 15% उसको लगाना होगा। तो इस तरीके से मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के अंतर्गत जनपद मुरादाबाद के लोगों से युवाओं से मैं अपील करना चाहता हूँ कि रोजगार सीकर न बन के जॉब गिवर के बारे में सोचें और अपना स्वयं का व्यवसाय उद्योग इस योजना के अंतर्गत लाभ लेकर अपना उद्योग स्थापित करें।
5: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी रेडियो की जुबानी नई

0: जब मैंने कॉलेज में दाखिला लिया था तो मन में सिर्फ नौकरी करना यही विचार आता था। मेरा खुद का बिजनेस होगा और मैं अपने साथ दूसरों को भी नौकरी देने में सक्षम बन पाऊंगा, ऐसा मैंने और मेरे परिवार वालों ने कभी नहीं सोचा था।
1: साथियों, इस योजना के तमाम फायदे हैं पर कुछ लाजमी शर्तें भी हैं, जैसे डिजिटल लेन देन के सापेक्ष रूप 1 प्रति ट्रांजेक्शन तथा अधिकतम 2,000 रूपए प्रति वर्ष के अतिरिक्त अनुदान प्रति लाभार्थी दे होता है। योजना के अंतर्गत सभी राष्ट्रीयकृत बैंक, अनुसूचित बैंक, ग्रामीण बैंक तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिकृत सभी वित्तीय संस्थान ऋण वितरण हेतु पात्र है। तंबाकू उत्पादक जैसे गुटखा, पान मसाला, अल्कोहल युक्त पेय पदार्थ, कार्बोनेट पेय पदार्थ, पटाखे, प्लास्टिक कैरी बैग 40 माइक्रोन से कम तथा भारत राज्य सरकार द्वारा समय समय पर प्रतिबंधित श्रेणी में रखे उत्पाद योजना में लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र नहीं होते हैं। योजना का क्रियान्वयन मिशन मोड में होता है। जिला स्तर पर जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्र केंद्रीय एजेंसी के रूप में कार्य करता है। अधिक जानकारी के लिए आप cmyuva.org.in विजिट कर सकते हैं।
0: जब हम सभी ने मिलकर ये निर्णय लिया कि हम एक कंप्यूटर और डिवाइस सर्विस सेंटर खोलना है, तो बिना देरी के हम अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र पहुंचे और वहां जाकर हमें पता चला कि आवेदन की संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन है। अप्लाई करने के लिए MSME पोर्टल को लिंक पर ऑनलाइन आवेदन किया कि पोर्टल पर लिंक आवेदन किया जाता है। जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्र में ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों का परीक्षण किया जाता है। परीक्षण के उपरांत आवेदनों को बैंक में भेजा जाता है, जहां समयबद्ध रूप से ऋण स्वीकृति एवं वितरण की व्यवस्था की जाती है। साथ ही बैंकों द्वारा ऑनलाइन माध्यम से मार्जिन मनी, ब्याज उत्पादन तथा CGTMSE प्रतिपूर्ति प्राप्त किए जाने की व्यवस्था भी होती है। आज मेरी इस उपलब्धि का पूरा श्रेय माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को जाता है, जिन्हें महज वादे ही नहीं किए बल्कि धरातल पर कोशिशों को साकार भी किया। आज ये उन्हीं की देन है कि मैं और मेरे साथी काम करने वाले पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने और अपने परिवारों का भरण पोषण कर रहे हैं। सचमुच लीडर हो तो ऐसा, योगी जी इसी दूरदर्शी सोच के लिए उन्हें मेरा सैल्यूट है।
1: दोस्तों, वाराणसी के चौबेपुर निवासी सतीश और उनके बिजनेस पार्टनर्स रवि, निर्भय और उन सभी के परिवार वालों को आज महत्वपूर्ण चीजों पर खर्च करने के लिए सोचना नहीं पड़ता। आज वो आर्थिक रूप से मजबूत भी हैं और अपने शहर में रहकर अपने सपनों को पूरा करने में सक्षम भी हैं।
0: मेरे लिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंसी ही असली फ्रीडम है और हम सभी युवाओं के लिए यही बदलते उत्तर प्रदेश की तस्वीर भी है। ये नया यूपी है जहां अब युवा रोजगार के लिए भटकेगा नहीं बल्कि अपने रास्ते खुद तय करेगा। उत्तर प्रदेश सरकार और युवाओं के हित में सोचने वाले माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को ढेर सारा धन्यवाद। और साथ ही रेडियो के माध्यम से मैं अन्य लोगों को भी ये बोलना चाहूँगा कि खूब सपने देखिए, क्योंकि आपके सपने और लक्ष्य को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश आपके साथ है।
1: साथियों, बदलते और प्रगति की ओर बढ़ते उत्तर प्रदेश की और भी कहानियाँ हम लेकर आएंगे आपके पसंदीदा प्रोग्राम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश में। साथ ही अगर आप चाहें तो अपनी कहानियाँ हमारे माध्यम से जनता तक पहुँचा सकते हैं। सुनते रहिए और बने रहिए हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ FM मुरादाबाद 89.6 MHz। मैं हूँ आपका दोस्त आरजराज, जल्दी ही मिलूंगा ऐसी और बहुत ही खूबसूरत कहानियों के साथ।
2: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम सोच बदलो और आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6। दिस इज फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन मुरादाबाद शहर का। और दोस्तों आज सोच बदलो का टॉपिक बहुत ही कमाल का है और इस सोच बदलो के टॉपिक में मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ और भी हमारे साथी हैं जो हमारा साथ देंगे इस कार्यक्रम में। दोस्तों आज का टॉपिक है शायद हर घर की सच्चाई जो बन चुका है, वो एक ऐसा टॉपिक जिसपे आज के समय में बात करना बहुत जरूरी है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट घर में सब लोग एक साथ बैठे होते हैं लेकिन फिर भी हम किसी की बात नहीं सुनते, किसी से बात नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमारे हाथ में होता है मोबाइल। यस, आज पूरा का पूरा मुद्दा होने वाला है मोबाइल फोन और ये बहुत जरूरी डिस्कशन बन चुका है। तो मैंने सोचा सोच बदलो प्रोग्राम में इस पर बात करने के लिए मैं अकेला क्यों, तो आज हमारे साथ हैं आरजे रीना, आरजे कुमकुम और एक हमारी खास मेहमान शैली जी। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हाल चाल है आप लोगों के?
1: थैंक यू आनंद। सच कहूं तो आजकल कई घरों में लोग एक दूसरे के पास बैठते जरूर है लेकिन कनेक्ट मोबाइल से रहते हैं, परिवार से नहीं।
2: बिल्कुल सही कहा। पहले लोग खाना खाते समय एक दूसरे से बात करते थे लेकिन आजकल तो सब मोबाइल में ही देखते हुए बैठे रहते
3: हैं। रीना जी और कुमकुम जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और सबसे दुख की बात यह है कि बच्चों से लेकर बड़े तक सब धीरे धीरे मोबाइल के इतने आदि हो गए कि घर की हंसी और बातचीत कम हो जा रही है।
0: क्या बात है, थैंक यू सो मच गाइज। बिल्कुल, तो दोस्तों आज का प्रोग्राम बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, दिल थाम के बैठिए और सुनते रहिए आपका पसंदीदा कार्यक्रम सोच बदलो। रुकते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद लौट कर आएंगे। आप सुनते रहिए आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6।

0: श्रोताओं वेलकम बैक एक बार फिर से। दोस्तों जरा सोचिए, एक परिवार हॉल में बैठा है, पापा मोबाइल में रील्स देख रहे हैं और मम्मी व्हाट्सएप चला रही है, बच्चे गेम्स खेल रहे हैं, लेकिन कोई किसी से बात नहीं कर रहा है। क्या यही परिवार है?
1: पहले लोग दिन भर बातें शेयर करते थे, आज क्या हुआ, कैसा दिन रहा।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन अब रिप्लाई सिर्फ इतना होता है, ठीक है, क्योंकि ध्यान मोबाइल में होता है।
0: बिल्कुल सही कहा
2: रीना। बिल्कुल सही रीना जी। और यही धीरे धीरे रिश्तों में दूरियां बढ़ा देता है और घर के लोग साथ रहकर भी अकेले महसूस करने लगते हैं।
3: बिल्कुल सही कहा आपने कुमकुम जी। मोबाइल गलत नहीं है, लेकिन जरूरत से ज्यादा मोबाइल इस्तेमाल रिश्तों को कमजोर कर देता है, बस ये है।
0: सही कहा शैली जी आपने, टेक्नोलॉजी जरूरी है लेकिन फैमिली टाइम उससे भी ज्यादा जरूरी है, मुझे ऐसा लगता है। और मैं सच बताऊं श्रोताओं, ऐसा मेरे साथ या शैली जी के या रीना कुमकुम के साथ नहीं, हर घर की कहानी हो गया है शैली जी। और मुझे लगता है कि सच बताऊं तो मोबाइल के हम इतने आदी हो गए हैं कि आजकल हम वॉशरूम में भी मोबाइल लेके जाते हैं। शैली जी आप इस पे क्या कहना चाहेंगी?
3: और कई बार पेरेंट्स खुद मोबाइल में इतने डूबे और बिजी होते हैं कि बच्चों को कैसे वो सिखाएंगे कि उन्हें क्या करना है, जब वो खुद ही इतना बिजी है।
0: बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और रीना तुम्हें क्या लगता है?
1: बिल्कुल सही कहा तुमने, तो मैं यही कहना चाहूंगी, अगर हम सच में अपने रिश्तों को मजबूत बनाना चाहते हैं तो हमें कुछ छोटी छोटी आदतें बदलनी होगी, जैसे खाना खाते समय मोबाइल दूर रखना, फैमिली टाइम फिक्स करना, बच्चों से खुलकर बातें करना, सुबह और रात कुछ समय बिना फोन के बिताना।
2: बिल्कुल सही कहा, क्योंकि याद रखिए दोस्तों, बच्चों को सबसे ज्यादा जरूरी एक्सपेंसिव मोबाइल फोन की नहीं है, बल्कि हमारे परिवार के समय और प्यार की होती है।
3: बिल्कुल सही कहा। और जब परिवार में बातचीत बढ़ती है तभी प्यार बढ़ता है, समझ बढ़ती है और सच में सोच बदलती है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। और मुझे लगता है मोबाइल की दुनिया में रिश्ते में जैसे मानो कहीं खो से जा रहे हैं, पास बैठकर भी लोग दूर हो गए हैं। मतलब एक टाइम था जब लोग एक दूसरे से बात करना पसंद करते थे, एक समय था जब लोगों को एक दूसरे की चिट्ठियों का इंतजार होता था, वहीं आज एक सेकंड के अंदर व्हाट्सएप पे हम लोग मैसेज करते हैं और थोड़ी देर के बाद वो ऐसा लगता है जैसे हमारे पास सब कुछ आ गया है। लेकिन उसका जो मजा था ना वो एक अलग ही था। अगर मैं शैली जी सबसे हटके बात करूं आप लोगों से गाइज, तो अभी जो ये व्हाट्सएप का ट्रेंड चल गया और उससे पहले जो चिट्ठियों का ट्रेंड था, उसमें क्या था शैली जी, कितना मजा आता था उसमें?
3: उसमें बहुत मजा आता था, उसमें हम वेट करते थे।
0: करेक्ट। और हम भेजने के लिए भी हमें बहुत प्रोसेसिंग फॉलो करनी पड़ती थी।
3: अब तो क्या है कि मतलब एक बेचैनी रहती थी, वो हमने आज मम्मी को लेटर भेजा है या पापा हमारे बाहर है उन्हें लेटर भेजा है, तो रिप्लाई क्या आएगा, कब रिप्लाई आएगा, और जो वो रिप्लाई पर तो उन्हें सजो के रखते थे। आज भी लोग पोस्ट कार्ड को सजो के रखे हुए हैं, लेटर बॉक्स जो आज भी हम देखते तो हमें खुशी से महसूस होती है।
0: तो मुझे लगता है कि देखिए, सोच बदलने की जरूरत तो यहाँ पर है कि लेटर का ट्रेंड भले ही खत्म हो गया है, व्हाट्सएप का ट्रेंड आ गया है। आई नो व्हाट्सएप अच्छी चीज है, टेक्नोलॉजी हमारे और आपके फायदे के लिए बनी है, अच्छी बात है, हम लोग कनेक्टेड हैं। बट कहीं ना कहीं सोच ये बदलना है कि हम जब परिवार के साथ होते हैं, स्पेसिफिक टाइम बिता रहे होते हैं, परिवार को जो टाइम दे रहे होते हैं, उसमें एक दूसरे से बात करना कितना जरूरी है। शैली जी आपको क्या लगता है?
3: परिवार में एक दूसरे से बात करना, तभी तो हमें पता चलेगा कि कौन परेशान है।
0: करेक्ट।
3: किसके मन में क्या बात, आजकल लोग आप सोचो कि मतलब काउंसलिंग करा रहे हैं लोग। इतना स्ट्रेस बढ़ गया है, क्यों? क्योंकि आपके पास घर में भी एक व्यक्ति नहीं है जिससे आप अपनी बात कह पाए। पेरेंट्स के पास बच्चों के लिए टाइम नहीं है, बच्चों के पास पेरेंट्स के लिए टाइम नहीं है,
0: क्योंकि सब अपनी अपनी दुनिया में बिजी
3: है। तो बिजी होने के बाद भी हमारे पेरेंट्स भी बिजी होते थे, मम्मी घर के कामों में, पापा बाहर, लेकिन फिर भी हम लोग शाम का खाना बैठ के खा रहे हैं। तो कोई बच्चा अगर नहीं खा रहा है तो उसे पूछा भी क्या प्रॉब्लम है, बेटा आज क्या हुआ ऐसा जो आप खाना नहीं खा रहे हो, क्या आज आप उदास क्यों हैं?
0: सही कहा आपने।
4: वो कहते हैं ना दोस्तों कि असली कनेक्शन वाईफाई से नहीं दिल से होता है। जब लास्ट में शाम के टाइम हम पूरी फैमिली एक साथ बैठ के खाना खाते थे तो चार बातें हुआ करती थी, लोगों को समझा जाता था, एक दूसरे को समझा जाता था, अपने ड्रीम्स के बारे में बात की जाती थी। अब लोग अपने मोबाइल फोन में ही इतना घुस गए हैं कि सारी चीजें उसी में देखते हैं।
3: और मुझे लगता है कि ये जो हम लोग होता था ना कि इंतजार, पहले इंतजार करते थे हम रिप्लाई का, आज वो इंतजार खत्म हो गया है तो पेशेंस लेवल भी कम हो गया है
1: जी। और आज बात ना ईगो पे आ जाती है कि अगर आपको मैसेज कर रहा है तो आप क्या मतलब करते हैं इंसान कि यार अभी नहीं रिप्लाई देंगे, हम थोड़ी देर बाद रिप्लाई देंगे इसको।
3: बिल्कुल, पहले कम बातें होती थी, रिश्ते ज्यादा लंबे टिकते थे।
1: बिल्कुल,
3: अब बातें ज्यादा होती हैं,
1: रिश्ते कम टिकते हैं।
0: क्या बात है। चलिए दोस्तों ये बातें चलती रहेंगी, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद लौट कर आएंगे।
5: हेलो 9821026212 BPL चेक। अरे 9820026235 मैक्स टच चेक।

0: वेलकम बैक है एक बार फिर से आप सभी का एफएम मुरादाबाद पे प्रोग्राम है सोच बदलो। और सोच बदलो का हमारा आज का जो टॉपिक है वो है मोबाइल फोन जो है रिश्तों को कहीं ना कहीं कमजोर करता जा रहा है, खत्म करता जा रहा है। मम्मी घर में होती है, पापा घर में होते हैं, हम सब घर में होते हैं, लेकिन उसके बाद भी नाश्ते के लिए एक टाइम था जब मम्मियां 100 गालियां देकर उठाती थी शैली जी। और आज का टाइम है कि मम्मी सिर्फ एक छोटा सा मैसेज कर देती है, नाश्ता रेडी है टेबल पे, ऊपर से नीचे आ जाओ, है ना। तो ये ट्रेंड कहीं ना कहीं हमें हमारे घर के पेरेंट्स को भी चेंज करना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है।
1: हाँ बिल्कुल चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि नाश्ता रेडी है, पहले सब लोग जब टेबल पे आ जाते थे तभी नाश्ता लगता था, अब सबके कमरों में ही पहुंचा देगा
0: और
1: रूम पे पहले बेटा हम तुम्हारा रूम में मतलब हाँ, मैं भी
0: आप रेस्ट करूं,
1: आप रेस्ट करो, मैं वहीं पहुंचा रही हूँ, क्यों वहीं भाई, सब साथ में बैठ के नाश्ता।
2: और पहले टाइम का भी फिक्स होता था, अब भूख नहीं है, अभी नहीं खा रही, मैं थोड़ी देर बाद खा लूंगी, अब तो ये हो गया है।
1: अब नाश्ता हो रहा है 11 बजे 2 बजे, आप खाना कैसे खा लोगे।
2: इनफैक्ट हम उठ ही लेट रहे हैं,
0: मतलब दिनचर्या भी कहने के मोबाइल की वजह से, क्योंकि लोग
1: तो
0: लेट लाइट
1: आ रही है। पहले की लेडीज घर में खाना बनाने के बाद कढ़ाई सिलाई बुनाई सारे काम कर लेती, अब लेडीज को खाना बनाने के बाद टाइम ही नहीं है
2: बिल्कुल,
1: क्योंकि वो सुबह का नाश्ता लेट, फिर दोपहर का खाना लेट, और चीजें लेट। पहले लोग ऑफिस चले गए, हम लोग की मम्मियों को हमने स्वेटर बुनते देखा है, मैंने तो आज तक एक स्वेटर नहीं बुन पाया क्योंकि टाइम ही नहीं है।
2: टाइम तो तब हो ना कि हम समय पर सोए, समय पर उठे, अब उठते ही इतने लेट हैं। पहले टाइम के पंचुअल हुआ करते थे, अब हम टाइम को समझते नहीं है,
0: टाइम को इसलिए नहीं समझते,
1: पंचुअल भी अगर ना बोलो तो हम टाइम की वैल्यू समझते थे।
0: एग्जैक्टली,
3: टाइम की वैल्यू उतनी नहीं की जाती जैसे पहले की जाती थी,
1: और जो टाइम की वैल्यू आज भी करते ना वो सक्सेस है।
0: ये तो बात बिल्कुल सही कही है, तो मतलब सोच बदलने की जरूरत यहाँ पर नहीं है कि आप किससे बात कर रहे हो, किससे नहीं, जरूरत है सही चीज को मेंटेन करने की, है ना। अगर आप सही तरीके से चीजों को मैनेज करोगे तो मुझे लगता है बेहतर चीजें हो सकती है। और सबसे जरूरी बात, हर चीज फोन में ही मत ढूंढो,
2: बिल्कुल।
0: अगर आप घर पे हो, परिवार के साथ हो, रिलेटिव के यहाँ जा रहे हो, तो उनसे बात करो।
1: आप सोचो आजकल चैट जीपीटी जो आया है वो इतना पॉपुलर क्यों है,
0: लोग उससे बात कर रहे हैं,
1: क्योंकि लोगों के पास व्यूज ही नहीं रह गए हैं। आप लोगों को पहले, अगर कोई अगर नॉन प्रोफेशन बंदा है जिन्होंने कभी माइक हाथ में नहीं थामाया, अगर आप किसी को दे दोगे ना वो बोल नहीं पाएगा, उसके पास शब्द ही नहीं होंगे, डिक्शनरी कम हो गई है क्योंकि आपने इतनी बातचीत कम हो, आप एवरीथिंग के लिए आप डिपेंड हो गए हो सोशल मीडिया पे, वेबसाइट्स पे, इस पे और उस पे, तो फिर क्या ही होगा।

0: आपके अपने पर्सनल व्यूज ही नहीं रह गए, आप अपने माइंड का यूज ही नहीं कर रहे हो, और जहाँ यूज कर रहे हो आप कहाँ कर रहे हो ये तो पता ही है।
1: नहीं बिल्कुल सही कहा आपने। तो मुझे लगता है कि देखिए दिक्कतें टेक्नोलॉजी से नहीं है, दिक्कतें मोबाइल चलाने से नहीं है, दिक्कतें सिर्फ बात करने से है, क्योंकि हमें लगता है कि हर चीज हमारे लिए कन्वीनियंट होनी चाहिए, इजीली होनी चाहिए। हम इस इजी के चक्कर में मोबाइलों में इतना घुस गए हैं। आजकल आप देखो ना, घर बैठे बैठे हम चाहते हैं हर चीज आ जाए। आजकल दूध लेने का एक बहाना होता था कि हम सुबह दूध लेने जाएंगे, आजकल भैया दूध लेने भी नहीं जाते, क्यों? सब कुछ तो ऑनलाइन हो गया है।
0: पहले चलो ठीक है, कुछ चीजों के लिए तो निकलना ही पड़ता था, अब तो बिल्कुल नहीं निकलना है, कि हमने अपने आप को इतना डिपेंड कर लिया है। हम लोग पैदल स्कूल जाते थे,
1: सोचो
0: आजकल बच्चे को हम बैग लेकर के बस तक भी पहुंचाने जाएंगे,
2: छोड़ने जाते हैं
0: और उनका बैग उठा के बस से भी घर पे लाएंगे।
1: सही कहा आपने। तो दोस्तों मतलब कुल मिला के यह है कि बात आलस की तो नहीं कर रहे हैं, आज हम बात हम कर रहे हैं कि हमारे जो परिवार, हमारे कनेक्शन कम हो रहे हैं, उसकी सबसे बड़ा कारण है, उसका सबसे बड़ा रीजन है हमारा मोबाइल फोन। और मोबाइल फोन इसलिए क्योंकि हम सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी मोबाइल पे ही दिखाते हैं। हम परिवार के साथ होते हुए भी ऐसा महसूस करते हैं कि हम फैमिली के साथ नहीं है। अगर सोचो हम चार लोग यहाँ पे अगर अपने अपने मोबाइल में लग जाए तो कौन एक दूसरे से बात करेगा,
2: कोई भी जी
1: सोचने की बात है, और ना हम एक दूसरे को जान पाएंगे ना समझ पाएंगे।
0: आजकल जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस हो गए उनका मजा किरकिरा क्यों हो गया है, क्योंकि वहाँ जाके लोग वहाँ की खूबसूरती नहीं देखते हैं। हिस्टोरिकल प्लेस पे जाइए, वहाँ की कहानी समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, ये क्यों? वो ये कोशिश कर रहे हैं कि कौन सा व्यू हम देख लें, यहाँ पे हमारा फोटो सबसे
2: फोटो वीडियो
1: कैप्चर करो उसको ही।
0: खाने के टेबल पे खाना रखा है
1: Correct.
0: लेकिन आपको उसको टेस्ट नहीं पता है कि आपने आ ठीक था, बाद में अगर एक डिश चार डिश में से एक डिश आपने ऐसी टेस्ट कर लिया वो खाना अच्छा नहीं था, बाकी की चार आपने स्वाद ले ही नहीं पाए।
2: क्यों? हमारा ध्यान तो फोन में होता है, पहले हम फोटो खींचते हैं स्नैप भेजते हैं और फिर वही टाइम हो जाता है चलो चलो ठीक है।
0: टाइम में एक ऐसे आता था हिंदी में, ज्ञान के अभिशाप और चमत्कार
3: जी,
0: तो मतलब वो हर मतलब जब भी देखो वो एक सबसे रखा ही होता था क्वेश्चन पेपर में वो, तो उस टाइम पे मुझे वो इतना नहीं समझ आता था, मगर आज मुझे समझ में आता है। ऐसा नहीं है, मोबाइल अच्छी चीज है, हम लोगों को बहुत अच्छी चीजें मिली हुई है कि हम लोगों को बहुत कुछ प्रोग्रेस कर सकते हैं, अपना करियर बना सकते हैं, लेकिन हम अपना टाइम कहाँ दे रहे हैं ये मैटर करता है।
2: बिल्कुल,
0: किस चीज पे दे रहे हैं, पॉजिटिव चीज पे दे रहे हैं या नेगेटिव चीज पे दे रहे हैं, पॉजिटिव भी है इसमें नेगेटिव भी है।
1: सही कहा आपने। तो दोस्तों आप सुनते रहिए ऐसे ही सोच बदलो प्रोग्राम, और अभी हम लौट कर आते हैं एक छोटे से गाने के बाद।

0: इस गाने के बाद वेलकम बैक है शहर जाते जाते। रीना कुमकुम, आप लोग क्या कहना चाहोगे हमारे युवा पीढ़ी से, जो लोग घर में बैठ के बातें कम मोबाइल ज्यादा चलाते हैं उन लोगों?
1: मैं यही कहना चाहूंगी, देखिए हर घर में जितने भी मेंबर्स है ना, हर घर में सभी के पास फोन है। तो पहली बात पेरेंट्स से मैं यही कहना चाहूंगी, अगर आपके पास फोन है तो जो बच्चे हैं जो 12th तक अभी पढ़ाई कर रहे हैं उनको फोन ना दे। अगर आप उनको फोन नहीं देंगे तो वो देखिए और भी आगे बढ़ेंगे अपनी लाइफ में। हमें तो ये पता है ना कि हमने बच्चों को फोन दे दिया, वो पढ़ ही रहा होगा, लेकिन आप देखने नहीं जा रहे कि उस कमरे में वो पढ़ रहा है या वीडियो देख रहा है, क्या कर रहा है। तो अगर आप फोन दे भी रहे तो उस चीज का ध्यान रखिए कि बच्चा कब क्या किस टाइम क्या कर रहा है।
2: बिल्कुल सही कहा आपने, फोन नहीं देना चाहिए। लेकिन कई टाइम ना हमें टीचर्स ऐसे प्रोजेक्ट दे देते हैं कि बच्चों को काम होता है फोन से, इसलिए पेरेंट्स उनकी सुविधा के लिए देते हैं, पर वो ना फोन
1: यूटिलाइज हमें अच्छे तरीके से करना चाहिए,
2: सुविधा के लिए दिए जाते हैं क्योंकि उन सुविधाओं से हम आगे बढ़ सके, अपने अपने करियर के लिए सोच सके, अपने फ्यूचर के बारे में आगे देख सकें कि हमारे पढ़ाई में और चीजों में क्या क्या कर सकते हैं, पर वो डिपेंड इतने हो जाते हैं उस फोन पे, उसकी आदि बन जाते हैं एक तरह से।
3: मैं सभी पेरेंट्स से कहना चाहूंगी कि जब भी वो बच्चों के सामने मोबाइल देखें या खुद भी देखें तो मोटिवेशनल चीजें ज्यादा देखें, जिससे उन्हें कुछ लगे कि हाँ मम्मा या पापा हमें ये चीजें देख दिए तो उनके दिमाग पे भी वही छाप पड़ जाती है।
4: बिल्कुल,
3: तो वो भी कहीं ना कहीं उनके दिमाग पे लगे कि हाँ ये चीज ठीक है उसको।
4: और बच्चों को भी टाइम दीजिए, आप खुद नहीं फोन में रहेंगे बच्चे। अब आजकल मैम ये होता है कि बच्चे आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं लेकिन आप काम में बिजी होते हैं या फिर फोन चला रहे हो या फिर मासी का फोन आ गया तो भैया तो समझो बेड़ा।
3: तो सबसे ज्यादा यंगस्टर को काउंसलिंग की जरूरत पड़ रही है इस समय,
4: सबसे
3: ज्यादा स्ट्रेस लोग काउंसलिंग ले रहे हैं स्ट्रेस रिलीज करने के लिए, कि मुझे उनके पास बात करने के लिए लोग नहीं है। साइड चल गई है, आइए बात करिए।
4: बिल्कुल, अब इंसान वहाँ टाइम दे रहा है लेकिन अपने फैमिली को कम।
2: मैं श्रोताओं से यही कहना चाहूंगी कि जैसे हम लोग देखते हैं ना ड्रामास देखते हैं या कोई भी ड्रामा आप देखते हो कंट्री के बाहर का, उसमें ना एक टाइम दिया जाता है कि नो मोबाइल टाइम, फैमिली का टाइम जो रहता है उस मोबाइल को ना एक बॉक्स में डाल दिया जाता है। तो ऐसा हमारे यहाँ भी होना चाहिए, आप सबको अपनी फैमिली में एक टाइम ऐसा बनाना चाहिए, यहाँ सब फैमिली एक साथ रहेगी, मोबाइल को एक बॉक्स में रख दिया जाए कुछ टाइम के लिए।
1: चलिए श्रोताओं, अब हम लेते हैं जाने की विदा।
0: बिल्कुल, इजाजत लेंगे लेकिन सब लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे मैसेज दिए और मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, सोच जब बदलेगी जब हम उसकी शुरुआत करेंगे, उसकी शुरुआत मुझे और आपको ही करनी है श्रोताओं। तो मोबाइल एक अच्छी चीज है हमारी फैसिलिटी के लिए, इस गवर्नमेंट ने बनाई है, टेक्नोलॉजी का अच्छा फायदा आपको जरूर मिलेगा और मिल भी रहा होगा आई एम श्योर। बहुत सारे लोग आजकल बहुत सारी चीजें कर भी रहे हैं, बट इसका यह मतलब नहीं है कि अपने रिश्तों को भूल जाए, अपने परिवार को भूल जाए, परिवार को एक क्वालिटी टाइम दीजिए। और फैमिली से भी कहना चाहता हूँ, स्पेशली अगर आप मुझे सुन रही है, वर्किंग लेडी है, आप वुमेन वर्किंग वुमेन है तो डेफिनेटली अच्छी बात है, आप जो भी कर रही करती रहिए, ऑल द वे बेस्ट। बट उसके साथ ही साथ अगर आप घर जा रही है तो उसके बाद एक पर्टिकुलर टाइम अपने बच्चे के साथ जरूर बिताएं, उससे पूछें आज उसने स्कूल में क्या किया, उसके स्कूल में कैसा रहा उसका टाइम, उसने किसके साथ टाइम बिताया। अगर आप फादर हैं तो आप भी अपने बच्चों के साथ स्पेशल टाइम डेफिनेटली सेलिब्रेट करें और एक वीकेंड में एक ऐसा दिन जरूर निकालें जिसमें नो मोबाइल, एटलीस्ट 1 घंटा ही सही, बट वो आप जरूर करें, कहीं बाहर जाएं, एक्टिविटीज करें, फन करें, बट मोबाइल को थोड़ा सा तवज्जो कम दें, मतलब जब आपको लगता है स्पेशली परिवार के लिए टाइम है। तो ये चीज आप कीजिए, सोच अपने आप बदलेगी, बाकी कोशिशें आपको करनी पड़ेंगी, हम भी आपके लिए कोशिश करते रहते हैं प्रोग्राम के जरिए कुछ अच्छे अच्छे टॉपिक्स लाएं और आपको जगाएं। बाकी के लिए सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए गुनते रहिए, है आपके शहर का अपना फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6। फिर से बोलेंगे रेडियो
2: बजाते
3: बजाते रहो, गुनगुनाते रहो,
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया, बाय।

0: पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। आज राष्ट्रपति 65 विशिष्ट हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करेंगी। इनमें टेनिस के दिग्गज विजय अमृतराज, अभिनेता ममूती, गायिका अलका याग्निक और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा जैसी प्रमुख हस्तियां शामिल हैं। वर्ष 1954 में स्थापित किए गए यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाते हैं। पद्म पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान, लोक प्रशासन तथा व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए प्रदान किए जाते हैं। सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पद्म पुरस्कार विजेताओं पर आकाशवाणी पीपल्स पद्म और आकाशवाणी के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। इस श्रृंखला के माध्यम से श्रोताओं को पद्म पुरस्कार विजेताओं के जीवन और उनके योगदान की जानकारी दी जा रही है।
2: मैं रैप का काम सीखा, अंगूरी का काम सीखा है, मोटी चिकन मामूली का काम, तो इसमें सबसे बारीक काम एक मरोड़ी का ही होता है, तो मरोड़ी का काम जो है लगातार नहीं किया जाता है, ये बहुत ही फाइन वर्क होता है।
3: जब हमारे मेजॉरिटी कम्युनिटी का यूथ और माइनॉरिटी कम्युनिटी का यूथ एक दूसरे को समझने की कोशिश करे, वो ये जाने कि कश्मीर का जो एक नॉर्मल सिख के लिए वही गुलदस्ता जो कश्मीर जिसमें हमारे गांधी जी को किरण नजर आई थी या भारत का ताज के रूप में ये जो था, उसी दस्ते को फिर से उजागर करने को बनाने के लिए हमने प्रयास करा।
1: ये कार्यक्रम आज एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रसारित होगा। इन्हें न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के साथ ही डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना साकार हो गया है। श्री शाह ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें देश के महानतम नेताओं में से एक बताया। उन्होंने कहा कि डॉ. मुखर्जी के योगदान ने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
4: श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस राष्ट्र के बहुत बड़े नेताओं में शुमार होते हैं, जिन्होंने कभी जीवन में कुछ भी प्रसिद्धि के लिए नहीं किया, और उनकी बनाई पार्टी भारतीय जनसंघ, जो अब भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानी जाती है, गंगा से लेकर बंगाल के गंगा सागर तक भारतीय जनता पार्टी का साथ, और मूठ जैसे सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने 60 साल के अंदर इनकी विचारधारा पर आगे बढ़ते बढ़ते आज देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया है।
1: नई दिल्ली में नेफेड के नीलामी पोर्टल के शुभारंभ पर श्री शाह ने कहा कि 23 जून भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इसी दिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने राष्ट्रीय एकता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। विभाजन काल को याद करते हुए उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल को भारत का हिस्सा बनाए रखने में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। गृहमंत्री ने अनुच्छेद 370 का भी जिक्र किया, जिसने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया था।
4: कश्मीर का राष्ट्र ध्वज होता था, कश्मीर का संविधान अलग होता था, कश्मीर में एक अलग प्रधानमंत्री बैठते थे, कश्मीर में एक राष्ट्रपति भी बैठते थे। ये संकल्पना भारत की एकता और अखंडता के लिए बहुत खतरनाक। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक आंदोलन छेड़ा कि एक देश में दो विधान, दो निशान और दो प्रधान नहीं रहे।
1: इस अवसर पर गृहमंत्री ने किसानों की सीधी भागीदारी को मजबूत करने के लिए खरीद कार्यों में बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करने का आह्वान किया।
4: आने वाले दो सालों में सहकारिता मंत्रालय सुनिश्चित करेगा कि दलहन का एक दाना भी एनसीसीएफ और नाफेड में व्यापारियों के माध्यम से न आए, सीधा किसानों के माध्यम से आए, जिससे मुनाफा पूरा किसानों के पास। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है, अब इंफ्रास्ट्रक्चर को नीचे तक पहुंचाना है, और उसमें मैं मानता हूं कि नाफेड और एनसीसीएफ ने भी दृढ़ता के साथ शुद्ध तरीके से काम करने की शुरुआत करनी पड़ेगी, तभी जाकर परिणाम मिलेंगे।
1: नेफेड की प्रगति का जिक्र करते हुए श्री शाह ने कहा कि 12 साल पहले गंभीर वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहा ये संगठन आज 74 लाख किसानों की सेवा करने वाला एक मजबूत संस्थान बनकर उभरा है।
4: नाफेड ने एक प्रकार से नेफिक्स डॉट इन, दृष्टि, ईआरपी और नाफेड कल्याण, ये चार पहलों की शुरुआत की, तो वो क्रांतिकारी इसलिए कि नाफेड जो 2014 में बंद होने की कगार पर आ गया था, आज नाफेड ये सारी पहल कर

0: समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाएं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7066002430।
1: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
1: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा, लाइन पार, मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना फेवरेट शो महिला मंच और ये है आपके शहर का अपना पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 और मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी आरजे खुशी। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय की जो घर से जुड़ा हुआ है, महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण पर। दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि घर में सबसे पहले महिलाएं उठती हैं और सबके बाद में ही सोती हैं। सुबह बच्चों का टिफिन बनाना, घर का काम संभालना, कई महिलाएं तो ऑफिस भी जाती हैं, यानी पूरे परिवार की जिम्मेदारी उनके कंधों पर होती है। लेकिन एक सवाल है, क्या महिलाएं अपने स्वास्थ्य का उतना ध्यान रखती हैं जितना बाकी लोग रख पाते हैं? अक्सर जवाब होता है नहीं। कई बार महिलाएं जल्दी जल्दी में खाना खा लेती हैं, कई बार अपना खाना ही छोड़ देती हैं। लेकिन हमें ये समझना होगा कि अगर महिलाएं स्वस्थ रहेंगी तभी पूरा परिवार स्वस्थ और खुश रहेगा। इसीलिए आज के इस खास शो में हम बात करेंगे कि महिलाएं अपने स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखें और अपने खान पान में कौन कौन सी चीजें शामिल कर सकती हैं।
1: क्या बात है, बहुत जरूरी बात तुमने कही आज खुशी। सो अब हम बात करते हैं पोषण का महत्व। महिलाओं के लिए सही पोषण बहुत जरूरी होता है, लेकिन कई बार महिलाएं अपने खान पान पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है। कई घरों में देखा जाता है कि महिलाएं पहले पूरे परिवार को खाना परोसती है और बाद में खुद खाती है। कई बार जब तक उनकी बारी आती है तब तक खाना ठंडा हो जाता है या कम बचता है। लेकिन हमें यह समझना होगा कि शरीर को ताकत देने के लिए सही और संतुलित भोजन बहुत जरूरी है। महिलाओं को अपने खाने पीने में हरी सब्जियां, दाल, फल, दूध और अनाज जरूर शामिल करना चाहिए। ये चीजें शरीर को जरूरी पोषण देती है और शरीर को मजबूत बनाती है। इसी के साथ कोशिश करेंगे कि दिन में 3 बार सही समय पर खाना जरूर खाएं। खाना छोड़ना या देर से खाना खाना स्वास्थ्य के लिए सही नहीं होता है।
0: बिल्कुल रीना जी, आप सही कह रही हो। दोस्तों, एक बहुत बड़ी समस्या जो कई महिलाओं में देखी जाती है वह है आयरन की कमी। आयरन की कमी से शरीर में खून की कमी होती है, जिससे कमजोरी, चक्कर आना, जल्दी थक जाना जैसी समस्याएं हो सकती हैं। कई महिलाएं कहती हैं कि उन्हें हर समय थकान महसूस होती है। इसका एक ही कारण है, शरीर में आयरन की कमी भी हो सकती है। इसीलिए खाने में ऐसी चीजें जरूर शामिल करें जिनमें आयरन भरपूर मात्रा में हो, जैसे पालक, चुकंदर, अनार, गुड़, दाल और हरी पत्तीदार सब्जियां। अगर हम अपने खाने में इन चीजों को शामिल करेंगे तो शरीर को ताकत मिलेगी और कई बीमारियों से भी बचाव होगा।
1: बिल्कुल, बहुत सही बात कही है तुमने खुशी। और अब हम बात करेंगे कैल्शियम का महत्व। दोस्तों, महिलाओं के लिए कैल्शियम भी बहुत जरूरी होता है। कैल्शियम हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है। अगर शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाए तो हड्डियां कमजोर होने लगती है और आगे चलकर जोड़ों में दर्द या अन्य समस्याएं हो सकती है। इसीलिए महिलाओं को अपने खाने में दूध, दही, पनीर, हरी सब्जियां और सूखे मेवे का जरूर शामिल करना चाहिए। कई बार लोग कहते हैं कि दूध सिर्फ बच्चों के लिए जरूरी होता है, लेकिन सच यही है कि महिलाओं के लिए भी दूध और कैल्शियम बहुत जरूरी होता है।

0: साथियों, अब हम बात करने वाले हैं पानी के बारे में, पानी के महत्व के बारे में, क्योंकि आपको पता है गर्मियों का समय है और पानी हमारे लिए कितना जरूरी है। दोस्तों, कई बार महिलाएं दिन भर में काम में इतना व्यस्त हो जाती हैं कि पानी पीना ही भूल जाती हैं। लेकिन पानी हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। ये शरीर को तरोताजा रखता है और शरीर को गंदगी से बाहर निकालने में मदद करता है। डॉक्टर भी कहते हैं कि दिन में कम से कम 7 से 8 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए। अगर आप चाहें तो इसे अपने पास पानी की बोतल रख सकती हैं, ताकि आपको याद रहे और आप समय समय पर पानी पीती रहें।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने कि पानी पीना हमारे लिए, हमारी बॉडी

0: लिए बहुत जरूरी है, लेकिन साथ साथ हम बात करेंगे आराम की जरूरत। इस भाग दौड़ की दुनिया में ना, सच बताऊं औरतें आराम मानो तो उनके जिंदगी में है ही नहीं। पता नहीं वो कहाँ चला गया है, ये कोई जादू है या क्या है कि उनको थकान कभी फील ही नहीं होती है। तो श्रोताओं, स्वास्थ्य के लिए आराम और नींद भी बहुत जरूरी होती है। कई महिलाएं दिन भर काम करती हैं और रात में भी देर तक जागती रहती है, इससे शरीर को पर्याप्त आराम नहीं मिल पाता है। कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लेना शरीर के लिए बहुत जरूरी है। जब शरीर को सही आराम मिलता है तो मन भी खुश रहता है और शरीर भी स्वस्थ रहता है और आप कोई भी काम फिर आसानी से कर पाएंगे। कहते हैं ना, जब तक आपकी बॉडी आराम नहीं कर पाती है तब तक आप कोई भी काम करिए, आप अच्छे मन से नहीं कर पाएंगे। ऊपर से आपका सर भारी रहेगा और पूरा दिन लगेगा कि यार क्या ही करूँ क्या ना करूँ।
1: सर में भी दर्द होने लगता है रीना।
0: बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात कही खुशी ने। आप जैसे सुबह उठोगे, जब तक आपके अंदर थकान होगी ना, आपके सर में दर्द तुरंत बन जाता है। इसीलिए सोना आराम करना बहुत जरूरी है हमारे जिंदगी में।
1: प्रॉपर 7-8 घंटे की नींद लीजिए ताकि आपका बॉडी अगले दिन के लिए तैयार रहे और एनर्जेटिक रहे।
0: बिल्कुल। सो मिलते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक के बाद। बस आप यूं ही बने रहिए आरजे रीना और आरजे खुशी के साथ महिला मंच शो में। और बहुत ही शानदार ये गाना आप सभी को हमारी प्यारी वुमनिया के लिए डेडिकेट है।

0: दोस्तों, रीना जी ने अभी बात की थी आराम के बारे में और अब मैं बात करने वाली हूँ व्यायाम के बारे में। जी हाँ, सुबह सुबह दोस्तों देखिए, हमारा जीवन जो है ना, वो हमारा जो स्वास्थ्य है वो एक धन है और उस धन को हमें कैसे एकत्रित करना है, कैसे इकट्ठा करना है, वो हम कैसे करेंगे आपको पता है, जब हम आप अपने फिटनेस का ख्याल रखेंगे। क्योंकि कहते हैं ना, स्वास्थ्य ही असली धन है। और अब मैं बात करने वाली हूँ व्यायाम के बारे में। दोस्तों, स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम बहुत जरूरी है। अगर महिलाएं रोज 20 से 30 मिनट की सैर करें या हल्का फुल्का योग करें तो शरीर फिट रहता है। व्यायाम करने से शरीर में ऊर्जा बढ़ती है और मन भी अच्छा महसूस करता है। इसीलिए कोशिश करें कि हर रोज थोड़ा समय अपने स्वास्थ्य के लिए जरूर निकालें।
1: बिल्कुल खुशी, तुमने बहुत अच्छी बात कही है कि इस भाग दौड़ की दुनिया में ना हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख पाते। इसीलिए सभी वुमनिया से हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, बस अपने लिए सुबह आधा घंटा निकालिए, इतना ही काफी है आपके लिए।

0: जितना शारीरिक स्वास्थ्य। इसीलिए थोड़ा समय अपने लिए निकालें, अपने मनपसंद गाने सुने, किताब पढ़े या दोस्तों से बात करे। ये छोटी छोटी चीजें मन को खुशी देती है। और बिल्कुल सही बात है, हम क्या ना पूरे परिवार की जिम्मेदारी में ना खुद की मनपसंद चीजें भूल ही जाते हैं।
1: अच्छा, इसीलिए आपने बात की है रीना कि भूल ही जाते हैं अपनी दुनिया, अपनी फैमिली को मतलब केयर करने में, उनको
0: संभालने में।
1: हाँ। तो ये बताओ, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, ना तो अभी आपकी शादी हुई है और ना ही आपके बच्चे हैं, आप अभी अकेली हैं, तो आप अपनी मनपसंद की चीजें क्या करती हैं जब आप फ्री रहती हैं?
0: देखो, घर पे भी रहती हूँ तो मम्मी से जो बोलती हूँ वो बनाती हैं।
1: अरे वाह।
0: और मम्मी से मैं कभी पूछती हूँ ना क्या आपको क्या पसंद है, तो बोलती है जो तुम्हें पसंद है मैं वही खा लूंगी। मैंने कहा नहीं मम्मी, आज ऐसा नहीं चलेगा, आज आप बताओ कि आपको क्या पसंद है।
1: हाँ।
0: तो मेरी मम्मी को ज्यादा कुछ नहीं, बस खीर।
1: अरे वाह, खीर
0: बहुत पसंद है मेरी मम्मी को, सच में। हाँ, वो कहती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस खीर बना दो मेरे लिए। तो मैंने अपनी मम्मी के लिए ना एक बार खीर बनाया और मेरी मम्मी को सच में बहुत पसंद आया। तो मेरी मम्मी कहती है कि जब भी अगर तू खीर बनाएगी ना घर में, मतलब खीर बनाने की बारी आएगी तो तू ही बनाएगी। तो मैं अपने घर में वही बनाती हूँ, और बल्कि मम्मी ने ही सिखाया मुझे खीर बनाना भी।
1: हाँ।
0: तो देखिए, मतलब हम अपने घर में ना अपने साथ साथ मम्मी का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्हीं की वजह से हमारा परिवार आगे बढ़ता है।
1: एग्जैक्टली। और फिर रीना, मुझे ऐसा लगता है कि देखो, जो सबका ख्याल रखती है तो उनका भी ख्याल रखने वाला कोई चाहिए ना।
0: बिल्कुल। और आप गाइस ये पूछोगे ना अपनी मम्मी से कि आज आपकी पसंद का खाना बनाते, बताओ क्या खाना है आपको, तो उनके जो चेहरे पर खुशी होगी ना, नेक्स्ट लेवल वाली होगी खुशी। आगे हम बात करते हैं,
1: आगे हम बात करने वाले हैं अभी स्वास्थ्य के ऊपर। अब मैं बात करने वाली हूँ नियमित जांच।
0: बिल्कुल।
1: तो दोस्तों, महिलाओं को समय समय पर स्वास्थ्य जांच की भी। अच्छा रीना, आपको पता है हमारे जो घर की वुमेन होती है ना, बुमनिया जिसको आप बोल रही हैं, वो सबका ध्यान रखती हैं, लेकिन वो अपने स्वास्थ्य को लेकर अपना ध्यान नहीं रख पाती हैं। लाइक जैसे छोटी छोटी कभी चक्कर आ जाते हैं, कभी वीकनेस फील होती है, तो वो जांच नहीं करवाती हैं, वो नजरअंदाज कर देती हैं कि ठीक हो जाएगा, नॉर्मल है। लेकिन ऐसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी ये जो चीजें होती हैं, जो ये बड़ी प्रॉब्लम कब बन जाए, कब बड़ा रूप ले लें, कुछ नहीं पता है।
0: बिल्कुल सही कहा तुमने, इसीलिए समय पर जांच करवाना बहुत जरूरी है। और मैं घर की सभी वुमनिया से के रिक्वेस्ट करूंगी कि कभी आप ये ना सोचे कि घर के नुस्खे से ही हम ठीक हो जाएंगे, बल्कि कुछ चीजें ऐसी होती है कि आपको डॉक्टर के पास ही जाना जरूरी होता है। सो श्रोताओं, हम लेंगे यहाँ से जाने की इजाजत, लेकिन जाने से पहले एक म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर से कनेक्ट होंगे और करेंगे और बातें, और फिर हम बोलेंगे आपको बाय बाय।

वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है।

क्या बात है जी, बहुत ही प्यारा गाना एंजॉय किया आपने आरजे रीना और आरजे खुशी के साथ। सो अब हम लेंगे यहाँ से जाने की इजाजत, लेकिन जाने से पहले आज के शो का सबसे बड़ा संदेश यही है कि महिलाएं अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज ना करें। परिवार की जिम्मेदारियां निभाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है। याद रखिए, अगर महिला स्वस्थ है, खुश है, तो पूरा परिवार भी खुश और स्वस्थ रहता है। इसीलिए हमें

0: अपने स्वास्थ्य के साथ साथ हमारी प्यारी वुमनिया के जो स्वास्थ्य हैं उनके ऊपर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। और घर में जितने भी वुमनिया हैं बस एक दूसरे की हेल्प करें, साथ रहे, क्योंकि आप साथ रहकर आगे बढ़ोगी तो फैमिली और भी आगे जाता है। तो इसीलिए हमें कभी किसी से भेदभाव नहीं करना चाहिए, एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए, तो परिवार और समाज दोनों स्वस्थ रहेगा। और इसी के साथ मैं लेती हूँ यहाँ से जाने की इजाजत। तो हम आप सभी के साथ फिर से कल कनेक्ट होंगे दूसरे टॉपिक के ऊपर। अभी के लिए दीजिए जाने की इजाजत। बाय बाय, टाटा, टेक केयर। यूं ही पानी पीते रहिए क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। और मौसमी फल खाते रहिए, खरबूज, तरबूज, बहुत से ऐसे फल हैं। कीवी कहते हैं छोटा पैकेट बड़ा धमाल, तो इसीलिए कीवी का सेवन करिए जिसे आयरन भरपूर मात्रा में मिलता है। और साथ ही साथ अंजीर जो पावरफुल है, बहुत ज्यादा पावरफुल है, सो उसको भी आप जरूर खाएं। और एक और सब्जी है जो सभी फ्रूट से 10 गुना ज्यादा उसके अंदर विटामिन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, वो है मोरिंगा, जो लंबे फलियां होती हैं। और मोरिंगा का आप सूप बनाकर पीजिए, सब्जी बनाकर खाइए, सभी फलों से भी ज्यादा गुण होता है उसके अंदर, सब्जियों से ज्यादा पावर होती है उसके अंदर। सो इसको जरूर आप अपने डाइट में शामिल करें, इसको शामिल करना बहुत जरूरी है। सो चलिए गाइस, बाय।
1: हाय दया ललन जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
2: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
3: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट, शेरवानी, इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
2: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट, मुरादाबाद।
4: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

इतना प्यारा गाना है यार, मतलब इतना प्यारा गाना है कि आप इस चिलचिलाती गर्मी में अगर ऐसे गाने सुनोगे ना, तो सच बता रहा हूँ आपको गर्मी का एहसास ही नहीं होगा, सिर्फ आपको ठंडक ठंडक फील होगी चारों तरफ। बहुत ही खूबसूरत ट्रैक आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज पे। ये है आपका फेवरेट प्रोग्राम जिसका नाम है हेलो फरमाइश, और आज खुशी तो नहीं है लेकिन यहाँ पर आनंद आ गया है। और देखिए, खुशी जहाँ होती है वहाँ आनंद आ ही जाता है, और जहाँ आनंद होता है वहाँ खुशी तो अपने आप झलक जाती है जी, है ना? सही कहा ना मैंने? वेलकम बैक वंस अगेन आपका।

0: दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। मैंने कहा जी कैसे हालचाल है, नमस्कार। आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6, आपका अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। और आज इस बेहतरीन प्रोग्राम की पेशकश लेकर मैं आपके बीच हाजिर हो गया हूं, आपका प्यारा सा दोस्त आनंद। और अब 3 बजे से लेकर 5 बजे तक आपके साथ रहेंगे इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे, जहां बातें होंगी ढेर सारी आपकी और मेरी। हाँ जी, अगर आप कोई गाना सुनना चाहते हैं या किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, ऑफकोर्स आपको क्या करना है यार, ये फोन प्रोग्राम है तो आप हमें फोन करेंगे। नंबर बहुत ही आसान है, 9837896896 9837896896। इस नंबर पे आपको हमें कॉल करना है। आज बहुत ही खूबसूरत दिन है, ट्यूसडे का। तो श्रोताओं, हेलो फरमाइश का सिलसिला शुरू हो गया है, हफ्ते का दूसरा दिन है और आई होप आपका बढ़िया जा रहा होगा ये हफ्ता। जब तक आप लोग मुझे फोन कर रहे हैं, मैं एक बेहतरीन सा गीत अपनी तरफ से इस प्रोग्राम में लगाने वाला हूँ, यानी कि प्रोग्राम की शुरुआत होगी एक बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ, फ्रॉम द फिल्म राज। आई लव दिस मूवी यार, गाने बहुत ही अच्छे हैं, डेनू मौर्य ने बहुत ही अच्छी एक्टिंग की थी। फिल्म जब भी टीवी पे आती है भाई, डर तो होता ही है लेकिन देखने का मजा ही कुछ और इस मूवी को। आप लोग मुझे फोन करिए, हमें इंतजार है आपके फोन कॉल्स का। 9837896896 पर शो है हेलो फरमाइश, मेरा नाम है आरजे आनंद। गुड आफ्टरनून।
1: जो

0: बात है, बिल्कुल मुझे याद है कि मैं आपसे मिलने आ गया हूँ आपकी प्यारी सी रेडियो सेट पे, जहाँ पर मेरी और आपकी मुलाकात और ये जो बातों का सिलसिला है वो लगातार जारी रहेगा 5 बजे तक। दोस्तों आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का अपना फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। वक्त हो गया है स्टेशन क्लॉक में 3:15 और आज है 23 जून की चिलचिलाती गर्मी दोपहर, यानी कि बहुत ही खूबसूरत दिन है मंगलवार का। और श्रोताओं, अभी जो आपने गाना सुना उसमें आवाजें थी अलका याग्निक और उदित नारायण साहब की। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे, बस इतना ही कहना चाहते हैं कि प्लीज़ पानी का जो है इनटेक लेते रहिए, पानी बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि आपको प्यास लगे तभी आप पानी पिए, पानी आपको पीते रहना है ना। हमारी बॉडी पानी मांगे या ना मांगे, लेकिन हमें पानी जो है अपनी बॉडी को देते रहना, तो बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहिए। गर्मी बहुत तेज है सच में, अगर इस गर्मी में आप बाहर जा रहे हैं तो आप कोशिश करें कि आप छाते का इस्तेमाल करें या अपने सर को ढक के ही आप घर से बाहर निकलें। चलिए आगे बढ़ेंगे, प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे अपने पहले लकी कॉलर से। आइए जुड़ते हैं अपने इस प्रोग्राम के पहले कॉलर के साथ, कौन कहां से जुड़े हैं उनसे बात करके ही पता चलेगा। ये तो दोस्तों कई लोगों को लग रहा होगा ये तो खुशी का प्रोग्राम है, बट आनंद कैसे हाजिर हो गया है। खुशी थोड़ी इंपॉर्टेंट काम से बाहर गई है, तो मैंने सोचा तब तक हम इस ट्रेयर को संभालते हैं। आइए जरा बात करते हैं हमारे पहले लकी कॉलर से। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश।
0: हेलो, क्या नाम है आपका?
1: गुंजन।
0: गुंजन, बहुत प्यारा नाम है गुंजन। कहाँ से फोन किया है आपने?
1: प्रकाशनगर के चौराहे से।
0: प्रकाशनगर के चौराहे से बोल रहे हो, वेरी गुड। क्या करते हो गुंजन अभी? पढ़ाई करते हो?
1: यस।
0: अरे वाह, अभी आप कितने छोटे हो ये बताओ?
1: मैं 11 साल की हूँ।
0: अरे बाप रे, 11 साल की हो। तो आप रेडियो आप सुनते हो या आपकी फैमिली सुनती है, पहले ये बताओ, सच सच बताओ। अच्छा, ओ आपके घर पे कौन कौन रहता है?
1: चाचा, ताऊ और दादी, बुआ, मम्मी पापा।
0: ओके, आपके मम्मी पापा का नाम बताओ। चलो मुझे, क्या नाम है आपके मम्मी पापा का?
1: मम्मी का नाम रजनी और पापा का नाम ऋषि पावल सिंह ठाकुर।
0: वेरी गुड। तो आप रेडियो कितने बजे से सुनते हो ये बताओ आप?
1: क्या?
0: आप रेडियो कितने बजे शुरू करते हो सुनना?
1: सुबह से।
0: अच्छा, चलो वेरी गुड। आपको कौन सा शो अच्छा लगता है एफएम रेडियो पे मुरादाबाद स्टेशन का?
1: सबसे अच्छा लगता है

0: सादा मासूम चेहरा।
1: अच्छा जी, आपको ये गाना भी सुनना है? ओके, वेरी गुड। चलो ठीक है, किसी का नाम लोगे आप जाते जाते? ठीक है, पक्का पक्का पक्का। चलो चलो, फिर ये गाना हम भी सुनते हैं आपके साथ, ठीक है गुंजन? बाय बाय बाय बाय, थैंक यू सो मच। ये प्रकाश नगर के चौराहा से जुड़ी थी गुंजन, बड़ी प्यारी सी बच्ची, और इसकी रिक्वेस्ट हमारे पास आई है। बहुत ही खूबसूरत ट्रैक है, धुरंधर फिल्म का ये गाना है, निकल गया है आपके रेडियो सेट पे। अगर आप कोई गाना सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे फ़ोन कर सकते हो यार, 9837-896-896 पे। स्टूडियो का नंबर बहुत आसान है, एक बार फिर से आराम से बता देता हूँ, 9837-896-896। अच्छा, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 9837-896-896। अब देखो, इससे ज़्यादा आराम से अब मैं क्या ही बताऊँ यार। चलो फिलहाल आगे बढ़ते हुए इस गाने का आनंद लेंगे। आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को, प्रोग्राम है आपका अपना फेवरेट हेलो फरमाइश, मधुमंती बागची की आवाज साथ में जैस्मिन सैंडल देंगी साथ, बहुत ही खूबसूरत ट्रैक, एंजॉय करते हुए आगे बढ़ेंगे साथ में। गुड आफ्टरनून।

क्या बात है। धुरंधर का ही गाना था जिसको सुन के आपको आई एम श्योर मजा आ गया होगा। मुझे भी बहुत मजा आया, बहुत ही बेहतरीन गाना। और ये जो रिक्वेस्ट आई थी ना मेरे पास, एक बड़ी प्यारी सी बच्ची गुंजन ने इस गाने की रिक्वेस्ट डाली थी। आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6। आपका एक बार फिर से स्वागत अभिनंदन है।

श्रोताओ, ये जो प्रोग्राम है ना, ये मुझे तो खास करके बड़ा पसंद है, क्योंकि इस प्रोग्राम में जो हमारे अलग अलग श्रोता अलग अलग तरीके के गीत संगीत सुनते हैं, जो अलग अलग ट्रैक अपनी पसंद के सुनते हैं, उससे जो एक माला बनती है गानों की, गीतों की, उसकी बात ही अलग होती है। नए पुराने हर तरह के ट्रैक यहाँ पर हर अलग अलग कॉलर्स अपनी पसंद के सुनते हैं, तो ये जो प्रोग्राम है बेहद ही खूबसूरत हो जाता है। आपसे बातचीत करने का जो एक मौका मिलता है एंड कहीं ना कहीं आपकी पसंद जानते हैं, एक दूसरे से लाइव कॉन्वर्सेशन करते हैं, तो इसका जो मज़ा होता है, मतलब शायद मैं शब्दों में बताऊंगा तो कम पड़ जाएंगे शब्द। वेलकम बैक एक बार फिर से हेलो फरमाइश में, आप लगातार

0: हुए हैं और इस वक्त हमारे स्टेशन की घड़ी में वक्त हो रहा है 3:23। अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल हम नंबर आपको बताएंगे। जरा रुकिए तो सही जनाब। मैं सोच रहा हूँ नंबर बताने से पहले ना आइए जरा अपनी कॉलर से बात करते हैं। बड़ी देर से वो अपनी प्रतीक्षा की वेट कर रहे हैं, आइए जरा उनकी टर्न को लाइव ऑन एयर करते हैं, देखते हैं कौन कहाँ से जुड़े हैं और क्या है उनकी पसंद का गाना एंड क्या सुनना चाहते हैं या चाहती हैं, ये तो अभी ऑन एयर पता लगेगा मेरे दोस्त। हेलो फरमाइश। हेलो जी जी जी नमस्कार जी मैम, क्या नाम है आपका, नाम बताएं, स्वागत है आपका। जी जी मैम, आपसे ज्यादा आपके पंखे की आवाज आ रही है तो थोड़ा सा कम कर लीजिए अपने पंखे की साउंड। हाँ हाँ अभी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गर्मियाँ बहुत ज्यादा हो रही है मुझे लग रहा है, इसीलिए सब कूलर पंखे का
1: तो कुछ बंद करने का मन ही नहीं करता है ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल जी, अपने बारे में जरा बताएं, आप कहाँ से फोन कर रही हैं और क्या नाम है आपका। शाहजहांपुर, ये बरेली वाला शाहजहांपुर।
1: हाँ, अरे वाह,
0: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो वहाँ पे कैसा मौसम है, गर्मी कैसी है इस वक्त वहाँ।
1: ठंड बहुत पड़ रही है, सुबह से लेकर शाम तक बहुत गर्मी होती है।
0: मुझे लगता है कि थोड़े टाइम की बात और है, उसके बाद तो फिर बरसात का मौसम आ ही जाएगा मैम,
1: है ना। ठंडा मौसम आ जाएगा, बरसात जब आती है तो ठंडा मौसम हो जाता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल वही वाली बात है, लेकिन बस ये कि फिर गर्मियों को बहुत बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वैसे आलिया जी, आप करती क्या है अपनी रियल जिंदगी में, थोड़ा सा ये बताएं।
1: जरी का काम करती हूँ।
0: जरी का काम करती है, बहुत बढ़िया। तो मतलब कामकाज भी चालू रहता है और साथ में रेडियो भी सुनती रहती है। कामकाज भी चालू रहता है और साथ में रेडियो भी सुनती रहती है आप।
1: हाँ, रेडियो तो मेरे बचपन से शौक है सुनने का।
0: अरे वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
1: हमें नहीं सुनता, मेरे घर पे सभी लोग सुनते हैं, मम्मी पापा भाई बहन सभी लोग सुनते हैं।
0: अच्छा, तो रेडियो के कुछ फायदे बताओ, रेडियो आप लोग इतने शिद्दत के साथ सुनते हैं पूरे परिवार वाले।
1: पहले तो आप फोन यूज करोगे तो इसमें आंखों का ज्यादा जोर पड़ेगा, और रेडियो सुनते सुनते अपना काम भी करते रहो और रेडियो भी सुनते गाने मस्त सुनो, यही फायदा है, कोई काम में डिस्टर्ब नहीं होता है।
0: राइट, और कहीं ना कहीं आप खुद भी फोन करके अपना नाम अपनी पसंद का गाना भी सुन सकते हो, है ना। मैंने कहा, और रेडियो पे सबसे अच्छी बात ये कि आप खुद कॉल करके अपनी आवाज़ सुन सकते हो, अपने लोगों का नाम ले सकते हो। सो और बताइए आलिया जी, आप कब से जुड़ी हैं हमारे चैनल से, या फिर मुरादाबाद से, आप कब से जुड़ी हैं। अच्छा अच्छा, अरे वाह, कौन है वो महान इंसान जिसने आपको जोड़ा है, हमें जरा बताएं।
1: जोड़ा
0: है वो लाइन पे ही है, आप बात करिए थोड़ा। ये तो बड़ा मतलब जो है ना, वो सोने पे सुहागा कर लेते हैं आप लोग एक दूसरे के साथ, तुरंत लाइन चैन बना लेते हैं एक प्रॉपर। हाँ
1: जी जी, जिसने जोड़ा है वो लाइन पे बात करिए आप।
0: अच्छा अच्छा,
2: हेलो, नमस्कार आनंद भाई।
0: जी जी नमस्कार, जी नमस्कार। आवाज़ तो काफी जानी पहचानी है, लेकिन नाम बता देंगे तो जरा आसान हो जाएगा।
2: काशी नगरी बनारस से आपका नीमेश होता मोती मंसारी बात कर रहा।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, अरे वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। कैसे हाल चाल है आपके, ये बताइए आप।
2: मस्त है, चकाचक है, झक्कास है जैसे आप कहते हैं।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है, तो आप अब बनारस से जो है शाहजहांपुर भी पहुंच गए हैं।
2: जी, ये भी एक रेडियो की श्रोता ही है, तो हम लोगों का फिलहाल आपस में बातचीत है, तो हम
0: बहुत बढ़िया। मुझे लगता है कि मुझे ऐसे लगता है मोहसिन जी आलिया जी की जो रेडियो के दीवाने होते हैं ना, वो अपना ग्रुप बना के चलते हैं, है ना।
2: बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग का ग्रुप बना हुआ है। और रेडियो के माध्यम से काफी दोस्त भी बनते हैं सर।
0: हाँ ये तो है यार, ये तो है। मेरे को भी ऐसा लगता है कि रेडियो के माध्यम से तमाम लोगों से आप जुड़ते हैं, नए नए लोगों से रूबरू होते हैं, उसकी बात ही अलग होती है।
2: बिल्कुल बिल्कुल, और रेडियो का यही माध्यम है कि अच्छे अच्छे श्रोता भी बात करते हैं, तो किसी के जरिए हम लोगों की बातचीत हो ही जाती है।
0: करेक्ट करेक्ट करेक्ट,
2: रेडियो हम लोग रेडियो से करीब, रेडियो मैं कब से सुन रहा हूँ पता है आनंद भाई आपको।
0: जी जी,
2: 2012 से सुनता हूँ रेडियो।
0: अरे वाह, बहुत पुराने श्रोता है आप फिर तो।
2: जी जी, और काफी स्टेशनों से मेरा जुड़ाव है, मगर आपके स्टेशन पे बहुत लेट में मैं आया, करीब मुझे आए हुए 2-3 साल होने लगा आपके चैनल पे।
0: आई रिमेम्बर, मुझे याद है आपको इतना टाइम हो गया है।
2: सबसे पहले आपसे सही बात हुआ था ना।
0: मुझे याद है, मुझे याद है, मालूम है सर मुझे।
1: आनंद सर,
0: जी जी बताएं, जी जी बताएं।
2: और आपका जो आनंद भाई शो है सुबह वाला,
0: जी जी,
2: उसकी जितने भी तारीफ करे भाई कम है।
0: जितने भी करें काम है तो फिर मत करो यार, फिर अच्छा यही होगा।
2: बेस्ट प्रोग्राम करते हैं ना, अच्छा बोलने का अंदाज आपका जो है ना बहुत ही लाजवाब है, पढ़ने का मैसेज अंदाज तो वो भी लाजवाब है।
0: चलिए दोस्त,
2: तो यही दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ।
0: अरे नहीं नहीं यही हमारी भी कोशिश होती है, अगर कोई इंसान आपको अपना समय दे रहा है आज के समय में तो उसको भी कुछ आनंद आना चाहिए ना भाई।
2: क्योंकि मैं सुबह 100 को उठता हूँ, करीब 8 बजे जब 100 को उठता हूँ, ड्यूटी पे आता हूँ, कान में एयरफोन लगा के आपका प्रोग्राम चालू कर लेता हूँ, फिर मैसेज कर देता हूँ।
0: देखिए मोहसिन जी, आपने हमारी तारीफ के लिए जो है ना ये थोड़ा सा गलत तरीका आजमा लिया, आपने आलिया जी का समय चुरा लिया है, ये फोन तो उन्होंने लगाए थे ना मेहनत से, आपको दोबारा लगाना चाहिए था।
2: वो फरमाइश बताएंगे ना।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, तो मतलब एक कॉल पे दो निशाने, वाह वाह वाह बहुत बढ़िया, ये अच्छा हो गया।
2: उनसे भी आप बात कर लीजिए थोड़ा सा, फिर उनकी फरमाइश देख लीजिए आप।
0: बिल्कुल बिल्कुल मोहसिन जी, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। जी आलिया जी, हम आपसे पहली बार जुड़े हैं इस प्रोग्राम के जरिए।
3: आपसे फर्स्ट बार जुड़े हैं, मेरे को बहुत अच्छा लगा बात करके ही, बहुत अच्छा लगा।
0: जी हमें भी आपसे बात करके बेहद खुशी हुई, और ये बातों का सिलसिला तो ऐसा है मैम, हम जितनी करेंगे कम पड़ जाएंगे, और पीछे तमाम लोग इंतजार कर रहे हैं अपनी कॉल का। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। और अभी इसी बात पे मैं आपके गाने की तरफ थोड़ा सा बढ़ना चाहूंगा, आज आप क्या सुनेंगे अपने दोस्तों के साथ? अच्छा जी, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा गीत है। और किसी का नाम लेंगी आप इस प्रोग्राम में, आपका कॉल शामिल हुआ है तो?
3: पहले
0: जी जी,
3: मेरी दो छोटी बहन है शाजिया खान, नाजिया खान, भाई का नाम बसीन खान, जो भाभी अल्फामा सरसलान और भाभी सरजाना, और साथ में और।
0: चलिए आप सभी के साथ इंजॉय कीजिए इस गीत को, और हम भी सुनते हैं आपके इस गीत को आप ही के साथ, ठीक है मैम? चलिए नमस्कार मैम, थैंक यू सो मच, बाय बाय मैम। ये जुड़ी थी आलिया जी शाहजहांपुर से हमारे साथ, गाना तो काफी अच्छा है वैसे। मैंने आपको पहले कहा था ना, ये वो प्रोग्राम है जिसके अंदर बहुत अच्छी एक माला बनती है, एक चेन बनती है गीतों की, सबके गाने बड़े डिफरेंट होते हैं, बड़े अलग होते हैं, और उनको सुन के सच में आनंद आ जाता है। आप लोग भी कुछ सुनना चाहते हैं तो नंबर बता रहा हूँ, प्लीज़ फ़ोन करिए 9837896896 9837896896। ये स्टूडियो का नंबर, इस नंबर पर आप फटाक से मुझे कॉल करिए, इंतज़ार रहेगा हमें आपके फ़ोन कॉल्स का। 3:30 हो गए स्टेशन क्लॉक में, एंड इस वक्त इस प्रोग्राम को होस्ट कर रहा हूँ मैं, आपका दोस्त आनंद, जहां पर बातें हो रही हैं आपकी और हमारी दिल से दिल तक। लेकिन रुकेंगे एक छोटे से एड ब्रेक के लिए, उसके बाद फटाफट से चलेंगे इस गीत की तरफ, एंड लौट कर आएंगे किसी एक लकी कॉलर के साथ। इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद।
4: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
5: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
6: जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सांसें सही, जिंदगी सही।
7: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चावला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अशोर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीज एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।

0: श्रोताओं एक बार फिर से वेलकम बैक है। बहुत ही खूबसूरत गीत अभी आप सुन रहे हैं और इस गीत की फरमाइश जो है हमारे पास आई थी आलिया जी की। कहां से मैसेज नहीं कॉल किया था यार उन्होंने, ये सभी हमारी बात हुई थी ना शाहजहांपुर से जुड़ी थी। लेकिन आप लोग जो मैसेज कर रहे हैं हमारी आपसे गुजारिश है ये मैसेज के प्रोग्राम नहीं है, ये जो प्रोग्राम है 3 से 5 ये एक्सक्लूसिवली फोन इन प्रोग्राम होता है। इस प्रोग्राम के जरिए आप हमारे साथ सीधा बातचीत का जो एक लुफ्त है वो उठा सकते हैं, मतलब आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं और एकदम ओरिजिनल नंबर मैं आपको दे रहा हूँ जिसपे आप मेरे साथ ऑफिशियली 1-to-1 इंटरेक्शन कर सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं, ढेर सारी बातचीत कर सकते हैं। आई नो आप गाड़ी चला रहे हैं, आपको कोई मतलब नहीं है कि रेडियो पे कौन बात कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कान थोड़ा रेडियो के करीब ही रखो यार। वेरी गुड, थोड़ी सी वॉल्यूम बढ़ाओ, वेरी नाइस, हाँ ये बात। चलो आगे बढ़ते हैं, आप बस एंजॉय करते रहो, कोई बात नहीं भाजी, कोई गल नहीं है, मेरी कोई शिकायत नहीं है, तुसी ड्राइव करो, तुसी आराम ना लेसी की जो ये नंबर है ना इसको बढ़ा लो और बस ऐसे सुनते जाओ आनंद को। आप लोगों के बीच में आकर ना मेरे अंदर से एक बड़ी अच्छी सी शायरी आ रही है। आई एम नॉट अ गुड शायर, मैं कभी शेरो शायरी करता नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी वो कहते हैं ना कि जब अंदर से कोई फीलिंग आए, कोई विचार आए, कोई थॉट आए तो उसे मन में रखना चाहिए, मतलब उसे कह देना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है, ऐसा मेरी माँ कहती है। तो एक बहुत ही प्यारी शायरी आ रही है कि मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, अजी वाह वाह तो कर दो। कहते हैं कि मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, कुछ रिश्तों का कोई तोल नहीं होता, लोग तो मिल जाते हैं हर मोड़ पर हर कोई आपकी तरह अनमोल नहीं होता। वाह जी वाह, ये मैंने खुद के लिए ताली बजा ली यार। देखो आप लोग तो करोगे नहीं वाह वाह, तो मैं ये खुद ही मैं बजा लेता हूँ अपनी शायरी के ऊपर। वेलकम बैक वंस अगेन, यू आर लिसनिंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे आप सुन रहे हैं आपका अपना फेवरेट प्रोग्राम जिसका नाम है हेलो फरमाई। डेली मंडे टू सैटरडे होती है आरजे खुशी, लेकिन आज ट्यूसडे को हूँ मैं आनंद आपके साथ, कह सकते हैं गलती से मिस्टेक। लेकिन कोई बात नहीं यार, मैं जब भी आपसे बातचीत करने आता हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है, बड़ा मन प्रफुल्लित हो जाता है आपसे बातचीत करके। और अभी अपनी बातों को विराम देते हुए आगे बढ़ेंगे, एक कॉलर है जो बड़ी देर से वेट कर रहे हैं अपनी बारी का, उनसे बात करते हैं ना। हेलो फरमाइश
1: जी, आनंद
0: भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोग्राम में, नाम बताएं। नमस्कार।
1: नमस्कार, मैं ऋषिपाल मंझोला प्राइमरी स्कूल से बोल रहा हूँ जी।
0: ऋषिपाल मंझोला प्राइमरी स्कूल से जुड़े हैं हमारे साथ, ऋषिपाल जी स्वागत है आपका हेलो फरमाइश में। क्या करते हैं थोड़ा सा अपने बारे में बताएं।
1: सर हम इन्वर्टर चलाते हैं।
0: अरे वाह बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस, मतलब पूरी जनता को इधर से उधर, उधर से इधर पहुँचाते हो आप, हाँ उनकी मंजिलों तक पहुंचाते हो। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, गुड जॉब यार। कितने बजे निकलते हैं आप मिनी मेट्रो लेकर सड़कों पर?
1: मैं सुबह 10 बजे निकलता हूँ, रात के 10 बजे तक चलाता हूँ, लगातार 12 घंटे।
0: क्या बात है, क्या बात, मुझे लगता है आपको काफी मजा आता है ना ये चीज करने में। जो लोग एंजॉय करके करते हैं ना वही इतना कर सकते हैं भाई। तो अभी इस वक्त कहाँ है आपकी मिनी मेट्रो, कौन सी रोड पर है मुरादाबाद की, कौन सी सड़क पर दौड़ रही है इस वक्त?
1: इस समय तो मियां कॉलोनी पीर बाजार में हूँ मैं।
0: अच्छा, मियां कॉलोनी पीर बाजार, ऑल राइट, करूले की साइड है मतलब आप, है ना?
1: हाँ जी हाँ।
0: यार उधर रश बड़ा रहता है, मैं जब भी जयंतीपुर की तरफ जाता हूँ टीले की तरफ बहुत भीड़ मिलती है उधर।
1: इस समय भाई साहब मैं मोड़ वाली मस्जिद पर हूँ, मेरा
0: खेर में। अच्छा, मेरा खेर मोड़ वाली मस्जिद, उधर हमारे रेडियो श्रोता भी रहते हैं, मैं अक्सर जाता रहता हूँ उधर। तो बड़ा, एक तो बीच में रोड खराब है, थोड़ा सा पानी भर जाता है वहाँ, वाटर लॉगिंग रहती है, थोड़ी सी दिक्कत होती है। अरे चाय पीने आप जब कहेंगे तब आ जाएंगे। अरे कैसी बात कर दी आपने ऋषिपाल जी, आप तो बिल्कुल पड़ोस में रहते हैं।
1: हाँ जी बिल्कुल, आपके पड़ोस में प्राइमरी स्कूल के ठीक सामने, अच्छा के बगल में।
0: अच्छा अच्छा, ये बताओ आप जिस एरिया में हो वहाँ भीड़ तो नहीं है? वहाँ भीड़ बहुत मिलती है। अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, तब तो ठीक है, तब तो ठीक है। और बताइए सब बढ़िया है आपके परिवार में?
1: हाँ जी हमारे परिवार में सब बढ़िया, और वो भी शायद एफएम चालू होगा घर का तो हमारी आवाज सुनते होंगे।
0: अच्छा अच्छा, मतलब आप क्या, आप इशारों में कह रहे हो कि आपकी भाभी भी सुन रही होंगी? हाँ समझ गया हूँ मैं ऋषिपाल जी आपकी बातें को। चलिए कोई बात नहीं, आपका आपकी जो वो प्यारी सी बातें ना वो भाभी सुन के मुस्कुरा रही है। कुछ कहना चाहते हैं आप?
1: हाँ जी हाँ जी,
0: कुछ कहना चाहते हैं घर वालों से, कोई मैसेज देना चाहते हैं, कोई गाना सुनना चाहते हैं?
1: गाना?
0: हाँ,
1: दिल पे चलाएं छुरिया पुराना वाला।
0: अच्छा, दिल पे चलाएं छुरिया पुराना वाला, दिल पे छुरी किसने चला दी ये बताओ आप पहले तो।
1: नहीं है हाँ फिर गाना अच्छा लगता है,
0: गाना अच्छा लगता है। छुरी वाली बातें मत करो, शाम को घर भी जाना है, भाभी रेडियो सुन रही है, दिक्कत हो जाएगी, ऐसी बातें मत करो ऋषिपाल भाई, अच्छी बातें करो। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके ऋषिपाल भाई, ऑल द बेस्ट, आप ऐसे अपनी मिनी मेट्रो दौड़ाते रहिए। गलती से अगर मैं आपको मिल जाऊँ तो मुझे बिठा लेना भैया।
1: बिल्कुल, आप मिलो तो सही।
0: ठीक है, पक्का मिलते हैं, चाय भी मिलते हैं पक्का किसी दिन।
1: अरे आप भैया सुनो, ये मेरा पर्सनल नंबर है, आपको इसी नंबर पे फोन करो जब आपका दिल करे मुझसे। अच्छा,
0: पक्का पक्का पक्का पक्का। अभी ये गाना लगा रहा हूँ भाभी जी के लिए, ठीक है? नाम तो बता दो भाभी का।
1: हाँ बिल्कुल,
0: हाँ नाम बताओ।
1: ऋषिपाल भाभी का नाम रजनी है।
0: रजनी भाभी जी को ये गाना लगा रहे हैं यहाँ से हम ऋषिपाल भाई की तरफ से। चलो भैया आप इंजॉय करो और गाना सुनो, ठीक है? नमस्कार जी, नमस्कार जी। हाय देखी मेरी, सुनो निगम साहब की इतनी प्यारी आवाज, गाना है एब्सोल्युटली बहुत ही अल्टीमेट है ये।
2: तूने
0: हाय हाय
2: दिल के रिबो संग मेरे ओ दिल पे चलाई छुरी।
0: क्या सुन लिया है ऋषिपाल जी आपने, है ऐसे गाने सुनोगे, मतलब रजनी भाभी ऐसे गाने सुनवाओगे आप? एनीवेज जैसे जोक सपाट, बहुत प्यारा गाना है। अगर आप भी ऐसे कुछ सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल आप मुझे फोन कर सकते हैं 9837896896 पर। स्टूडियो का नंबर बहुत ही सिंपल है, एक बार वंस अगेन रिपीट कर रहा हूँ, 9837896896। आप पेड़ की छांव में लेट के सुन रहे हो। आए हाय

0: क्या मतलब प्यारा सा गाना है। सोनू निगम साहब ने बड़ी प्यारी सी आवाज में गाया है, बड़ी खूबसूरती के साथ।
1: तुझको तरसना आया न देखी मेरी मजबूरियां,
0: हाय हाय हाय
1: न देखी।
0: ये मैं सूरज चाचू को कहना चाहता हूँ, सूरज चाचू थोड़ी मजबूरी देख लेते, काला कर दिया अपने स्किन पे, टैनिंग हो गई है भाई साहब।
1: दिल के नजदीक
0: हाँ यार इतना
1: ओ दिल पे
0: मैं क्या बताऊँ, इतनी तेज धूप हो रही है यार।
1: ओ दिल पे चलाए छुरिया, दिल पे चलाए।
0: ऋषि पाल जी की रिक्वेस्ट पर था ये गाना, आपने सुन लिया हेलो फरमाइश में आरजे आनंद के साथ।
2: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
3: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
4: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
5: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
4: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 705070552।
6: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
7: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
8: अरे भाभी आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
7: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
9: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।

0: दोस्तों स्टेशन क्लॉक में वक्त हुआ है 3:52 आज 23 जून की ये प्यारी सी दोपहर जिसमें हम आपके साथ ढेर सारी बातचीत कर रहे हैं। दिन है आज मंगलवार का। तमाम सारे श्रोता साथी लगातार हमारे साथ जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, ढेर सारे लोग हमें कॉल मिला रहे हैं। आप यकीन मानिए अगर आपका फोन नहीं लग रहा है ना तो बस आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आपका कॉल जरूर लगेगा। आप दिल से फोन लगाइए, आप मन से फोन लगाइए, क्योंकि रेडियो के इस पार आज आपका दोस्त बैठा है और उस पार आप मुझे कॉल कर रहे हैं, तो ये जो कनेक्शन है ना वो दिल से दिल तक वाला है ना, तो आपका फोन डेफिनेटली लगेगा। बस आप ये जो कनेक्शन है ना वो जैसे कि मैंने कहा वो दिल से दिल तक का है, तो आप दिल से फोन मिलाइए और आपके दिल की घंटी पहुंचेगी सीधा मेरे दिल तक, जरूर आपका फोन शामिल होगा। आप लगातार प्रयास करते रहिए मेरे दोस्त, हार मत मानिए, अभी तो बहुत सारा समय है। चलिए आगे बढ़ेंगे इस प्रोग्राम में और जुड़ते हैं अपने अगले कॉलर के साथ। कौन कहां से जुड़े हैं और क्या है उनकी खूबसूरत सी फरमाइश। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश,
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार, नाम बताएं साहब, कौन बोल रहे हैं?
1: नमस्कार जी, मेरा नाम अतर सिंह सैनी है।
0: अतर सिंह सैनी,
1: संभल रोड बरतोड़ से बोल रहे हैं।
0: जी जी जी, अतर जी कैसे हाल चाल है आपके, ये बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अतर सैनी जी आप क्या करते हैं जरा ये बताएं मुझे।
1: मेरा देखो मेन काम तो है खेती बाड़ी का।
0: अच्छा, खेती बाड़ी का मेन काम है। अच्छा अच्छा,
1: और दूसरा काम है मेरा प्लॉटिंग का।
0: प्लॉटिंग का भी, अरे वाह बहुत बढ़िया। प्रॉपर्टी से रिलेटेड
1: बढ़िया है दोनों। अच्छा, काम में ये मतलब अच्छे हैं।
0: चलो बहुत बढ़िया। तो अभी खेती बाड़ी में क्या चल रहा है अगर मैं उस तरफ थोड़ा सा जानना
1: चाहूँ? खेती बाड़ी में तो इस टाइम अब धान लगाने की तैयारी चल रही है।
0: अरे
1: खेत खाली,
0: चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धान की तैयारी चल रही है, तो जो धान से पहले कुछ लगाते हैं वो आपने कर दिया तैयार?
1: जी हाँ, वो तैयार कर दिया हमने। अभी पीछे गेहूँ काटे हैं, फिर उसके बाद में मतलब हमने वो देसी वाले खीरे लगाए थे।
0: अरे वाह, तो देसी खीरे तो यार हमें भी खिलाने चाहिए थे, तो गलत बात है यार। अरे कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं। आपने आपने मतलब
1: आपके खिलवाएंगे आपके, जरूर।
0: पक्का पक्का पक्का, हमें इंतजार रहेगा, है ना। और इसके अलावा और क्या लगाते हैं आप, तरबूज और ये सब
1: नहीं,
0: कुछ?
1: नहीं, बस बस देसी खीरे और हम गेहूं धान।
0: अच्छा अच्छा, मतलब चावल की खेती भी करते हैं आप, ऐसा ना?
1: हाँ, और ये तुम्हारे के अपने घर में पशु पालते हैं तो उनके लिए चारा।
0: अच्छा अच्छा, मतलब वो तो फिर अच्छा, घर में पशु भी पाल रखे हैं आपने?
1: हाँ जी जी।
0: अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो मतलब देसी घी घर पे बनाते हो?
1: हाँ, अपने घर पे हमारे यहाँ तो मतलब चलता है आज भी मठा, मतलब पड़ोसी में दूध उठता है हमारा आज भी।
0: तो फिर वो फिर वो जो देसी मठा है वो कब पिलवा रहे हैं आप, ये बताइए। वो देसी मठा तो हमें बहुत पसंद है यार,
1: सब पीने जाते हैं आप बताइए।
0: मैं आपको मजाक से हटके बता रहा हूँ अतर जी, क्योंकि वो जो मठा होता है ना वो देसी मठे की बात अलग ही होती है। मतलब
1: मेरी बात सुनो आप, ये मेरा नंबर है, आप जो है
0: आज सभी नंबर दे रहे हैं, रेडियो पे लाइव कॉल चल रही है, सब लोग सुन रहे हैं। भाई क्या ही हो रहा है ये जनता के सामने, आप ऐसे मत बोलो यार। आपसे पहले वो भी
1: तुम बात कर लियो ना। इतना
0: अच्छा अच्छा अच्छा, अरे अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। अरे हम तो मजाक कर रहे हैं अतर जी, आप तो
1: मजाक नहीं, बिल्कुल पक्का होके होगा।
0: चलो तो ये देखिए, ये बात करते करते इतने एक्साइटेड हो गए कि ये होल्ड पे चले गए, मुझे लगता है मठा बनाने तो नहीं पहुंच गए। हेलो अतर जी, हेलो हेलो, शायद शायद अनफॉर्चुनेटली उनका फोन जो है वो यू नो होल्ड पे चला गया। वेल उनका गाना मुझे पता था, उनसे थैंक गॉड मैं उनका गाना पूछ लिया था। भाई प्लीज आप अपना मठा बनाने में मत लगो, आप अगर कॉल पे थे तो आप मेरे से बात करते यार भाई। चलिए दोस्तों, आप जो है मैं अब आपसे ऐसी बातें नहीं करूंगा कि आपका कॉल जो है वो होल्ड पे चला जाए। एक तो बड़ी मशक्कत और मेहनत के बाद जो है आपका फोन जो है हमारे प्रोग्राम में लगता है। फिलहाल इनकी पसंद का एक गीत अतर सैनी जी ने हमें कॉल किया था, उनकी रिक्वेस्ट पर एक बहुत ही खूबसूरत गाना फ्रॉम द फिल्म सनम बेवफा का ट्रैक लता मंगेशकर जी ने गाया है, बहुत ही प्यारा गाना है, इसी को साथ में सुनेंगे। अगर आपको सुनना चाहते हैं तो आप मुझे फोन करेंगे 9837896896 पर। आप हैं आनंद के साथ प्रोग्राम में हेलो फरमाइश।
2: हेलो

0: श्रोताओं, इसी गीत के साथ वक्त बता देते हैं आपको। स्टेशन क्लॉक में वक्त हुआ है 4:01। आप सुन रहे हैं हेलो फरमाइश आरजी आनंद के साथ। फोन इन प्रोग्राम है आपका अपना पसंदीदा, और आज इसको होस्ट कर रहा हूं मैं, आपका दोस्त आनंद। अगर आप भी कुछ सुनना चाहते हैं तो आप मुझे कहां कॉन्टैक्ट कर सकते हैं भाई? मेरे नंबर पर आप मुझे फोन कर सकते हैं। नंबर बहुत ही आसान है, अभी बताता हूँ, लेकिन उससे पहले कुछ एड ब्रेक का टाइम हो गया है।
1: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
2: अरे भैया, नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
3: सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। BMC हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
4: स्किन एलर्जी, मस से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग, यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद, 7983153386।

0: श्रोताओं, दूसरे घंटे की शुरुआत हो चुकी है। दोस्तों, आप आनंद के साथ हैं और सुन रहे हैं आपका अपना फेवरेट प्रोग्राम जिसका नाम है हेलो फरमाइश। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम बैक है वंस अगेन। ये है हेलो फरमाइश, आप ही का फेवरेट रेडियो स्टेशन ऑफ द नेशन, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। दूसरे घंटे की शुरुआत हो गई है एंड दिस इज माय लास्ट आवर। एब्सोल्युटली जी, 4:00 हो गए, घड़ी वक्त बता रही है, 4:03 हो गए जी। माई गॉड, टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस। ओ माई गॉड, सोच रहे हैं गर्मी कितनी अलग लेवल पे पहुंची हुई है। वही इसलिए कह रहे हैं बार पानी प्लीज पीते रहिए, बहुत ज़रूरी है। और अभी मैं एक छोटी सी शायरी आपके लिए रखना चाहता हूँ, आई एम श्योर आपको मज़ा आ जाएगा इस सुन के। आजकल तो बड़ा शायर वायर हो रहा हूँ मैं भी, पता नहीं यार कहाँ से आ रही है, आई डोंट नो। तो भैया अर्ज किया है, अरे वाह वाह तो कर दो यार, हाँ वेरी गुड। चलिए शुरू करते हैं कि भैया आपकी मोहब्बत ही हमारी पहचान है, कि आपकी मोहब्बत ही हमारी पहचान है, आपकी मुस्कुराहट ही हमारी शान है, यूं ही बनाए रखिए हमारा साथ। जी हाँ, यूं ही बनाए रखिए आप अपना और हमारा ये प्यार का साथ, क्योंकि आपसे ही तो हमारे शो की जान है। वाह वाह, मतलब मैंने जो बीच में गड़बड़ करी है ना शायरी में, मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन फिर मैंने इसको कवर भी कर दिया है, लेकिन फिर मजा आ गया, यू नो मजा आ गया। भाई साहब आपको अच्छा नहीं लगा, ओहो चलो यार नाराज मत हो, आप उससे अच्छी शायरी कर दो, फिर लगाओ फोन मुझे जरा 9837896896। आई एम वेटिंग फॉर यू कॉल। चलो आगे बढ़ते हैं यार, अभी कॉलर जुड़े हैं उनसे बात करते हैं। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है, अपना नाम बताएं।
1: मेरा नाम सोनू कुमार, सत्यदत्त विद्यालय से बोल रहा
0: हूँ। जी सोनू जी, बताएं बताएं कैसे हाल चाल है सोनू जी आपके।
1: बढ़िया है, आप कैसे हैं?
0: मैं बहुत ही हैंडसम हूँ, बहुत ही बढ़िया हूँ, थोड़ा सा पतला हो गया हूँ।
1: सर बहुत अच्छे हो आप।
0: अच्छा, मैं रोज भागता हूँ इसलिए।
1: सर आपसे बात हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है।
0: चलिए सर, हमें भी अच्छा लग रहा है सोनू जी। और बताइए सब बढ़िया चल रहा है, क्या करते हैं आप?
1: सब बढ़िया चल रहा है सर, हम सिलाई का काम करते हैं।
0: अच्छा अच्छा, अरे वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो रेडियो सुनते रहते हैं, कितने बजे आप रेडियो सुनना शुरू करते हैं सर ये बताएं?
1: सर हम आपका प्रोग्राम तो 6 बजे वाले आते हैं, आरती वाला ये सुनते हैं।
0: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा,
1: फिर 9 बजे वाले सुनते हैं, मैं सुन लो सुबह स्टार्ट कर देते हैं, फिर सबका प्रोग्राम सुनते रहते हैं।
0: अरे वाह अरे वाह, मतलब पूरा दिन रेडियो चालू रहता है, आप ऐसा कह रहे हैं ना, पूरा दिन आप जो है रंगारंग कार्यक्रमों में सराबोर होते रहते हैं, बहुत बढ़िया। वेरी नाइस वेरी नाइस। आज जी जी जी जी, आज क्या सुनेंगे इस प्रोग्राम में सोनू जी आप?
1: एक लड़की थी एक लड़का था,
0: एक लड़की थी एक लड़का था, कहाँ थे आपने, कहाँ देखा? कहाँ थे, एक लड़का था एक लड़की थी, कहाँ थे ये बताओ आप मुझे, मैं जाता हूँ देखने।
1: हमारे पास ही थे।
0: अच्छा, ये कौन सा गाना है मेरे सर, ये तो बताओ आप, ये कौन सी पिक्चर है?
1: सर ये पिक्चर का नाम, मूवी का नाम नहीं पता मुझे।
0: अच्छा, एक लड़का था एक लड़की थी।
1: सर आप भी तो हमारे साथ हो।
0: नहीं, आप ही ने बोला एक लड़का था एक लड़की थी, ये कौन सा गाना है गाइज, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन शायद आप उसकी बात तो नहीं कर रहे हैं। आओ सुनाओ प्यार की कहानी, एक था लड़का एक थी लड़की दीवानी। अरे तो बाबा ये बोलना था ना, आप बोल रहे एक था लड़का एक थी लड़की, अब कहाँ थी ये भी तो नहीं पता। चलिए कोई बात नहीं, समझ लिया मैंने आपका गाना, समझ लिया। और बताइए सब बढ़िया चल रहा है?
1: सब बढ़िया सर, आप आपको सुनते हैं बहुत अच्छा लगता है।
0: अरे वाह बहुत बढ़िया, हमें भी अच्छा लगता है आप लोगों से बातचीत करके, और बहुत आनंद आता है। जी जी, किसी का नाम लेंगे सोनू जी जाते जाते प्रोग्राम में?
1: सर हमारे हमारे साथ हमारे दोस्त हैं। ये सभी उमेश प्रजापति हैं, रमेश हैं, और भी दोस्त हैं, सभी के साथ सुनना चाहते हैं।
0: कौन सा गाना? एक लड़का था एक लड़की थी, है ना? चलिए चलिए मैंने निकाल दिया, आप सुनिए इस गाने को, ठीक है? नमस्कार नमस्कार, थैंक यू सोनू जी, बुद्धि बिहार सेक्टर 10 से जुड़े थे, एक लड़का था एक लड़की थी, ना ना ना ना ना, आओ सुनाओ प्यार की कहानी, एक था लड़का एक थी लड़की दीवानी। आप भी फोन कर सकते हो यार 9837889689 6 9837 8968 9 6 स्टूडियो का नंबर बहुत ही आसान है, कॉल लगाते रहिए। गुड आफ्टरनून।

सोनू निगम श्रेया घोषाल की आवाज में एंजॉय कर रहे हैं आप क्रिश मूवी का गाना। दोस्तों अगर आप भी कोई गीत सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल आप मुझे फोन कर सकते हैं 9837896896। ये स्टूडियो का नंबर है। बहुत कम मेरा इस प्रोग्राम में आना होता है लेकिन हम जब भी आते हैं आपसे मुलाकात कर ही लेते हैं एंड ढेर सारी बातचीत हो जाती है। तो आप भी हमें फोन करिए और इसी बीच एक प्यारी सी बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, दिल की बात। मुझे लग रहा है कि फटाफट से आप तक पहुंचा देता हूँ। तो भैया मेरी प्यारी सी लाइन, हर आवाज के पीछे एक कहानी होती है, हर आवाज के पीछे एक कहानी होती है, हर मुस्कान के पीछे एक निशानी होती है। आज फिर जुड़े हैं हम आपसे क्योंकि आपके बिन हमारी महफिल ये अधूरी सी होती है। तो इस अधूरी महफिल को पूरा कीजिए हमें फोन करके। इंतजार है हमें आपके फोन कॉल्स का। आप सुन रहे हैं आरजी आनंद को ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम पर।

0: बहुत ही बेहतरीन गाना। सोनू जी ने इस गाने की रिक्वेस्ट की थी, वो थोड़ा सा लिरिक्स से जो है कहीं और ट्रैक पर पहुंच रहे थे, लेकिन हम भागते पकड़ते दौड़ते इस गाने को ढूंढ के ले आए थे उनकी रिक्वेस्ट में। बहुत ही खूबसूरत ट्रैक था। दोस्तों आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे आपका फेवरेट प्रोग्राम जिसका नाम है हेलो फरमाइश। आप दिल्ली रोड पे हैं या कांच रोड पे या है आप स्टेशन रोड पे, आप जहाँ भी हैं बिल्कुल आप अपनी गाड़ी विच भी हमें फोन लगा सकते हो यार, बट गाड़ी साइड करके यार, ऐसे नहीं लगाना है कि आप गाड़ी चला रहे हो तो फोन लगा रहे हो। फोन नहीं चलाना गाड़ी चलाते टाइम ना, गलत बात है। हाँ अभी पड़ोसी को दे दो यार। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, आप सुन रहे हैं आपका अपना फेवरेट प्रोग्राम और हमारे साथ लगातार ढेर सारे कॉलर जुड़ रहे हैं, बड़े सारे बैक टू बैक कॉल्स आ रहे हैं और बड़े मजेदार कॉल्स आ रहे हैं। कुछ लोग तो कह रहे हैं यार कल तो कॉल लग गई थी, अब आज क्या ही कॉल लगाएं, अच्छा नहीं लगता है ना। वेरी गुड, यू आर वेरी इंटेलिजेंट। देखिए रूल ब्रेक मत कीजिए, अगर आपका फोन कल लग चुका है और आनंद अगर आ जाए तो कोई बात नहीं, आज आप और नए नए श्रोताओं की बातों का, आज आनंद की बातों का जो है आनंद लेते रहिए। रेडियो पे जो है ढेर सारी बातचीत जो चल रही है उसका लुत्फ उठाइए ना यार, है ना, वो भी तो एक मजेदार एक अच्छी चीज है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वक्त हमारे स्टेशन क्लॉक में वक्त हो रहा है 4:14। श्रोताओं एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश,
0: बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन, अपना शुभ नाम बताएं।
1: सर मेरा नाम सबीना खान है, मैं रहमत नगर से बात कर रही हूँ, रहमत नगर मुरादाबाद से।
0: रहमत नगर मुरादाबाद से शबीना खान जी जुड़ी हैं। शबीना खान जी आपका स्वागत है प्रोग्राम में, बताइए क्या करती हैं अभी आप?
1: फिलहाल तो सर मैं अभी मैंने यूपी कांस्टेबल का एग्जाम दिया था।
0: अच्छा,
1: तो
0: अच्छा,
1: उसके रिजल्ट का इंतजार है अभी।
0: अरे वाह, चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। आपने यूपी कांस्टेबल का एग्जाम दिया और इतना टिपिकल और इतना चैलेंजिंग होता है, क्योंकि आपका सेंटर यही था या बाहर था?
1: मेरा तो ये बाहर ही था, मतलब ज्यादा दूर नहीं था,
0: ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन फिर भी मैम बहुत यू नो मैं देखता हूँ सारे ओके तमाम सारे युवा जो है लगातार इतनी मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद इतनी जिद्दोजहद के बाद एग्जाम देते हैं तो रिजल्ट का वेट तो रहता ही है, तो आपको क्या उम्मीद है, कितना कॉन्फिडेंस है अपने एग्जाम पे?
1: अभी तो मतलब कुछ पता नहीं क्योंकि काफी टफ आया था एग्जाम।
0: ओहो, लेकिन आपने मतलब कोशिश की है ना शबीना जी?
1: कोशिश तो मैंने की, बाकी तो है ऊपर वाले की मर्जी।
0: नहीं, देखिए ऊपर वाले की मर्जी बिल्कुल वही होती है, जो मेहनत करते हैं जिनके इरादे मजबूत होते हैं उनके साथ हमेशा अच्छा होता है, तो पॉजिटिव सोचिए, सब बढ़िया होगा। हमारी तमाम सुनने वालों की जो है दुआएं आपके साथ है, हमारी भी आपके साथ दुआएं हैं।
1: थैंक यू सर।
0: जी जी बिल्कुल, तो तैयारी भी चल रही है, रिजल्ट का इंतजार भी चल रहा है और रेडियो भी चलता रहता है। वाह
1: जी सर, आपका प्रोग्राम सुनते हैं तो मतलब माइंड फ्रेश हो जाता है बिल्कुल।
0: अच्छा अच्छा, कौन कौन से प्रोग्राम से जुड़ती हैं शबीना?
1: हमारे यहाँ तो ये लगा लीजिए आप, शाम तक मतलब चलता ही रहता है आपका प्रोग्राम, मतलब आते रहते हैं तो सुनते रहते हैं सभी।
0: वेरी गुड वेरी गुड, तो आपको अच्छे लगते हैं हमारे स्टेशन के प्रोग्राम?
1: बहुत बहुत अच्छे लगते हैं सर, खुशी मैम, रीना मैम और आप सभी, मतलब सारे प्रोग्राम अच्छे लगते हैं।
0: चलिए बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और बताइएगा, गर्मियाँ बहुत ज्यादा हो रही हैं तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे हमारे तमाम सुनने वालों को?
1: जी सर, मैं सभी को ये कहना चाहूंगी कि मतलब घर में ही रहें ज्यादा, मतलब जरूरी है तो ही निकले बाहर।
0: बिल्कुल, क्या
1: और जो है पानी पीते रहें।
0: बिल्कुल, ये एहतियात बरतना बहुत जरूरी है ना, छोटी छोटी चीजें हैं,
1: छोटे जैसे पक्षी होते हैं ना, मतलब छोटी चिड़िया वगैरह, इनके लिए अपने छत पे पानी जरूर रखें।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि बेचारे बेजुबान कुछ कह भी नहीं पाते।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो हमें इनका भी मतलब सोचना होगा, मतलब
0: बिल्कुल उनके लिए आप छोटे से पानी जो है मिट्टी के पात्र में पानी रख सकते हैं, अपनी छत पे, अपने घर के बाहर।
1: हाँ
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सही कहा शबीना जी, बहुत ही खूबसूरत संदेश। आज कौन सा ट्रैक आप सुनना चाहती हैं?
1: अली मौला अली।
0: अच्छा चलिए मैं ढूंढने की कोशिश करता हूँ इस गाने को, कौन से सिंगर ने गाया है ये?
1: ये शायद सलीम सुलेमान है, शायद मेरे उनका ही है सॉन्ग,
0: चलिए मैं इस गाने को निकालता हूँ। एंड थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत ही अच्छा लगा आप जुड़ी। ओके नमस्कार सबीना जी, बाय बाय बाय बाय, थैंक यू सबीना जी। तो श्रोताओं ये जुड़ी थी शबीना खान जी रहमत नगर से और बहुत ही खूबसूरत गीत लेकर आई है हमारे बीच में, तो इस गाने को सुनते हैं, बहुत ही प्यारा ट्रैक है।

सुलेमान की आवाज एंजॉय कर रहे थे आप। बहुत ही खूबसूरत ट्रैक लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल। ये है आपका अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे। आप सुन रहे हैं आपका अपना फेवरेट प्रोग्राम हलो फरमाइश। 3 से 5 डेली होती है आरजे खुशी आपके साथ, लेकिन आज आरजे आनंद ने दस्तक दी थी और बहुत मजा आया आपसे बातचीत करके। वाकई में कैसे हमारे ये 2 घंटे पूरे होने वाले हैं, हमें खुद को भी यकीन नहीं हो रहा है श्रोताओं। एंड थैंक यू सो मच। ये लाइव फोन इन प्रोग्राम है, एक्सक्लूसिवली लाइव चलता है एफएम मुरादाबाद से। अगर आप भी कोई ट्रैक सुनना चाहते हैं, किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो बिल्कुल मोस्ट वेलकम है। आप हमें कॉल करिए ना, नंबर जो है बहुत ही आसान है, 9837789689। इस नंबर के जरिए आप मुखातिब हो सकते हैं मेरे साथ।

0: चलिए आगे बढ़ेंगे, कॉलर हमारे साथ जुड़ी है, उनसे बात करेंगे। कहाँ से कौन जुड़ी है? हेलो फरमाइश। हेलो हेलो फरमाइश, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो हेलो, आवाज तो आई। हेलो मैम, कैसे हैं आप?
1: मैं
0: बहुत ही बढ़िया हूँ, मैं बहुत ही बढ़िया हूँ। आप बताएं कौन बोल रही है बड़ी प्यारी सी आवाज में, क्या नाम है आपका? अच्छा,
1: मेरा नाम है तो कहते हैं कि मैं बागों की बुलबुल हूँ, सभा में उड़ना काम है मेरा। मैं बागों की बुलबुल हूँ, सभा में उड़ना काम है मेरा। हिंदू मुसलमान एक है, लोगों को यही पैगाम है मेरा। चार सितारे करती है मुझसे बातें, इसीलिए तो शमा परवीन नाम है मेरा।
0: वाह वाह वाह वाह, वेरी नाइस, क्या अंदाज है आपका, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में जो है अपने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, वेरी नाइस। अच्छा तो मुझे लग रहा है कि आप भी कोई उद्घोषक तो नहीं है कहीं पे, ये अनाउंसर वगैरह का काम तो नहीं करती हैं आप भी?
1: जी, मैं
0: अरे वाह अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड। वेरी नाइस, हम भी आपके श्रोता हैं, आपसे बात कर रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है।

0: मैम, बहुत आनंद आ रहा है।
1: और सर हम आपसे से आरजे से ही सीखते हैं, और जब हम शो करते हैं जब हमारे फीडबैक मिलते हैं हमें अच्छा लगता है, तो हम ये हमें ये फिक्र होता है कि हम आराम मुरादाबाद सुनते हैं, हम आकाशवाणी रामपुर सुनते हैं, और आप जैसे आरजे से हम सीखते हैं।
0: मैम हम लोग भी आप जैसे लोगों से बहुत कुछ सीखते हैं। वैसे आप रहती कहाँ हैं, मतलब आप बेसिकली आपका कहाँ घर कहाँ से, आप बिलोंग कहाँ से करती हैं?
1: क्या बोला सर?
0: आप कहाँ से, कहाँ के रहने वाले हैं मतलब आप?
1: सर मैं वैसे तो ककराव के रहने वाली हूँ, मैं गांव से ही।
0: अच्छा अच्छा, ओके
1: ओके, रामपुर से मेरा गांव पड़ता है।
0: अच्छा रामपुर से हैं आप, एग्जैक्टली मैं वही पूछना चाह रहा था। वेरी गुड। अच्छा अभी आपके रामपुर का वेदर कैसा है ये बताएं?
1: गर्म है और आनंद लेना है कि मौसम का, ऐसे मौसम का भी आनंद लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे मौसम में ठंडा ठंडा पानी हम बार बार लेते हैं तो हमें अच्छा लगता है।
0: राइट, वेरी गुड। तो अभी मुझे ये बताइए आप, आज आपका फोन शामिल हुआ है तो आज आप क्या सुनेंगे इस प्रोग्राम में? तमाम लोग आपकी आवाज सुन रहे हैं, क्या सुनवाना चाहेंगे उनको आप?
1: तो जैसे कि मोहर्रम का महीना चल रहा है, मोहर्रम का, तो हम इसमें एक चंद्रा के पास सुनना चाहेंगे। मूवी का नाम है बजरंगी भाई, और गीत के बोल रहे हैं भर दे झोली या मेरे मोहब्बत।
0: वेरी नाइस। कुछ कहना चाहते हो अब जाते जाते? बहुत लोग आपकी वॉइस सुन रहे हैं।
1: सर इस टाइम हमारे सारे जितने टीम के लोग हैं रेडियो डीएफसी वर्ल्ड की टीम, सारे आपको सुन रहे हैं और सब कॉल ट्राई कर रहे हैं, लेकिन मैं एक्चुअली मुझे मेरी कॉल लगी।
0: वेरी गुड, वेरी नाइस। आपके सभी दोस्तों को हमारा प्यार भरा सलाम एंड ऑल द बेस्ट। आई होप उनका कॉल डेफिनेटली कनेक्ट होगा। ठीक है, थैंक यू, ख्याल रखिए अपना, बहुत जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, थैंक यू सो मच। सेम हियर, सेम हियर, थैंक यू सो मच। बहुत ही खूबसूरत आवाज के साथ जुड़ी थी हमारे साथ, बहुत ही प्यारा था इनका नाम, एंड इन्हीं की रिक्वेस्ट पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक निकल गया है जी। श्रोताओं, स्टेशन क्लॉक में वक्त हुआ है 4:26, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे आपका अपना फेवरेट प्रोग्राम जिसका नाम है हेलो फरमाइश। अगर आप भी कुछ सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल जी आपका स्वागत है, आप हमें फोन करिए ना 9837896896 पे, इंतजार रहेगा हमें आपकी फोन कॉल्स का। एक छोटू सा ब्रेक, उसके बाद वी कम बैक।
2: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।

0: की भाईजान से भी आप इंजॉय कर रहे थे, बहुत ही खूबसूरत ट्रैक। और सच बताऊं तो इतना बढ़िया गाना सुन के मजा आ गया, आनंद आ गया आनंद को, सच में यार बहुत ही खूबसूरत ट्रैक आप सुन रहे हैं। हेलो फरमाइश, वेलकम बैक है, यू आर लिसनिंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो। बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। और इस गीत से, इस गाने से मुझे एक बात तो याद आती है कि जब दिल सच्ची दुआ करता है ना, तो शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती है, ऊपर वाला खामोशी को भी सुन लेता है। जिंदगी में कभी भी ना उम्मीद का दामन मत छोड़िए, क्योंकि अंधेरा कितना भी गहरा हो लेकिन सुबह जरूर होती है दोस्तों, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। यह है आपका फेवरेट फोन इन प्रोग्राम जिसका नाम है हेलो फरमाइश, और आज इसे मैं होस्ट कर रहा हूँ, आपका रेडियो का दोस्त आनंद। ऑफकोर्स आप जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं, फोन लाइन के जरिए हमारे साथ कनेक्टिविटी बना सकते हैं, ढेर सारी बातचीत कर सकते हैं, और अपनी पसंद का कोई भी गाना अगर आप सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल आप सुन सकते हैं। 9837896896 के जरिए आप फोन लगाकर हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। श्रोताओं, स्टेशन क्लॉक में वक्त हुआ है 4:32:15, और देखिए धूप जो है अभी भी लगातार बहुत तेज और कड़ाके वाली बनी हुई, एकदम कड़क वाली धूप। तो इस धूप से थोड़ा सा आपने बचना है, अपने परिवार को भी बचाना है, और लगातार जो तरल पदार्थ है उनका ज्यादा से ज्यादा सेवन करना है। चलिए श्रोताओं आगे बढ़ेंगे। एक कॉलर है जो बड़ी देर से अपनी प्रतीक्षा की वेट कर रहे हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। कौन कहाँ से जुड़े हैं, आइए इनसे बात करेंगे हेलो फरमाइश में। हेलो फरमाइश, अपने बारे में बताएं।
1: फरमाइश सर, नमस्कार।
0: आपको भी नमस्कार जी, नाम बताएं अपना, कौन साहब बात कर रहे हैं?
1: गांव लिहे दिगर तालुका जामनेर जिला जलगांव महाराष्ट्र से दिनेश वाहन बात कर रहा हूँ सर।
0: अरे बाप रे, ये आपका एड्रेस है किसी मूवी का नाम है? बड़ा लंबा चौड़ा एड्रेस है भाई।
1: गांव का नाम मतलब गांव का नाम लिहे दिगर पड़ता है और जिला जलगांव पड़ता है।
0: मतलब आप ये चाहते हैं कि कोई अगर आपके घर आए तो उसे एक बंदे से भी पूछना ना पड़े, सीधा आपके एड्रेस पे पहुंच जाए, एकदम सटीक एड्रेस बताया।
1: एकदम करेक्ट एड्रेस है मेरा।
0: हाँ एकदम करेक्ट एड्रेस है। नाम तो बताओ अपना, कौन कहाँ से जुड़े हैं भाई साहब?
1: दिनेश चौहान बात कर रहा हूँ सर, महाराष्ट्र जलगांव से।
0: अच्छा दिनेश चौहान जी, बहुत बढ़िया, हमारे अच्छे रेगुलर श्रोता हैं। तो दिनेश जी ये बताइए, क्या चल रहा है आजकल, जिंदगी सब बढ़िया चल रही है?
1: सर जिंदगी बहुत बढ़िया चल रही है, और मतलब ऐसा है ना, थोड़ा कभी बारिश कभी धूप और कभी मतलब।
0: जलगांव महाराष्ट्र में तो बारिश खैर काफी होती रहती है, मैंने सुना है वहाँ पर।
1: हाँ वो ज्यादा बारिश होती रहती है।
0: हाँ हाँ हाँ, तो इस वक्त कैसा मौसम है आपके वहाँ का?
1: इस वक्त अभी मतलब कल बारिश हुई थी, आज तो बहुत गर्मी हो रहा है, शायद ऐसा लग रहा है कि रात में बारिश होगी बहुत जबरदस्त, सारा दिन से बहुत गर्म हो रहा है।
0: ओहो हो, मतलब गर्मी जो है वहाँ पर भी अच्छी खासी पड़ रही है ना?
1: हाँ हाँ हाँ।
0: अच्छा अच्छा, और क्या और बताइए, और क्या चल रहा है जिंदगी में, खेती बाड़ी कर रहे हैं या कोई काम सर्विस?
1: सर मैं मतलब मेरा काम करता था इलेक्ट्रॉनिक का, मोटर वायरिंग का।
0: जी जी,
1: तो वो काम करते करते कभी खाली टाइम रहता है तो समय मिलता है तो खेती बाड़ी में भी चले जाते हैं अपना घर का।
0: बहुत बढ़िया, और रेडियो तो आप सुनते रहते हैं ना?
1: नहीं सर, रेडियो तो हमेशा सुनते रहते हैं, क्योंकि मोबाइल पर एप्लीकेशन रहता है, कहीं भी सुन लो और अपना कार्यक्रम का आनंद लेते रहो।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो मुरादाबाद में आपको कौन कौन सी कार्यक्रम सुनते हैं आप ज्यादा?
1: ज्यादा मुझे यही प्रोग्राम अच्छा लगता है, हेलो फरमाइश और व्हाट्सएप फरमाइश वाला, ये दोनों अच्छा लगता है।
0: बहुत बढ़िया, तो आप जुड़ते हैं लगातार?
1: हाँ डेली सुनता हूँ सर, हमेशा सुनता हूँ।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है, ये तो हमें जानकर बहुत खुशी हुई। दिनेश जी आपसे बातचीत करके भी बहुत खुशी हुई, तमाम लोग आपको सुन रहे हैं। कुछ कहेंगे आप और क्या सुनवाएंगे आज आप उनको, पहले तो ये बताएं कौन सा गीत सुनवाएंगे?
1: फिल्म का नाम है सर तुम मेरे हो, और उसी फिल्म का एक टाइटल सॉन्ग वही गाने का बोल है सर।
0: अच्छा अच्छा, तो किसके साथ सुनना चाहते हो उस गीत को आप, किसी का नाम लोगे?
1: सर आपके लिए खास।
0: चलिए शुक्रिया मेरे भाई।
1: उमेश चौहान, आदित्य चौहान, मनीषा चौहान, आरजे खुशी मैडम और जितने भी रेडियो मुरादाबाद एफएम सुन रहे सबके लिए।
0: चलिए बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश भाई, फिर मुलाकात करते हैं जल्दी, है ना?
1: जरूर।
0: नमस्कार, बाय बाय।
1: बाय बाय।
0: श्रोताओं आप भी कोई गीत सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल हमें फोन कर सकते हैं 9837896896 9837896896। अभी भी आपके पास ढेर सारा समय है, 4:36 हो गए हैं, आप जुड़े हुए हैं आरजे आनंद के साथ ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद।

0: क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत ट्रैक अभी आप एंजॉय कर रहे थे श्रोताओं। और ये गाने की रिक्वेस्ट आई थी जलगांव महाराष्ट्र से, दिनेश चौहान जी ने हमें फोन किया था, बड़ी दूर से हमारे रेगुलर लिसनर हैं, लगातार हमें सुनते हैं, बहुत ही खूबसूरत ट्रैक उन्होंने जो है हम तक पहुंचाया। और आइए प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे। दोस्तों आप सुन रहे हैं हेलो फरमाइश ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम पे, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। आपका फेवरेट फोन इन प्रोग्राम है, 3 से 5 डेली लेकर हाजिर हो जाती है आरजे खुशी, प्रसारित करती है इसको, जहां आप जुड़ते हैं, ढेर सारी बातचीत होती है। लेकिन आज इस प्रोग्राम में दस्तक दी है आपके दोस्त आरजे आनंद ने। स्टूडियो की घड़ी में वक्त हो रहा है 4:42। श्रोताओं मुझे पता है आप लोग बहुत शिद्दत से फोन लगा रहे हैं, बहुत सारे श्रोता हैं जो मुझसे बात करना चाहते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, फोन आप लगाते रहिए। वो कहते हैं ना कभी कभी जीत हमें लास्ट मोमेंट पे भी मिल जाती है, तो गिव अप मत कीजिए, लगातार प्रयास करिए, हो सकता है अगला नंबर आपका हो। श्रोताओं आज 23 जून की ये ब्यूटीफुल इवनिंग जो है अब हो गई है, और आज टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है, 30 अभी मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर, 37 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है करंट टेम्परेचर। तो बस अपना खूब सारा ख्याल रखिए, बहुत अच्छे से रखिए ख्याल। और अगर आप भी हमारे साथ कोई गीत सुनना चाहते हैं, किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं इस प्रोग्राम के जरिए, तो आप जुड़ सकते हैं आरजे आनंद के साथ फोन लाइन के माध्यम से 9837896896 पर हमें फोन करके। एक कॉलर बड़ी देर से वेट कर रही है अपनी प्रतीक्षा का, आइए अपनी टर्न का वेट करिए, तो उनसे बातचीत करते हैं। बहुत देर जो है हमने उनको करा दिया इंतजार, उनकी प्रतीक्षा की बारी खत्म करते हैं। हेलो फरमाइश,
1: हेलो क्या,
0: नमस्ते नमस्ते जी, अपना नाम बताएं, कौन बोल रहे हैं, बड़ी प्यारी सी आवाज है आपकी।
1: सर अक्षरा नाम है हमारा।
0: अक्षरा, अरे वाह, बड़ा ब्यूटीफुल नाम है अक्षरा, कहाँ रहते हैं आप?
1: सर चौहानवाली में।
0: अच्छा, मुरादाबाद में रहती हूँ मतलब, है ना?
1: यस सर।
0: क्या करती हो अभी अक्षरा आप?
1: सर स्टडी करते हैं।
0: अरे वाह, कौन सी क्लास में चल रही है स्टडी, क्या चल रही है? 11th में हो, वेरी गुड। कैसे चल रही है फिर पढ़ाई लिखाई?
1: सर बहुत अच्छी।
0: स्कूल खुले या नहीं अभी?
1: सर अभी नहीं खुले, 1 तारीख से खुलेंगे।
0: अच्छा, तो कितनी एक्साइटेड हो अक्षरा स्कूल जाने के लिए?
1: सर बहुत ज्यादा।
0: वेरी नाइस वेरी नाइस, मजा आता है ना जब आप छुट्टी के बाद स्कूल जाओ, तो एक अलग ही यू नो खुशी होती है, नए नए दोस्तों से मिलना, फिर पुराने दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाना, वो सब है ना।
1: यस सर।
0: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और बताइए रेडियो कब से सुन रहे हो आप अक्षरा?
1: 3 साल हो गए हमें।
0: अरे वाह, वेरी गुड वेरी नाइस। तो अच्छे लगते हैं आपको हमारे स्टेशन के प्रोग्राम?
1: यस सर, सारे ही बहुत अच्छे लगते हैं।
0: वेरी गुड वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो अक्षरा आज आपका फोन लगा है हमारे स्टेशन पे, कौन सा गाना सुनोगे आप? तमाम मुरादाबादी
1: का सॉन्ग सुनना चाहते हैं, मैनू लुट ले गया।
0: अरे वाह, बहुत बढ़िया गाना है। और कुछ कहना चाहती हूँ तमाम मुरादाबादी आपकी आवाज सुन रहे हैं रेडियो पर, कुछ
1: कहना चाहते हैं, गर्मी ज्यादा हो रही है, इसलिए आप जो
0: बेजुबान
1: पक्षी होते हैं उनके लिए दाना रखते रहिए और पानी भी साथ में।
0: क्या बात है, वेरी गुड, बहुत ही वंडरफुल मैसेज दिया अक्षरा, चलो थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, ख्याल रखो ढेर सारा, ओके।
1: थैंक यू सर।
0: वेलकम, धुरंधर का गाना निकल गया है यहाँ पर, एक बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक अक्षरा की रिक्वेस्ट पे, ये वो गाना है जो अभी आपको दीवाना बना देगा, भाई बता रहा हूँ ये गाना बनाएगा आपको दीवाना, लुट ले गया, आप एंजॉय कीजिए, बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल, इस वक्त आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम पे, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। सिमरन चौधरी की आवाज, बहुत ही ब्यूटीफुल गाती है यार लड़की।

0: ਜਾ ਸਿਮਰਨ ਜਾ ਜੀ ਲੈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ।
1: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
2: हाय दयानंद जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
3: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
4: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हल्दी आउटफिट फ्री।
3: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
1: समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाएं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7066002430। यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
5: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
1: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद, कॉल करें 7055070552।
6: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
7: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
8: अरे भैया, नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
9: नाचना बहुत जरूरी है। वेलकम बैक है वंस अगेन, आप जुड़ चुके हैं FM मुरादाबाद के साथ और यहाँ पर आपका साथ निभा रहा है आपका दोस्त रेडियो वाला आनंद। गुड आफ्टरनून, अब तो खैर गुड इवनिंग वाला टाइम हो रहा है। 4:51 हो गए स्टेशन क्लॉक में 23 जून की ये ब्यूटीफुल सी दोपहर में, जहाँ मैं था, आप थे और ढेर सारे प्यारे प्यारे गाने थे और आपकी बातचीत थी श्रोताओं। चलिए फिलहाल तो चलने का वक्त हो गया और कैसे ये 2 घंटे बीत गए हैं मुझे और आपको सच में बता रहे हैं बिल्कुल भी पता नहीं चला है साथियों। और बिना किसी देरी के आइए जरा जुड़ जाते हैं पहले अपनी हमारी कॉलर के साथ। हेलो फरमाइश।
10: हेलो फरमाइश, अस्सलाम वालेकुम।
9: आपको भी वालेकुम सलाम, अपना नाम बताएं।
10: मैं रामकृष्ण शबनम की बात कर रही हूँ
9: आपसे। जी जी शबनम जी, कैसे हाल चाल है आपके? सब एकदम बहुत ही बढ़िया हैं, सब एकदम फर्स्ट क्लास हैं। अगर आप डेली प्रोग्राम सुनती हैं तो आपको डेफिनेटली पता लग जाएंगे हाल चाल।
10: सर बिल्कुल बहुत अच्छे हाल चाल है, सुन रही हूँ मैं आपके प्रोग्राम।
9: जी जी जी जी, खैर मेरा आना थोड़ा कम होता है इस प्रोग्राम में, थोड़ी सी कम हमारी हाजिरी लगती है।
10: जी सर बहुत अच्छा लग रहा है आज आपसे बात करके। हेलो फरमाइश।
9: जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हमें भी एक लंबे अंतराल के बाद एक मौका मिला आपसे गुफ्तगू करने का, आप सभी श्रोताओं से। जी और बताइए, आपके रामपुर का मौसम बढ़िया हो रहा है, गर्मी हो रही है या बारिश का मौसम?
10: बहुत गर्मी हो रही है, बहुत तेज धूप हो रही है।
9: बिल्कुल, तो ऐसे में अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखना, आस पास में पशु पक्षियों का ख्याल रखना, बच्चों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। बहुत बढ़िया, तो शबनम जी आज आपका फोन शामिल हुआ है हमारे प्रोग्राम में, क्या सुनेंगे आप, तमाम लोगों को क्या सुनवाएंगे, अपनी पसंद पे कौन सा गीत?
10: जी सर फिल्म का नाम है आदमी और गाने के बोल है रब की मर्जी बिना पत्ता हिलता नहीं।
9: अरे वाह, ये तो टाइटल ट्रैक ही है ना?
10: जी सर।
9: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलिए बहुत सी बहुत
10: ही
9: जी प्लीज आप जरूर नाम लीजिएगा।
10: रामपुर ऐसी आप और हम।
9: क्या बात है, बहुत बढ़िया, चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, जल्दी फिर आपसे मिलते हैं मैम, नमस्कार। थैंक यू सो मच। श्रोताओं, फिलहाल तो घड़ी की जो सुई है वो इशारा कर रही है लगातार कि अब मेरा जाने का समय हो गया है, यानी कि अपनी पोटली में उठाकर यहाँ से निकलूँ बाहर। लेकिन कोशिश करूंगा कि अगर कोई और लकी कॉलर हमारा जाते जाते जुड़ जाए तो बड़ी अच्छी बात है। फिलहाल ये गाना शबनम जी की रिक्वेस्ट पर निकाल दिया है मैंने। इस गाने को सुनते हुए आगे बढ़ेंगे। आप सुन रहे हैं एफ एम मुरादाबाद 89.6 आरजे आनंद के साथ। सच में गाना बहुत ही खूबसूरत है, और मैं आपको सच बताऊं, कुछ गाने इतने प्यारे होते हैं ना, एक्चुअली लगता है कि सच्चाई से रूबरू करा रही हैं। कुछ ऐसे बेहतरीन ट्रैक होते हैं। अलका याग्निक जी की बहुत ही खूबसूरत आवाज़ों में एंजॉय करेंगे इस ब्यूटीफुल ट्रैक को।

0: क्या बात है, आदमी खिलौना है, बहुत ही प्यारा गीत। इसी गीत के साथ हम लेंगे आपसे जाने की इजाजत, लेकिन जाने से पहले हमारे साथ एक और लास्ट कॉलर जुड़ी है प्रोग्राम में। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश, जय श्री राम
0: जी। जय श्री राम, अपने नाम बताएं, कहां से हैं, थोड़ा सा बताएं अपने बारे में।
1: नीतू बात कर रही
0: हूं। जी नीतू जी, कैसे हाल चाल है आपके? सब एकदम चकाचक है, सब एकदम बढ़िया है, भागते दौड़ते रहते हैं, सब पतले हो गए हैं, वजन कम हो गया है।
1: गर्मी ज्यादा हो रही ना?
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, गर्मी ज्यादा हो रही इसलिए पानी बहुत ज्यादा पीते हैं।
1: ज्यादा बहुत ज्यादा हो रही।
0: बिल्कुल बिल्कुल, आप बताइए सब बढ़िया?
1: बढ़िया।
0: चलिए बहुत अच्छा।

0: लगा आपसे बातचीत हुई, समय थोड़ा सा कम है, तो आज क्या सुनेंगी, क्या कहना चाहेंगी आप जाते जाते?
1: गाना सुनना है, बेटे का बर्थडे है, बर्थडे सॉन्ग सुनना है आपकी पसंद का।
0: अच्छा, बर्थडे है, बेटे का नाम तो बताओ।
1: बेटे का नाम है दिव्यांश।
0: दिव्यांश कितने साल के हो रहे हैं? दिव्यांश
1: हो रहे हैं 14 साल की।
0: चलो बहुत अच्छी बात है। तो बर्थडे पार्टी पे क्या क्या बन रहा है आज?
1: बर्थडे पार्टी पे पनीर बन रहा है, छोले बन रहे हैं, रायता बन रहा है, पूड़ी बनेगी, पुलाव बनेगा, आप आइए।
0: मैं वही कह रहा था, इतना कुछ बना रही हो और आप हमें नहीं बुला रही हो, कितनी मजे की बात है, ये तो गलत बात है।
1: नहीं, मैंने कॉल कराया ना इसीलिए, बुलाने के लिए तो कराया।
0: तो आपने पूरी जनता के सामने कॉल कर दिया, आप तो देखिए पूरी जनता आ जाएगी मेरे साथ या फिर अकेला मैं आ जाऊँ? अरे वाह, अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो दो चार बड़े बड़े थैले से लो, सब गिफ्ट लेकर आ रहे हैं बड़े बड़े। चलो नीतू जी, हैप्पी बर्थडे, आपके बेटे को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बर्थडे की एक अच्छा गाना लगा रहा हूँ मैं, ठीक है? ओके, वेलकम नीतू जी, अपना ध्यान रखिए और ऐसे ही सेलिब्रेट करती रहिए पार्टी, ठीक है? चलो बाय बाय, नमस्कार, थैंक यू सो मच। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे आपको इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे। अभी के लिए लेते हैं आपसे इजाजत, बाय।

0: व्यक्ति और 16 मरणोपरांत पुरस्कार प्राप्तकर्ता भी शामिल हैं। श्रोताओं, राष्ट्रपति भवन का गणतंत्र मंडप आज अपनी पूरी भव्यता के साथ सुसज्जित है। भारतीय कला, स्थापत्य और लोकतांत्रिक परंपराओं का अद्भुत संगम इस मंडप में दिखाई देता है। भव्य झूमर, आकर्षक सज्जा, गरिमामय वातावरण और राष्ट्र की सर्वोच्च संवैधानिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों की उपस्थिति समारोह की प्रतिष्ठा को और बढ़ा रही है। बहुत से गणमान्य व्यक्ति यहाँ मौजूद हैं, अपना अपना स्थान ले चुके हैं, जिसमें हम देख पा रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह, साथ ही साथ और मंत्रिपरिषद के सदस्य, संसद सदस्य, न्यायपालिका के वरिष्ठ अधिकारी, सशस्त्र बलों के प्रमुख तथा विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिष्ठित हस्तियां और गणमान्य अतिथि यहाँ उपस्थित हैं। और साथ ही गौरव के साथ उपस्थित है वो पद्म पुरस्कार विजेता और उनके परिवार के सदस्य, जिन्हें आज देश के माननीय राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया जाएगा। और अब हम देख रहे हैं गणतंत्र मंडप में आगमन हो रहा है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, और अपने स्थान की तरफ बढ़ते हुए प्रधानमंत्री सबको अभिवादन स्वीकार करते हुए, सबको नमस्कार करते हुए और अपनी जगह पर बैठते हुए, सभी लोग उनके साथ खड़े हो चुके थे और अब सब अपने स्थान पर वापस बैठ चुके हैं। नितिश,
1: A warm welcome to all the listeners of Akashvani from Ganatantra Mandap, Rashtrapati Bhavan. In a short while from now, Honorable President Draupadi Murmu will confer the Padma Awards 2026 at the second civil investiture ceremony of this year. The President will confer 65 Padma Awards, including 2 Padma Vibhushan, 7 Padma Bhushan and 56 Padma Shri. Instituted in 1954, these awards are announced on the occasion of the Republic Day every year. The award seeks to recognize work of distinguished and is of work of distinction, and it is given for distinguished and exceptional achievements in various fields and disciplines, including art, literature, education, sports, medicine, social work, science, engineering, public affairs, and trade and industry.
0: और नितिश, हम देख पा रहे हैं यहाँ पर सभी लोग अपने अपने स्थान से उठ गए हैं क्योंकि माननीय उपराष्ट्रपति का आगमन हो रहा है। सीपी राधाकृष्णन अभी यहाँ आगमन हुआ है उनका गणतंत्र मंडप में, सभी को नमस्कार करते हुए।
1: Well, the first citizen of the nation, Honorable President of India, Shrimati Draupadi Murmu, will be honoring the most distinguished Indians for their exemplary work in various fields. What a proud moment, Shalini, for any citizen when his or her work is recognized by the nation. Proud are the family members of the recipients who are seated here to cheer their family members when the nation is giving to reward their dear ones. A day like this comes once in lifetime.
0: Indeed, बिल्कुल सही कहा नितिश, यही वो क्षण होता है जब वर्षों की साधना, सेवा और उपलब्धियों को राष्ट्र की सर्वोच्च मान्यता प्राप्त होती।
2: It's just like a very cool.

गुड वाली इवनिंग है आज रीना के साथ इवनिंग मस्ती शो में। और समय की बात करूं तो 5:12 हो चुके हैं और बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया है श्रोताओं। सो आज रीना के साथ ढेर सारी बातें करेंगे और कनेक्ट हो गए आप सभी, तो 2 घंटे के लिए मैं आप सभी के साथ हूँ। खूब मस्ती करेंगे, गानों के साथ साथ बातों का तड़का लगेगा। और भाई टेम्परेचर देखिए, आज और दिन से टेम्परेचर ना बहुत ज्यादा है, यानी कि 38 डिग्री सेल्सियस है आज का टेम्परेचर, यानी कि गर्मी है ना वो नेक्स्ट लेवल वाला है, यानी कि गर्मी दिन पर दिन घट नहीं बल्कि बढ़ती जा रही है। पता नहीं क्या ही होएगा, बस आपसे यही कहना चाहेंगे कि अपना ध्यान रखिए, पानी की बोतल अपने साथ जरूर लेकर जाइए। और जो ठेले लगाते हैं उनसे भी एक रिक्वेस्ट करेंगे कि देखिए काम जरूरी है लेकिन उससे पहले हेल्थ भी बहुत जरूरी है। अगर आपका हेल्थ ठीक है तभी आप कोई काम कर पाएंगे। तो ठेले वाले भैया से अगर रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आप अपना ठेला लगा रहे हैं तो 12 बजे तक लगाइए, उसके बाद शाम के 5 बजे से फिर से शुरू करिए अपने ठेले लगाने, क्योंकि तो मतलब दिन के मुकाबले दोपहर के मुकाबले 5 बजे तक थोड़ा सा कम हो जाता है टेम्परेचर, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो पाएगी। लेकिन उससे पहले एक गाना सुनेंगे और फिर आएंगे, कनेक्ट होंगे आप सभी के साथ, ढेर सारी बातें करेंगे। मुंडे कुड़िया पंगड़ा।

0: 40 करोड़ देशवासियों को नई ताकत दी। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के संकल्पों से उत्तर प्रदेश का कायाकल्प हुआ। उज्ज्वला योजना से महिलाओं को धुआं मुक्त रसोई, पीएम किसान सम्मान निधि से किसानों को आर्थिक मजबूती और आयुष्मान भारत से आम लोगों को बेहतर इलाज की सुविधा मिली।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।
2: Oh my God, this is original.

हेलो जी, हेलो, गुड वाली इवनिंग है आरजे रीना के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। समय की बात करूँ तो 5:20 हो चुके हैं श्रोताओं, और समय का बिल्कुल भी नहीं पता चलता कि आप एक घंटे के अंदर आप बैठे रहेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब 6 से 7 बज गए, बिल्कुल भी नहीं पता चलता है, क्योंकि हम अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं। और ये ऐसा वक्त होता है ना कि बस हर कोई यही चाहता है कि यार सुबह से लेकर शाम तक काम तो कर रहे थे ना, बस अब फ्री हो जाए। और जब फ्री होने पर आते हैं ना तो बस यही मन करता है भैया अब तो अपना जो थैला है उसको पैक कर लेते हैं और घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। सो बहुत से इस धूप में निकलेंगे और बहुत से अपनी गाड़ियों में एसी की हवाओं के साथ निकलेंगे, बहुत से स्कूटी बाइक पर निकलेंगे, तो हेलमेट सीट बेल्ट ज़रूर लगाइए। और जो पैदल सवारी है उनसे यही कहना चाहेंगे जो बाइक पर है स्कूटी पर है, भैया देखिए गर्मी बहुत ज़्यादा है, प्लीज़ अपने लिए पानी की बोतल साथ में रखें और कॉटन का दुपट्टा पन्ना अपने साथ में रखें ताकि आप इस धूप से अपने आप को बचा सकें। और आपको लग रहा है कि भाई बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा धूप है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको उसी टाइम निकले, थोड़ा सा वेट करिए, थोड़ा इंतज़ार करिए, उसके बाद मौसम थोड़ा सा ठीक होए तब आप घर से या फिर ऑफिस से निकलिए, क्योंकि हेल्थ बहुत ज़रूरी है। और जब लू चलती है ना तो उस टाइम तो भैया पूछिए मत, घर से या ऑफिस से निकलने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। आप ऑफिस में ये है कि एसी में कम से कम बैठे तो हो ना आप, और रास्ते में निकल जाओगे तो कौन से एसी में, कोई भी एसी नहीं है। इस टाइम हर इंसान अपने फेस को लेकर, अपने हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस होता है, क्योंकि गर्मी ऐसी है भैया, अच्छे अच्छे को ये जो गोरा इंसान होता है ना उसका भी लंग सांवला हो ही जाता है, जो सांवले होते हैं वो तो हो ही जाते हैं, जैसे मेरी जैसे। तो श्रोताओं, आरजे रीना के साथ कनेक्ट रहिए और हेलमेट सीट बेल्ट लगाना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है, हम सुरक्षित रहेंगे इससे। और इसी के साथ एक बहुत ही शानदार गाना, उसके बाद लौट कर आते हैं आप सभी के साथ।

0: हेलो, गुड वाली इवनिंग है आज जरीना के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो पर जाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और समय की बात करूं तो 5:29 हो चुके श्रोताओं। और आज की तारीख यानी कि 23 जून, अपने आप में हर तारीख बहुत ज़्यादा खास होता है, क्योंकि हर दिन हमें जिंदगी जीने का मौका मिलता है और हम हार मान लेते हैं कि ज़िंदगी का हमें हम कहाँ मौका देती है। ज़िंदगी हर सुबह हमें, हर रोज़ हमें मौका देती है अपने आप को चेंज करने के लिए कि आप एक्चुअल में हैं क्या। आज का डे हमारे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि आज मनाया जाता है यूनाइटेड इंटरनेशनल पब्लिक सर्विस डे, यानी कि यह दिन उन सभी सरकारी कर्मचारियों और जन सेवाओं को समर्पित है जो समाज की सेवा में दिन रात जुटे रहते हैं। स्वास्थ्य, एजुकेशन, सुरक्षा और विकास जैसी सेवाओं के माध्यम से हमारे जीवन को बेहतर बनाते हैं। आज का दिन हमें यह याद दिलाता है कि एक मजबूत और संदेशशील सार्वजनिक सेवा ही देश की प्रगति का आधार है। तो इस जन सेवा से जुड़े सभी लोगों का सम्मान करिए और उनका योगदान जरूर रखिए। क्योंकि देखिए, बात आप सरकारी कोई भी फील्ड में चले जाइए, और यहाँ पे अगर पब्लिक सर्विस की बात करूँ तो सबसे पहले नंबर पे तो हमारे फौजी वगैरह ही आते हैं जो हमारे लिए दिन रात खड़े रहते हैं, बॉर्डर पर रहते हैं। उनकी वजह से हम अपने घरों में ना चैन की नींद सो पाते हैं। और दूसरा ये कि जो गली सड़कों पर जो झाड़ू लगाते हैं, उनको तो दिल से सल्यूट है क्योंकि वो उस सड़क को साफ करते हैं आपके लिए, हमारे लिए, ताकि कोई भी बीमारी ना होए, कोई भी गंदगी ना फैले। और जब भी गंदगी फैलती है, कूड़े इकट्ठे होते हैं, तो मच्छर पनपते हैं, और मच्छर पनपते हैं तो फिर बीमारियां भी अपने आप फैल जाती हैं। तो हमें उनका सैल्यूट है और हमें उनको ना सपोर्ट करना चाहिए। कभी कभी हम बाहर जाते हैं और जो झाड़ू लगाते हैं उनसे यही कहते हैं, अरे रुक जाओ, मतलब हम उनसे कुछ उल्टा सीधा भी बोल देते हैं, लेकिन हमें उनका सम्मान करना चाहिए, जो कि आप सभी के लिए डेली सड़कें साफ की जाती हैं, हम बीमार न हो, हमारे पैरों में एक भी कंकर ना लगे। और कोई इंसान हो, हमें उनके साथ रिस्पेक्ट से ही बात करनी चाहिए। और आज रीना के साथ आप कनेक्ट है इवनिंग मस्ती शो में, तो श्रोताओं बस यूं ही कनेक्ट रहिए ढेर सारी बातें करने के लिए। फिलहाल कुछ कमर्शियल एड ब्रेक का टाइम हो गया है और उसके बाद आप सभी के साथ कनेक्ट होते हैं। एक और बात, ये गर्मी है ना, सुबह सुबह का जो एनर्जी होता है ना, एनर्जी लेवल, वो बहुत हाई होता है, लेकिन जैसे जैसे शाम ढलती है एनर्जी जो है वो डाउन हो जाता है। इसके बारे में मैं बात करूंगी, लेकिन उससे पहले कुछ कमर्शियल एड ब्रेक।
1: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

0: बटुक साहब ने एक छोटी सी पार्टी रखी है
1: ऐसी जगह।
2: अरे झुमका भी मैं भूल गई जाने जा तेरे लिए।
3: थोड़ी देर नीचे चलते ना, बटुक अंकल बुरा मान जाएंगे। चलिए ना।
2: अरे

क्या बात है जी, बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया है। उड़ी उड़ी जाए दिल की पतंग, देखो उड़ी उड़ी जाए। हाय हॉट डे, यानी कि इतना गर्म टेम्परेचर, ओह माय गॉड, क्या ही होएगा इस गर्मी का भैया, कुछ नहीं हो सकता है। फिलहाल आज रीना आप सभी के साथ कनेक्ट है ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और समय की बात करूँ तो 5:40 हो चुके हैं श्रोताओं। और इस गर्मी में ना हमें बहुत से चीज़ों का ध्यान रखना होता है, यानी कि हेल्थ की अगर मैं बात करूँ तो कभी कभी इस गर्मी में ऐसा लगता है कि यार कुछ मत खाओ, बस खाने की इच्छा नहीं हो रही अंदर से। और कभी कभी ऐसी इच्छा होती है हमारे अंदर कि हम बाहर के जंक फूड खाने लग जाते हैं, कभी कभी ओवर ईटिंग कर लेते हैं, कभी कुछ खाते नहीं हैं, और यही कहीं ना कहीं बीमारियों का घर बन जाता है। इस गर्मी में ना आप जितना सतर्क रहेंगे उतनी आप सभी के लिए अच्छा रहेगा, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। और इस गर्मी में सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि खाने से ज़्यादा पीने पर फोकस करें। अब क्या होता है ना, उनके लिए सबसे ज़्यादा उनको ध्यान रखने की ज़रूरत है जो ऑफिस में सुबह से लेकर शाम तक बैठकर ही काम करते हैं। पता है वो मोटे नहीं होते लेकिन मोटे हो जाते हैं जब सुबह से लेकर शाम तक, यानी कि खाना खाने के बाद भी आप थोड़ा आपकी बॉडी कोई एक्टिविटी नहीं कर रही है और आप खाना खा के फिर से काम करने बैठ जा रहे हो। और तो कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ ठीक है हमने ओवर ईटिंग कर ली है, बहुत दिक्कत होती है। तो इसीलिए इस गर्मी में जहाँ आपको दो रोटी की भूख है ना, वह एक रोटी खाइए ताकि आपको हल्का फील होएगा और अच्छे से आप सारा काम कर पाएंगे और आपका जो दिन है वो भी अच्छा रहेगा। और ऑयली खाने को जितना हो सके उतना अवॉइड करिए, पानी अपने साथ रखिए क्योंकि ये गर्मी है। और कहते हैं ना कि आपकी बॉडी के हिसाब से अगर वेट ज़्यादा होता है तो थायराइड की बहुत से ऐसी बीमारियां हैं जो आपके घर कर लेती है। और हम इंडियन में ना एक चीज़ बहुत गलत होती है कि जब तक हमें अंदर से कमजोरी या कोई बीमारी फील नहीं होती ना, हम चेक कराने नहीं जाते हैं। कहते यार ठीक तो है, हमें क्या हो रहा है, लेकिन अंदर अंदर कुछ हो भी रहा हो तो वो बाद में पता चल जाता है, वो जब वो ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसीलिए सेल्फ लव, यानी कि आप खुद से प्यार करते हैं, तो एक बार आपने अपनी बॉडी के चेकअप ज़रूर करानी चाहिए, फुल बॉडी चेकअप ज़रूर करानी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आपकी तबीयत ख़राब होए तभी आप जाए डॉक्टर के पास ठीक कि हम हो जाएंगे, कि वो बीमारी बढ़ चुकी होती है। और जब आप पहले से ही आप अपनी बॉडी के चेकअप कराते हैं, आप अपने खाने पर ध्यान देते हैं, वॉक करते हैं, देखिए हर बीमारी का छुटकारा है योगा। फिट रहेंगे तो कोई बीमारी नहीं होगी आपके पास, और जब फिट नहीं रहेंगे तो 70 बीमारियां आपको घर करेगी। और मेरे पास एक बहुत ही प्यारा मैसेज आया है, चलिए उनको शामिल करते हैं। हेलो रीना जी, आज मेरी फ्रेंड काफ़ी टाइम बाद, यानी कि उनके घर में बेटे का जन्म हुआ है और काफ़ी टाइम से ये इंतज़ार कर रही थी कि ये खुशखबरी हमें कब मिले। और अच्छा लगता है ना जब घर में, आपके घर में जब छोटे बच्चे आते हैं, रौनक घर से, बच्चे जब घर में होते हैं ना घर, उनके वजह से ही घर में रौनक बनी रहती है। और उनके फ्रेंड का नाम है सोनाली और उनके घर में बेटा हुआ है, तो मैम आपको तो पहले कॉन्ग्रेचुलेशन। और देखिए पार्टी तो बनती है, आप ऑफिस आए ना आए लेकिन ऑफिस ज़रूर कुछ भिजवा दीजिए मीठा क्योंकि जब घर में खुशियाँ आती है ना तो खुशियाँ अपने आप बांटने का मन करता है। और अब कॉन्ग्रेचुलेशन हमने भी बोल दिया है, अनाउंसमेंट हमने कर दिया है, सब सुन रहे हैं। और भगवान आपको हमेशा ऐसे खुश रखे, आपके जीवन में हमेशा खुशियाँ बनी रहे। और इन्होंने एक गाना बताया है, वो मैं ज़रूर प्ले करूँगी। ये गाना उन छोटे से बच्चे को ही डेडिकेट करना चाह रही है, उनके बेटे को डेडिकेट करना चाह रही है, इनकी फ्रेंड सोनाली है उनको डेडिकेट करना चाह रही है। तो चलिए इस गाने को हम सुनते हैं, उसके बाद कनेक्ट होते हैं।

0: कहूं।
1: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
2: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
1: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
2: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरो सर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
3: कॉल 7500153841।
4: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

हेलो जी, हेलो, गुड वाली इवनिंग है आरजे रीना के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और समय की बात करूँ तो 5:52 हो चुके हैं। और कहते हैं ना, अगर आपके अंदर जुनून है, हौसला है किसी चीज़ के लिए, तो हर काम आप कर जाओगे। मैं बात कर रही हूँ यानी कि 200 T20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर बनी हरमनप्रीत कौर। यानी कि भैया, आजकल लड़कियां ना कहीं कम नहीं है, किसी भी फील्ड में कम नहीं है। वो कंधे से कंधे मिलाकर आगे बढ़ रही है और अपने और अपने फैमिली वालों का नाम रोशन कर रही है, साथ ही साथ देश का नाम रोशन कर रही है। तो इसीलिए लड़कियां ना किसी भी चीज़ में, किसी भी फील्ड में वो पीछे नहीं है, बल्कि आगे ही बढ़ती जा रही है। तो आपके अंदर भी कोई टैलेंट है, कोई हुनर है, तो उसको छुपाइए मत, उसको आप उसमें आप काम करिए, इन्वॉल्व होइए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि हर आप भी चाहते हैं ना कि हाँ, मेरे अंदर टैलेंट है क्रिकेट खेलने का, मैं भी मैच खेल सकती हूँ, मैं भी UPSC क्लियर कर सकती हूँ, नीट का एग्ज़ाम क्लियर कर सकती हूँ, कुछ भी कर सकते हैं आप। क्योंकि जब करने पर आते हैं ना, तो पूरी दुनिया एक हो जाए, लेकिन आप टस से मस नहीं होना। बस आपने वो काम करना करना है, ये नहीं देखना कि मैं लड़की हूँ कुछ नहीं कर सकती। आजकल जो लड़की कर सकती है वो कोई नहीं कर सकता है, तो आप भी बन सकती है। यानी कि इन्होंने अपनी हिस्ट्री में, यानी कि इतिहास के पन्ने में अपना नाम दर्ज करा लिया है कि 200 T20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर बन चुकी है हरमनप्रीत कौर। तो देखिए, आगे वही बढ़ता है जो आंधे तूफान से नहीं डरता है। वो नहीं देखता है कि धूप कितनी तेज़ है, पाँव जलेंगे या नहीं जलेंगे, बल्कि जिनके पाँव जलते हैं, छाया भी उन्हीं के कदम चूमती है। चलिए जी, एक और शानदार गाना, उसके बाद लौट कर आते हैं आप सभी के साथ। बस यूँ ही आरजे रीना के साथ कनेक्ट रहिए ऑनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6।

0: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
1: आवश्यक सूचना 400 KV बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास UP कॉरपोरेशन के मझोला 400 KV उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, बरेली।

क्या बात है जी, बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया है। धुरंधर मूवी से, और सच बताओ बहुत डिमांड आते हैं इस गानों के। कोई भी मूवी हो और कोई भी गाना हो, जब नया नया होता है ना भैया, उसे जब तक 50 बार सुन ना लो ना, मन नहीं भरता है, बस सुनने का ही मन करता जाता है। और दूसरे घंटे की शुरुआत हो गई है आर्जरीना के साथ, अब कनेक्ट है। समय की बात करूं तो 6:06 हो चुके हैं इवनिंग मस्ती शो में श्रोताओं, और थोड़ा सा वेदर की बात कर लेते हैं। जो आज की तारीख यानी कि 23 जून, कल है 24 जून, और 24 जून को ये बताया जा रहा है 16 घंटे के भीतर यानी कि 19 राज्यों में बारिश आंधी तूफान आने की संभावना जताई जा रही है। साथ ही साथ अगर हवाओं की अगर मैं बात करूं तो 19 की स्पीड में हवाएं चलने वाली है। सो आप सभी से यही कहना चाहेंगे कि देखिए, बस बारिश आ जाए यार, बस आंधी तूफान ना आए, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। और आपने क्या करना है, जहाँ पर पेड़ वगैरह है उसे बचकर रहना है, क्योंकि जब आंधी तूफाने आती है भैया तो पेड़ और सब को सब सिस्टम हिला देता है। और जो हमारे किसान भाई है, देखिए आंधी तूफान तो हम कहते हैं आ जाए, लेकिन जो फसलों को नुकसान पहुँचता है ना भाई, उसके लिए कोई शब्द नहीं होते, कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि इतना मेहनत करने के बाद और पता चले कि आंधी तूफान आए, एक सेकंड के अंदर सब कुछ उड़ा के चला जाए, तो बड़ा दुख होता है। और ये बारिश जो है कहाँ कहाँ पर आने वाली है कल की, क्योंकि 24 जून को बताया जा रहा है कि बारिश आएगी और आंधी तूफान भी आने की संभावना जताई जा रही है। यानी कि यूपी के अगर मैं बात करूँ तो यूपी में तो बारिश आएगी, साथ में बिहार, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब, जम्मू कश्मीर, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जगह पर हरियाणा की आंधी तूफान अलर्ट की संभावना जताई जा रही है 24 से 25 जून तक। यानी कि 25 जून को तो आपको पता है कि एकादशी यानी कि निर्जला एकादशी है। सो कल का जो देखते भैया वेदर क्या रहता है। फिलहाल कुछ मैसेज आए हैं, चलिए उनको शामिल करते फटाफट। समंदर में डुबकी लगा। नमस्ते रीना मैम, आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं, आपकी आवाज बड़ी प्यारी लगती है, सुनकर अच्छा लगता है। और एफएम परिवार में सब ठीक है? हाँ जी, सब बहुत बढ़िया है, मस्त है, फैंटास्टिक है। और फॉर्चूनर वाला गाना सुनना चाहते हैं जी। ओके, और इनका नाम है सोनू कुमार जी, हमारे साथ कनेक्ट होते हैं सेक्टर 10 बुद्धि बिहार से। और अगले मैसेज की बात करूं तो रीना जी गुड वाली इवनिंग है, कैसी हैं आप? बहुत अच्छे हैं सर। विक्की सागर जी एकदम मस्त हैं और ये ऑन द वे होंगे। और भैया ये इनकी ऑटो में हमेशा ये रेडियो बजा कर रखते हैं, जब भी आप ये ऑटो चलाते हैं और ऑटो चलाते चलाते रेडियो का आनंद भी लेते रहते हैं, तो आप भी अपने रेडियो का आनंद ले सकते हैं ऑटो में, गाड़ी में तो आप सुन सकते हैं, साथ ही साथ घर पर सुन सकते हैं। यार हमारा रेडियो, आप ज़रूरी नहीं कि आप ट्रैफिक में हो तभी सुनो, आप एनी वे कभी भी किसी टाइम भी इंडिया के किसी कोने से भी आप हमें सुन सकते हो। उसके लिए आपको प्ले स्टोर पर जाना है और डाउनलोड करना है, आपने सर्च करना है एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहे गुनगुनाते रहिए। यानी कि 89.6 आप डालेंगे तो आपको रेड कलर का लोगो दिखेगा, उसको आपने डाउनलोड करना है और आप जब चाहे तब सुन सकते हैं रेडियो, एंजॉय कर सकते हैं रेडियो को। और ये आगे लिखते हैं कि हवा चल रही है, मौसम आंधी का हो गया है। ओ आंधी का हो गया है, वो तो बाहर जाकर देखना पड़ेगा सर कि मौसम आंधी का हुआ है या नहीं। फिलहाल अगले मैसेज की बात करूँ तो अगला मैसेज आता है, हेलो रीना मैम गुड वाला इवनिंग है, कैसी हैं आप? बहुत अच्छे जी, आपकी आवाज़ बोलने का अंदाज बहुत ही प्यारा है और सॉन्ग भी बहुत अच्छा प्ले कर रही हैं। ललिता कश्यप जी कनेक्ट होती हैं और इनका कहने कि मैम चाय पी लीजिए, बिल्कुल जी शाम अच्छी हो रही है, हवाएं चल पड़ी हैं। ओके, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, बाहर जाकर मुझे लग रहा है कि देखना पड़ेगा, छत पर मेरे कपड़े सूख रहे हैं भैया, उनको उतार कर लाना पड़ेगा, उन्हें पता चले कि आंधी तूफान में वो कहीं वहीं चले गए और मैं ढूंढती रहूँ उसको। और गर्मी से थोड़ी सी राहत मिली है, चलिए अच्छी बात है कि आंधी तूफान आ जाए, मतलब आंधी तूफान भी नहीं आने चाहिए, बस मौसम ऐसा होना चाहिए कि इंसान को परेशानी ना हो,
चिड़चिड़ापन ना हो इस गर्मी से। और छत पर कपड़े तो नहीं हैं? अरे अरे है, छत पर कपड़े मेरे सूख रहे, आज ही मैंने कपड़े धोए, बहुत सारे कपड़े धोए। चलिए जी, फिलहाल गाना सुनते हैं, उसके बाद लौट कर आते हैं आप सभी के साथ, कड़क सवाल के साथ आएंगे और अपडेट्स के साथ भी आएंगे।

क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्लेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548539705।

0: 41 करोड़ देशवासियों को नई ताकत दी। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के संकल्पों से उत्तर प्रदेश का कायाकल्प हुआ। उज्ज्वला योजना से महिलाओं को धुआं मुक्त रसोई, पीएम किसान सम्मान निधि से किसानों को आर्थिक मजबूती और आयुष्मान भारत से आम लोगों को बेहतर इलाज की सुविधा मिली।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।
2: ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ? ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਵੇਟ ਕਰਦੀ ਸੀ।
3: ਵੇਟ ਕਰਦੀ ਸੀ?

क्या बात है जी, दोस्तों के बिना तो भाई कोई भी दिन हो अच्छा नहीं होता है। प्रेज करने की बात तो बहुत अलग है। अर्जेंटीना के साथ आप कनेक्ट है FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो पचाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और समय की बात करूं तो 6:18 हो चुके श्रोताओं। और लखनऊ की अगर मैं बात करूं तो देखिए, कुछ चीजें ना हमें जितनी सुकून देती है ना, वो हमारे लिए उतना ही हार्म होता है। यानी कि कोचिंग सेंटर में जहां एसी की वजह से आग लगने के कारण 15 स्टूडेंट की मौत हो गई है, जिनके घर में एक बच्चा, और सोचिए उनके उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। तो देखिए, आपके घर में भी आप एसी चलाते हैं, चाहे ऑफिस में हो, कहीं भी हो, ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और कंटिन्यू आपने एसी नहीं चलाना है। आप अगर एसी चला रहे हैं तो मशीन है वो, थोड़ा सा रेस्ट दीजिए। जिस तरह से हम थक जाते इंसान, मशीन है, जब वो चलेगा तो गर्म तो होएगा ही ना, तो इसलिए उसको भी रेस्ट बहुत ज़रूरी है। सोचिए उनके ऊपर क्या बीत रही होगी, क्या गलत, मतलब उन बच्चों ने क्या किया था, बस सिर्फ स्टडी के लिए जाते थे इसलिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें सुकून देती हैं, उन चीज़ों को भी हमें उतना ही ध्यान रखना होता है। और आप सर्विसिंग अपने एसी का करवाते रहिए, कोई भी दिक्कत परेशानी है उससे आपको पता चल जाता है। कूलर हो उसकी भी पानी चेंज करते रहिए, क्योंकि जब मच्छर पनपेंगे तो बीमारियाँ बढ़ेगी श्रोताओं। और इसके बाद मैं आप सभी के लिए लेकर आऊँगी एक कड़क सवाल। आज का कड़क सवाल क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, वो तो बाद में ही पता चलेगा जब आप सुनेंगे तो। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अरे ये थोड़ा सा तो

ਐ ਕਰੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰੇ

हेलो जी, हेलो, गुड वाली इवनिंग है। आज रीना के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। बहुत ही शानदार पंजाबी गाने जो होते हैं ना जी, सच बताऊ बड़े ही शानदार और बहुत ही प्यारे होते हैं। मजा आ जाता है, यानी कि इवनिंग मस्त हो जाती है, बिंदास हो जाती है, झकास हो जाती है। सो, अभी आप सभी के लिए मैं लेकर आ गई हूँ कड़क सवाल। और कड़क सवाल सच बताऊं तो क्वेश्चन में से भी आंसर आपको निकल जाएंगे, बस थोड़ा सा आपने सोचना है जी। उससे पहले एक मैसेज है, उनको पहले मैं शामिल कर देती हूँ। ये हमारे साथ कनेक्ट होते हैं। जय श्री राम रीना जी, क्या हाल चाल है आपके? बहुत बढ़िया है सर, आप बताइए कैसे हैं? ये बबलू सैनी मुंबई महाराष्ट्र से हमारे साथ कनेक्ट होते हैं। और इसी के साथ एक बहुत ही शानदार कड़क सवाल आज का भाई क्या होने वाला है, चलिए जानते हैं। अगर देखिए, हर किसी को पसंद होता है, बड़े प्यार से खाते हैं, जिनके दांत नहीं है ना वो भी खा लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या होएगा यार, और सच बताओ, कहते हैं, हर कोई कहता है वो जंक फूड होता है, लेकिन वो जंक फूड तो नहीं है, हेल्दी होता है। और क्या है वो, क्या है वो हेल्दी, चलिए जी बता ही देते हैं, बताना बहुत ज़रूरी है, वेट नहीं करवाते हैं। सो, छोटा हूँ पर बड़ा कहलाता हूँ, रोज दही की नदी में नहाता हूँ। आपने सोचना है और हमें मैसेज करना है, नंबर है 9837896896 पर मैसेज करना है। छोटा हूँ पर बड़ा कहलाता हूँ, रोज दही की नदी में नहाता हूँ। कौन है वो जो दही के में नहाता है और हेल्दी होता है और घर पर प्यार से बनाओ, मज़ा आ जाता है उसको बनाने में। देखिए, टाइम तो बहुत लगता है उसको, इतना आसान नहीं है उसको बनाना, बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जब वो बन जाता है ना, वो बनने के बाद सबसे पहले उसको पानी में भी डाला जाता है, फिर दही के साथ नहलाया जाता है। अब आप सोच सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, क्योंकि आपको फॉर एग्जांपल भी मिल गया है। वन सेकेंड, एक बार और रिपीट करती हूँ। छोटा हूँ पर बड़ा कहलाता हूँ, रोज दही की नदी में नहाता हूँ। चलिए जी, आप सोचिए। फिलहाल के लिए गाना आप सभी के लिए।

बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर। चार योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।

0: 40 करोड़ देशवासियों को नई ताकत दी। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के संकल्पों से उत्तर प्रदेश का कायाकल्प हुआ। उज्ज्वला योजना से महिलाओं को धुआं मुक्त रसोई, पीएम किसान सम्मान निधि से किसानों को आर्थिक मजबूती और आयुष्मान भारत से आम लोगों को बेहतर इलाज की सुविधा मिली।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।

0: हेलो जी, हेलो, गुड वाली इवनिंग है अर्जुरीना के साथ। और समय की बात करूँ तो 6:35 हो चुके हैं श्रोताओं। और कभी कभी ना हम जो सोचते नहीं है ना, उम्मीद से परे हो जाता है। सोचिए कि हम, हर कोई कहता है ना कि जो बड़े होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, जो बड़े घर से होते हैं, सिर्फ अपने सपने वही पूरा कर सकते हैं, है ना, क्योंकि उनके पास जो चाहे वो ले सकते हैं। लेकिन मिडिल क्लास वाले क्या है, वो सोचना पड़ता है कि क्या करे क्या नहीं करे। लेकिन अगर मन में हौसला हो तो हर काम कामयाब हो जाता है। और ये जो मैं बात बताने जा रही हूँ, एक लड़की जिसको हम कहते हैं ना कमजोर होती लड़कियां कुछ नहीं कर पाती है, वही लड़कियां आज आगे बढ़ रही है, लड़कों के मुकाबले आगे बढ़ रही है, अपने देश का नाम रोशन कर रही हैं, अपने फैमिली वालों का नाम वो रोशन कर रही हैं। और जो ये यानी कि मुजफ्फरनगर की लड़की जिनके जिसका पिता उनके पिताजी यानी कि किराए की दुकान था है उनका, और वो उस पर काम करते थे। और लेकिन उनकी जो बेटी है, एक ही बेटी, और उनको उन्होंने लगन से पढ़ाया कि जो होएगा देखा जाएगा। माँ बाप ये चाहते हैं कि बच्चों के खुशी में हमारी खुशी है, और माँ बाप कभी ये नहीं चाहते हैं कि माँ बाप जो काम करते हैं उनका बच्चा भी कल को वही काम करे, बल्कि अपने बच्चों को 10 कदम आगे देखते हैं। वो ये चाहते हैं कि जो सपना मैं पूरा नहीं कर सका वो सपने मेरे बच्चे पूरा करें। सो मुजफ्फरनगर की लड़की ने यानी कि BPSC की पेपर क्लियर करके DSP बन गई है। सोचिए उस घर में खुशी का जो माहौल है, नेक्स्ट लेवल वाला होगा। यानी कि उम्मीद से परे, लेकिन जब कहते हैं ना आपके माँ बाप साथ हो और आपका जो फोकस है, जो आप काम कर रहे हो उसकी पढ़ाई अच्छे से कर रहे हो, तो आपके ज़िंदगी में आप सफलता ज़रूर मिलती है। और लड़की का नाम है जया, नाम भी जया और कर भी लिया हासिल, यानी कि 3 बार DPSC का एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम क्लियर। तो श्रोताओं, हम बड़े आसानी से कह देते हैं ना कि तुम्हारी ज़िंदगी बड़ी आसान है, लेकिन ज़िंदगी आसान नहीं होती है, ज़िंदगी को आसान बनाना पड़ता है। और जब आप ज़िंदगी को आसान बना लेते हैं ना, कहते हैं ना जो धूप में चलता है छाव भी उसी के कदम के नीचे आती है। तो बस आप भी जया की तरह विजया बन सकते हैं, आप भी अपने देश का नाम रोशन कर सकते हैं, अपने फैमिली वालों का नाम रोशन कर सकते हैं। तो सोचना नहीं है, देखिए सोचने वाले कभी कामयाब नहीं होते, बस सोचना नहीं है, बस काम कर देना है। हम ये सोचते रह जाते हैं कि कल आज ये काम करेंगे, कल वो काम करेंगे, कब एक महीना निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। इसीलिए जो काम करना है शांति के साथ, जो आप काम करो पहली बात तो उसको फैलाओ मत, ढिंढोरा मत पीटो कि भाई मैं ये काम करने जा रहा हूँ, ये काम करने जा रही हूँ। उस काम को शांत माहौल के साथ करो और शोर ऐसा मचाओ कि आपकी फोटो भी न्यूज़पेपर में टीवी में आए, ठीक है जी। चलिए, और आज के कड़क सवाल भी हमने बहुत ही आसान पूछा है। देखिए वो चीज़ तो मुझे सच बताओ बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा बेहद पसंद है। सो आज का कड़क सवाल मैंने आपसे पूछा है, छोटा हूँ पर बड़ा कहलाता हूँ, रोज दही के अंदर मैं नहलाता हूँ, मतलब उनको नहलाया जाता है। सो आपने मैसेज करना है, नंबर है 9823789698 फॉर एग्जांपल, उसको भाई बड़े प्यार से बनाया जाता है, मेहनत बहुत लगता है, बनाने के बाद पानी में डाला जाता है, फिर उसको दही में नहलाया जाता है। क्या है वो जो दही के अंदर नहाता है? और दही किसको पसंद नहीं भैया, इस गर्मी में दही छाछ जितना हो सके उतना पीजिए, बॉडी के लिए अच्छा होता है। और जब आप डेली दही छाछ पीते हैं ना, तो आपकी बॉडी के अंदर एक अलग ही चेंजेस दिखने को मिलता है, हड्डियाँ मजबूत होती है, साथ ही साथ आपका स्किन फेयर होता है। बहुत से फ़ायदे हैं दही खाने के। सोचिए और फटाफट मैसेज करिए, छोटा सा हूँ पर बड़ा कहलाता हूँ, रोज़ दही में नहलाता हूँ। चलिए सोचिए और मैसेज करिए। फिलहाल एक गाना और भी शानदार,
1: मस्त कलंदर, कलंदर, मस्त कलंदर,
0: आए हाय,
1: तू ही

0: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेवर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्ची की सुरक्षा हमारा वादा।
1: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
2: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई या नहीं?
1: यार कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
2: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B, बुद्धि विहार, फेज 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
3: कॉल 7500153841।

हेलो जी, हेलो, गुड वाली इवनिंग है अर्जुरीना के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे। जिस समय की बात करूँ तो 6:47 हो चुके हैं श्रोताओं, और बॉलीवुड की गलियों की तरफ चलते हैं, है ना, क्योंकि बॉलीवुड की गलियों की तरफ जाना तो बनता है ना जी, क्योंकि हमें इंतजार होता है कि भाई कौन सी मूवी रिलीज होने वाली है, और वो भी अक्षय पाजी की हो तो मजा आ जाता है ना। आपके भी फेवरेट है अक्षय पाजी तो मैसेज करके बता सकते हैं जी, क्योंकि इनकी मूवी कल यानी कि आज देखिए 23, 24, 25, 26 को रिलीज होने जा रही है सिनेमा घरों में, और ये मूवी है वेलकम टू द जंगल। शानदार मूवी है, और अगर आप अक्षय पाजी की मूवी है तो पहला ही शो जरूर अटेंड करेंगे, पता है जी, क्योंकि जो हमारे फेवरेट वाले एक्टर होते हैं ना, उनकी मूवी कोई भी आए बिल्कुल नहीं छोड़ते भैया, कि देखने जाना ही जाना है, और दोस्तों के साथ जाना है, फैमिली वालों के साथ जाने का तो अलग ही मजा होता है। सच बताऊँ, मैं तो जब भी मूवी देखने जाती हूँ दोस्तों के साथ, दोस्तों के अलावा मम्मी पापा के साथ, जब मम्मी पापा के साथ जाती हूँ ना तो मेरे नखरे ना थोड़े नेक्स्ट लेवल वाले बढ़ जाते हैं, क्योंकि पापा के आगे फरमाइश कर दो पॉपकॉर्न्स खाने हैं, बर्गर खाने हैं, ये खाने हैं, वो खाने हैं, पापा के आगे डिमांड ही अलग बढ़ जाता है। मतलब पता है पापा मना नहीं करते, बोलते खा लो जो खाना है ना, थोड़ा सा डांट देते कि ये चीज़ नहीं खानी चाहिए, लेकिन बड़ा मज़ा आता है फैमिली वालों के साथ मूवी देखने। कभी अगर अभी तक आप नहीं गए हो अपनी फैमिली वालों के साथ मूवी देखने, तो कभी एक बना लीजिए कि बस चलते हैं फैमिली वालों के साथ मूवी देखने के लिए, टाइम स्पेंड करने के लिए। और जब फैमिली वालों के साथ होते हो ना, तो भाई सच बताऊँ शब्द नहीं है कुछ बोलने के लिए, बहुत मज़ा आता है। और आप सभी के यानी कि अब मैसेज की बारी आ गई है, सो मैसेज शामिल करने से पहले चलिए मैं क्वेश्चन एक बार रिपीट कर देती हूँ, और फिर आपने सोचना है और हमें मैसेज करना है, क्योंकि अब बारी आपकी मैसेज की है, मैसेज की तरफ बढ़ेंगे। सो आज का सवाल है हमारा, छोटा हूँ पर बड़ा कहलाता हूँ, रोज दही की नदी में नहाता हूँ, कौन है जो रोज दही की नदी में नहाता है? भैया बताइए, जुखाम खांसी जुखाम हो गया तो सोचिए कौन है वो जो रोज दही में नहाता है, भाई उसको जुखाम खांसी होने का बिल्कुल भी उसको डर नहीं है। सोचिए फिलहाल के लिए।

क्या बात है, जंगल में कांड नहीं करते फिलहाल, मैसेज चलिए मैसेज पर फोकस करते हैं। आज रीना के साथ अब कनेक्ट है भैया इवनिंग मस्ती शो में, जहां पर बातें धमाकेदार और गाने और भी शानदार। तो आज का सवाल हमारा यही है, छोटा हूँ पर बड़ा कहलाता हूँ, रोज दही की नदी में नहाता हूँ। चलिए देखते हैं कौन है भाई साहब जो डेली दही की नदी में नहाते हैं। और आपको मैं बता दूं, दही और बेसन का पैक लगाते अपने फेस पर, साथ में लेमन डालते हैं तो आपके फेस पर जो टैनिंग होती है ना वो कम हो जाती है जी। लेकिन ये याद

0: देखते हैं और चलिए जी, लेकिन आप जब भी पैक लगाते हैं ना तो उसको ज्यादा देर तक सूखने नहीं देना है, बस उसको जब लगे कि आपको बस फेस पर टाइट फील होने लग जाता है, खिंचा खिंचा सा फील होने लग जाता है, तो हल्के हाथों से ना गीला करना है, अपने हाथों को हल्के हाथों से रब करना है। चलिए फिलहाल मैसेज की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास मैसेज आता है, सबसे पहले ये हमारे साथ कनेक्ट होते हैं और इनका कहना है कि प्रिय मित्र आर्जेरीना जी, वेरी गुड इवनिंग जी। ये नवनेश कुमार जी कनेक्ट होते हैं मुरादाबाद से और इनका कहना है कि दही बड़ा ओके पहला। और ललिता कश्यप जी का भी कहना है कि दही बड़ा है ओके। और ये हमारे साथ कनेक्ट होते बबलू सैनी मुंबई महाराष्ट्र से, इनका भी कहना है कि दही बड़ा। अरे भैया ज्यादा दही बड़ा मत करो, मुंह में पानी आने लग जाएगा। और अगले मैसेज की बात करूं तो ये मैसेज आता है हमारे पास मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से, इरशाद हुसैन अंसारी जी, सैयद शारिक अली, गुड इवनिंग रीना जी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं जी, आप बताइए कैसे हैं? आपका शो सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, साथ ही साथ गाने बहुत अच्छे प्ले कर रही हो। और राइट आंसर होता है दही बड़ा ओके। ये हमारे साथ माही कनेक्ट होती है, गुड वाली इवनिंग है जी। और राइट आंसर होता है दही बड़ा ओके। आप मैं मैम मुझे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है, मैं डेली सुनती हूँ। थैंक यू सो मच माही कि आप मेरा शो डेली सुनती हो। और अगले मैसेज की बात करूं तो दही बड़े का आंसर आता है विकी सागर जी का कहने कि भैया राइट आंसर है दही बड़ा। तो देखते हैं और मैसेज की तरफ बात करते हैं तो अगला मैसेज आता है, ये हमारे साथ रूपाली कनेक्ट होती है और इनका कहने कि दही बड़ा है मैम, जो कि मेरा बहुत ही फेवरेट वाला है ओके जी, मेरा भी है ये फेवरेट वाला। तो कल बताते हैं आपको राइट आंसर है या नहीं है। और अगले मैसेज की बात करूं तो दीपक जी कनेक्ट होते हैं और इनका कहना है कि दही बड़ा है और आज मैं शाम को बाहर जाने वाला अपने दोस्तों के साथ दही बड़ा ही खाने वाला हूँ। क्या बात है जी, एक ऑफिस में भी भिजवा दीजिएगा। और अगले मैसेज की बात करूं तो ये हमारे साथ पुनीत जी कनेक्ट होते हैं एमडीए से और इनका कहना है कि दही बड़ा है। क्या बात है भैया, आज तो बल्ले बल्ले हो गई भैया, बल्ले बल्ले। आप सभी ने राइट आंसर दिया है तो आपने क्या करना है कि आपने अपने घर में दही बड़ा बनाना है या फिर आप बाहर खाना चाह रहे हैं तो बिल्कुल खाइएगा, लेकिन जब भी खाइएगा एक ऑर्डर नहीं दो ऑर्डर करिएगा। और जब मैं अपने घर पर बनाऊंगी, अपने रूम पर बनाऊंगी, तो मैं आपको जरूर मैसेज करूंगी, आप आ जाइएगा स्टूडियो में, दही बड़ा पार्टी करते हैं। अच्छा प्राची भी आ गई, प्राची तुम्हें दही बड़ा पसंद है?
1: हाँ मुझे भी तो दही बड़ा बहुत पसंद है। रीना जी आप इतनी दही बड़ा की बातें कर रही हैं, हमारी श्रोता इतनी दही बड़ा की बातें कर रहे हैं, तो भाई दही बड़ा खाने का मन तो बहुत कर रहा है।
0: तो आज
1: जिस दिन रीना जी बनाएंगे उस दिन मैं तो रीना जी के साथ दही बड़ा जरूर खाने।
0: हाँ हाँ बिल्कुल, इनको भी मैसेज कर देंगे ना, ये भी आएंगे क्योंकि भाई सबने राइट आंसर दिया है। आज
1: पार्टी करेंगे हमने लिसनर्स के साथ, दही बड़ा वाली पार्टी।
0: हाँ दही बड़ा वाली पार्टी करेंगे और मिलकर खाएंगे। और एक मैसेज आ गया है कि इनका कहना है कि हम रीना जी हम इस समय दही बड़ा खा रहे हैं, यानी कि ये कनेक्ट होते हैं बबलू सैनी मुंबई महाराष्ट्र से। सर एक पार्सल कर दीजिए इधर भी।
1: नहीं सर।
0: अच्छा प्राची भी
1: है, दो पार्सल करिएगा।
0: अच्छा प्राची भी है ना। हाँ यार मैं तो भूल ही गई थी, देखिए दही बड़ा में मैं ना मतलब जो मैं ऑर्डर करती हूँ मैं उसमें शेयर नहीं करती हूँ।
1: तभी तो आपसे दो पार्सल करिएगा।
0: चलिए जी, सबसे पहले हमारे पास आंसर आया था, यानी कि नवनेश कुमार जी का आंसर आया था हमारे पास। और इसी के साथ मैं लेती हूँ ऐसे जाने की इजाजत, बाय बाय टाटा टेक केयर। आप सभी ने राइट आंसर दिया है, तहे दिल से आपको धन्यवाद इतना सारा प्यार देने के लिए, दिल गार्डन गार्डन हो जाता है जी। चलिए जाते जाते ये वाला गाना, बाय बाय जी, अपना ध्यान रखिए और इस गर्मी में पानी पीते रहिए।

0: EMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: इस पद्म पुरस्कारों की घोषणा की थी, इनमें 5 पद।
2: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। BMC हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: को केंद्र में रखने का आग्रह किया है प्रधानमंत्री ने। आज नई दिल्ली में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सहायक सचिव के रूप में नियुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2024 बैच के 183 प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत की। श्री मोदी ने युवा सिविल सेवकों से 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को केंद्र में रखते हुए काम करने का आह्वान किया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि सरकार अल नीनो के कारण मॉनसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
3: अल नीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल, उस पर इसका असर पड़ सकता है और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET 2026 के स्नातक दाखिलों के परिणाम आज घोषित कर दिए हैं। उम्मीदवार CUET के आधिकारिक पोर्टल पर अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं। एजेंसी के अनुसार इस साल प्रवेश परीक्षा में 11 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए। विदेश मंत्रालय ने आज बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी क्षेत्र में मौजूद हैं। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि अमरीका और ईरान के बीच समझौता होने के बाद से भारत आने वाले 11 जहाजों ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य को पार किया। इनमें भारतीय ध्वज वाले कच्चे तेल के 3 टैंकर्स के अलावा विदेशी ध्वज वाला एक LPG करियर, एक कच्चा तेल टैंकर और उर्वरक लदे 6 मालवाहक जहाज शामिल हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय ध्वज वाले बाकी जहाज भी जल्द ही हॉर्मुज जल डमरू मध्य से गुजर पाएंगे। कतर में हुए धमाके पर श्री जायसवाल ने बताया कि इस घटना में 12 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई।
4: रास लफान परियोजना में जब वहाँ एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट में 12 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा कुल 66 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, वो लोग सब लोग सुरक्षित हैं और हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है। ये 12 लोग के बारे में हम लोग कतर में वहाँ के सरकार के साथ और इनके परिवारजनों के साथ उनसे बातचीत हो रही है हमारी।
1: भारतीय नौसेना के आधुनिक स्टेल्थ युद्धपोत INS उदयगिरी और पनडुब्बी रोधी युद्धपोत INS कवरत्ती दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के दौरान कल वियतनाम के नारोंग बंदरगाह पहुंचे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि ये दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच घनिष्ठ और दीर्घकालिक संबंधों तथा बढ़ती हुई समुद्री साझेदारी को दर्शाता है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात 10:30 ग्रुप ए में पुर्तगाल का मुकाबला होगा उज़्बेकिस्तान से। ग्रुप एल में रात 1:30 इंग्लैंड का सामना घाना से होगा और वहीं सुबह 4:30 क्रोएशिया का सामना पनामा से होगा। ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में कल सुबह 7:30 कोलंबिया का सामना कांगो से होगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 आपके शहर का सामुदायिक रेडियो। आनंद के साथ हैं आप और प्रोग्राम का नाम है हेलो डॉक्टर। और हमारे साथ कोई ना कोई विशेषज्ञ, कोई ना कोई एक्सपर्ट मौजूद होते हैं। और आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर आकाश सिंघल, जो श्री साई हॉस्पिटल में है, इस वक्त वहाँ पर वर्किंग है। अब सर का वेलकम करेंगे और उनसे बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे। आज हमने उनको क्यों आमंत्रित किया है अपने स्टूडियो में और हमारे इस प्रोग्राम में हेलो डॉक्टर में, तो वो तो हम आकाश जी से ही जानेंगे। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत थे हमारे एफएम मुरादाबाद के स्टूडियो में, जोरदार तालियों के साथ वेलकम टू एफएम मुरादाबाद। हाउ आर यू, कैसे हैं आप, प्लीज बताएं आकाश जी।
1: फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म।
0: थैंक यू सर,
1: दिस इज द फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस।
0: ओह वाओ, लवली, कैसा लग रहा है? पहले तो मैं यही पूछूंगा।
1: इट्स एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, लाइक थोड़ा सा है कि नाउ आई कैन शेयर माई थॉट्स विद द पीपल। ठीक है, आपके चैनल से काफी लोगों को मैं इन्फॉर्मेशन दे पाऊंगा, जो जो चीजें हैं जो मैं चाहता हूँ कि एवरी पेरेंट शुड नो।
0: क्या बात है।
1: तो पहले तो मैं बताता हूँ, मेरा नाम डॉक्टर आकाश सिंघल है, जैसे कि आपने सबको बताया है।
0: जी जी, प्लीज।
1: मैंने MBBS किया है मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली से।
0: ब्यूटीफुल।
1: फिर MD पीडियाट्रिक्स किया है लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली से।
0: वाओ।
1: उसके बाद मैंने किया है DM न्यूरोलॉजी एम्स न्यू दिल्ली से।
0: क्या बात है।
1: अब लोग सोचते हैं ये DM न्यूरोलॉजी है क्या?
0: जी,
1: तो मैं बताना चाहूंगा कि DM न्यूरोलॉजी बच्चों की सुपर स्पेशलिटी है।
0: हाँ जी।
1: इसमें हम बर्थ से 1 मंथ तक के बच्चों को देखते हैं। अब आजकल प्रीमेच्योरिटी, लो बर्थ वेट, मतलब समय से पहले बच्चे डिलीवर हो रहे हैं, कम वजन के साथ बच्चे डिलीवर होते हैं, तो इसकी एक सुपर स्पेशलिटी है। ऑल दो हम सारे ही पेडियाट्रिशियंस अपने ही कोर्स में न्यूबॉर्न बच्चे देखते हैं, बट सुपर स्पेशलिटी की जहां बात आती है तो वी आर एक्सक्लूसिवली लुकिंग आफ्टर न्यूबॉर्न फॉर द लास्ट 3 ईयर्स।
0: हाँ जी।
1: तो इसमें एक्सपर्टीज बढ़ता है और विद टाइम नॉलेज भी होती है। एंड रही बात मेरे बारे में, तो मैंने दिल्ली एम्स से किया है, तो वो एक हायर रेफरल सेंटर है, तो वहाँ पे हाई रिस्क केसेस ही मोस्टली होते हैं।
0: Alright.
1: तो हमारी एक्सपर्टीज उसी में ज्यादा होती है। समय से पहले डिलीवर हो गए हैं, खून बदलना पड़ा है किसी बच्चे का, बच्चा पैदा होने के बाद नहीं रोया है, ये सब केसेस।
0: बहुत ही अच्छा परिचय सर ने दिया है, तो ऑडियंस अब आप दिल थाम के बैठिए, आपको बहुत सारी जानकारियां मिलेगी। आज हेलो डॉक्टर के प्रोग्राम में डॉक्टर आकाश सिंघल जी मौजूद हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे से अपने आप को जो है आपके साथ इंट्रोड्यूस किया। सो डॉक्टर साहब, मेरा पहला सवाल आपसे होगा कि जो नवजात शिशु है उसकी देखभाल में मतलब किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए हमें, जब न्यूबॉर्न बेबी होता है,
1: जब बेबी डिलीवर होता है। एक्चुअली कॉमन चीजें, कुछ मिथ्स हैं जो अगर बेबी नॉर्मल है, हेल्दी है, तो क्या करते हैं फैमिलीज, कभी कभी कुछ घुट्टी पिलाने लगते हैं।
0: जी जी।
1: कोई कोई अम्बिलिकल कॉर्ड जो बच्चे की नाल होती है उस पर पाउडर या तेल लगाने लगते
0: जी
1: हैं।
0: जी जी जी।
1: एक बहुत बड़ा मिथ है कि धूप दिखाएंगे तो पीलिया कम हो जाएगा, जॉन्डिस कम हो जाएगा।
0: जी जी जी।
1: ये कॉमन चीजें हैं। कुछ लोग गाय का दूध, भैंस का दूध, मतलब डिफरेंट ये सब चीजें ट्राई करते हैं,
0: बट
1: ये चीजें नहीं होती, होनी चाहिए। ये सब चीजें बच्चों में इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ाती है। तो कुछ जैसे कि, जैसे अगर बेबी हेल्दी है, मदर के पास है, तो उसे हर से 2 से 3 घंटे में ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए। ठीक है, अच्छे से साफ सफाई रखनी चाहिए। ये नहीं कि कभी कभी मैं देखता हूँ हॉस्पिटल में कि एक बेबी डिलीवर हुआ है, साथ में 6-7 रिश्तेदार हैं उसके साथ, तो हमें नहीं पता कि किसको क्या बीमारी है, कोई वायरल इन्फेक्शन है, कुछ है, तो वो बच्चे की इम्यूनिटी बहुत वीक होती है, तो वो बहुत जल्दी इन्फेक्शन कैच कर लेते हैं और फिर बच्चों की उनकी दिक्कत बढ़ जाती है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर बेबी डिलीवर है तो पूरी साफ सफाई का ध्यान रखें, हाइजीन मेंटेन रखें, हाथ धो के ही बच्चे को टच करें, इन सब चीजों का ध्यान दें।
0: ओके सर, डॉक्टर साहब बहुत अच्छे से आपने बताया। और कई बार ऐसा होता है कि जन्म के तुरंत बाद, जैसे कहते हैं कि बच्चे को माँ का दूध देना बहुत जरूरी होता है, तो ये कितना इम्पोर्टेंट है, जन्म के तुरंत बाद बच्चे को माँ का दूध मिलना चाहिए?
1: हाँ, डेफिनेटली यस। अगर मदर हेल्दी है, मतलब नॉर्मली क्या होता है, अगर नॉर्मल डिलीवरी है,
0: हाँ जी,
1: तो
0: हाँ
1: हम
0: जी.
1: प्रैक्टिस करते हैं स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट एंड अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग विद इन 1 आवर ऑफ बर्थ। इसका मतलब है कि जैसे ही बच्चा डिलीवर होता है उसे माँ के पेट के ऊपर रख देते हैं।
0: दिस इज कंगारू मदर केयर आई थिंक।
1: Sort of, it's a different thing.
0: All right.
1: कंगारू मदर केयर मोस्टली प्रीटम बच्चों के लिए होती है, जो कम वजन के बच्चे होते हैं।
0: हाँ जी, हाँ जी,
1: ठीक है। इन एवरी बेबी डिलीवरी के बाद क्या होता है, अंदर जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो उसका तापमान मेंटेन रहता है, बाहर आने के बाद ठंडा होने का रिस्क रहता है
0: जी।
1: तो बच्चों के लिए ठंडा होना काफी हानिकारक होता है।
0: ओके।
1: तो यही कहा जाता है कि जैसे ही बच्चा डिलीवर हुआ है तो उसको माँ के पेट के ऊपर रखें और वहीं पे ही इमीडिएटली ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करें। नॉर्मल डिलीवरी में ये पॉसिबल होता है। कुछ मुश्किलें आती हैं जब बच्चा ऑपरेशन से सीजरियन डिलीवरी से होता है
0: तो जी जी।
1: उसमें इमीडिएटली पॉसिबल नहीं हो पाता है, कुछ कुछ जगह अगर हम चाहें तो हम कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, बट ब्रेस्ट फीडिंग इज द बेस्ट मेथड ऑफ फीडिंग फॉर द बेबी।
0: ओके डॉक्टर साहब, एक सवाल रहेगा, जो नवजात शिशु होते हैं उनको मतलब कितनी बार वो दूध पीते हैं या उन्हें कितनी बार दूध पिलाना चाहिए, इसके विषय में थोड़ा सा आप बताइए।
1: बेबी को 2-3 आवर्ली, इनिशियली 2-3 आवर्ली हम बोलते हैं। जैसे अगर बच्चे शुरू में कि दो से तीन घंटे में आप फीड कराएं, कुछ चीजें होती हैं जैसे मदर्स को नहीं, जो फर्स्ट टाइम मदर्स बने हैं उनको नहीं पता होता है, वो क्या करती हैं, एक कॉन्सेप्ट होता है फोर मिल्क और हैंड मिल्क, मतलब शुरू का दूध और बाद का दूध
0: जी।
1: तो हम की कहते हैं कि एक बार अगर मदर फीड करा रही है तो वो सफिशियंट टाइम के लिए फीड कराएं, जिससे बच्चे को पूरे एक तरफ से पूरा दूध मिले।
0: ओके।
1: क्योंकि क्या होता है, अगर बच्चा सिर्फ शुरू का दूध पीता है तो उसमें सिर्फ उसकी थर्स्ट, मतलब कि उसकी प्यास बुझती है, उसका पेट नहीं भरता है ना ही वजन बढ़ता है। जो बाद का दूध होता है वो जो गाढ़ा होता है, जिसको हम हैंड मिल्क बोलते हैं, उसमें हमारे फैट्स होते हैं, बाकी चीजें होती हैं, तो जिससे उसका पेट भी भरता है और उसका वजन बढ़ता है। तो कुछ मदर्स अगर एक बार में दोनों तरफ से फीड करा रही हैं तो सिर्फ फोर मिल्क दे रही हैं तो बच्चे का वजन नहीं बढ़ेगा, पेट नहीं भरेगा, बच्चा क्रैंकी रहेगा। और जब बच्चा बड़ा होने लगता है तो हम प्रैक्टिस करते हैं फीडिंग ऑन डिमांड, मतलब बच्चा जब मांग रहा है दूध हमें उसको फीड कराना है। फीड कराने के बाद हमें ध्यान रखना है कि हमें हर बार डकार दिलानी है। फीड कराने के बाद बर्फ कराना, मतलब डकार दिलाना बेहद जरूरी होता है, तुरंत लेटाए ना उसको, अच्छे से बर्फ करा के तभी लेटाए।
0: बहुत ही बढ़िया, आप सुन रहे प्रोग्राम हेलो डॉक्टर, मेरा नाम आनंद है और इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ श्री साई हॉस्पिटल से डॉक्टर आकाश सिंघल जी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा होता है कि जो नवजात शिशु होते हैं वो कई बार रोने लगते हैं, तो ऐसे में जो समझ नहीं आता है, ना तो मम्मी को समझ आता है ना पापा को समझ आता है, तो बच्चा अगर ज्यादा रोता है तो ऐसे केसेस में क्या करना चाहिए?
1: अगर बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा है तो बच्चा तो उसके पास ओनली वे ऑफ एक्सप्रेशन इज रोना, अगर उसको कोई भी दिक्कत होगी वो सिर्फ रोएगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: है ना,
0: बिल्कुल।
1: वो कॉमन कॉमन चीजें होती हैं, सबसे पहले
0: कोई रीजन, कोई कारण, मतलब जिसे पता,
1: तो हम थोड़ा सा सबसे पहले ट्राई करते हैं कि फीड करा के देखते हैं। मोस्टली बच्चों में क्या होता है, वो भूखे होते हैं इस वजह से वो रो रहे होते हैं, हमने फीड करा के शांत हो जाते हैं, इट्स गुड। कुछ कुछ बच्चों में क्या होता है, अगर वो फीड भी नहीं कर रहे होते हैं तो एक नोस ब्लॉक बहुत कॉमन चीज होती है, मतलब मैंने जितने भी मैं पेशेंट्स देखता हूँ तो वन ऑफ द नेक्स्ट पेशेंट सब में किसी न किसी को नोज ब्लॉक बहुत कॉमन होता है। सिंपल, अब बेबी की नोज गंदी है, वो क्लीन तो कर पाएगा नहीं, तो उसके लिए है कि हम कुछ मेडिकेशन या फिर नॉर्मल सलाइन ड्रॉप्स होती हैं उसको हम डालते हैं, बेबी की नोज क्लियर हो जाती है तो वो इजिली फीड कर पाते हैं, शांत हो जाते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे लाइक अगर हमें देखना है कि अगर एक्सेसिवली क्राई कर रहा है तो उसमें डायपर तो वेट नहीं है, कॉमन चीज हमें देखनी है। कभी कभी हम मिस कर देते हैं कि बच्चे का डायपर गीला है, वो उसको इरिटेट कर रहा होता है और बच्चा रो रहा होता है।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छे से डॉक्टर साहब आपने बताया है। नवजात में जो बुखार है वो कितना खतरनाक होता है छोटे बच्चों में?
1: छोटे बच्चों में ज्यादा खतरनाक पहले कहें तो हमें उनके अंदर टेम्परेचर मेंटेन करने की इतनी कैपेसिटी नहीं होती, तो इसलिए ही आप देखेंगे कि कहीं पे भी आपने अगर नर्सरी देखी होगी तो उसमें हर बच्चा यूजुअली वार्मर के नीचे लेटा होता है, मतलब कि उसको कॉन्स्टेंटली हम उसको हीट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जो इसलिए उनमें ठंडे होने का रिस्क ज्यादा होता है।
0: ठीक है, बहुत
1: उनमें ठंडे होने का रिस्क ज्यादा होता
0: जी,
1: है
0: जी, जी,
1: ठीक है, तो हमें, मैं यही बोलता हूँ सब पेरेंट्स को कि जितने आप कपड़े पहन रहे हैं उससे एक लेयर एक्स्ट्रा पहना के रखें, बच्चों को कवर करके रखें। पेरेंट्स का सवाल होता है कि सर एसी चला सकते हैं, पंखा चला सकते हैं, अब इतनी गर्मी है। मैं यही बोलता हूँ कि ठीक है आप एसी चला सकते हैं, बट टेम्परेचर आप रूम का 25-27 डिग्री मेंटेन करके रखो, डायरेक्टली पंखे के नीचे नहीं लेटाओ बच्चों को, बच्चों को अपने से लेयर एक्स्ट्रा पहना के रखो। ठीक है, और दूसरा चीज आती है बच्चे का टेम्परेचर, आप थर्मोमीटर से चेक करने की जरूरत नहीं है, हम अपने हाथ से भी छू के बच्चे के हाथ और पैर देख सकते हैं कि अगर वो ठंडे हैं तो हम एक्स्ट्रा कपड़े पहना रहे हैं। ठीक है, और अगर बच्चा बहुत ज्यादा पसीने आ रहे हैं कुछ है तो हमें कपड़े कम कर देने हैं।
0: बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, जो जन्म लेते हैं बच्चे, उन्हें जन्म से जन्म की कितनी देर बाद उनको नहलाना चाहिए और उनको कब नहलाना चाहिए? बेसिकली नहीं पता होता है जो न्यू पेरेंट्स होते हैं, तो आजकल लाइफस्टाइल इतना बिजी है, सुपर फास्ट है भाई, बहुत सारी चीजों से जो पेरेंट्स नहीं होते हैं रूबरू, तो मैं अगर आपसे ये पूछना चाहूँ तो डॉक्टर साहब,
1: अगर बेबी का वेट 2 kg से ज्यादा है
0: जी,
1: मतलब यूजुअली हमारा 2 kg से ज्यादा तो मतलब ऑलमोस्ट पूरे समय पे पैदा हुआ है।
0: हाँ जी हाँ जी,
1: ठीक है, तो हम ये बोलते हैं कि जब बच्चे की जो कॉर्ड होती है अम्बिलिकल कॉर्ड, जिसको हम आम भाषा में बच्चे की नाल बोलते हैं, हाँ, नाभि बोलते हैं,
0: हाँ जी हाँ जी,
1: जब वो अलग हो जाती है उसके बाद ही बच्चे को नहलाना चाहिए, ठीक है। और अगर किसी बच्चा जो समय से पहले पैदा हुआ है, वजन कम है जिनका, जैसे 1.5 kg मतलब 1.5 किलो 1.25 किलो इस टाइप के वजन है, जितना भी है, तो जब बच्चे का वजन 2 किलो या उससे ज्यादा हो जाए हमें उसके बाद नहलाना चाहिए बच्चे को।
0: छोटे बच्चों के लिए, जो छोटे न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, उनके लिए टीकाकरण कितना महत्वपूर्ण है, कितना इम्पोर्टेंट है? कई बार पेरेंट्स लगवाने से डरते हैं आज भी ग्रामीण इलाकों में, कि बच्चे को बुखार आ जाएगा, बच्चा रोने लगेगा, तो ये बहुत सारे ना लोग एक्सक्यूजेस देते हैं, टीकाकरण नहीं करवाते हैं,

0: प्रोग्राम में आज डॉक्टर आकाश सिंघल जी हमारे साथ मौजूद है श्री साई हॉस्पिटल से, और आज हम न्यू बोर्न के ऊपर ढेर सारी बात करें, नवजात शिशुओं को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक और मेरा सवाल है, जो नवजात का वजन होता है वो कितना सामान्य माना जाता है?
1: नॉर्मली कहें तो हम 2.5 केजी के अराउंड एक एवरेज बर्थ वेट होता है, ठीक है। उससे कम है अगर हम उनको लो बर्थ वेट बोलते हैं, मतलब जन्म का वजन कम है। बट जैसे जैसे वजन कम होने के कई कारण हो सकते हैं, या तो बच्चा पहले डिलीवर हो गया है, या फिर ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन है, मतलब उसका गर्भ के अंदर वजन ठीक से ही बढ़ा है, तो वो एक अलग चीज होती है। वजन अगर जैसे जैसे बच्चा समय से पहले होगा तो उसका स्वाभाविक है वजन भी कम होगा, तो इसके साथ सारी चीजें हमारे रिस्क बढ़ते हैं। बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती हैं न्यूबॉर्न प्रीटर्म या फिर हमारे लो बर्थ या वेरी लो बर्थ 1500 ग्राम से कम वाले बच्चों में काफी कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती हैं, क्योंकि सारे बॉडी के सारे ऑर्गन्स इमेच्योर है। मैं अपने पेशेंट्स को भी यही समझाता हूँ कि उसका अगर आप ब्रेन देखें तो ब्रेन की वेसल्स हैं वो कमजोर हैं, उनमें अगर कोई भी प्रेशर चेंज होगा तो उनमें रप्चर का रिस्क रहेगा, ब्रेन हेमरेज का रिस्क रहता है। बच्चे के लंग्स ठीक से डेवलप नहीं हुए हैं अगर, तो उनमें छोटी मशीनी, जैसे हम आम भाषा में छोटी मशीन कहते हैं, जो सीपैप होता है, या फिर वेंटिलेटर की जरूरत पड़ सकती है। और अगर बच्चे की गट भी हमारे अगर समय से पहले है तो वो भी कमजोर होती है, तो बच्चे कुछ बच्चे प्रीटम बच्चे या हमारे जो कम वजन वाले बच्चे हैं फीड यानी कि दूध पचाने में भी दिक्कतें हैं, ठीक है, और उनमें इन्फेक्शन से लड़ने की शक्ति भी कम होती है। तो ये सारी कॉमन कॉम्प्लिकेशंस हैं जो समय से पहले जन्म हुए बच्चे या फिर जो काफी मतलब हमारे 1500 ग्राम 1600 ग्राम वाले ये जो बच्चे होते हैं इनमें देखी जाती है। इन बच्चों को ICU की बेहद जरूरत होती है, यहाँ पे हम इनको मिनिमल हैंडलिंग करनी होती है, मतलब कम से कम डिस्टर्ब करें बच्चों को, सारा काम बच्चों का क्लस्टर केयर की सारा काम जो भी करना है, डायपर चेंज करना है, फीड देनी है, ये सब हम एक साथ करें। जितना कम हम इनको हैंडल करेंगे, जितनी पूरी कोशिश रहनी चाहिए कि हम इनको इन यूट्रो एनवायरमेंट जो कि गर्भ के अंदर का वातावरण होता है वो हमें प्रोवाइड करने की, जिससे इनकी ग्रोथ अच्छी होती है।
0: डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, आप आए हमारे स्टूडियो और आपने हमारे तमाम सुनने वालों को बहुत बेहतरीन जानकारी दी, और मुझे पूरी उम्मीद है ये जानकारी कहीं ना कहीं जो न्यू पेरेंट्स बनने वाले हैं उनके लिए भी बहुत कमाल होगी, और जो लोग बन चुके हैं उनके लिए भी कमाल की होगी। सो थैंक यू सो मच, वेल आपने इतना टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, हम आगे भी आपको आमंत्रित करते रहेंगे और आप प्लीज आते रहिएगा, श्योर। और मैं जाने से पहले आपसे एक संदेश लेना चाहूंगा, जो तमाम लोग आपको सुन रहे हैं, स्पेशली मॉम डैड जो अभी न्यू बनने वाले हैं और जो बन गए, उनके लिए आप क्या संदेश नहीं है जाते जाते?
1: मैं बताना चाहूंगा कि बच्चों में हमें डेंजर साइंस का ध्यान रखना चाहिए। डेंजर साइंस मतलब खतरे के संकेत।
0: हाँ जी।
1: किस स्थिति में हमें बच्चों को तुरंत अस्पताल लेके जाना है?
0: जी जी।
1: अगर बच्चा सुस्त है, मोस्टली बच्चे पूरे दिन सोते हैं, फीड करेंगे सो जाएंगे, फीड करेंगे थोड़ी बहुत एक्टिविटी करेंगे सो जाएंगे, बट आपके उठाने से भी नहीं उठ रहे हैं, वो बच्चा सुस्त है, आप उसको अस्पताल लेके जाएंगे, बच्चे को दौरे आ रहे हैं या

0: साइंस होते हैं, इनको बेहद ध्यान रखना है। और ऐसी अगर बच्चों में कोई भी चीज़ें देखने को मिलती हैं तो तुरंत अस्पताल में दिखाना है। और एक और एडवाइस पेरेंट्स के लिए कि मदर्स को अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है बच्चे की केयर करते टाइम, क्योंकि अगर मदर की हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो मदर का मिल्क आउटपुट कम होगा, वो बेबी का ठीक से ध्यान नहीं रख पाएंगी तो वो ठीक नहीं है। तो मदर्स को भी अपना ध्यान रखना और एडवाइस रहेगी पेरेंट्स के लिए कि आजकल इंटरनेट के जमाने में सिर्फ इंटरनेट पे ही भरोसा ना करें।
1: बिल्कुल सही कहा।
0: अगर कोई भी दिक्कत लगती है आप अपने नजदीकी डॉक्टर से डिस्कस करें और अपनी उनके ओपिनियन को ही माने, क्योंकि नेट पे तो अगर खोलेंगे तो कुछ भी आ जाएगा, उसके बाद डरेंगे ही और कोई फायदा नहीं होगा। तो बेहतर रहेगा कि आप अपने डॉक्टर से सलाह लें और उनकी एडवाइस को माने।
1: थैंक यू सो मच डॉक्टर आकाश जी, आप आए, बहुत बहुत थैंक यू। और एफएम मुरादाबाद आरजे आनंद आपका शुक्रिया करता है। उम्मीद करता हूँ आगे भी ऐसे मिलते हैं।
0: थैंक यू,
1: बहुत बहुत थैंक यू। सुनते रहिए आप एफएम मुरादाबाद 89.6 आपके शहर का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। फिर मिलते हैं एक नई सीरीज में किसी और नए एक्सपर्ट के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।
2: वो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है। आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
3: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हल्दी आउटफिट फ्री।
2: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
4: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
5: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सांसें सही, जिंदगी सही।
1: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
2: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर, 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद,
3: कॉल 8826213131।
4: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
5: दिल्ली प्रीमियर लीग का तीसरा संस्करण 31 जुलाई से होगा शुरू। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक सम्मान समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। एक रिपोर्ट।
6: ये पुरस्कार पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री तीन श्रेणियों में दिए जाते हैं। पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म विभूषण और पूर्व न्यायाधीश केटी थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी और पार्श्व गायिका अलका याग्निक को पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया। सरकार ने इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की थी। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। 1954 में शुरू किए गए इन पुरस्कारों की घोषणा प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है। प्रादेशिक समाचार के लिए शक्ति सिंह।
5: दिल्ली सरकार ने राजधानी में 1 जनवरी 2025 तक मौजूद सभी झुग्गी बस्तियों के निवासियों को पुनर्वास का लाभ देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली सचिवालय में आयोजित दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड की 36वीं बैठक में इसकी घोषणा की। एक रिपोर्ट।
7: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस अवसर पर कहा कि ये निर्णय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा अंतिम रूप दी गई दिल्ली झोगी झोपड़ी पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन नीति 2026 के अनुरूप है। उन्होंने बताया कि पहले पुनर्वास के लिए वर्ष 2015 को आधार वर्ष माना जाता था, जिसकी सीमा अब बढ़ा दी गई है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इस फैसले से लाखों परिवारों को आधुनिक आवास उपलब्ध कराने का मार्ग प्रशस्त होगा। इन आवासों में स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, आंगनवाड़ी, खेल मैदान और अन्य आवश्यक सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। उन्होंने कहा कि इससे परिवारों को सम्मानजनक, सुरक्षित और बेहतर जीवन जीने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली के प्रत्येक नागरिक को सम्मानजनक जीवन और पक्का आवास उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। आदित्य की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से वैष्णवी।
5: दिल्ली सरकार ने राजधानी के पंजीकृत भवन निर्माण श्रमिकों और उनके परिवारों के स्वास्थ्य संरक्षण के लिए दिल्ली भवन निर्माण श्रमिक स्वास्थ्य योजना को स्वीकृति प्रदान की है। इस योजना से दिल्ली के लगभग 2.70 लाख पंजीकृत निर्माण श्रमिकों और उनके परिवारों सहित करीब 10 लाख लोगों को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार समाज के प्रत्येक वर्ग, विशेष रूप से गरीब, श्रमिक और वंचित परिवारों के कल्याण के लिए पूरी संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिक देवो भव की सोच के साथ अधिकारियों से शासन में नागरिकों को केंद्र में रखने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सहायक सचिव के रूप में नियुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2024 बैच के 183 प्रशिक्षु अधिकारियों से बात की। श्री मोदी ने युवा सिविल सेवकों से 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को केंद्र में रखते हुए काम करने का आह्वान किया। एक रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री ने युवा सिविल सेवकों से दृढ़ संकल्प, नवाचार और नागरिक केंद्रित शासन के साथ राष्ट्र निर्माण के लिए स्वयं को समर्पित करने का आग्रह किया। समग्र सरकारी दृष्टिकोण का आह्वान करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सार्थक और स्थायी परिणाम प्राप्त करने के लिए विभागों के बीच प्रभावी समन्वय आवश्यक है। विकसित भारत 2047 की परिकल्पना का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि आने वाले दशकों में हर नीति और प्रशासनिक निर्णय का उद्देश्य विकसित भारत का निर्माण होना चाहिए। श्री मोदी ने पिछले एक दशक में शासन में आए बदलावों का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रशासन प्रक्रिया केंद्रित मॉडल से परिणाम उन्मुख हुआ है। श्री मोदी ने युवा अधिकारियों से राष्ट्र निर्माण में अपने योगदान का निरंतर मूल्यांकन करने का आग्रह किया। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से मैं अमीशा।
5: केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ किया। नेफेड की प्रगति का जिक्र करते हुए श्री शाह ने कहा कि 12 साल पहले गंभीर वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहा यह संगठन आज 74 लाख किसानों की सेवा करने वाला एक मजबूत संस्थान बनकर उभरा है।
8: नाफेड ने एक प्रकार से नेफिक्स.इन, दृष्टि, ईआरपी और नाफेड कल्याण, ये चार पहलों की शुरुआत की। तो वो क्रांतिकारी इसलिए कि नाफेड जो 2014 में बंद होने की कगार पर आ गया था, आज नाफेड ये सारी पहल कर 500 करोड़ के मुनाफे के साथ, 30,000 करोड़ के टर्नओवर के साथ देश के 74 लाख किसानों की सेवा कर रहा है।
5: गृह मंत्री ने किसानों की सीधी भागीदारी को मजबूत करने के लिए खरीद कार्यों में बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करने का आह्वान किया।
8: आने वाले 2 सालों में सहकारिता मंत्रालय सुनिश्चित करेगा कि दलहन का एक दाना भी एनसीसीएफ और नाफेड में व्यापारियों के माध्यम से न आए, सीधा किसानों के माध्यम से आए, जिससे मुनाफा पूरा किसानों के पास। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है, अब इंफ्रास्ट्रक्चर को नीचे तक पहुंचाना है और उसमें मैं मानता हूं कि नाफेड और एनसीसीएफ ने भी दृढ़ता के साथ शुद्ध तरीके से काम करने की शुरुआत करनी पड़ेगी, तभी जाकर परिणाम मिलेंगे।
5: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पिछले एक दशक में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उन्होंने खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी और किसान हितैषी बनाने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग करने हेतु नेफेड और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ की टीमों को बधाई दी है।
9: नेफेड ने एनसीसीएफ के साथ मिलकर आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल करते हुए कैसे पारदर्शी तरीके से खरीद हो किसान की, और न केवल खरीद हो बल्कि निश्चित समय सीमा में 48 घंटा तय किया है किसान के खाते में पैसा भी पहुंच जाए, खरीदी में लाइन ना लगे तो पहले से रजिस्ट्रेशन हो जाए, पंजीकरण निर्धारित तिथि पर बुलाना, बैठने की पीने के पानी की न्यूनतम जो सुविधाएं वो देना, ये सचमुच में नेफेड ने किसानों के हित में बहुत प्रशंसनीय काम किया है। मैं उनकी पूरी टीम को आज हृदय से बधाई देता हूं।
5: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि सरकार अलनीनो के कारण मानसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
9: अलनीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है, और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है, और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
5: दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने आज आगामी मॉनसून सीजन की तैयारियों के लिए एक उच्च स्तरीय अंतर विभागीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। नगर निगम मुख्यालय में आयोजित इस बैठक का उद्देश्य सभी संबंधित विभागों और एजेंसियों के बीच समन्वय को और सुदृढ़ बनाना था, साथ ही मॉनसून के दौरान नागरिकों को होने वाली असुविधाओं को न्यूनतम करने के लिए समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करना था। इस दौरान राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में संभावित जलभराव से संबंधित अंतर विभागीय मुद्दों और चुनौतियों पर भी चर्चा की गई। इसके अलावा विभिन्न एजेंसियों द्वारा किए जा रहे नालों की गाद निकासी कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए महापौर ने कहा कि मानसून के दौरान प्रभावी और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ काम करना होगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल निकासी पंप, मोटर, डीवॉटरिंग उपकरण तथा अन्य आपातकालीन मशीनरी समेत सभी आवश्यक संसाधनों को पूरी तरह तैयार और कार्यशील अवस्था में रखा जाए। दिल्ली के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने आज दिल्ली सचिवालय में स्टॉप डायरिया अभियान 2026 की शुरुआत की। इस अभियान के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग द्वारा बच्चों और उनके अभिभावकों को ORS के पैकेट और जिंक की गोलियां भी निःशुल्क वितरित की जा रही हैं। इस अभियान का उद्देश्य बच्चों को डायरिया से होने वाली बीमारियों और मौतों से बचाने के लिए लोगों को जागरूक करना है। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
10: यह अभियान आगामी 31 जुलाई तक पूरे राजधानी में चलाया जाएगा। स्टॉप डायरिया अभियान के साथ ही स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने सरदार वल्लभ भाई पटेल अस्पताल में नव निर्मित मॉडल इंटीग्रेटेड न्यूट्रिशन सेंटर का भी वर्चुअल उद्घाटन किया। यह केंद्र बच्चों, गर्भवती महिलाओं और पोषण संबंधी चुनौतियों का सामना कर रहे परिवारों को समग्र स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। इसमें एलोपैथी, आयुष, होम्योपैथी, यूनानी और योग जैसी विभिन्न चिकित्सा पद्धति को एकीकृत किया गया है। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने गर्भकालीन मधुमेह और गर्भव्यवस्था तथा प्रसवोत्तर सेप्सिस के प्रबंधन के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं जारी की तथा क्लिनिकल एल्गोरिदम का विमोचन भी किया। नए क्लिनिक एल्गोरिदम स्वास्थ्य संस्थानों में त्वरित संदर्भ सामग्री के रूप में उपयोग किए जा सकेंगे और डॉक्टरों, नर्सों तथा अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य कर्मियों को गर्भव्यवस्था के दौरान मधुमेह, संक्रमण और सेप्सिस जैसे उच्च जोखिम वाली स्थितियों की समय पर पहचान और प्रबंधन में सहायता करेंगे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सुरक्षित प्रसव, नवजात शिशु देखभाल, टीकाकरण, पोषण, समय पर उपचार और सामुदायिक जागरूकता पर विशेष बल दिया जा रहा है। प्रादेशिक समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
5: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधु ने आज नवजीवन विहार स्थित रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल सेंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विकेंद्रीकृत खाद निर्माण इकाइयों, स्रोत स्तर पर कचरा पृथककरण व्यवस्था और स्थानीय वर्षा जल संचयन प्रणाली का भी जायजा लिया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उपराज्यपाल ने कहा कि यह क्षेत्र राजधानी में जीरो वेस्ट कॉलोनी के एक प्रेरणादायक मॉडल के रूप में स्थापित है। उन्होंने कहा कि समुदाय के नेतृत्व में हुआ ये बदलाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन लाइफ और वेस्ट टू वेल्थ पहल के अंतर्गत सर्कुलर इकोनॉमी के सिद्धांतों को दर्शाता है। उपराज्यपाल ने RWA और स्थानीय निवासियों के प्रयासों की भी सराहना की। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क में उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। साथ ही दिल्ली भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा के साथ पार्क में पौधारोपण भी किया। अपने संबोधन में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी का जीवन राष्ट्र की एकता, उसकी अखंडता और सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा के लिए समर्पित था। दिल्ली में दिल्ली प्रीमियर लीग का तीसरा सीजन 31 जुलाई से 30 अगस्त तक खेला जाएगा। दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन ने इसकी घोषणा करते हुए बताया कि नए सीजन से पहले खिलाड़ियों की नीलामी 1 जुलाई को होगी। मौसम विभाग ने दिल्ली में कल तक तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज दोपहर बाद धूल भरी आंधियों के साथ तेज बारिश हुई, जिससे दिल्ली वासियों को भीषण गर्मी से कुछ राहत मिली। मौसम विभाग ने बताया कि कल हल्के बादल छाए रहने की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान रह सकता है 39-41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25-27 डिग्री सेल्सियस के आसपास। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में नागरिक सम्मान समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। दिल्ली सरकार ने झुग्गी बस्तियों के पुनर्वास के लिए पात्रता का दायरा बढ़ाया। पहली जनवरी 2025 तक की बस्तियां होंगी शामिल। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने स्टॉप डायरिया अभियान 2026 का शुभारंभ किया। मौसम विभाग ने दिल्ली में कल तक तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है और दिल्ली प्रीमियर लीग का तीसरा संस्करण 31 जुलाई से होगा शुरू। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हुआ समाप्त। नमस्कार।

0: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
1: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
0: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
1: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरो सर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार फेज 2 दिल्ली रोड मुरादाबाद।
2: कॉल 7500153841।
3: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चावला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर। चार योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीज एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।

0: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: हेलो,
2: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
3: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
2: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
4: हर घर सूर्य घर।
5: आई कैसे हाल चाल है, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का अपना फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज की शाम बहुत ही स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज का शो बहुत ही खास है और आज हमारे साथ एक बहुत ही खास जो दूर से मेहमान जुड़ने वाले हैं आपकी शाम को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। 23 जून की इवनिंग है लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल, एंड इस शो में मैं बिल्कुल भी आपके साथ अकेला नहीं हूँ, ऑफकोर्स आई हैव विद मी, कौन है, हेलो जी, हेलो,
6: मैं हूँ आपकी दोस्त प्राची और आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहो, गुनगुनाते रहो, और आज हम आ गए आपकी शाम को और भी शानदार
5: बनाने। लेकिन प्राची तूने ये नहीं बोला हाय ब्यूटीफुल माय पीपल,
6: ये तो मैं भूल गई थी, पर थैंक यू सो मच फॉर रिमाइंडिंग मी, हाय माय ब्यूटीफुल पीपल,
5: यस यस,
6: हाउ आर यू ऑल डूइंग,
5: एब्सोल्युटली सब लोग बहुत ही फैंटास्टिक हैं और हम लोगों की बकवास सुनने के लिए सब रेडी हैं। तू रेडी है सुनाने के लिए?
6: मैं
5: जो पार्ट, हमारे पास बहुत सारी अच्छी बातें हैं, डोंट वरी, और आज एक स्पेशल गेस्ट है, पता है प्राची, हमारे शो में।
6: हाँ हाँ, और हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं
5: उन्हें इंट्रोड्यूस करने के लिए,
6: लोगों से इंट्रोड्यूस करने के लिए।
5: एब्सोल्युटली ट्रू ट्रू, बट एक काम करते हैं, पहले एक अच्छे से गाना सुनते हैं, उसके बाद फिर उनको मिलवाते हैं, राइट? चलो जी, आप कहीं मत जाओ, तब तक के लिए हम जो एक म्यूजिकल ब्रेक ले रहे हैं, आप सुनते रहो FM मुरादाबाद 89.6, आते हैं लौट के जरा सी देर में। हाँ हाँ, प्लीज कंटिन्यू, रेडियो
6: बजाती रहिए, गुनगुनाती रहिए,
5: वेरी गुड, चीची शेर और शायरी भी करती है ये।

0: वेलकम बैक है। गाने के बाद आपका स्वागत अभिनंदन है। आप जुड़ चुके हैं आनंद एंड प्राची के साथ और हमने जैसे कि वादा किया था आपसे कि आज हम आपको मिलवाएंगे एक स्पेशल गेस्ट से जो आज हमारे शो में हमारे बीच एज आरजे आने वाली है रोल निभाने। अपने आवाज में आप सभी को करेंगी ढेर सारा एंटरटेनमेंट का डोज देंगी, बहुत सारी आपकी शाम को अच्छा अच्छा बनाएंगी, बहुत सारी बातें करेंगी आई मीन टू से। और शी इज एब्सोल्युटली अल्टीमेट लेडी और बहुत ही अच्छा होस्ट करती है, बहुत अच्छी अच्छी शेर और शायरी भी करती है। ये कौन हमारे साथ जुड़ी है ये तो प्राची को भी नहीं पता है, सस्पेंस ना?
1: नो, ऐसा कुछ नहीं है जो प्राची को नहीं पता है।
0: चलो,
1: हमारे साथ है आरजी पूनम।
0: अरे वाह, क्या बात है। हाय पूनम, हाउ यू? हेलो,
2: आई एम वेरी फाइन। हाय, हाउ आर यू? गुड इवनिंग है सभी दोस्तों को। मैं हूँ आपकी दोस्त पूनम सिंह और आप सब सुनते हैं मुरादाबाद एफएम। तो श्रोताओं, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे।
0: सब
2: बताइए आनंद जी।
0: सब बहुत बढ़िया है। हम आपसे पूछना चाहते हैं, आपने तो आके धड़ मेरी और प्राची की लाइन ही काट डाली, सब कुछ तो आप ही ने बोल दिया। वेरी गुड। सो पूनम, आप बताओ कैसे हालचाल है? आफ्टर लॉन्ग टाइम हम लोग आप एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं हमारे रेडियो श्रोताओं के सामने, बिल्कुल है ना?
2: जी हाँ, बिल्कुल। और रेडियो चौकी जब तीन रेडियो चौकी मिलते हैं ना, तो
0: खिचड़ी तो नहीं पकेगी बातों की, कुछ और ही होगा बहुत बड़ा सा, है ना?
2: हाँ जी, हाँ जी, बहुत मस्ती धमाल हो जाती है जब हम सब एक साथ मिलकर बातें करते हैं। तो और क्या मस्ती धमाल होने वाला है ये तो आपको रेडियो चौकी आनंद जी और प्राची जी बताएंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप भी रेडियो चौकी है ऐसे बोल के हमें जो है शर्मिंदा ना करें, क्यों प्राची?
1: आपकी शीर और शायरी जो हमने सुनी पहले, हम तो बिल्कुल आपकी फैन हो गए और हम चाहते हैं हमारे रेडियो लिसनर्स को भी प्लीज आप अपनी कोई शायरियां सुना दीजिए।
0: अभी तो नहीं सुनवाऊंगा मैं इतनी जल्दी कैसे सुनाने के लिए मौका दूंगा पूनम, थोड़ा इंतजार करवाएंगे ना लिसनर्स को, है ना?
2: जी हाँ बिल्कुल, और थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए श्रोताओं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, वेरी नाइस। अच्छा तो पूनम एक बात बताओ, अभी थोड़ा सा आपसे पहले बतिया लेते हैं, आपके यहाँ का मौसम का हालचाल बताओ कैसा हो रहा है?
2: जी हमारे यहाँ का मौसम तो बहुत ही, क्या ही बोले अब आनंद जी, बहुत गर्म मौसम है और बारिश हो नहीं रही है, बस बारिश का इंतजार है। जैसे कि आप सब इंतजार करते हैं वैसे हम भी बारिश का इंतजार कर रहे हैं, बस बारिश हो जाए।
0: क्या बात है, क्या बात है। और बाकी कानपुर के ठगू के लड्डू तो बहुत खा रही हो आजकल, आप हमें सुनने में आया है।
2: ठगू के लड्डू तो क्या ही कहना आनंद जी, आइए आप दोनों आइए, मैं बिल्कुल ठगू के लड्डू खिलाऊंगी। और
0: तुम्हें पता है प्राची कानपुर में ठगू के लड्डू बहुत फेमस है, प्राची से पूछ लेते हैं जरा।
1: अरे नहीं नहीं, मुझे तो नहीं पता है कि ठगू के लड्डू क्या होते हैं, प्लीज आप हमें पूनम जी बताइए क्या होता है।
2: प्राची जी एक बार खाएंगी ना तो बार बार खाएंगी।
0: अरे वाह,
1: अच्छा कुछ रेसिपी शेयर करिए।
0: रेसिपी शेयर नहीं करेगी, वो बहुत फेमस लड्डू है, उसकी रेसिपी थोड़ी शेयर कर देंगे हम सस्ते में, है ना क्यों पूनम?
2: हाँ जी बिल्कुल,
1: मेन मेन इंग्रेडिएंट्स बता दीजिए।
0: हाँ हाँ, ये हो सकता है कि ठगू के लड्डू में मेन इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं वो इसको जानना है।
2: अच्छा जी, तो वो तो फिर ठगू के पास चलना पड़ेगा।
1: काफी
0: कानपुर का दिस इज वेरी पॉपुलर लड्डू, पता है? हाँ या जैसे आगरा का पेठा फेमस है ना, वैसे ही कानपुर के ठगू के लड्डू, दिस इज वेरी।
1: पर लड्डू का नाम जो ठगू रखा है ये बहुत इंटरेस्टिंग और मजेदार लग रहा है, इसकी क्या कहानी है?
0: इसकी कहानी हम बाद में सुनाएंगे, क्यों पूनम एक गाना सुने फिर अच्छा सा।
2: हाँ जी बिल्कुल, एक प्यारा सा गीत सुनते हैं और श्रोताओं को भी बहुत पसंद आएगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और इस गीत के बाद पूनम और प्राची की हम आपस में कराएंगे क्योंकि इन दोनों ने एक दूसरे से इंटरेक्शन नहीं किया, एक दूसरे से बात नहीं की।
1: और मैं आपको बताऊंगी पूनम और प्राची में खास कनेक्शन।
0: एब्सोल्युटली, तो आप सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो,
1: बजाते रहिए गुनगुनाती रहिए।
0: क्या बात है, एक ब्यूटीफुल ट्रैक,
2: सुनाते रहिए।
0: वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस।

0: वेलकम बैक हियर वंस अगेन, एक ब्यूटीफुल ट्रैक। उसके बाद मैं वापस आ गया हूँ पूनम के साथ, और साथ में प्राची भी दे रही है मेरा साथ। सो चलिए वापस चलते हैं अपनी प्यारी सी दोस्त पूनम के पास। पूनम क्या कर रही है, वो सो तो नहीं गई हमारी बातें सुन के? हेलो,
1: हेलो।
0: मुझे लगा पूनम सो गई होगी। वेलकम बैक है पूनम जी।
1: नहीं।
0: हाँ जी,
1: बिल्कुल शुक्रिया है बहुत आपका।
0: पूनम पूरा मुरादाबाद आपकी आवाज सुन रहा है आज की शाम। पहले तो ये बताओ कैसा फील कर रही हो
1: जी? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे जितने भी लिसनर हैं वो हमें सुन रहे हैं और हमारी आवाज को भी सुन रहे हैं। तो सभी लिसनर बताएंगे कि लिसनर को कैसा लग रहा है कार्यक्रम सुनकर।
0: बिल्कुल, कार्यक्रम में सबको बहुत आनंद आ रहा है। और जैसे कि मैंने कहा था कि पूनम और प्राची की थोड़ी बातचीत कराएंगे, तो पूनम जी मैं चाहूंगा हमारी प्राची जो होस्ट है उनसे भी आप थोड़ी बातचीत करें।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल। हेलो प्राची जी।
2: हेलो पूनम जी, कैसी हैं आप?
1: बहुत बढ़िया है और बहुत अच्छा लग रहा है कि आज हम एक साथ तीन इकट्ठा हुए रेडियो जॉकी। तो बताइए, आप बताइए आपको कैसा लग रहा है प्राची जी बात करके और कार्यक्रम में जुड़ के।
2: बिल्कुल, आपने बिल्कुल एकदम ठीक कहा कि हमें बहुत मजा आ रहा है कि हम तीन आज एक साथ जुड़े और हम बहुत सारा फन कर रहे हैं, बहुत सारी बातें कर रहे हैं। और जैसा
1: खिचड़ी पका रहे हैं हम, है ना?
2: और पूनम जी, जैसा कि अभी मैंने बताया था कि आपकी और मेरे नाम में एक खास कनेक्शन है, इसको हम अभी बता देते हैं अपने लिसनर्स को कि जो पूनम नाम है वो मेरी मम्मी का नाम है। तो जब मैंने आपका नाम सुना ना कि आपका नाम पूनम है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि
1: आपका नाम प्राची, मम्मी का नाम पूनम और मेरा नाम पूनम, क्या कनेक्शन है यार।
2: और वो विवाह मूवी वाली

0: हाँ, फिल्म का गाना तो सुनना बनता है। हो पूनम हो पूनम हो प्राची हो पूनम। अच्छा गाना है ना।
1: अच्छा, आप भी गुनगुना रहे हैं
0: हाँ जी हाँ जी। तो पूनम जी, कुछ लाइनें हो जाएं इस गाने से पहले, हम चाहेंगे कि कुछ इरशाद इरशाद अर्ज किया है पूनम जी आपने हमारे श्रोताओं के लिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं सभी लिस्टनरों के लिए बोल देती हूँ एक अच्छी सी लाइन और सभी को बहुत पसंद आएगी। तो चलिए आनंद जी,
0: जी जी
1: ध्यान से सुनिएगा और मैं अब अर्ज कर रही हूँ। फूल खिलकर मुरझा जाते हैं, उम्मीदों के फूल कभी नहीं मुरझाते।
0: वाह।
1: फूल खिलकर मुरझा जाते हैं, उम्मीदों के फूल कभी नहीं मुरझाते। बस जाते हैं वो एक दिल में आकर, जो दिल से कभी नहीं जाते।
0: वाह,
1: जी,
2: अरे वाह।
1: तो फिलहाल ये जो लाइनें हैं लिस्टनर, आप सभी को बहुत बहुत पसंद आएगी। इसके लिए बहुत शुक्रिया आप सभी को हम बोलेंगे। और आप सभी सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद, और बहुत अच्छी अच्छी शायरी भी आप सुनने वाले हैं प्राची के साथ, आनंद जी के साथ, और साथ साथ
0: इसी बात पे हम भी कहना चाहते हैं कि मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता। वाह तो कर दो कि मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, कुछ रिश्तों का कोई तोल नहीं होता प्राची। लोग तो मिल जाते हैं हर मोड़ पर, कि लोग तो मिल जाते हैं हर मोड़ पर, हर कोई आपकी तरह अनमोल नहीं होता पूनम जी। हर कोई आपकी
1: क्या
0: तरह
1: बात है,
0: अनमोल नहीं होता।
1: अनमोल नहीं होता, लेकिन हमारे लिस्टनरों की तरह कोई अनमोल नहीं
0: बिल्कुल,
1: होता। हमारे
0: बिल्कुल
1: लिस्टनर
0: बिल्कुल
1: बहुत अनमोल हैं।
0: सच में। इसी बात पे गाना सुनते हैं, उसके बाद वापस मिलते हैं। श्रोताओं, आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद
2: 89.6। Good morning.

0: Fasten your seat belt, sir.
1: हमारी शादी में अभी बाकी है हफ्ते चार.
0: वेलकम बैक.
2: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
3: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर. 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद.
4: कॉल 8826213131.
5: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने, तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स. यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट.
6: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है.
5: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद. मोबाइल नंबर 7055070552.
7: हेलो जी, हाय,
8: कानपुरिया का यही तो काम है ना. कानपुरिया जो होते हैं ना, वो पहले बातों में ठग लेते हैं.
7: बेचारी प्राची, सीधी साधी लड़की, उसको क्या पता कि कानपुरिया बहुत कंटाप मारते हैं.
8: बिल्कुल,
7: बहुत भोकाल मारते हैं, पता.
9: अच्छा
7: है?
9: तो पूनम जी, यही स्टोरी है क्या, जो मतलब इसलिए लड्डू का नाम ठग्गू पड़ गया?
8: नहीं नहीं, ये तो वैसे स्टोरी नहीं है, और स्टोरी तो कुछ और ही है ठग्गू लड्डू की. फिलहाल तो फिर कभी हम नेक्स्ट प्रोग्राम में जरूर जानेंगे क्या स्टोरी है.
9: जब से आपने मुझे ठग्गू के लड्डू के बारे में बताया है ना, तो मेरी क्यूरियोसिटी और भी ज्यादा बढ़ गई है कि ठग्गू लड्डू ठग्गू कैसे बन गया.
7: प्राची की क्यूरियोसिटी बढ़ गई और मेरे अंदर की स्वाई बाहर निकल गई है. क्या मैं सुना जू?
8: हाँ जी, बिल्कुल सुना दीजिए.
7: ठीक है, मेरी शायरी है कि भैया आपकी मोहब्बत ही हमारी पहचान है, आपकी मोहब्बत ही हमारी पहचान है, आपकी मुस्कुराहट ही हमारी शान है. यूं ही बनाए रखिए हमारा साथ, यूं ही बनाए रखिए आप हमारे साथ अपना साथ, आपसे ही तो हमारे शो की जान है.
9: अरे बाबा, और इस शायरी को हम डेडिकेट करते हैं अपनी आरजी पूनम जी को, क्योंकि आज उन्होंने हमारे शो में आके हमारा जो मतलब एनर्जी लेवल है
7: और अलग कर दिया,
9: बहुत हैपनिंग कर दिया है, और हम सच में बहुत हैप्पी फील कर रहे हैं.
7: तो पूनम
9: आपके साथ आरजी पूनम जी, तो थैंक यू सो मच.
8: बिल्कुल, मैं भी एक शायरी अर्ज कर देती हूँ सभी श्रोताओं के लिए, और शायरी कुछ इस तरह से है. कश्ती खोल है किनारों का पता खोज लेती है, कश्ती खोल है किनारों का पता खोज लेती है, आए हुए तूफानों का रुख मोड़ देती है. जिंदगी इस तरह से बदलती है, जिंदगी कुछ इस तरह से बदलती है कि जहाँ भी मोड़ो जिंदगी और मुड़ जाती है.
7: वाह वाह, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा, मतलब आनंद आ गया जिसको पढ़कर. अब मुझे लगता है कि प्राची भी कुछ सुनाने वाली है पूनम जी इसी बात पर.
8: जी हाँ, बिल्कुल, अब प्राची भी बिल्कुल सुनाने वाली है और हम सब सुनने वाले हैं.
7: वेरी गुड,
9: थैंक यू सो मच पूनम जी कि आप मेरी शायरी सुनने के लिए इतना ज्यादा मतलब इंटरेस्टेड है. तो आपके लिए और हमारे लिसनर्स के लिए बहुत ही खूबसूरत सी शायरी मुझे याद आ रही है. दिल की बात जुबान तक आती है, दिल की बात जुबान तक आती है, और जुबान से गीत बन जाते हैं, और जुबान से गीत बन जाते हैं. आप फरमाइश भेजते रहिए दोस्तों, आप फरमाइश भेजते रहिए दोस्तों, यही सर महफिल मुस्कुराहट बन जाती है.
7: वाह वाह वाह वाह, दोस्तों अभी फरमाइश मत भेजिएगा क्योंकि अभी हम आपकी प्ले नहीं कर पाएंगे फरमाइश. प्राची ने इसमें फरमाइश का जिक्र कर दिया, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत अच्छी बात है. आप फरमाइश भेजिए अपनी प्यारी बातों की, आप फरमाइश भेजिए अपनी प्यारी प्यारी शेरो शायरी की, वो हम पढ़ेंगे, उनको हम शामिल करेंगे. गाने तो आप सुनते ही रहते हैं क्यों प्राची?
9: बिल्कुल सुनते रहते हैं.
7: तो पूनम, इस पे कुछ कहना चाहोगी इस शायरी पे आप?
8: जी, मैं तो बस यही कहूंगी कि श्रोताओं, इतनी अच्छी चीज जो शेरो शायरी आप सब सुन रहे हैं ना, और बातों की जो खिचड़ी हम सब पका रहे हैं, तो आप सब बिल्कुल जुड़े रहिए और सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद. और आप सभी को शेरो शायरी जैसे कि हम सब कह रहे हैं वैसे ही याद आ रही हूँ, तो आप भी शेरो शायरी भेज सकते हैं और अपने अंदाज में, है ना?
7: बिल्कुल बिल्कुल. तो इसी बात में मैं पूनम जी आपके लिए कहना चाहता हूँ कि दोस्ती नाम है सुख दुख की कहानी का, दोस्ती नाम है सुख दुख की कहानी का, दोस्ती राज है सदा मुस्कुराने का, ये कोई पल भर की पहचान नहीं, दोस्ती वादा है उम्र भर निभाने का.
8: बिल्कुल,
7: मैं चाहूंगा इसी पर दो लाइनें आपकी भी हो जाएं पूनम जी.
8: जी जी बिल्कुल बिल्कुल, चलिए तो इसी बात पे मैं भी एक शायरी अर्ज कर देती हूँ जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है. तो चलिए बोलते हैं, ना दिन को करार ना रातों को चैन है, ना दिन को करार ना रातों को चैन है, देखते हैं बस आपको एक झलक, दिल हो जाता बेचैन है।
7: वाह वाह वाह वाह, क्या बात है,
9: बहुत बढ़िया
7: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसी बात पर एक गाना तो निकल रहा है हमारे दिल की तरंगों से, एक बेहतरीन ट्रैक आपके लिए निकल रहा है। पूनम जी, हम आपके लिए गाना भेजते हैं, ठीक है
8: जी,
7: और श्रोताओं आप कहीं मत जाइए, पूनम जी हमारे साथ बनी रहेंगी इस प्रोग्राम में। अगर आप भी कुछ ऐसी प्यारी बातें करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप हमें कहां पर मैसेज करेंगे प्राची?
9: आप हमें मैसेज कर सकते हैं हमारे नंबर 9837896896 पर।
7: चलो एक ब्यूटीफुल ट्रैक, उसके बाद आप

0: वेलकम बैक है खूबसूरत ट्रैक। आज 23 जून है, आनंद के साथ हैं, साथ में प्राची है और हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट हैं। यस, आज हमारे साथ पूनम जी जुड़ी हैं कानपुर से, जो अपने आप में एक बहुत ही बेमिसाल और कमाल की आर्टिस्ट हैं। रेडियो जॉकी भी हैं और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें करती हैं और उनकी आवाज ही उनकी पहचान है। प्राची, उनकी आवाज कितनी मजेदार लग रही है ना, तुझे जेन्युइनली बता।
1: मैं आपको जेन्युइनली बताऊं तो मुझे पूनम जी की आवाज बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि मुझे सच में पूनम जी की वाइब्स हमसे इतना मैच कर रही हैं कि हम जो हमारा शो है और जो हमारा जो एंजॉय जब भी हम शो करते हैं, हम एंजॉय करते हैं, अच्छा फील करते हैं, पर आज पूनम जी हमारे साथ जुड़ गई हैं तो हमारा जो ये एंजॉयमेंट का जो लेवल है वो और भी हाई हो गया है। सो थैंक यू सो मच आरजी पूनम जी कि आपने आके हमारे शो को और भी मजेदार बना दिया है और हमारी लिसनर्स को भी 100% बहुत बहुत मजा आ रहा होगा।
0: बिल्कुल पूनम, तो अब आप बताइए पूनम, इतनी सारी तारीफ लेके आप कहाँ जाएंगी, कानपुर जाएंगी या सीधा लखनऊ या मुरादाबाद आना चाहोगी?
2: मैं उड़ूंगी, मैं आसमान में उड़ूंगी।
0: नहीं, आसमान में मत उड़िए। हाँ बोलो।
2: इतनी सारी तारीफ जब हमें मिलती है ना, तो मैं ऊपर आसमान में उड़ना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे आसमान में उड़ना बहुत अच्छा लगता है।
1: पर पूनम जी, सच में ये तारीफ नहीं है, ये कोई ऐसी कोई बटरिंग नहीं है, ये हमारे दिल के सच्चे अल्फाज हैं आपके लिए।
2: जी जी जी, थैंक यू।
1: इन्हें आप संभाल के रखिएगा प्लीज।
2: थैंक यू
1: सो मच।
0: बहुत बढ़िया, आप ऊपर उड़ोगी तो हम आपको खींच लेंगे उड़ते बादल से। पूछो कहाँ गई है पूनम।
2: अच्छा, तो आप पता पूछ लेंगे उड़ते बादल से।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो पूनम जी, मुरादाबाद की तमाम जनता इस वक्त गाड़ियों में आपको सुन रही है, तो आपके मन में नहीं ख्याल आता कि कभी मुरादाबाद जाना चाहिए, मुरादाबाद की जनता से मिलने, क्यों प्राची?
1: हाँ बिल्कुल पूनम जी, मुरादाबाद की जनता और मुरादाबाद की आरजीज आपसे मिलने के लिए बहुत बहुत ज्यादा बेताब है। आप कब आएंगी?
2: हाँ, तो मैं मुरादाबाद बहुत जल्द आऊंगी। सब जो जितने भी हमें होता सुन रहे हैं ना, सभी को एक सरप्राइज मिलेगा जब मैं आऊंगी मुरादाबाद में। और सबसे पहले तो मैं आनंद जी आपसे मिलने आऊंगी, प्राची जी से, क्योंकि आपकी आवाज और आपका जो अंदाज है ना, मुरादाबाद को सच में हिला के रख देता है।
0: अरे वाह, थैंक यू सो मच। और आप भी और आपके ठगू के लड्डू भी जो है हमें हिलाने को तैयार बैठे हैं।
1: और प्लीज आप ठगू के लड्डू लेकर आइएगा, क्योंकि ठगू के लड्डू हम देखना चाहते हैं कि ये कैसे हमें ठगा हुआ फील
2: होगा, क्या है इसके पीछे, क्योंकि कितने
1: कैसा टेस्ट आता है,
2: बहुत मन हो रहा है खाने का।
0: नाइस नाइस। लेकिन ये तो कानपुर में हर जगह पर मिलते हैं, कुछ ही जगहों पर फेमस है।
2: जी हाँ बिल्कुल, हर जगह पर हम ठगू के लड्डू खा सकते हैं, कानपुर भर में ही खा सकते हैं बस।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, उसके अलावा और लखनऊ वगैरह में नहीं मिलेंगे ना?
2: नहीं, और कहीं नहीं मिलेंगे ठगू के लड्डू, बस एक ही दुकान है कानपुर में, वहाँ पे जाके खा सकते हैं।
0: ओके ओके ओके, मतलब काफी स्पेशल वाली कह सकते हैं वाइब है ना लड्डू की, और कहीं मिल ही नहीं पाएंगे वो।
2: जी, बहुत और वो लड्डू मिल ही नहीं सकते हैं।
0: ओके, तो पूनम जी, लड्डू मिले ना मिले, आपकी शायरी तो चाहिए मेरे मुरादाबादी को, बड़ी देर से इंतजार कर रहे थे, कुछ हो जाए प्यारी सी शेर व शायरी।
2: हाँ बिल्कुल, तो बड़ी देर से इंतजार हो रहा है मेरी शायरी का, चलिए मैं सुना देती हूँ एक बहुत प्यारी सी शायरी है। भूल गया हमको ये जहाँ, मगर इस जहाँ को ना हम भूल पाए। भूल गया इस जहाँ, भूल गया हमको ये जहाँ, मगर हम इस जहाँ को ना भूल पाए। समझ गए हम इस प्यार को, मगर लोग हमें ना समझ पाए।
0: क्या बात है पूनम जी, कमाल कर दिया, कमाल कर दिया, धोती फाड़ के रुमाल कर दिया, रुमाल कर दिया, बहुत बढ़िया।
2: जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, अच्छा लग रहा है आप सभी से बातें हो रही हैं और इतनी अच्छी सी सरोसारी और इतनी प्यारी सी चटपटी सी बातें सुनने को मिल रही है।
0: हमें भी बहुत अच्छा लग
1: तो
0: रहा है।
1: सच में पूनम जी, आपने अपनी शायरियों के साथ हमारी शाम को अभी शानदार बना दिया है। जितने भी हमारे लिसनर्स घर वापस जा रहे हैं, तो वो हमारी इस चैट, मतलब हम लोग जो ये चिट चैट कर रहे हैं उसे सुनकर सच में उनका भी वो होता है ना, लाइक ऑफिस से हम बहुत स्ट्रेस से आते हैं, पर हम पक्का हमारी जो बातें हैं ना, हम उन्होंने हमारे लिसनर्स को बहुत स्ट्रेस फ्री और बहुत रिलैक्स कर दिया होगा। उन्हें लग रहा होगा कि इनकी बकबक में ना वो अपने सारे स्ट्रेस भूल गए होंगे।
2: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा है प्राची जी।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और मुझे लगता है कि अब प्राची से भी एक शेरो शायरी होनी चाहिए, तो मैं चाहूंगा कि प्राची भी कुछ हमारे लिसनर्स को अच्छी सी शेरो शायरी सुनाए।
1: तो ये शायरी है हमारे लिसनर्स के लिए, हमारे प्यारे प्यारे लिसनर्स जो हमसे डेली जुड़े रहते हैं।
0: हाँ, जरा सुना दो।
1: आपकी मोहब्बत ही हमारी पहचान है,
0: वाह
1: आपकी मोहब्बत ही हमारी पहचान है, आपकी मुस्कुराहट ही हमारी शान है, आपकी मुस्कुराहट ही हमारी शान है।
0: अरे वाह क्या बात है, शान के आगे तो मेरी आरजे आनंद के नाम से पहचान है। वाह वाह
1: अरे वाह अरे
0: नहीं नहीं तू पूरी शायरी कर दे
2: तो
0: यार, मैं
2: रिकॉर्ड
0: बीच
2: तो
0: में,
2: तोड़ दिया आनंद जी आपने।
0: अरे नहीं यार
2: जी
0: पहले उनकी शायरी
2: हाँ,
0: सुनने देते
2: मुस्कुराहट
0: हैं।
2: किसान से तो आरजे आनंद जी की पहचान है।
1: अरे वाह, वैसे आरजे आनंद जी जो है ना, ये मतलब ऑन द स्पॉट एकदम एकदम बढ़िया राइम बनाने में बहुत एक्सपर्ट है। चलिए फिलहाल
0: बैक टू शायरी, बैक टू शायरी ना
1: चलिए फिलहाल हम अपनी शायरी पे वापस आते हैं।
0: जी।
1: आपकी मोहब्बत ही हमारी पहचान है, आपकी मुस्कुराहट ही हमारी शान है, आपकी मोहब्बत ही हमारी पहचान है, आपकी मुस्कुराहट ही हमारी शान है, यूं ही बनाए रखिए हमारा साथ, यूं ही बनाए रखिए हमारा साथ, आपसे ही तो हमारी शो की जान है, आपसे ही तो हमारी शो की जान
0: तो
1: है।
0: आज शो की जान तो पूनम है ना।
1: हाँ हाँ बिल्कुल, आप पूनम जी आप हमारी शो की जान है।
2: नहीं हमारे श्रोता शो की जान है बिल्कुल, हमारे जो लिसनर हैं जो दिल के करीब हैं और हमेशा साथ निभाते हैं एफएम मुरादाबाद का, सभी
0: बिल्कुल
2: हमारे श्रोता इस शो की जान है।
1: वो तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं आरजी पूनम जी,
0: पूनम जी
1: पर
0: मैं आपसे एक
1: आपसे
0: सवाल
1: जब
0: पूछ
1: गेस्ट
0: सकता
1: आ
0: हूँ?
1: जाते हैं ना तो हमारा
0: हाँ
1: शो और
0: पहले
1: बेहतर
0: प्राची
1: सिंह
0: की
1: बन
0: बात
1: जाता
0: पूरी
1: है।
0: हो जाए फिर मैं पूछूंगा, क्या कह रहे हो स्पेशल गेस्ट आ जाते हैं?
1: पर जब आरजी पूनम जी जैसे स्पेशल गेस्ट आ जाते हैं तो हमारे शो और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है ना।
0: एब्सोल्युटली गॉट इट। नहीं मैं पूछना चाह रहा था कि
2: बिल्कुल
0: पूनम जी इतनी अच्छी आवाज लेके घूम रही हैं, खाती क्या है पूछेंगे इनसे, कौन सी चाय का ये कमाल है या कौन सी रोटी ये खाती हैं, पूछेंगे जरूर
2: फिलहाल मैं
0: इनसे।
2: बता दूं
0: हाँ
2: मुझे दाल चावल जो देसी खाना है ना दाल चावल वही मैं खाती हूँ और मुझे बहुत पसंद है।
0: हम भी
2: और
0: जो है पूनम जी देसी खाना खाते हैं, हम चाइनीज बिल्कुल नहीं खाते हैं, हम भी इंडियन
2: जी
0: खाते हैं। क्यों प्राची?
1: हाँ बिल्कुल, पर आपकी बात तो मैं ऐसा क्या है,
2: आपकी बातों में ऐसा क्या है बिल्कुल प्राची जी ने बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल पूछा है, बताइए।
0: आपकी बातों में, मेरी बातों में ऐसा कुछ होना हो, लेकिन आपकी बातों में है दाल चावल का स्वाद और मेरी बातों में है लाल
2: देखिए
0: मिर्च का
2: ये
0: स्वाद।
2: तो आनंद जी ने बात को टाल दिया प्राची जी है ना।
1: हाँ पर उसमें तो आनंद जी एक्सपर्ट है।
0: बिल्कुल देखो
1: हाँ
0: यार ऐसा है, एक्सपर्ट की जो है बहुत टांग खिंचाई हो रही है, तो हम एक गाना सुन लेते हैं पहले है ना, उसके बाद लौट कर आते हैं। तो एक प्यारा सा गाना सुनेंगे, लेकिन उससे पहले हम कौन सा स्टेशन सुन रहे हैं?
1: हम सुन रहे हैं एफएम
2: मुरादाबाद
1: मुरादाबाद 89.6,
0: रेडियो बजाते
1: बजाते
0: रहो
1: रहो गुनगुनाते
0: गुनगुनाते
1: रहो।
0: रहो, बहुत ही बढ़िया, चलिए।

0: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
1: अरे भाभी आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
0: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
2: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।
3: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्लेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय, न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548539705।
4: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा।
5: पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी और आर माधवन तथा गायिका अलका याग्निक शामिल। सरकार ने कहा अल नीनो के कारण कमजोर मॉनसून के संभावित असर से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां की जा रही हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल तक गरज के साथ तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। जर्मनी में जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में भारत का दबदबा जारी। आज भारत ने 2 रजत सहित 3 पदक जीते। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में पुर्तगाल का सामना उज्बेकिस्तान से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा से लेकर उभरती प्रौद्योगिकियों तक की साझा चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने आज शाम ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों तथा वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देने, वैश्विक दक्षिण की प्राथमिकताओं का समर्थन करने और एक सुरक्षित, अधिक संरक्षित तथा समावेशी विश्व में योगदान देने का प्रयास करेगी। इस बीच ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक आज नई दिल्ली में हुई। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और शिष्टमंडल के प्रमुखों ने दुनिया के सामने मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। इस दौरान पारंपरिक सुरक्षा के अलावा ऊर्जा, खाद्य आपूर्ति श्रृंखला और साइबर सुरक्षा तथा आतंकवादी नेटवर्क द्वारा इस्तेमाल की जा रही नई तकनीकों और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों पर भी चर्चा की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने 2026 में भारत की ब्रिक्स की अध्यक्षता के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया। बैठक के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संयुक्त रूप से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने नागरिक देवोभव की सोच के साथ अधिकारियों से शासन में नागरिकों को केंद्र में रखने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सहायक सचिव के रूप में नियुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2024 बैच के 183 प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत की। एक रिपोर्ट।
6: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा सिविल सेवकों से 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को केंद्र में रखते हुए कार्य करने का आह्वान किया। श्री मोदी ने युवा सिविल सेवकों से दृढ़ संकल्प, नवाचार और नागरिक केंद्रित शासन के साथ राष्ट्र निर्माण के लिए स्वयं को समर्पित करने का आग्रह किया। विकसित भारत 2047 की परिकल्पना का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले दशकों में हर नीति और प्रशासनिक निर्णय का उद्देश्य विकसित भारत का निर्माण होना चाहिए। श्री मोदी ने युवा अधिकारियों से राष्ट्र निर्माण में अपने योगदान का निरंतर मूल्यांकन करने का भी आग्रह किया। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
5: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक हैं। पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में तथा पूर्व न्यायाधीश के टी थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया। एक रिपोर्ट।
7: इस साल सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की थी। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। आज के समारोह में पद्म भूषण 7 लोगों को दिया गया, जिनमें पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी और प्रख्यात गायिका अलका याग्निक शामिल हैं। वहीं राजनेता शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इसके अलावा 57 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए गए, जिनमें क्रिकेटर रोहित शर्मा, मशहूर अभिनेता आर माधवन और प्रसार भारती के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पति शामिल हैं। वहीं प्रसिद्ध टेलीविजन और फिल्म अभिनेता सतीश शाह को मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल रहे। सुपर्णा सेके के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
5: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि सरकार अल नीनो के कारण मॉनसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
8: अल नीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
5: श्री चौहान ने कहा कि राज्यों को दलहन, मोटे अनाज और तिलहन जैसी फसलों को बढ़ावा देने की सलाह दी गई है। इन फसलों को कम पानी की आवश्यकता होती है और जो कठिन परिस्थितियों में भी अच्छी पैदावार दे सकती हैं। खान मंत्रालय ने 56 महत्वपूर्ण खनिज खंडों और 11 खनन अन्वेषण लाइसेंस खंडों की सफल नीलामी के साथ देश के खनिज मिशन को गति प्रदान की है। मंत्रालय ने नीलामी के सातवें चरण के अंतर्गत 10 महत्वपूर्ण खनिज खंडों की सफलतापूर्वक नीलामी की है। इससे अब तक नीलाम किए गए खंडों की कुल संख्या 56 हो गई है। कुल मिलाकर अब तक 88 खंडों की नीलामी हो चुकी है। इस चरण में ग्रेफाइट, दुर्लभ खनिज, वेनेडियम, टाइटेनियम, ग्लोकोनाइट और रॉक फॉस्फेट जैसे खनिज शामिल थे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए ट्रकों और बसों से बदलने के लिए सरकार डेमलर इंडिया कमर्शियल व्हीकल्स के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। मंत्रालय ने कहा कि ये समझौते के अंतर्गत मूल उपकरण निर्माता योजना के अंतर्गत खरीदे गए ट्रकों और बसों के एक्स शोरूम मूल्य पर 8% की छूट प्रदान की जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अंतर्गत दोनों मंत्रालयों में राष्ट्रीय परिवहन, गतिशीलता और किफायती आवाजाही व्यवस्था की स्थापना की जाएगी। केंद्र का मुख्य उद्देश्य सड़क और परिवहन क्षेत्र में दीर्घकालिक योजना, निवेश और नीति निर्माण में सहयोग के लिए उपयोगी अंतर्दृष्टि प्रदान करना होगा। विदेश मंत्रालय ने आज बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी क्षेत्र में मौजूद हैं। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि अमरीका और ईरान के बीच समझौता ज्ञापन होने के बाद से भारत आने वाले 11 जहाजों ने होर्मुज जलडमरू मध्य को पार किया है। इनमें भारतीय ध्वज वाले कच्चे तेल के 3 टैंकर के अलावा विदेशी ध्वज वाला एक LPG वाहक पोत, एक कच्चा तेल टैंकर और उर्वरक लदे 6 मालवाहक जहाज शामिल हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय ध्वज वाले बाकी जहाज भी जल्द ही होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजर सकेंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि कतर में हुए धमाके में मारे गए भारतीय नागरिकों के शवों को वापस लाने के लिए भारत सरकार कतर के साथ मिलकर काम कर रही है।
9: रासलफान परियोजना में जो वहाँ एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट में 12 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा कुल 66 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, वो लोग सब लोग सुरक्षित हैं और हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है। ये 12 लोग के बारे में हम लोग कतर में वहाँ के सरकार के साथ और इनके परिवारजनों के साथ उनसे बातचीत हो रही है हमारी।
5: ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कल ईरान, इथियोपिया, चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की।
9: ब्रिक्स एनएसए की मीटिंग चल रही है, कल हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की चीन के विदेश मंत्री और वहां के पॉलिट ब्यूरो के जो चीफ हैं उनसे भी हमारे एनएसए की द्विपक्षीय वार्ता हुई और इसमें उन्होंने जो हमारे द्विपक्षीय संबंध हैं उसके बारे में जिक्र किया और ये सकारात्मक बातचीत थी।
5: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने फिलिस्तीन के साथ अच्छे संबंधों के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि हमने मानवीय आधार पर फिलिस्तीन को सहायता भी प्रदान की है।
9: सालों से फिलिस्तीन के साथ हमारे अच्छे संबंध रहे हैं और हम लोगों ने उनको विकास की साझेदारी के तहत कई एक सारे प्रोजेक्ट्स मुहैया कराया है। ये प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने द्विपक्षीय तरीके से और साथ ही साथ उनरवा के माध्यम से भी मुहैया कराया है और मानवीय आधार पर उनको सहायता भी प्रदान की है और आगे भी ये कार्य हमारा चलता रहेगा।
5: भारत संयुक्त अरब अमीरात रक्षा साझेदारी पर श्री जायसवाल ने कहा कि हाल के कुछ वर्षों में संयुक्त अरब अमीरात के साथ भारत के रिश्तों में काफी सुधार हुआ है और रक्षा साझेदारी की इसमें प्रमुख भूमिका है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मंगोलिया के विदेश मंत्री बत्सेसेग बटमुख और उद्योग तथा खनन मंत्री गोंगोर दमदनियाम के साथ मंगोल तेल शोधन परियोजना के निर्माण स्थल का दौरा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत और मंगोलिया की मैत्री परियोजना में निरंतर प्रगति हो रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के नेतृत्व वाले शिष्टमंडल से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि इस दौरान दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी 2026 के परिणाम आज घोषित कर दिए। उम्मीदवार सीयूईटी के आधिकारिक पोर्टल पर अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं। एजेंसी के अनुसार इस वर्ष प्रवेश परीक्षा में 11 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए। नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. अशोक कुमार लाहिड़ी ने कहा है कि पिछली तिमाही में भारत का कुल व्यापार 5.4% बढ़ा है। आज नई दिल्ली में ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्ट का नवीनतम संस्करण जारी करते हुए उन्होंने ये बात कही। श्री लाहिड़ी ने कहा कि पिछली तिमाही में भारत का निर्यात 1.84 trillion dollars तक पहुंच गया और आयात में 6.5% की वृद्धि हुई। उन्होंने कहा कि भारत को सिर्फ पेट्रोल पर निर्भर न होकर दूसरे विकल्पों की ओर बढ़ना चाहिए।
10: डाइवर्सिफिकेशन मतलब सिर्फ पेट्रोलियम में निर्भर होना नहीं चाहिए, तो इसलिए रिन्यूएबल एनर्जी, बायोगैस, विंड, सोलर, न्यूक्लियर वो करना चाहिए। और दूसरी चीज है वी शुड एक्सप्लोर मोर सो दैट वी कैन हैव मोर डोमेस्टिक पेट्रोलियम। थर्ड इज वी शुड डाइवर्सिफाई आवर सोर्सेज। एक जगह कुछ गड़बड़ हो गया तो हमें और कहीं से ला पाएंगे।
5: मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल तक गरज के साथ तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आज तेज वर्षा, आंधी और तेज हवाएं चली जिससे तापमान में गिरावट आई। अगले 2 से 3 दिनों तक असम, मेघालय, आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तराखंड में कल तक तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। जर्मनी के सोहल में ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 रजत और 1 कांस्य पदक सहित कुल 3 पदक अपने नाम किए। 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष जूनियर स्पर्धा में शिवा नरवाल ने रजत और युग प्रताप सिंह राठौर ने कांस्य पदक जीता। 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष जूनियर टीम स्पर्धा में शिवा नरवाल, संदीप बिश्नोई और चिराग शर्मा की तिकड़ी ने रजत पदक जीता। अब भारत के कुल 15 पदक हो गए हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात 10:30 ग्रुप के एक मैच में अमेरिका के ह्यूस्टन में पुर्तगाल का सामना उज्बेकिस्तान से होगा। ग्रुप एल में रात 1:30 इंग्लैंड का सामना घाना से होगा। वहीं सुबह 4:30 क्रोएशिया का सामना पनामा से होगा। लंदन में FIH हॉकी प्रो लीग में भारत ने पाकिस्तान को 4-3 से हरा दिया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सुरक्षा सहयोग मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा जैसी चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नागरिक अलंकरण के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पुरस्कार पाने वालों में पत्रकार पी नारायणन, पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी और आर माधवन तथा गायिका अलका याग्निक शामिल। सरकार ने कहा, अल नीनो के कारण कमजोर मॉनसून के संभावित असर से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां की जा रही हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल तक गरज के साथ तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाएं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7060022430।
1: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
2: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
0: हेलो जी, हाय, कैसे हाल चाल है? आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6।

0: कौन है आज हमारे शो में, वही आपका वेलकम करेंगी। जी मैम
1: जी, वेलकम है आप सभी लिसनर्स का। आप सब सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद, आरजे प्राची और आरजे आनंद के साथ।
0: और अपना भी तो बता दो नाम।
1: मैं हूँ आपकी दोस्त पूनम सिंह, कानपुर से। मैं भी आप सभी के साथ जुड़ी हुई हूँ, तो आप सभी श्रोताओं का वेलकम है एक बार फिर से।
0: वेरी नाइस जी प्राची, हम लोग अभी ऑफ एयर कुछ बात कर रहे थे जब गाना चल रहा था, तो
2: हम लोग बात ही कर रहे थे कि आप लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि मैं क्या अच्छा कुक कर लेती हूँ, क्योंकि खिचड़ी पकाने की बात बहुत ज्यादा हो रही है। हम लोग बार बार कह रहे हैं ना खिचड़ी पक रही है,
0: और मजे की बात ये कि कोई खिचड़ी खा भी रहा है स्टूडियो में पकने के साथ साथ।
1: आनंद जी, खिचड़ी कौन खा रहे हैं अब ये तो हमें बताइए आप।
0: नहीं, ये लाइव नहीं बता सकते ना, लिस्नर भागे भागे आ जाएंगी इसीलिए।
1: लिस्नरों को भी खिचड़ी खिलानी पड़ेगी क्या?
0: हाँ वही वही वही।
2: और अभी हमारे पास ज्यादा खिचड़ी नहीं है,
0: बस तो दो चम्मच वो प्राची को खानी है।
1: अच्छा, तो प्राची भी इसीलिए तो बुला नहीं रही किसी को, हमको भी नहीं बुला रही ना आपको बुला रही है, अकेले अकेले खिचड़ी खा रही है क्या बात?
2: नहीं नहीं, मैं तो नहीं खा रही हूँ खिचड़ी अभी फिलहाल। हमारे स्टूडियो में खिचड़ी है पर वो अभी हम ज्यादा नहीं है।
1: अच्छा, दोस्त खा नहीं रही, आप खिचड़ी पका रही
0: है। ये है मेरी बात, सच तो यही है। तो वैसे तुम
1: तो
0: क्या अच्छा पकाती हो?
1: खिचड़ी पकाई जा रही है
2: तो अभी तो मैं खिचड़ी अच्छा पकाती हूँ। देखो अभी हम लोग कितनी अच्छी खिचड़ी पका रहे
1: हैं।
2: तो आपने खा के देखिए जो खिचड़ी अभी हम अभी अभी पका रहे।
0: देखो तुम लोग मिलके खिचड़ी पकाओ, मैं सुबह ब्रेकफास्ट में देसी घी डाल के खाऊंगा।
2: नहीं, हम लोग तो शायद खिचड़ी पका देते हैं पर आप उस पे देसी घी से उसको बढ़िया बना देते हैं।
1: बड़ों के साथ अगर खाएंगे ना, दही बड़े जब होंगे खिचड़ी के साथ, फिर तो क्या टेस्ट आएगा।
0: यार क्या कर रही है तुम, मतलब कौन से बड़ा ना, कौन सी डिश थी ये, कौन सी है? खिचड़ी विद दही बड़ा, ओ भाई मुझे मारो। ये कानपुरिया, ये कानपुर वाले कब से खाने लगे हैं।
1: प्राची
2: दही बड़ी के साथ खिचड़ी, अरे वाह, हम जरूर ट्राई करेंगे पूनम जी।
1: बिल्कुल ट्राई कीजिएगा आनंद जी, ये बहुत अच्छी डिश मैंने बताई है देसी।
0: और हमारे लिस्नर अगर ट्राई करेंगे तो वो बहुत जूते मारेंगे, ध्यान रखना। ठीक है
2: ठीक है पूनम जी, आज आपने हमें
1: जो ट्राई करेंगे ना वो भी तारीफ करेंगे आनंद जी ने क्या खिचड़ी पकाई है आज।
2: अच्छा पूनम जी, आपने आज हमें इतनी अच्छी मतलब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी हमें डिश बताई है, तो कुछ और भी ऐसी हमें डिशेस बताइए जो आपको लगता है कि हम लोगों को नहीं पता होगी, क्योंकि हम मुरादाबादी भी तो जाने कि मतलब कानपुर के जो लोग होते हैं उनका टेस्ट और कैसा होता है।
1: कानपुर का टेस्ट और मुरादाबाद का टेस्ट एक जैसा ही होता है, क्योंकि हम और आनंद जब खिचड़ी पकाते थे ना, टेस्ट बहुत अच्छा लगता था खाने में।
0: सही बात है
2: ना। हाँ, कुछ और बताइए इंटरेस्टिंग सा, जैसे आपने अभी बताया खिचड़ी के साथ दही बड़े, कुछ और इंटरेस्टिंग सा है और
0: तू बता दे यार उसको मुरादाबाद के बारे में।
1: मुरादाबाद में और क्या खाया जाता है, चाहिए बताइए।
0: हाँ, मुरादाबाद से वो बिलोंग नहीं करती तो यहाँ की क्या चीजें फेमस है बताओ, कानपुर की स्पेशल।
2: मैं आपको बताऊँ तो मुरादाबाद की, मुझे अपने मुरादाबाद की मुझे दाल बहुत बहुत पसंद है। इवन मुझे ना जो दाल है वो मुझे ऑल टाइम
0: फेवरेट दाल, खिचड़ी में जो डालते हैं।
2: नहीं नहीं, मुरादाबादी मूंग दाल।
0: मूंग दाल, ओके ओके, वो
2: वो मुझे ऑल टाइम फेवरेट है, वो अल्टीमेट फूड है मेरे लिए।
1: क्या बात है।
0: तो पूनम, आप जब भी कभी कानपुर से यहाँ मुरादाबाद की ओर रवाना हो तो हम आपको मुरादाबादी दाल सर्व करेंगे वेलकम पे, है ना। और क्या फेमस है पूनम को ये भी बताओ यार।
2: और वैसे तो यहाँ बहुत कुछ सारी चीजें अच्छी मिलती है,
0: लेकिन मैं आपको बताऊँ पूनम जी, यहाँ पे बिरयानी भी बहुत फेमस है।
1: हाँ, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा है, चिकन बिरयानी मुरादाबाद की बहुत ज्यादा फेमस है
0: वहाँ। यार हम लोग तो वेज है, हम लोग को वेज बिरयानी क्या पता है यार।
1: लेकिन हमारे जो लिसनर्स हैं वो जो कि नॉन वेज खाते होंगे उनके लिए मैं बता रही हूँ कि चिकन बिरयानी बहुत ज्यादा फेमस है वहाँ की, और जाके श्रोता खा भी सकते हैं। वैसे हम लोग तो नहीं खाते हैं, हम लोग तो वेजिटेरियन है तो हम लोग को क्या मालूम कितनी टेस्टी है कितनी नहीं है, है ना। लेकिन हम सब तो बस वेज बिरयानी ही खा सकते हैं, और वेज खिचड़ी जो कि हम लोग पका रहे हैं वो खा सकते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन सच में पूनम जी आपको मुरादाबाद के बारे में, मुरादाबाद की पीतल बहुत फेमस है पता है यहाँ की।
2: हाँ,
1: यहाँ पर जो पीतल का कारोबार होता है वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे पीतल के नाम से ही मुरादाबाद फेमस है।
0: राइट राइट राइट, तो मतलब आपने पढ़ाई लिखाई कर ली है यहाँ शो पे बोलने से पहले ना। तभी इतना
1: बिल्कुल
0: अच्छा।
1: मुझे मुरादाबाद के बारे में बहुत कुछ पता है क्योंकि हमारे
0: मुरादाबाद में एक
1: बिजनेस
0: चीज और बहुत फेमस है, यहाँ पर जो है ना खाने पीने की डिशेस तो है ही फेमस, लेकिन यहाँ के पार्क, यहाँ का कल्चर बहुत अच्छा है पूनम, यू नो क्यों प्राची? बाकी तो
2: क्या
0: मुझे भी यहाँ का इतना आइडिया नहीं है, बिकॉज पूनम मैं बताऊँ तो प्राची यहाँ से है तो ज्यादा जानती होगी
1: हाँ
0: लोकल के
1: जी
0: बारे
1: बिल्कुल।
0: में।
1: तो मुरादाबाद से प्राची जी थोड़ा और बताएं कुछ मुरादाबाद के बारे में
0: एक
1: कि
0: यहाँ
1: और
0: पे
1: हमारा
0: कैसा
1: ये
0: पार्क बना है जिसके अंदर 7 अजूबे हैं, बताना यार।
2: हाँ, यहाँ एक ऐसा पार्क बोला है जहाँ 7 अजूबे है, 7 नहीं मतलब जितने भी जो भी अच्छे
0: सेवन वंडर
2: मॉन्यूमेंट,
0: पार्क है।
2: हाँ जितने भी मतलब वो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है वो सारे यहाँ है, और वो वेस्ट से बने हैं, ये भी बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज है। तो
1: बिल्कुल
2: इधर इधर बहुत ज्यादा बहुत सारी इंडस्ट्रीज भी हैं मुरादाबाद में, तो उसका जो भी
1: किंतु
2: वेस्ट आता है उससे इतना वो पार्क बना है, और मैंने और आनंद ने उसे विजिट भी किया था, तो बहुत ही खूबसूरत है।
0: और
2: और
0: हमने वीडियो भी बनाया था गाइज, वो भी बहुत खूबसूरत है, लाइक कर देना आप,
2: हाँ,
0: है ना।
2: और उसको मतलब,
1: बिल्कुल
2: और जब
1: क्या
2: रात में जब वो जो व्यू आता है ना, जो रात में जो व्यू बनता है वो बहुत ही खूबसूरत है, और रात में अगर हम जाएंगे तो हमें लगता है अगर हमने वेस्ट ऑफ वंडर अगर हमने विजिट कर लिया तो हमने हमारी कंट्री के जितने भी स्पेशल मॉन्यूमेंट्स हैं जिनका हिस्टोरिकल अपना इम्पोर्टेंस है वो सब हमने विजिट कर लिए। तो
1: बिल्कुल
2: वो जो पार्क है वो मुझे बहुत पसंद है, स्पेशली उन लोगों को जो लोग हिस्ट्री में अपना इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए तो वो बहुत खास है। तो जब भी आप आए पूनम जी तो वेस्ट ऑफ वंडर जरूर विजिट करिएगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अभी तो बहुत अच्छी आपने जानकारी दी है अपने शहर के बारे में, मुरादाबाद के बारे में, और रिसेप्शनिस्ट को पता भी हो गया और उस मुरादाबाद जाने लायक और जाएंगे तो क्या क्या वहां देखने लायक है, जरूर से सभी लिसनर जाएंगे देखने के लिए, घूमने के लिए, है
2: जी
1: ना
2: बिल्कुल पूनम जी।
1: जी।
0: चलिए तो
1: तो
0: बातचीत तो चलती रहेगी पूनम से, और हमें इजाजत भी लेनी है, हमारे श्रोताओं को
1: हाँ
0: ज्यादा
1: जी,
0: और बोर नहीं करेंगे, ज्ञान दे देंगे।
1: ज्यादा खिचड़ी नहीं
0: गाना,
1: पकाएंगे क्योंकि ज्यादा
0: हाँ
1: पक
0: एक
1: जाएगी
0: गाना
1: तो फिर
0: लेते हैं,
2: खिचड़ी जल भी तो सकती है
0: म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद आते हैं लौटकर पूनम के साथ
1: जी।
0: सुनेंगे और शायरी शायरी। चलो अभी लाइन पे रहिएगा आप लोग गाइज, एक गाने के बाद मिल रहे हैं।

0: हूँ जीरा, और थोड़ी सी मैं मेथी दाने डाल देती हूँ, और थोड़ा सा हींग डालती हूँ, और अच्छी सी फ्रेश की हुई दाल जो रहती है उड़द की, वो मैं डालती हूँ, और इसमें मूंगफली के दाने रहते हैं वो मैं डालती हूँ, और थोड़ा सा कटा हुआ पनीर है वो भी डालती हूँ, और साथ साथ थोड़ी सी पालक जो होती है वो भी मैं थोड़ी सी डालती हूँ। इसके बाद जब बढ़िया से वो पकने लगता है तो जो चावल रखे होते हैं थोड़े से वो मैं डाल देती हूँ उसमें। इसके बाद पक जाता है बढ़िया से तो उसमें नमक और थोड़ा सा घी उसको डालने के बाद फिर मैं देसी घी से 1 चम्मच देसी घी से थोड़ा सा हींग डाल के मैं उस खिचड़ी को फ्राई कर देती हूँ। फ्राई करने के बाद फिर उस खिचड़ी को घी डाल के बाद में खाया जाता है तो बहुत टेस्टी लगती है, मजा आ जाता है खाने में।
1: अरे वाह, थैंक यू सो मच पूनम जी कि आपने भी एक बहुत ही बढ़िया सी रेसिपी बताई। आई होप कि हमारे लिसनर्स को भी बहुत पसंद आई होगी।
2: डेफिनेटली। और अब हमारे जाने का समय हो रहा है तो पूनम जी थैंक यू सो मच, रेसिपी बताई, शेरो शायरी सुनाई। जाते जाते क्या कहोगी मुरादाबाद के लिसनर को, कौन सी शेरो शायरी सुनाओगी?
0: चलते चलते बस मैं सभी लिसनर से एक शायरी बोलूंगी। वहां पर बस आपका नाम है, वहां
2: बस
0: पर बस आपका नाम है, कितनी सुहानी ये शाम है। दूर से भेजा है इन हवाओं ने पैगाम, दूर से भेजा है इन हवाओं ने पैगाम, बना रहे आप सभी लिसनरों का साथ, यही है दिल से हमारा सलाम।
1: थैंक
2: वेरी
1: यू सो
2: नाइस,
1: मच
2: वेरी
1: पूनम जी,
2: नाइस, वेरी।
1: आपने कितनी सुंदर शायरी हमें सुनाई है। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आज ही पूनम जी।
2: जाते
0: जी बहुत बहुत
2: जाते
0: शुक्रिया।
2: जाते जाते कोई संदेश जो मुरादाबाद को देना चाहती हो अपनी आवाज में?
0: मैं मुरादाबाद के हमारे जितने लिसनर सुन रहे हैं सभी को मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आसपास सफाई बना कर रखें, क्योंकि साफ सफाई बहुत जरूरी होती है, अपना पर्यावरण बचाना है तो आसपास हमें सफाई करनी है, पेड़ लगाने हैं, और ज्यादा से ज्यादा जो हमें तरोताजा हवा ऑक्सीजन पेड़ देते हैं उन पेड़ों को कटने से बचाना है, और अपना ध्यान रखना है, साथ साथ जो हमारे पशु पक्षी होते हैं उनको दाना पानी भी खिलाते रहना है, और सभी का ध्यान रखना है, और सुनते रहना है, सुनाते रहना है, और सुनते रहना है FM मुरादाबाद, सुनते रहो और सुनाते रहो सभी के साथ।
1: थैंक यू सो मच पूनम जी।
2: थैंक यू पूनम, थैंक यू सो मच, लवली टॉकिंग टू यू, एंड जल्दी मिलेंगे आपको फिर इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे
1: नेशन
2: एक
1: पे
2: नए शो में, है ना?
0: बिल्कुल, बहुत जल्दी मुलाकात होगी, सोता हूँ आप सभी से, और इसी के साथ मैं अब चलती हूँ, मुझे आप सब दे जाने की इजाजत, कब मिलेंगे आनंद जी ये तो आनंद जी ही बताएंगे।
2: प्राची आप बताओ जाते जाते क्या कहोगी लिसनर्स को?
1: पूनम जी, हम आपको बस हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी से आपसे फिर से एक प्यारी सी मुलाकात हो, और हमारे लिसनर से हम ये कहना चाहेंगे कि प्लीज़ अपना पर्यावरण को बचाने की, अपने एनवायरनमेंट को बचाने की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और हमें ट्रीज सेव द ट्रीज़, हमें ट्रीज़ बचाने हैं, हमें पेड़ों को बचाना है, स्पेशली जो बड़े पेड़ हैं हमें उन्हें बचाना है, हमें उन्हें नहीं कटने देना है, क्योंकि अगर वो कट गए तो हमारा जीवन बहुत मुश्किल हो जाएगा, और जैसा कि हम देख चुके हैं कि बहुत सारे फॉरेस्ट जो है, बहुत जंगल जो है वो

0: ज्यादा से अच्छा गाना छोड़ के जा रहे हैं गाइस आपके लिए। आप सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो,
1: बजाती रहिए, गुनगुनाती रहिए।
0: बाय बाय बाय पूनम,
1: बाय बाय पूनम जी,
2: बाय बाय,
0: टेक केयर, बाय बाय।

0: जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
1: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते।
2: स्किन, बाल, नाखून, समस्त चर्म रोग एवं एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सुविधाओं के लिए विजिट करें डॉक्टर ऋषि गोयल डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सेंटर, ऑपोजिट लवीना रेस्टोरेंट, कांट रोड, मुरादाबाद।
3: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
4: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
3: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
4: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेज 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
5: कॉल 7500153841।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अखिल और आप सुन रहे हैं दिल से दिल तक अखिल संग, मुरादाबाद FM 89.6 MHz पे आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। और हाँ, इस समय कहीं ना कहीं तो गाड़ी में से आवाज़ आ ही रही होगी कि भैया जल्दी पहुंचो घर, अगर कहीं फंसे हों रेलवे स्टेशन के पास या फिर फव्वारे के पास या फिर पीलीकोठी के पास। कहीं ना कहीं तो लग रहा होगा ऐसा कि जल्दी से जल्दी घर पर पहुँचें, फटाफट अपनी पार्किंग की जद्दोजहद करें और घर के अंदर घुसें, और जो लोग आज खाने में लेट हो गए जल्दी जल्दी खाना खाएं और फिर करें अपनी मस्ती। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक नया टॉपिक और वो है तनख्वाह, मतलब सैलरी या फिर आपकी पहली कमाई। तो वो दिन जब आपने अपनी मेहनत का पहला पैसा हाथ में आया था, आपकी मेहनत का, किसी ने माँ के हाथ पर रख दिया या किसी ने दोस्तों को पार्टी दी और शायद किसी ने अपने सपनों की पहली सीढ़ी चढ़ी। इसी अल्फाजों को एक शायरी में बयां करते हैं, मेहनत की धूप में जो पसीना बहाया था, मेहनत की धूप में जो पसीना बहाया था उसका फल पहली कमाई बनकर आया था। नोट तो छोटे थे मगर खुशी बड़ी थी क्योंकि उसमें अपना सपना समाया था। तो हाँ जी, कुछ बातें होती ही ऐसी हैं, कुछ यादें ऐसी होती हैं आपकी अपनी पहली कमाई से। अगर आप कोई अच्छा व्यापार कर रहे हैं या कोई भी व्यापार में आपको एकदम मुनाफा हुआ हो, या फिर आपकी पहली नौकरी में जब आपको छोटी सी भी सैलरी से शुरुआत हुई और आपकी और आपने उसे धीरे धीरे करके अपनी मेहनत से और दोगुना चार गुना वाले मौके पे ले आए हैं, तो कुछ ना कुछ तो बात होती है। चलिए आज करेंगे इसी मौके पर और इसी विषय पर चर्चा। 9837896896। और हाँ, अगर आप गाड़ी में सुन रहे हैं और गाड़ी से सुनते सुनते आप पहुंच भी गए अपने घर, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है क्योंकि आपके पास जो आपका मोबाइल है उसमें प्ले स्टोर में जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं मुरादाबाद 89.6 FM मुरादाबाद, और उसके बाद हमसे भी आप पूरे टाइम जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए जुड़ते हैं और उससे पहले ये गाना सुनते हैं। हमारे पास फरमाइश आई थी अभी एक हमारे लिसनर की, स्टूडेंट की, जो मुरादाबाद से ही हैं और उन्होंने एक रखा था कि अखिल सर मैं ये गाना सुनना चाहता हूँ, तुझमें रब दिखता है। तो क्यों नहीं हम उसी से शुरुआत करते हैं अभी।

वेलकम बैक 89.6 मेगाहर्ट्ज मुरादाबाद एफएम, आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। और मुझे पूरी पूरी उम्मीद है आपको कहीं ना कहीं तो हल्की बहुत याद तो आई होगी कि मेरी जो पहली कमाई थी, जो मेरी पहली सैलरी है, उससे मैंने क्या किया था। और क्या जो अभी काम कर रहे हैं, जिनकी अभी पहली पहली जॉब लगी है, और जो इसी मंथ जिनके पास पहली सैलरी आएगी जैसे ये मंथ पूरा होगा, तो वो क्या प्लान कर रहे हैं, तो उनसे जुड़े हुए हमारे पास मैसेज आए हैं। अभी हमारे पास पहला मैसेज जो आया है वो आया है पूजा जी मंडी बाज से मुरादाबाद। उन्होंने लिखा है, मेरी पहली सैलरी 12,000 रुपये की थी, मैंने सबसे पहले अपनी मम्मी के लिए साड़ी खरीदी थी। क्या बात है पूजा जी, बहुत ही अच्छा काम किया आपने ये। और कहते हैं ना, माँ का आशीर्वाद जो है हमेशा साथ में ही रहता है, और सबसे पहले असर भी उसी का होता है। तो आपने बहुत ही अच्छा काम किया कि आपकी जो सैलरी जो आई आपके पास 12,000 रुपये, उसमें सबसे पहले आपने अपनी माँ के लिए कुछ ना कुछ खरीदा। राहुल है रामपुर से, उन्होंने मैसेज किया है, मैंने अपनी पहली कमाई से अपने पापा के लिए घड़ी खरीदी थी। क्या बात है राहुल जी, आपने बहुत अच्छा किया, आपने सही कहा, उन्होंने सही समय दिखाया पापा ने आपको कि बेटा अब यही सही समय है कि तुम अपने पैरों पर खड़े हो जाओ और कुछ कमा के लाओ। और आपने बहुत ही बढ़िया गिफ्ट उन्हें दिया, बहुत बढ़िया। तो एक हमारे पास मुस्कान जी ने शायरी लिख के भेजी है। मुस्कान जी कहती हैं, जेब में पहली बार जब अपने पैसे आए, खुद से मिलने के नए बहाने आए, माँ की मुस्कान सबसे बड़ी दौलत लगी, जब उनके हाथों में वो नोट थमाए। क्या बात है मुस्कान जी, आपने तो शायरी में भी अपना नाम शामिल कर दिया कि माँ की मुस्कान सबसे बड़ी दौलत लगी। बहुत ही अच्छी शायरी, उम्दा शायरी। तो आप भी याद करिए ना कि ऐसा क्या था जो आपने अपनी पहली सैलरी से, अपनी पहली कमाई से अपने परिवार में, अपने परिवार वालों को, अपने खास को, अपने प्यारों को कुछ ना कुछ दिया था। तो आते हैं इस गाने के बाद और जुड़ते हैं आपसे दिल से दिल तक अखिल संघ के साथ।

0: जी हाँ, धड़कन मूवी से आप गाना सुन रहे थे, दूल्हे का सहरा सुहाना लगता है। और इसमें म्यूज़िक दिया है नदीम और सरवन साहब ने, और गाना गाया है नुसरत फ़तेह अली खान साहब ने। आवाज़ का तो उनका अलग ही एक जादू सा था। आज भी अगर उनका कोई भी गाना कानों में पड़ता है तो ऐसा लगता है कि क्या मतलब खो जा जाते हैं उसमें, खो जाते हैं, और उसमें दिल ऐसा झनकोर हो जाता है हमारा कि भैया ये पूरा गाना सुनना है अब तो हमारा भी यही था कि गाना तो पूरा ही सुना जाएगा। और अभी हमारे साथ एक लिसनर हमारे साथ जुड़े हैं, चलिए उनसे भी कुछ बात करते हैं, क्या कहते हैं अपनी पहली कमाई या पहली तनख्वाह के ऊपर। नमस्कार, कैसे हैं आप?
1: यहाँ सर, आप कैसे हो?
0: बढ़िया सर। कहाँ, क्या नाम है और कहाँ रहते हैं आप, ये बताइए हमारे श्रोताओं को।
1: नाम है मुरादाबाद।
0: तो क्या करते हैं आप सैनी साहब?
1: मंडी में काम करते हैं सर।
0: मंडी में काम करते हैं। तो आज हमारी बातें चल रही थी सैनी साहब कि आपकी पहली कमाई के साथ आपने क्या किया था जब आपके हाथ में आपकी पहली कमाई आई थी। तो
1: हमारे यहाँ पे पहली कमाई, हमने पहला काम करा था, पहली कमाई आती थी, हमने अपने मम्मी पापा को पैसे दिए थे कमा के। सर
0: क्या बात है, और कितना अच्छा लगा था आपको आपके मम्मी पापा को उस समय?
1: बहुत अच्छा लगा था, हमारे मम्मी पापा को भी अच्छा लगा था।
0: बहुत बढ़िया काम किया था साहब आपने। और बताइए बाकी कैसे, उसके अलावा कुछ शॉपिंग वॉपिंग करी, कुछ पैसे बचाए मम्मी पापा को देने का? मम्मी पापा ने कहा कि बेटा चलो अब कुछ अपने लिए भी खरीद लाओ?
1: हाँ सर, कहीं सकती मैंने तो खरीदा, मैं मम्मी का एक साड़ी लेकर आया था सर।
0: तो आपने एक साड़ी में जो है पूरा सब कुछ जो है सॉल्व कर दिया, सॉल्यूशन। चलिए बहुत ही अच्छी बात है। तो आज आप क्या सुनना चाहेंगे?
1: खुलवाए फिल्म तो
0: खलनायक फिल्म का मतलब गाना भी खतरनाक वाला, नायक नहीं खलनायक हूँ मैं। और आपकी अब शादी हो गई है
1: हाँ, 3 बच्चे हैं सर।
0: तो अब तो आपकी जो कमाई है वो जो है भाभी जी के हाथ में चली जाती होगी सीधे एकदम। तो बस पहली कमाई डेडिकेट हो पाई, उसके बाद की कमाई जो है सब जो है भाभी के हाथ में ही पहुंच गई।
1: पापा
0: अच्छा चलिए साहब, आपने संभाल रखी है जिम्मेदारी और आपने सब कुछ कर रखा है, बहुत बढ़िया काम है। और ऐसी ही आप आगे बढ़ते रहें और हमसे कांटेक्ट करते रहें। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ मंडी से सैनी साहब, जिन्होंने अपनी पहली कमाई से साड़ी अपनी माँ को लाके दी थी। और कहते हैं उस समय क्या फील हुआ होगा, कितना अच्छा लगा होगा एक माँ को और एक बेटे को भी जब वो अपनी पहली कमाई से कुछ लाके देता है अपनी माँ को। तो माँ जो होती है ना कुछ बता नहीं पाती, कुछ बोल नहीं पाती हमसे हमेशा, तो कुछ ना कुछ अंदर से लगता है कि हाँ आज कुछ ऐसा हुआ है, उन्हें अंदर से फील होता है कि मेरे बेटे ने भी मेरे लिए ऐसा कुछ किया जो आज मुझे इस लायक समझा कि मुझे भी एक साड़ी ला के दी। तो कहीं ना कहीं कई सारे सवाल अपने अंदर घूंसते रहते हैं उस चीज़ को लेके। हमारे पास एक और अभी मैसेज आया है, वो अर्चना जी। अर्चना जी कहती हैं कि मेरी पहली कमाई इतनी छोटी थी कि मैं अपने घर वालों को बता नहीं पाई कि मेरे हाथ में इतने पैसे आए हैं। तो अर्चना जी ऐसी कोई बात नहीं होती है, जो कमाई कमाई होती है, सैलरी चाहे आपकी 5,000 हो, 4,000 हो, 6,000 हो, मगर जो सैलरी होती है ना वो आपकी अपनी मेहनत की होती है। आपने पूरा टाइम अपने डेडिकेट के साथ उस काम पे ध्यान दिया, चाहे आप व्यापार कर रहे हो, चाहे आप कहीं नौकरी कर रहे हो, तो वो उसकी कोई कीमत नहीं होती। हाँ, मगर आजकल के समय में जहाँ इतने खर्चे बढ़ गए हैं, जहाँ पे इतना सब कुछ महंगाई का दौर चल रहा है, तो वहाँ लगता है कि हाँ कुछ अमाउंट छोटी है, मगर जो भी है ना वो है आपकी अपनी, ये बात तो सच है। और दोस्तों मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि कल हमारे उत्तर प्रदेश में लखनऊ में बहुत ही एक दर्दनाक घटना घटी, जिसमें 15 स्टूडेंट्स जो थे आग के हवाले हो गए। एक जगह आग लगी एक कॉम्प्लेक्स में, जहाँ पे बताया गया कि ग्राउंड फ्लोर पे पेंट की शॉप थी, जबकि ऊपरी मंजिल पर गेमिंग जोन चल रहा था। तो और उसके ऊपर आपका एक एजुकेशन सेंटर था जहाँ पे आग लगी, और उस आग में इतनी भयानक आग लगी कि 15 बच्चों की जान चली गई। हमारी सभी की, मुरादाबाद की तरफ से सभी लोगों की तरफ से एक विनम्र श्रद्धांजलि है उन सभी को, और उन सभी के साथ हम सब खड़े हैं, उस परिवार के साथ भी जिनके साथ इस हादसे में जिनके अपने खोए हैं, और उम्मीद करते हैं कि आगे ये ऐसी घटनाएं ना हों, और बहुत ही सूझबूझ के साथ, चाहे कहीं भी हो, चाहे हम ही लोग कहीं अपने बच्चों को, अपने प्यार को, सबको, अपने भविष्य को जब हम इन किसी इंस्टीट्यूट में या कहीं भी ऐसी जगह भेजते हैं, तो ज़रूर उन्हें एक हल्का सा थोड़ा सा गाइड करें कि आप भी नोटिस करें कि वहाँ पे इस चीज़ के तहत फायर सेफ्टी के तहत वहाँ पे इंतज़ाम है या नहीं है, या फिर थोड़ा सा इस चीज़ के लिए भी हम सबको जागरूक होना ज़रूरी है, क्योंकि आजकल के समय में कभी भी ये चीज़ें, आग लगना और ये सब ऐसी घटनाओं का कुछ अपने हाथ में होता नहीं है बस, और अचानक हो जाती है। तो उससे बचाव के लिए, उससे बचने के लिए तो हम उसे थोड़ा सा तो अपने को तैयार कर सकते हैं, थोड़ी सूझबूझ के साथ कर सकते हैं, और उन लोगों को भी टोक सकते हैं जहाँ पे वो लोग ऐसे बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स में संचालन कर रहे हैं, तो उन लोगों से कह सकते हैं कि आप लोग सेफ्टी मेजर्स का कैसे अपने यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, और सेफ्टी मेजर्स आपके क्या क्या हैं। तो ये क्वेश्चंस आप ज़रूर करें उस इंस्टीट्यूट से, उस जगह से, उस गेमिंग जोन से, क्योंकि गेमिंग जोन में बहुत बच्चे होते हैं, और गेमिंग जोन में हर तरह का बच्चा होता है, जिस लेवल पे गेम्स वहाँ पे लगाए हुए होते हैं, तो वहाँ पे भी हमें देखना चाहिए कि अगर हम गेमिंग जोन में अपने बच्चों को भेज रहे हैं या हम खुद भी वहाँ जा रहे हैं, तो वहाँ पे फायर सेफ्टी के क्या क्या उन्होंने प्रावधान कर रखे हैं। तो चलिए, अभी तो हमारे जो लिसनर थे जिन्होंने इतने अच्छा गाने की हमसे फरमाइश करी, नायक नहीं खलनायक हूँ, तब तक वो सुनते हैं। आपकी भी अपनी कोई बात हो, कोई पहली कमाई की ऐसी खास याद हो, वो ज़रूर 9837896896 पे मुझे मैसेज करें, या फिर कॉल करके सीधे बात करें। यार सिंपल सा नंबर है 9837896896। कॉल बहुत आती हैं, और इस चक्कर में जब एक बार बिजी लगता है तो आपको भी लगता होगा यार बिजी आ रहा है नंबर, मगर नहीं, एक बार ट्राई करें तो दोबारा हमारे साथ मुलाकात ज़रूर होगी। तो तब तक के लिए सुनते हैं हम

वेलकम बैक टू 89.6 मेगाहर्ट्ज मुरादाबाद एफएम, आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। अभी हम जो गाना सुन रहे थे, नायक नहीं खलनायक हूँ मैं, इस गाने पे जो पिक्चराइजेशन हुआ है वो हुआ है संजय दत्त साहब का। और जब ये गाना आया था ना दोस्तों, तो उनके लुक का हर कोई ऐसा फैन हो गया था कि हर कोई उनके ऐसा ही दिखना चाहता था। उस समय के जो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे इस मूवी के, सुभाष घई साहब, वो उन्होंने इतने दिल से इस मूवी को डायरेक्ट किया था कि हर जगह इस मूवी की चर्चा थी। और इस पिक्चर की जो कास्टिंग थी वो भी बहुत ही दमदार थी। संजय दत्त साहब तो थे ही अपने आप में उस समय खूब फेमस, साथ में जैकी श्रॉफ, माधुरी दीक्षित, राखी जी और अनुपम खेर साहब ने इस मूवी में बिल्कुल एकदम कहते हैं चार से चार लगा दी। तो बहुत ही अलग ही तरह का एक नायक हमें देखने को मिला था, जो इस पर्दे पे मतलब कहते हैं आज भी एवरग्रीन रोल संजय दत्त साहब ने किया है इसमें। तो अभी हम बात कर रहे थे अपने ही टॉपिक पे कि कमाई और आपकी पहली सैलरी का क्या क्या आप लोगों ने लुफ्त, कैसे कैसे वो मस्ती करी, क्या जलेबी आई और क्या समोसे आए या क्या रसगुल्ले आए। हमारे एक शायरी आई है, बहुत ही प्यारी शायरी है, मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। रकम छोटी थी मगर एहसास बड़ा था, पहली कमाई में अपना विश्वास खड़ा था। खर्च हुए पैसे लेकिन यादें रह गईं, क्योंकि उस दिन मेहनत का सपना पूरा हुआ था। तो इतनी अच्छी शायरी हमारे पास आई है ये, और विकास जी ने हरतला कॉलोनी से इसे हमें मैसेज किया है। तो बहुत सुंदर विकास जी, बहुत ही अच्छी आपकी शायरी थी। अभी आप लोगों से एक मज़ेदार सवाल करता हूँ, और आप लोगों को भी उसका मज़ेदार चटपटा जवाब देना है। अगर आपको अपनी पहली सैलरी या कमाई फिर से मिले तो क्या करेंगे? पहला ऑप्शन है माँ पापा को दे देंगे, दूसरा ऑप्शन है बचत करेंगे, तीसरा ऑप्शन है घूमने जाएंगे, और आखिरी ऑप्शन चौथा वो ये है कि खुद पर खर्च करेंगे क्या? तो इन चारों में से कोई भी एक ऑप्शन आप चूज़ करें और हमें बताएं, हमें मैसेज करें 9837896896 पे, और आप हमसे जुड़ें और हमें बताएं कि ऐसा क्या है। अंकित जी कहते हैं हमसे कि मैं पूरा पैसा मम्मी को दे दूंगा। क्या बात है। तो भैया यहाँ तो फिक्स है अंकित जी का कि जैसी मेरी पहली कमाई आती है मैं अपना पूरा पैसा मम्मी को दे दूँ। मम्मी का जादू ही सभी पे ऐसा होता है अपनी माँ का, कि भैया जो भी पहली कमाई आ रही है माँ को तो ज़रूर कुछ ना कुछ देना है, बाकी को तो पता नहीं, मगर अपने घर में अगर माँ हैं उस समय, तो उस समय उनको तो ज़रूर कुछ ना कुछ देना है। तो ये तो रहता है दोस्तों कुछ ना कुछ। चलिए तब तक हम करते हैं एक और नया गाना प्ले आपके लिए, और आपसे भी सुनते हैं आपके मन की या दिल की वो बात जो आपके आई थी पहली तनख्वाह में आपके साथ। हमारे साथ ट्यून अप रहिए 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे।

0: सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: योजनाओं ने 140 करोड़ देशवासियों को नई ताकत दी। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के संकल्पों से उत्तर प्रदेश का कायाकल्प हुआ। उज्ज्वला योजना से महिलाओं को धुआं मुक्त रसोई, पीएम किसान सम्मान निधि से किसानों को आर्थिक मजबूती और आयुष्मान भारत से आम लोगों को बेहतर इलाज की सुविधा मिली।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी

एक था लड़का और एक थी लड़की दीवानी। तो जो प्यार की कहानी थी ना, ये मूवी कृष्ण से थी और इसमें जो फिल्माए गए एक्टर्स थे वो थे ऋतिक रोशन और प्रियंका चोपड़ा जी। गाना गाया था सोनू निगम साहब और श्रेया घोषाल जी की आवाज़ में, और जो म्यूज़िक डायरेक्टर थे आपको पता ही है, एज़ यूज़ुअल अगर राकेश जी की मूवी है तो उसमें म्यूज़िक डायरेक्टर राजेश रोशन जी तो अपने आप ही आपको मिल जाएंगे। इसे कहते हैं भाइयों की जोड़ी। एक भाई डायरेक्टर है तो दूसरा भाई म्यूज़िक डायरेक्टर है, तो बहुत ही बच्चों के फेवरेट एकदम क्रिश मूवी। हर जगह जब ऋतिक जी की ये मूवी आई थी ऋतिक की, तो उस समय हर कोई क्रिश बन गया था। इवन एक परफॉर्मेंस भी आपको याद होगी रणवीर सिंह ने बीच रोड पे दी थी बॉम्बे की मेन सड़क पे, एकदम हाईवे पे जाके और परफॉर्म किया था एक डेयर पे क्रिश मूवी के गाने पे। तो दोस्तों, पहली कमाई सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं बढ़ाती, वो आत्मविश्वास भी बढ़ाती है। उस दिन एहसास होता है कि अब हम अपने सपनों को खुद पूरा कर सकते हैं। जो मैंने आप लोगों से मैसेज किया था, आप लोगों के साथ एक क्वेश्चन भी पूछे गए थे, उसमें मेरे पास जवाब आए कि अगर आपके पास आपको आपकी पहली सैलरी फिर से मिले तो आप क्या करेंगे, आपके पास दोबारा एक बार ये मौका आए कि मैं अपनी पहली कमाई या पहली सैलरी देना चाहूँगा तो आप क्या करेंगे। मैंने पूछा था आपसे कि या तो आप माँ पापा को देंगे या आप बचत करेंगे, तीसरा ऑप्शन था घूमने जाएंगे या फिर खुद पे खर्च करेंगे। तो हमारे पास समीर जी का मैसेज आया है कि मैं खुद पे खर्च करूँगा। समीर जी क्या बात है, ये अच्छी बात है कि आप अगर आपके पास दोबारा फिर से आपकी पहली कमाई आती है तो आप उसे खुद पे खर्च करेंगे। वहीं रिया जी कहती हैं कि इस बार अखिल जी मैं अपनी सैलरी को पहले निवेश करूँगी। तो निवेश करना तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है रिया जी, निवेश करेंगी तो हुई आगे की चीज़ें और सेटल डाउन होगी, और निवेश करने से कई चीज़ें आपकी बैलेंस आगे का थोड़ा सा और स्टेप मजबूत हो जाता है जीने का। हमारे पास कमाल साहब ने एक शायरी भेजी है, कहते हैं कमाई का पहला नोट भले ही पुराना हो जाए

मेरे पास तो आज भी मतलब कमाई क्या कह लें, बचपन में जब 5 का सिक्का और वो 1 रुपए का सिक्का और 8 का सिक्का, वो भी आजकल मैंने भी अपने एक कहते हैं ना गुल्लक में संभाल के रखे हुए हैं। वो बात अलग है, वो मैंने इतना संभाल के रख लिया कि मुझे गुल्लक ही नहीं मिल रही है, मगर रखने की कोशिश मैंने भी की है। तो दोस्तों हमारे साथ क्या है ना, पहली कमाई जो है ना सिर्फ बैंक बैलेंस ही नहीं बढ़ाती है, वो आपका आत्मविश्वास भी बढ़ाती है। उस दिन का एहसास होता है कि हाँ अब हम अपने सपनों को खुद भी पूरा कर सकते हैं। पहली कमाई की खुशबू ही कुछ अलग होती है, हर नोट में मेहनत की झलक अलग होती है। वक्त गुजर जाता है मगर यादें नहीं, उस दिन दिल में एक नई चमक होती है। तो आज हमने बात करी अपनी पहली सैलरी और अपनी पहली कमाई की, और उन खूबसूरत यादों को भी हमने बटोरा अपने साथ। कईयों ने बताया, कई लोगों ने हमें ये बताया कि उन्होंने अपनी पहली सैलरी से, अपनी पहली कमाई से अपनी माँ को साड़ी दी, अपनी माँ को अपने माँ बाप के हाथ में जाके वो कमाई रख दी। तो एक अलग ही मोमेंट उस समय उनके साथ गुजरा, और कितना अच्छा होता है वो पल जब आप ये सब चीज़ें अपने साथ संजोड़ के रखते हैं। याद रखिए, पैसे की कीमत उसकी रकम से नहीं, उसके पीछे की मेहनत से होती है। तो अब वक्त आ गया हमारी विदाई का, आज के इस टॉपिक के साथ जो हमने और आपने आज खूब इसके ऊपर बातें करी, खूब इसके साथ अपनी पुरानी यादों को ताज़ा किया, उसी के साथ अब अलविदा कहने का टाइम आ गया है। तो चलने से पहले और अपनी ये आखिरी शायरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा, और उम्मीद करता हूँ कि आपको भी ये शो और ये नए नए कुछ कहानियाँ, कुछ नए नए फसाने अच्छे लग रहे होंगे। और जैसा भी लग रहा होगा आप हमें ज़रूर इस पे व्हाट्सएप पे हमारे फीडबैक हमें भेजें, 9837896896 पे। अभी हमारे पास एक मैसेज आया है वाजिद अली मिस्त्री साहब का, कहते हैं कि मेरे पास दिव्यांग महिला पर मेरी पेंशन आती है, दिव्यांग होने पर पूरे, और मैं उसमें से कुछ पैसा अपनी अम्मी को दे देता हूँ और कुछ अपने बच्चों में खर्च करता हूँ। क्या बात करी आपने वाजिद अली साहब, और बहुत ही अच्छी बात करी कि जो भी आपके पास पेंशन आती है उसमें से आप कुछ हिस्सा आप अपनी अम्मी को दे देते हैं, जिससे कि उनका भी खर्चा चलता रहे, उनको भी कहीं किसी से कुछ कहना ना पड़े या कहीं पैसों के लिए कोई बात ना करनी पड़े, और आप वो सब चीज़ें प्रोवाइड हो जाए, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और दूसरा, आपने अपने बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है कि अपने उन बच्चों पे भी आप खर्च करते हैं, ये बात है ना। देखिए कहीं ना कहीं वाजिद अली साहब ने अपने से ज़्यादा अपनों के लिए सोचा है। तो होती है कि कमाई कुछ भी हो, कैसी भी किसी भी रूप में आपके पास आ रही हो, मगर आप अपने से ज़्यादा अपनों के लिए सोच रहे हैं, तो वो कुछ दिल से जुड़ी हुई बातें होती हैं जो आप बयां नहीं कर सकते, सिर्फ समझ ही सकते हैं उसे किसी ना किसी तरीके से। तो चलिए दोस्तों हम मिलेंगे फिर कल, और जाने से पहले सुनते हैं बड़ी ऐसी शायरी। पहली कमाई का सफ़र याद रखना, पहली कमाई का सफ़र याद रखना, मेहनत पर हमेशा विश्वास रखना, मंजिलें खुद कदम चूमने लेंगी एक दिन, मंजिलें खुद कदम चूम लेंगी एक दिन, बस अपने सपनों को दिल के पास रखना। तो मैं हूं आपका दोस्त अखिल, और लेकर चाहता हूं अब आपसे चाहता हूं इजाज़त। हम फिर मिलेंगे कल रात 9 बजे। आज के लिए थोड़ी सी माफ़ी, मैं थोड़ा हो गया था लेट, आप लोगों से जुड़ा था 9:30 बजे, तो कुछ लोग होते हैं इंतज़ार में कि यार 9 बजे जुड़ेगा बंदा, और थोड़ा सा लेट हो जाता है तो कहते हैं ना कॉल तो फिर वो दोबारा आती नहीं है, मगर ये इसके लिए आपसे, आपका ये अखिल माफ़ी मांगता है। और हम फिर मिलेंगे कल रात ठीक 9 बजे FM मुरादाबाद 89.6 MHz पर, दिल से दिल तक अखिल के संग। करते हैं बढ़िया सा गाना प्ले और लेते हैं आपसे इजाज़त।

0: क्यों?
1: अरे तुम्हारे भाभी की डिलीवरी करवानी है, कहाँ जाऊँ?
2: अरे तो परेशान क्यों होना है ना धानिया नर्सिंग होम, यहाँ मिलेंगी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर अर्चना अग्रवाल अपने 20 वर्षों के अनुभव के साथ। बिना दर्द के नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन ऑपरेशन या हो बांझपन का इलाज, सब कुछ मिलेगा एक ही छत के नीचे और साथ ही आयुष्मान कार्ड की सुविधा भी उपलब्ध है। धानिया नर्सिंग होम, मानसरोवर कॉलोनी, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 9012069764।

0: पंडित जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
1: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
2: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
1: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट, मुरादाबाद।

मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पी या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश में हरित अभियान को मिल रहा है नया विस्तार। पौधारोपण, अमृत वन और जन भागीदारी से प्रकृति को संवारने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। 13 रामसर साइट और जैव विविधता का संरक्षण करते हुए यूपी में विगत 9 वर्षों में रिकॉर्ड 242 करोड़ से अधिक पौधारोपण किया गया। इस बार भी पर्यावरण दिवस को बनाए खास, एक पेड़ माँ के नाम अभियान को जन आंदोलन बनाए।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।

मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।